एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। आज रविवार है, सक संवत 1948 की भाद्रपद मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 13 सितंबर 2026 सुबह के 5:57 होने को हैं। हमारी आज की सभा अब आरंभ होती है।

FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। 6 बजने को हैं, आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। ब्रिक्स सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। ये सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ था। सभी ब्रिक्स देशों के समर्थन से कल नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 जारी किया गया। ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। उन्होंने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई और ऐसी कार्रवाइयों से बचने को कहा जिनसे हालात और बिगड़ सकते हैं। उन्होंने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़ी निंदा की और आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों से निपटने के अपने संकल्प को फिर से दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार से करनी होगी।
1: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पुष्टि की है कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आयोजित ब्रिक्स नेताओं के कल रात्रि भोज में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में ब्रिक्स सिम्फनी एक लय कई संस्कृतियों के माध्यम से सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने मिलकर प्रस्तुति दी। सिम्फनी में ब्रिक्स देशों के विभिन्न वाद्य यंत्रों और संगीत परंपराओं को भारत की शास्त्रीय नृत्य परंपराओं के साथ जोड़ा गया। कार्यक्रम में विभिन्न देशों की संगीत संस्कृतियों के बीच समन्वय और ब्रिक्स परिवार की विविधता, सांस्कृतिक समृद्धि तथा एकजुटता की भावना को प्रदर्शित किया। सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से एक साथ मिलकर बेहतर दुनिया के निर्माण की भावना को दर्शाने वाले इस कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों की समृद्ध संस्कृति और विविध सभ्यताओं को भी प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह आज मुंबई एशियाटिक सोसाइटी में श्री गणेश ध्यानार्थी नाम की पांडुलिपियों की एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। वे पुस्तकालय का भी दौरा करेंगे और एशियाटिक सोसाइटी की पांडुलिपि संरक्षण प्रयोगशाला के कार्यों का निरीक्षण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। श्री शाह आज बांद्रा रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। श्री शाह लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए भी जाएंगे। गृहमंत्री कल से मुंबई के 3 दिन के दौरे पर हैं। मौसम विभाग ने गुजरात में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में तेज बारिश होने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। वहीं दिल्ली में अगले 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। इस बीच केरलम और माही में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की उम्मीद है। एलेना रायबाकिना ने महिला अमेरिकी ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क में कल खेले गए फाइनल में रूस की रायबाकिना ने बेलारूस की आयरा सबलेंका को पराजित किया। रायबाकिना का ये पहला अमेरिकी ओपन खिताब जबकि तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले अमेरिका के क्रिस्टियन हैरिसन और ब्रिटेन के नील स्कूपस्की की जोड़ी ने जर्मनी के केविन क्वाइड्स और टिम पोइट्स की जोड़ी को हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया था। भारत के प्रज्वल देव और फ्रांस के कॉन्स्टेंटिन बिटून कॉस्मिन की जोड़ी ने एटीपी टेनिस

0: रेंजर का डबल्स खिताब जीत लिया है। इस जोड़ी का ये दूसरा खिताब है। वियतनाम के फान थिएट में स्पोर्ट फेस्टिवल चैलेंजर में खेले गए मैच में शीर्ष वरीयता प्राप्त इस जोड़ी ने फाइनल में जापान के यामातो सुएओका और नाओकी ताजिमा की जोड़ी को 6-1, 7-6 से हराया। महिला एशिया कप क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज भारत का सामना श्रीलंका से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। आइए सुनते हैं वंदन वार चिंतन कार्यक्रम विविध भारती से।

Sientan. रामकृष्ण परमहंस का कथन है कि जो व्यक्ति दूसरों की बिना किसी भी स्वार्थपूर्ण उद्देश्य से मदद करता है वो असल में खुद के लिए अच्छे का निर्माण कर रहा होता है। ये था आज का चिंतन। लीजिए अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब झरोका के अंतर्गत आपको देते हैं आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी।

इस झरोखा के तुरंत बाद आज आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 310वां। संगीत सरिता कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 6:45 पर और शाम 6:45 पर। आज आप सुनेंगे श्रृंखला स्वर की स्वर साधना की अनुपम परंपरा, कलाकार गायिका डॉक्टर शकुंतला भरने। ये आप किराना घराना का भाग 13वां सुनेंगे, प्रस्तुति अनुश्री पाठक।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुनिए सुबह 7 बजे। हम है राही प्यार के कार्यक्रम का समय है 7:30 पर, समाचार सुबह 8 बजे, त्रिवेणी कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:15 पर और दोपहर 2 बजे। आलेख एवं स्वर नेहा आगरकर देसाई का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। नए गीतों से सजा कार्यक्रम चित्रलोक आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर और पुनः प्रसारण रात्रि 9:30 पर, जो केंद्रित है अभिनेत्री महिमा चौधरी पर। आलेख स्वर रेणु बंसल का, प्रस्तुति रमेश गोखले की। सुबह 10 बजे पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज में सुनेगा गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत का भाग 3, प्रस्तुति तेजश्री कामले। दिन में 11 बजे विविधा के अंतर्गत हिंदी दिवस के उपलक्ष में विशेष रूपक हिंदी साहित्य कल और आज, सहभाग प्रियवंद यतेंद्र मिश्र, कैलेश वानखेड़े, मनोज रूपड़ा, विनीत कुमार, उर्मिला शिरीष, स्वर आलेख ममता सिंह, प्रस्तुति तेज श्री कामले, संपादन सहयोग मनीषा सिंह। 12 बजे हिंदी में समाचार, 12:05 पर यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। दोपहर 1 बजे सुरीला सफर, फेसबुक पेज पर कमेंट्स के द्वारा आप जुड़ सकते हैं। 2:15 पर समाचार, 2:30 पर सदाबहार नगमे, 3 बजे कार्यक्रम मनचाहे गीत, 3:30 पर कार्यक्रम होगा नाट्य तरंग, नाटक साबुन की टिकिया, साकी के लिखे नाटक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण, रूपांतरकार शैलेंद्र, निर्देशक विजय दीपक छिप्पर। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत उजाले उनकी यादों के, फिल्मकार विमल राय के सुपुत्री रिंकी भट्टाचार्य से मंदाकिनी जोशी की बातचीत, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। शाम 5 बजे छाया गीत, शाम 5:30 पर तराने नए पुराने, शाम 6 बजकर समाचार हिंदी में, 6:05 पर तराने नए पुराने, 6:30 पर झरोका की रूपरेखा सुनिएगा, 6:35 पर संध्या रंजन चित्रपट संगीत और 7 बजे सुनिएगा विशेष जयमाला के अंतर्गत सैनिकों की शौर्य गाथा, महावीर चक्र सम्मान से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल गुरजेंद्र सिंह सूरी की शौर्य गाथा, प्रस्तुति तेज श्री कामले, स्वर और आलेख मंजरी वर्मा का, संपादक सहयोग मनीषा सिंह। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज, क्लेरनेट मास्टर इब्राहिम चौधरी। रात 8 बजे हवा महल के अंतर्गत सुनिएगा प्रसन्न राजेश और राकेश, लेखन V.M. आनंद, निर्देशन श्याम सुंदर। रात 8:15 पर चित्रलोक, 8:45 पर संध्या समाचार, रात 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए, रात 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम छाया गीत, आलेख एवं स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। रात 10:30 पर ढलती जाए रात,

अंगद के व्यंग वचन सुनकर रावण श्री राम की सेना के सभी योद्धाओं के बल और पराक्रम का उपहास करता है। हाँ, उस वानर को वो नहीं भूला जिसने लंका जलाई थी। अंगद ने कहा, तू जिसके बल की सराहना कर रहा है वो तो सुग्रीव का संदेशवाहक मात्र था, किंतु क्या सचमुच ही प्रभु की आज्ञा पाए बिना तुम्हारी सोने की लंका जला डाली? तुम सच ही कहते हो कि हमारे दल में कोई भी ऐसा वीर नहीं तुमसे लड़कर जो शोभा पाए। प्रीति और वैर अपने बराबर वाले से ही करना चाहिए। तुम्हें मारना श्रीराम को शोभा नहीं देता, किंतु क्षत्रिय का क्रोध बड़ा प्रबल होता है। अंगद के व्यंगवाणों से रावण का कलेजा जल उठा। क्रोध में उसने वानर जाति के लिए अपशब्द कहे, उनकी स्वामी भक्ति की खिल्ली उड़ाई और ये कहकर अपने बड़प्पन का परिचय दिया कि वो गुण ग्राहक है और इसी कारण वानरों की बकवास पर ध्यान नहीं देता। अंगद ने फिर व्यंगवाण छोड़ा, हां, तेरी गुण ग्राहकता मैंने हनुमान से सुनी थी। लंका दहन, अशोक वाटिका का विध्वंस और अपने पुत्र अक्षय कुमार के वध करने के बाद भी तूने इसी गुण ग्राहकता के कारण हनुमान का कोई अहित नहीं किया। फिर अपने पिता बाली के हाथों रावण को क्षमादान का स्मरण कर बोले, मैंने जगत में कई रावण होने की बात सुनी है। एक रावण तो वो था जो जब बाली को जीतने पाताल लोक गया तो बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा। बाली ने दया कर उसे मुक्त कराया। एक और रावण को जंतु समझ सहस्रबाहु ने पकड़ लिया था। कौतुक के लिए जब उसे घर ले आए तो पुलस्त ऋषि ने उसे मुक्त कराया। एक रावण वो भी था जिसे बाली ने अपनी कांख में दबा लिया था। इनमें से तू कौन सा रावण है?

श्रोताओं नमस्कार। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। इनसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की 13वीं कड़ी। हम

0: संगीत सरिता के सुधी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना श्रृंखला की इस कड़ी में और डॉक्टर शकुंतला भरणे जी हमारे साथ हैं। शकुंतला जी, हाँ? के किराना घराने की गायकी को धैर्यपूर्ण गायकी क्यों कहा जाता है?
1: धैर्यपूर्ण गायकी इसलिए कहा जाता है कि विकास बिना, जल्दबाजी के बिना क्रमशः और गहराई इसमें दिखाई जाती
0: जी,
1: है
0: जी।
1: और इसकी गायकी श्रोता को एक शांति, एकाग्रता और आत्मिक आनंद लेने का अनुभव कराती है। इस घराने में राग का विस्तार जो है वो अत्यंत धैर्य, संयम और क्रमबद्धता से किया जाता है
0: जी।
1: बल्कि धीरे धीरे उसका स्वरूप विकसित किया जाता है। इसीलिए राग के स्वर का अलग अलग ऊपर उभारते हुए
0: जी।
1: उसके आपसी संबंध और महत्व को स्पष्ट किया जाता है। इससे श्रोता राग के स्वरूप को सहजता के अनुभव कर पाता है। मंद्र सप्तक से मध्य और मध्य सप्तक से तार सप्तक भी एक एक क्रमशः बढ़ते हुए राग का विस्तार किया जाता है और इस क्रमिक विकास से राग की संपूर्ण छवि श्रोता के सामने स्पष्ट हो जाती है। और जहाँ कई घरानों में राग विस्तार के साथ एक लयकारी बोलबाट या तानों का प्रभाव अपेक्षाकृत शीघ्र दिखाई देता है
0: जी, जी।
1: यही किराना घराना राग के स्वरूप को धैर्य पूर्वक स्वर प्रधानता और भावपूर्ण ढंग से विकसित करता है
0: जी, जी, जी।
1: यहाँ उद्देश्य श्रोता को राग की गहराई और स्वर सौंदर्य का अनुभव कराना होता है। धैर्यपूर्णता का विस्तार का अनुभव करते हुए उस्ताद मशकूर अली खान
0: जी,
1: उनकी गायकी आप सुनो और उनकी गायकी में ये जो धैर्यपूर्णता दिखाई देती है, स्वर में जो वजन रहता है
0: हाँ।
1: हम उनका चांदनी केदार सुनेंगे।
0: क्या बात है, आइए सुनते हैं।

0: धैर्यपूर्ण गायकी किराना घराने की जो है वो इस ख्याल को सुनकर के उस्ताद मशकूर रोहली खान साहब की आवाज में हमने सुना
1: बिल्कुल
0: पूरी तरह स्पष्ट हो गया। और इसे सुनते हुए ये भी लगा कि कौन कौन से गाने होंगे फिल्मों से जो इस राग पर चांदनी केदार पर आधारित होंगे।
1: चांदनी केदार तो बहुत कम लोग गाते हैं
0: जी जी,
1: और इस राग में मुझे लगता है डायरेक्ट चांदनी केदार में गाना मिलना मुश्किल है ना। केदार की छाया लेकर
0: जी
1: हम चांदनी केदार का आनंद उठाएंगे
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। तो गीत कौन सा होगा?
1: घर फिल्म में एक बहुत ही प्यारा गाना है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गुलजार ने लिखा हुआ।
0: आपकी आंखों में कुछ महक
1: राहुल देवर्मन का संगीत,
0: आइए सुनते।

स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 13वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने, तबला संगत रोहिदास परब, हारमोनियम पर संगत दी ऋषित होनावरकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

विविध भारती के कार्यक्रम FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। आइए सुनते हैं नमस्कार अलवर कार्यक्रम।

नमस्कार अलवर, नमस्कार राजस्थान। आकाशवाणी कार्यक्रम के लोकप्रिय प्रातःकालीन कार्यक्रम नमस्कार अलवर में आपका स्वागत है। श्रोताओं, एक छोटा सा शब्द है कल, लेकिन इस छोटे से शब्द के पीछे हमारे पीछे कितने बड़े सपने छिपे होते हैं। आज पढ़ाई नहीं की, कल से करेंगे। आज व्यायाम नहीं किया, कल से शुरू करेंगे। आज किसी अपने से बात नहीं की, कल कर लेंगे। और आज कोई ज़रूरी काम नहीं किया, कोई बात नहीं, कल करेंगे। और फिर एक दिन वह कल, कल कहते कहते पता ही नहीं चलता कब बीत जाता है। और समय रुकता नहीं है दोस्तों, घड़ी की सुइयां लगातार चलती रहती हैं। दोपहर समय में बदलती हैं, दोपहर शाम में और शाम रात में, लेकिन हमारा जीवन वह भी उसी गति से आगे बढ़ता रहता है। इसलिए आज नमस्कार अलवर में हम बात करेंगे एक ऐसी छोटी सी आदत की जो छोटी लगती है लेकिन हमारे बड़े बड़े सपनों को पीछे धकेल देती है। विषय है कल पर मत टालो। जो करना है, जो जरूरी करना है, जो सही करना है, उसकी शुरुआत आज से अभी से करो। प्रिय श्रोताओं, तालम टोल की आदत को हम अक्सर बहुत सामान्य ले लेते हैं। हम कहते हैं अभी समय कहाँ है, अभी मन नहीं है, थोड़ा आराम कर लूँ फिर करता हूँ ना, और सोमवार से पक्का शुरू करूँगा। लेकिन समस्या यह नहीं है दोस्तों कि सही समय अक्सर आता नहीं है बल्कि बनाया जाता है। विद्यार्थी के लिए आज एक घंटा बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। किसान के लिए समय पर किया गया काम पूरी फसल को प्रभावित कर सकता है। व्यापारी के लिए समय पर लिया गया निर्णय अवसर बन सकता है। और परिवार के लिए आज की गई एक छोटी सी बातचीत किसी रिश्ते में आई आदत को पूरी कम कर सकती है, उसकी दूरी को कम कर सकती है। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें बाद में नहीं अभी करना चाहिए। किसी बुजुर्ग माता पिता का हाल पूछना है, आज पूछिए। किसी मित्र से माफ़ी मांगनी है, आज मांगिए। पढ़ाई शुरू करनी है, आज पहला पन्ना तो खोलिए दोस्तों। स्वास्थ्य के लिए चलना शुरू करना है, आज कुछ कदम ही चल लीजिए। क्योंकि बड़े बदलाव हमेशा बड़े कदमों से नहीं आते, वे छोटे छोटे कदमों से शुरू हो सकते हैं। और पहला कदम है कल, आज। इसलिए इस प्रेरक भावना के साथ सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

विद्यार्थी और कल से पढ़ूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, कल से पढ़ूंगा यह है शब्द विद्यार्थियों को या उनके द्वारा बोले जाने वाला सबसे लोकप्रिय वाक्य है। परीक्षा दूर होती है तो लगता है अभी तो बहुत समय है, फिर परीक्षा नज़दीक आती है, किताबें खुलती हैं, लेकिन पाठ्यक्रम देखकर चिंता बढ़ जाती है। काश 2 घंटे आज मोबाइल पर चले गए, वे 2 घंटे पढ़ाई कर लेते तो बहुत बढ़िया होता। इसलिए सफलता का रहस्य प्रतिभा नहीं है दोस्तों, नियमितता प्रतिभा को परिणाम में बदलती है। हर दिन थोड़ा पढ़िए, 1 अध्याय पूरा कीजिए, 10 पन्ने पढ़िए, 5 प्रश्न हल कीजिए, लेकिन शुरुआत तो कीजिए। आज की गई थोड़ी मेहनत कल की बड़ी चिंता को कम कर देती है। और याद रखिए दोस्तों, परीक्षा के 1 दिन पहले शुरू की गई तैयारी से बेहतर है परीक्षा से कई दिन पहले शुरू किया गया छोटा सा प्रयास, एक छोटा सा प्रयास। विद्यार्थी जीवन में समय की कीमत समझ लेना भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। तो आज अपने आप से कहिए, मैं कल से नहीं आज से शुरू करूंगा।

प्रिय दोस्तों, स्वास्थ्य को कल पर मत टालिए। दोस्तों, हम अपने जीवन में बहुत छोटी छोटी चीज़ों को समय नहीं निकाल पाते हैं। मोबाइल के लिए समय है, टीवी के लिए समय है, बातचीत के लिए समय है, लेकिन जब बात स्वास्थ्य की आती है तो कहते हैं कल सुबह टहलना शुरू कर दूंगा, कल से शुरू करूंगा, और वह कल कई बार महीनों तक नहीं आता। स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद डॉक्टर के पास जाने से बेहतर है कि स्वास्थ्य ठीक रहते हुए ही उसकी देखभाल कर ली जाए। सुबह की सैर, योग और व्यायाम, संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद और तनाव को कम करने की कोशिश, ये छोटे छोटे कदम जीवन को स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखने में मदद करते हैं मित्रों। और एक बात विशेष रूप से याद रखिए, यदि शरीर कोई संकेत दे रहा है, लगातार परेशानी हो रही है, तो उसे नज़रअंदाज मत करिए। बाद में देख लेंगे कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। समय पर सलाह लेना समझदारी है, क्योंकि धन वापस कमाया जा सकता है, समय वापस नहीं आता। तो स्वास्थ्य के मामले में भी कल पर मत टालो।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट कार्यक्रम नमस्कार अलवर। रिश्ते भी कल का इंतजार नहीं करते। प्रिय श्रोताओं, जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति केवल पैसा नहीं होती, हमारे रिश्ते भी हमारी अमूल्य पूंजी होते हैं। कभी पिता बेटे से बात करना चाहते हैं, कभी माँ बेटी से कुछ कहना चाहती है, और कभी कोई मित्र एक फोन का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन हम कहते हैं अभी व्यस्त हूँ, बाद में बात करता हूँ ना। कभी कभी वह बाद में बहुत देर से आता है और शायद नहीं भी आता। इसलिए अपने लोगों के लिए ज़रूर समय निकालिए। किसी अपने से नाराज़ हैं तो उससे बातचीत कीजिए,

यदि गलती हुई है तो क्षमा मांग लीजिए, यदि किसी ने आपकी सहायता की है तो धन्यवाद जरूर कह दीजिए, और यदि किसी को यह बताना है कि आप मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं तो यह बात आज ही कह दीजिए। रिश्ते में सबसे सुंदर शब्द कई बार बहुत साधारण होते हैं। धन्यवाद, क्षमा कीजिए और मैं आपके साथ हूँ, इन शब्दों को कभी कल्पना मत टालिए। जो कहना है कह दीजिए दोस्तों।

अवसर भी बार बार नहीं आते। प्रिय श्रोताओं, जीवन में अवसर आते हैं, कभी नौकरी का अवसर, कभी सीखने का अवसर, कभी नए काम की शुरुआत करने का अवसर और कभी किसी प्रतिभा को सामने लाने का अवसर। लेकिन कई बार हम डरे हमें रोक लेता है, ये डर ही हमें आगे सोचने को नहीं देता है। हम सोचते हैं पहले थोड़ा और सीख

पहले परिस्थितियाँ ठीक हो जाएं या फिर कभी कोशिश करूँगा। और देखते देखते अवसर किसी और के हाथ में चला जाता है, किसी और की झोली में डल जाता है। दोस्तों, इसका अर्थ यह भी नहीं है कि बिना सोचे हर काम बिना निर्णय के शुरू किया कर दिया जाए, लेकिन सही निर्णय के लिए विचार कीजिए, सलाह लीजिए और योजनाएं भी बनाइए, लेकिन निर्णय लेने के बाद पहला कदम जरूर उठाइए, क्योंकि पूर्ण परिस्थितियों की प्रतीक्षा करते करते जीवन में कई अवसर निकल जाते हैं। एक कहावत है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। हमारी परंपरा ने सदियों पहले समय का यही महत्व समझाया था, इसलिए आज अपने किसी एक अधूरे काम को चुनिए और उसे पूरा करने की दिशा में आज ही पहला कदम उठा लीजिए।

आज का एक छोटा सा संकल्प। प्रिय श्रोताओं, अब समय है आपसे एक छोटा सा सवाल पूछने का। ऐसा कौन सा काम है जिसे मैं लंबे समय से टाल रहा हूं? शायद पढ़ाई, शायद कोई जरूरी फोन, शायद स्वास्थ्य, शायद कोई अधूरा काम, शायद किसी से माफी मांगना, या शायद कोई ऐसा सपना जिसे आपने वर्षों से अपने मन में दबा कर रखा है। आज उसे पूरा करने की दिशा में एक छोटा सा कदम उठाइए। पूरी सीढ़ी दिखाई देना जरूरी नहीं है। कई बार केवल पहला पायदान दिखाई देता है, उस पर पैर रखिए। आज 10 मिनट, कल एक पन्ना, आज एक फोन, आज एक निर्णय, आज एक प्रयास। यही छोटे छोटे कदम एक दिन बड़ी सफलता की कहानी बनते हैं। और याद रखिए, कल हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आज हमारे हाथ में है। प्रिय श्रोताओं, आज के नमस्कार अलवर कार्यक्रम में हमने बात की कल पर मत डालो। जीवन हमें हर सुबह एक नया अवसर देता है। हर सूर्योदय कहता है एक और दिन मिला है कुछ अच्छा करने के लिए। इसलिए आज किसी एक अच्छे काम की शुरुआत तो कीजिए। किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए, किसी अपने से प्रेम की बात कीजिए, अपने स्वास्थ्य के लिए समय निकालिए। विद्यार्थी हैं तो किताब खोलिए।

किसी लक्ष्य की ओर पहला कदम बढ़ाइए, और यदि कोई सपना वर्षों से आपका इंतजार कर रहा है तो उसे कहिए, अब और इंतजार नहीं, मैं आ रहा हूँ। क्योंकि जिंदगी में सबसे सुंदर और समय है अब। कल की चिंता कल करेंगे, आज पूरी ईमानदारी से जिएंगे। इसी संदेश के साथ नमस्कार अलवर में मुझे अपने दोस्त नरेंद्र सिंह मतवाल को दीजिए अनुमति। फिर मिलेंगे एक नए दिन, एक नए विषय और नई ऊर्जा के साथ। तब तक याद रखिए, अच्छे काम के लिए समय का इंतजार मत कीजिए, सही समय वही है जो आपके पास है। आप सुन रहे थे आकाशवाणी अलवर का प्रातःकालीन कार्यक्रम नमस्कार अलवर। नमस्कार, सुप्रभात, आपका दिन मंगलमय हो। अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार अलवर, FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

मिलेंगे एक नए दिन, एक नए विषय और नई ऊर्जा के साथ। तब तक याद रखिए, अच्छे काम के लिए समय का इंतजार मत कीजिए, सही समय वही है जो आपके पास है। आप सुन रहे थे आकाशवाणी अलवर का प्रातःकालीन कार्यक्रम नमस्कार अलवर। नमस्कार, सुप्रभात, आपका दिन मंगलमय हो। अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार अलवर FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: मधु,
1: नई कार जीतने का मौका? वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
0: रुक जा बुड्ढू।
2: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो।
3: श्रोताओं, फिल्म संगीत में अंतराल के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत। आइए सुनते हैं किशोर कुमार को स्वतन फिल्म में। सावन कुमार का संगीत है और उषा खन्ना का संगीत। बोल हैं सावन कुमार के, फिल्म का नाम स्वतन।

अभी आपने सुना किशोर कुमार को फिल्म सौतन में। और आइए सुनते हैं प्रेम गीत फिल्म में जगदीश सिंह को।

0: अभी आपने सुना इंदिवर के लिखे गीत, जगजीत सिंह के संगीत और जगजीत सिंह के ही गाए हुए नगमे को फिल्म प्रेम गीत में। फिल्म संगीत सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
1: दादी कौन सा प्लांट है?
2: टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
3: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
3: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
0: एक बार फिर से आपका स्वागत है फिल्म संगीत में। आइए सुनते हैं जीवा फिल्म में आशा भोसले अमित कुमार को। संगीत है आर डी बर्मन का और गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने।

श्रोता फिल्म संगीत सुन रहे हैं और चल रहा है सरिस्का चैनल से। आइए सुनते हैं अगला नगमा। ये नगमा है कुर्बानी फिल्म से, आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, कल्याण जी आनंद जी का संगीत और गीत के बोल लिखे हैं इंदिवर ने। फिल्म का नाम कुर्बानी।

और आइए श्रोताओं, कार्यक्रम का आखिर में सुनते हैं शक्ति फिल्म में लता मंगेशकर, किशोर कुमार को आनंद बख्शी के बोल और आर डी बर्मन का संगीत।

शक्ति फिल्म के इसी नगमे के साथ फिल्म संगीत समाप्त होता है। एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने का आह्वान। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में डीआरडीओ का हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। मौसम विभाग का गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। एलिना रायबाकीना ने आरेना सबालेंका को हराकर अमरीकी ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता। और एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कल ब्रिक्स नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई। घोषणा पत्र में कहा गया कि आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक और अनुचित है।
1: नई दिल्ली घोषणा पत्र में पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई। इस हमले में 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। बाद में इस हमले के तार पाकिस्तान से समर्थन और प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादियों से जुड़े पाए गए। घोषणा पत्र में आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्त पोषण और आतंकवादियों को पनाह देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया गया। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने सदस्य देशों से आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने और आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंडों को खारिज करने का आग्रह किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सभी आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने की भी अपील की। ब्रिक्स टीम के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के समापन भाषण में कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
2: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्ष के लिए एक नई और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा।
2: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
0: विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र स्वीकार करना भारत की अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक था। उन्होंने कहा कि आज के सत्र में ब्रिक्स नेताओं ने अपने अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बात की, लेकिन बहुपक्षवाद को मजबूत करने और वैश्विक संस्थानों को अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, प्रभावी और वर्तमान वास्तविकताओं के लिए उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर व्यापक सहमति थी।
3: I would like to say that the outcome document.
4: मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप नई दिल्ली घोषणा पत्र को देखें तो ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से निंदा की है। ब्रिक्स नेताओं ने पिछले साल जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़े शब्दों में निंदा की है।
3: जम्मू एंड कश्मीर दैट टुक प्लेस लास्ट ईयर।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। एक रिपोर्ट। ब्रिक्स सम्मेलन में आज ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देश समावेशी वैश्विक विकास के भविष्य को आकार देने संबंधित विषय पर आयोजित सत्र में हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स के 10 साझेदार देश हैं बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम। इस सत्र के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से भी वार्ता करेंगे। यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है और इस वर्ष सम्मेलन की थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

0: सांस्कृतिक नेताओं के लिए कल रात्रि भोज का आयोजन किया। इसमें विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में ब्रिक्स सिम्फनी, एक लय, कई संस्कृतियों के माध्यम से सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने मिलकर प्रस्तुति दी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।
4: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह केंद्र पूर्वी मेदिनीपुर जिले के तटीय गांव जुनपुट में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्र पश्चिम बंगाल के विकास के लिए एक बड़ी परियोजना होगा और उड़ीसा की चांदीपुर परीक्षण रेंज के अलावा आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित परीक्षण केंद्र के बाद डीआरडीओ का तीसरा प्रमुख केंद्र होगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई एशियाटिक सोसाइटी में श्री गणेश ध्यानार्थी नाम की पांडुलिपियों की विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री पुस्तकालय का दौरा भी करेंगे और एशियाटिक सोसाइटी की पांडुलिपि संरक्षण प्रयोगशाला के कार्यों का निरीक्षण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। श्री शाह आज बांद्रा रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। वे लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए भी जाएंगे। गृह मंत्री कल से मुंबई के 3 दिन के दौरे पर हैं। इराक ने निसान प्रांत में सैन्य अभियान कमांडर को बर्खास्त कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शलामचे सीमा चौकी को भी एहतियात के तौर पर अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
5: सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर ड्रोन हमलों की जांच के बाद ये कार्रवाई की गई है। इससे पहले सऊदी अरब ने कहा था कि ये हमले इराक की ओर से किए गए थे, लेकिन उसने जवाबी कार्रवाई की जगह इराकी सरकार के प्रयासों को समर्थन का फैसला किया है। यमन में हौसी विद्रोहियों ने दावा किया है कि सऊदी अरब ने 48 घंटे के दौरान यमन में 100 से अधिक हवाई हमले किए। इस मामले में कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत के संकेत मिले हैं। अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने तनाव कम करने, शांति स्थापित करने और क्षेत्रीय स्थिरता मजबूत करने के प्रयासों को समर्थन देने के महत्व पर बल दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: और अब खेल खबरों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
6: महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में आज दुबई में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। वहीं पुरुष क्रिकेट में आज भारत अफगानिस्तान के साथ 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। टेनिस में एलिना रायबकीना ने महिला सिंगल्स अमरीकी ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क में खेले गए फाइनल में कजाकिस्तान की रायबकीना ने बेलारूस की आरेना साबालेंका को 6-4, 5-7, 6-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया। रायबकीना का ये पहला अमरीकी ओपन खिताब है और तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले अमरीका के क्रिस्टियन हैरिसन और ब्रिटेन के नील स्कोपस्की की जोड़ी ने जर्मनी के केविन क्रावेट्स और टिम पुएट्स की जोड़ी को

0: हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज न्यूयॉर्क में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मुकाबला अमेरिका के बेन शेल्टन से होगा। उधर भारत के प्रज्वल देव और फ्रांस के कॉन्स्टेंटिन बेटून कोज़ेमिन की जोड़ी ने एटीपी टेनिस चैलेंजर का डबल्स का खिताब जीत लिया है। इस जोड़ी का ये दूसरा खिताब है।
1: नेपाल में बाढ़ प्रभावित 8 जिलों से और शव बरामद होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1386 हो गई है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास आई बाढ़ ने उत्तर और मध्य नेपाल के कस्बों और गांवों में भारी तबाही मचाई थी। मौसम विभाग ने गुजरात में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में तेज वर्षा का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड और अंडमान निकोबार में गरज चमक के साथ वर्षा की आशंका है। दिल्ली में अगले 5 दिन तक कुछ स्थानों पर तेज वर्षा के आसार हैं। इस बीच केरलम और माहे में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आम सहमति से घोषणा पत्र की मंजूरी की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, टैरिफ के नाम पर दादागिरी बंद हो, सीमा पार आतंकवाद और वित्त पोषण पर जीरो टॉलरेंस का संदेश। नवभारत टाइम्स के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष बातचीत से खत्म हो। जनसत्ता लिखता है, मोदी और चिनफिंग में द्विपक्षीय वार्ता, सीमा मुद्दों पर दोनों पक्ष स्वीकार्य समाधान के लिए प्रतिबद्ध। दैनिक जागरण के अनुसार पहलगाम में आतंकी हमले की निंदा से आतंकवाद से भारत की को बल मिला। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी समर्थन। लोकसत्ता के मुताबिक डॉलर के मुकाबले ब्रिक्स देशों ने चुना स्थानीय मुद्राओं का रास्ता। साझा मुद्रा से पीछे हटकर भुगतान व्यवस्था मजबूत करने पर जोर। पंजाब केसरी की सुर्खी है, 21 ब्रिक्स देशों की जुबानी भारत लिखेगा नई कहानी। 20 साल का हुआ ब्रिक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगले 20 वर्ष के लिए हमें नई और महत्वाकांक्षी कार्य योजना पर काम करना होगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने कहा, पाकिस्तान में है आतंकी हाफिज सईद। जम्मू की विशेष अदालत में दी जानकारी, जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर छापेमारी। कुपवाड़ा, कुलगाम, बांडीपुरा और सोपोर में कई जगह तलाशी। डोडा में जैश आतंकी का शव मिला। अमर उजाला की सुर्खी है, जिहाद के लिए युवाओं को जोड़ रहा अलकायदा का आतंकी गिरफ्तार। एटीएस ने आजमगढ़ से दबोचा, आतंकी संगठन की विचारधारा से जुड़े लोगों के ग्रुप में कोर्ट में होती थी बातें। हथियार चलाने और बम बनाने की ट्रेनिंग लेने वाला था मोहम्मद नबील। राजस्थान पत्रिका के अनुसार समंदर से बुझेगी मुंबई की प्यास। रोज 40 करोड़ लीटर मिलेगा पानी, चेन्नई के बाद दूसरा प्रमुख शहर बनेगा। संयंत्र में समुद्री पानी को आरओ तकनीक से खारा पानी मीठा होगा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कम रैंक वाले कॉलेजों के ग्रेजुएट हार्वर्ड जैसा कमा रहे, अच्छी कमाई के लिए नामचीन डिग्री जरूरी नहीं। पत्र के अनुसार कॉलेज चुनने में कमाई को आधार न बनाएं। हिंदुस्तान का शीर्षक है, दिल्ली में 2.5 लाख निर्माण श्रमिकों को मिलेगा मुफ्त इलाज, निगरानी के लिए समिति गठित होगी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने का आह्वान। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में DRDO का हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। मौसम विभाग का गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। एलिना रायबाकीना ने आरिना सबालेंका को हराकर अमरीकी ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता। और एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा और

0: खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर? अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: श्रोता सुन रहे हैं सुखम संगीत और आज के फनकार हैं गुलाम अली। आइए सुनते हैं उन्हीं की गाई एक अगली प्रस्तुति, गुनगुनाती है हवा, फूल खिले दीप जले।

0: श्रोताओं, रोजाना की भागदौड़ भरी जीवन शैली में सबसे बड़ी और लगातार उभरती हुई समस्या है मानसिक तनाव। हर किसी के जीवन में पैर पसार चुका तनाव मानसिक स्वास्थ्य को काफी हद तक प्रभावित कर रहा है। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर किशोर दुदानी, जो कि साइकेट्रिस्ट हैं, मनोचिकित्सक हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: थैंक यू।
0: जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हमें लगता है कि भाई मानसिक स्वास्थ्य ये क्या होता है, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य तो हम सब जानते हैं, वो हमें दिखाई देता है, हम देखकर बता सकते हैं कोई व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं, अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य ऐसा है जिसका पैमाना क्या होगा, ये तो आप भी बता सकते हैं। तो क्या होता है इसका पैमाना, कैसे जाने कि कोई भी व्यक्ति है वो मानसिक रूप से स्वस्थ है या नहीं?
1: बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखिए, सबसे पहले तो मानसिक स्वास्थ्य हमारे मन की उस स्थिति को कहते हैं जिसमें कि हम अपने विचारों, अपनी भावनाओं यानी कि इमोशंस और अपने अनुभवों से तालमेल बिठा पाएं, उन विचारों, अनुभवों या भावनाओं से हम परेशान न हों और उनका एक अनुकूल असर पड़े हमारे पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन पर। उस एक परफेक्ट बैलेंस वाली स्थिति को मानसिक स्वास्थ्य कहा जाता है।
0: जी डॉक्टर साहब, कई बार देखने में आता है कि बहुत से व्यक्ति

0: कहते हैं ना कि बहुत भावुक किस्म का व्यक्ति है, बहुत इमोशनल आदमी है, तो क्या माने उसको, कोई किसी प्रकार का कोई विकार है? क्योंकि उसके कारण उसको बहुत से संकट भी झेलने पड़ते हैं, उसके साथियों को, उनके परिवार को। तो ये जो ओवर इमोशनल वाला जो इमोशन होता है, इसके बारे में बताइए कि ये क्या है।
1: बिल्कुल, देखिए अलग अलग तरह की भावनाएं, जैसे कि उदासी, निराशा, व्यथा, स्ट्रेस, तनाव, खुशी, ये सब हम लोगों में आती जाती रहती हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब ये भावनाएं कुछ समय तक या हफ्तों तक या महीनों तक बनी रहें एक जैसी ही स्थिति में, तो और वह स्थिति हमारे या किसी व्यक्ति के सामाजिक जीवन को या पारिवारिक जीवन को या प्रोफेशनल जीवन को प्रभावित करे, उस स्थिति में, उस स्थिति को मानसिक विकार या मानसिक डिसऑर्डर कहा जाएगा, जिस स्थिति में ये भावनाएं काफी लंबे समय तक रहें, काफी तीव्र हों और उस व्यक्ति के जीवन को ये प्रभावित, यानी कि तीव्रता इनका पैमाना है, तीव्रता इनकी अवधि और इनका सामाजिक और व्यक्ति के पारिवारिक जीवन पर प्रभाव।
0: जी, यदि लगातार और काफी लंबे समय तक चलता है, इसका मतलब कोई समस्या है
1: और दुष्प्रभाव पड़ रहा है उसका व्यक्ति के जीवन पर, तब हम उस भावना को मानसिक विकार या डिसऑर्डर कह सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है या स्वस्थ नहीं है, तो इसको कैसे जान सकते हैं, इसके लक्षण क्या है जो कि प्रथम दृष्टि से हमें दिखाई देते हैं? क्योंकि किसी भी व्यक्ति के मन में तो हम घुस नहीं सकते, प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन उसको देखकर उसके व्यवहार के माध्यम से ही हम जान सकते हैं। तो कौन कौन से मुख्य लक्षण हैं जिनको देखकर हमें शक होना चाहिए कि भाई ये मानसिक रूप से कुछ जो स्वास्थ्य है उसमें कुछ विकृति आई है?
1: अलग अलग मानसिक विकारों के अलग अलग लक्षण होते हैं। अगर मोटे तौर पर हम बात करें तो एक विकार होता है जिसको कि हम एंजाइटी डिसऑर्डर बोल सकते हैं, जिसमें कि व्यक्ति को अत्यधिक घबराहट रहती है
0: जी।
1: उसे बिना बात की घबराहट रहती है, उसे हर वक्त पसीना आता रहता है, बेचैनी सी रहती है, वो एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकता, या उसे छोटी छोटी बातों की चिंता होती है, इसे हम एंजाइटी का विकार या एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं। दूसरा विकार होता है डिप्रेशन का, जिसके के बारे में आजकल काफी हमें सुनने को मिलता है। इसमें व्यक्ति का मन यूजुअली उदास रहता है, उसकी जो डेली की रुचियां होती है, इंटरेस्ट होते हैं, उसमें उसका ध्यान कम हो जाता है, उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी लेवल्स कम हो जाते हैं, उसकी नींद और भूख में समस्याएं आने लग जाती हैं, डिस्टर्बेंसेस आने लग जाते हैं, और इसके अलावा कई बार उसके मन में आत्महत्या के विचार भी आ सकते हैं
0: जी।
1: ये डिप्रेशन के मुख्य लक्षण होते हैं। इसके अलावा कुछ और मानसिक विकार होते हैं, जैसे कि एक विकार होता है जिसको बोलते हैं सिजोफ्रेनिया। इसमें व्यक्ति को कुछ काल्पनिक आवाजें आने लग जाती हैं जिनको वो सच समझता है और वह उनको जवाब देने लग जाता है, यानी ऐसा व्यक्ति आपको खुद से बातें करता हुआ दिखाई देगा या इशारे करते हुए दिखाई देगा, जैसे कि वो किसी से बात कर
0: बड़बड़ा रहा है।
1: ये सिजोफ्रेनिया का लक्षण है। ऐसे ही एक होता है मूड डिसऑर्डर या बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसमें कि व्यक्ति को कभी डिप्रेशन यानी कि अवसाद के एपिसोड्स आते हैं, तो कभी मेनिया यानी कि उन्माद के एपिसोड्स आते हैं। उन्माद में व्यक्ति बहुत एग्रेसिव, बहुत गुस्से में, बहुत ज्यादा बोलना लग जाता है, उसकी एक्टिविटीज, उसका चलना फिरना बहुत बढ़ जाता है और उसकी नींद ना के बराबर हो जाती है। और ऐसे ही अवसाद के एपिसोड में डिप्रेशन के लक्षण आ जाते हैं, जिसमें कि व्यक्ति एकांत में रहना पसंद करता है, बोलना चालना, आना जाना कम कर देता है, उसकी दैनिक रुचियों में इंटरेस्ट कम हो जाता है।
0: जी, जानना चाहेंगे आपसे कि ऐसे कौन से मुख्य कारक हैं जो कि मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कई बार अमूमन कि एक ही परिवार में कुछ सदस्य हैं जिनकी एक ही जैसी परिस्थितियां हैं, आर्थिक हालत सबके एक जैसे हैं, एक जैसा भोजन करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ मानसिक रूप से बहुत ही डिस्टर्ब होते हैं, कुछ बहुत ही बढ़िया हसमुख होते हैं, तो क्या कारक होते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं जो ये डिसाइड करता है कि भाई मानसिक स्वास्थ्य में कहीं कोई समस्या है या नहीं है?
1: देखिए, सबसे पहला कारण तो है अनुवांशिक, जिसको कि जेनेटिक भी बोल सकते हैं, कि अगर किसी व्यक्ति की फैमिली में पहले किसी को मानसिक रोग रहा हुआ है, तो उसके आने वाले फैमिलीज में या बच्चों में ज्यादा चांसेस रहते हैं कि उनको मानसिक रोग हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है वातावरण या एनवायरनमेंट, कि उस व्यक्ति वो व्यक्ति

0: किस वातावरण में रह रहा है, उसका पारिवारिक माहौल, उसका सामाजिक माहौल, उसका कार्यस्थल का माहौल कितना हेल्दी है या कितना तनावपूर्ण है। अगर अगर उसका माहौल तनावपूर्ण है तो उसको मानसिक रोग होने के चांस ज्यादा है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पर्सनल फैक्टर, यानी कि उस व्यक्ति के अंदर तनाव को सहने की सहन शक्ति कितनी है। बहुत सारे लोग छोटे से तनाव में मानसिक विकारों से या रोग में घिर जाते हैं, और बहुत से लोग जो बड़े बड़े तनाव होने के बावजूद भी रिलैक्स एटीट्यूड में रहते हैं। तो एक आपका एक व्यक्ति का अपना पर्सनल क्या आउटलुक है उस तनाव या उस सिचुएशन के प्रति, वह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि वह व्यक्ति को कोई मानसिक रोग हो सकता है या नहीं। और एक इंपॉर्टेंट कारण है नशीले पदार्थ। जो लोग नशीले पदार्थ या व्यसनों का ज्यादा उपयोग करते हैं उनके ज्यादा चांसेस रहते हैं कि वह मानसिक रोग से आगे भविष्य में ग्रसित हो सकते हैं। क्योंकि नशीले पदार्थ दिमाग की फ्लेक्सिबिलिटी को या दिमाग की सहन शक्ति को धीरे धीरे कम करते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, क्या ये कहना सही होगा कि कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से यदि कोई विकृत है, कोई विकृति उसमें है, तो उसके जो ब्रेन है उसमें कोई समस्या है? मन और ब्रेन ये अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो ब्रेन तो एक शरीर का अंग होता है, मन एक ऐसा है, उसकी एक सोच होती है, या आप क्या कह सकते हैं कि वो मन क्या चीज है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
0: देखिए, जैसे शरीर है, शरीर हमें दिख रहा है, लेकिन शरीर को चला रही है आत्मा, वो हमें नहीं दिख रही। ऐसे ही ब्रेन तो एक दिखने वाली चीज है, एक फिजिकल, एक भौतिक चीज है, लेकिन उसको जो चला रहा है वो मन है। तो अगर साइंटिफिक भाषा में बात करें तो ब्रेन तो एक वायरिंग है बॉडी की या दिमाग की, और उस वायरिंग में जो करंट या जो सर्किट चल रहा है उसको हम मन कह सकते हैं। जो हमारी सोच है, हमारे विचार है, हमारी भावनाएं हैं, किसी भी घटना के प्रति हमारा क्या नजरिया है, वह सब हमारा मन है।
1: क्या हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमारा जो ब्रेन है वो एक हार्डवेयर है और हमारा जो मन है एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है?
0: बिल्कुल, ब्रेन एक हार्डवेयर है और मन एक सॉफ्टवेयर।
1: डॉक्टर साहब, एक सवाल और हम आपसे जानना चाहेंगे कि शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य ये दो अलग अलग मुद्दे हैं। तो एक शारीरिक जो स्वास्थ्य जिस किसी व्यक्ति का बहुत अच्छा है, तो क्या ये आवश्यक है कि उसका मानसिक स्वास्थ्य भी 100% सही रहेगा?
0: देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। WHO ने जो हेल्थ की यानी स्वास्थ्य की डेफिनेशन दी है उसमें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को ही इंक्लूड किया गया है कि एक व्यक्ति को स्वस्थ तभी कहा जाएगा जब वो मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ हो। तो मानसिक और शारीरिक देखने में जरूर अलग लगते हैं, पर इन दोनों का आपस में बहुत जुड़ाव है। अगर किसी व्यक्ति का मन स्वस्थ रहेगा, वो मानसिक तौर पर हेल्दी अच्छा फील करेगा, तो ही वो शारीरिक रूप से स्फूर्तिवान, चुस्त, ऊर्जावान फील करेगा। और ऐसे ही अगर जो व्यक्ति का शरीर स्वस्थ होगा, वो फिजिकली हेल्दी होगा, उसको कोई बहुत ज्यादा बीमारियां नहीं होंगी, उसकी एक एक्टिव लाइफस्टाइल होगी, दिनचर्या होगी, तो वो मानसिक तौर पे भी स्वस्थ रहेगा। इसके बावजूद भी ये देखा जा सकता है कि बहुत सारे लोग जिनको शारीरिक बीमारियां होती हैं, जिनको जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, वो मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। पर फिर भी अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
1: अच्छा, जिनका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ा होता है, कई बार शारीरिक रूप से वो काफी अच्छे स्वस्थ दिखाई देते हैं, तो क्या इसमें भी कोई संबंध है?
0: देखिए, मानसिक स्वास्थ्य अगर लंबे समय तक बिगड़ा रहे तो उससे शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ने लग जाते हैं। जैसे कि लंबे समय तक जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं उनको डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जी, ऐसे ही लंबे समय तक जिन लोगों को डायबिटीज रहती है या अनकंट्रोल्ड रहती है उनको डिप्रेशन होने।
1: श्रोताओं, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से डॉक्टर किशोर दुदानी हमें बता रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। बातचीत हमारी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल एक गीत संगीत की हम बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये बताएं गीत संगीत किस तरह का पसंद है आपको?
0: देखिए, अब मानसिक स्वास्थ्य की बात चल रही है तो इससे ही संबंधित एक गाना सुन लेते हैं।
1: जी बताइए।
0: रुक जाना नहीं तू कहीं हार के।
1: जी, इसके पीछे एक संदेश भी है।
0: हाँ,
1: सुनते हैं इस गीत को।

0: एंजाइटी में, एंजाइटी और में एंजाइटी और डिप्रेशन के रोग पाए जाते हैं, जिसको कि अवसाद कह सकते हैं या घबराहट के रोग कह सकते हैं, जिनमें कि व्यक्ति को बिना बात की घबराहट रहती है, या उसका दैनिक कार्यों में इंटरेस्ट कम हो जाता है, उसकी नींद या भूख में प्रॉब्लम आती है, या फिर उसको लंबे समय तक सिर दर्द बना रहता है। उसके बाद नशीले पदार्थों से जो लोग जूझ रहे हैं, उन समस्या से वो लोग भी काफ़ी डेली प्रैक्टिसेस में देखने को मिलते हैं। और तीसरे नंबर पर गंभीर मानसिक रोग जैसे कि सिजोफ्रेनिया या मूड डिसऑर्डर, ऐसे रोगी भी हमारे पास प्रैक्टिस में आते हैं।
1: जी, तो ऐसे व्यक्ति को आप दवाई देते हैं या उनको समझाते हैं, समझाइश करते हैं, या कौन सा तरीका आप अपनाते हैं जिससे
0: बिल्कुल,
1: वो ठीक
0: देखिए
1: हो
0: जो
1: जाते हैं?
0: एनजाइटी और डिप्रेशन के जो रोग हैं उसमें तो प्राथमिक उपचार है समझाना या काउंसलिंग, ठीक है। दवाइयाँ का रोल इनमें सेकेंडरी है,
1: जी
0: ठीक है। जो गंभीर मनोरोग हैं जैसे कि सिजोफ्रेनिया या मूड डिसऑर्डर, उसमें दवाइयों का रोल प्राइमरी है, प्राथमिक है, और समझाइश या काउंसलिंग का रोल एक बार जब व्यक्ति ठीक हो जाता है तब है। और जो नशे की समस्याएं हैं उनमें दोनों ही चीजों का मिला जुला रोल है, जिसमें कि दवाइयां ऐसी हों जो व्यक्ति को तलब होने से, नशीले पदार्थ की तलब होने से रोकें, और थोड़ा उसको मोटिवेट किया जाता है, उसकी इच्छा शक्ति को थोड़ा सा जगाया जाता है कि ताकि वो इन चीजों से आगे भविष्य में दूर रहे।
1: जी, आयु वर्ग की हम बात करते हैं। हर आयु वर्ग के व्यक्ति की शरीर रचना अलग होती है, उसका गठन अलग प्रकार का होता है, उससे रसायन अलग प्रकार के होते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि किस आयु वर्ग में सबसे ज्यादा जो मानसिक स्वास्थ्य है उसमें विकार आता है?
0: देखिए मानसिक विकारों की बात करें तो हर आयु में अलग तरह के मानसिक रोग मुख्य तौर पे देखे जाते हैं। वैसे कोई भी मानसिक रोग किसी भी अवस्था में हो सकता है, परंतु मुख्य तौर पे बात करें तो 15 से 25 वर्ष की जो युवा अवस्था है उसमें जो सिजोफ्रेनिया या मूड डिसऑर्डर जैसे रोग ज्यादा देखे जाते हैं, परंतु पिछले कुछ सालों में डिप्रेशन संबंधी रोग भी युवा अवस्था में ज्यादा देखे जा रहे हैं, क्योंकि आजकल के युवाओं पर करियर, पढ़ाई और इन सब चीजों का तनाव कुछ ज्यादा हो गया है।
1: जी
0: जबकि पहले डिप्रेशन संबंधी रोग आमतौर पे 40-45 की उम्र पे देखे जाते थे। ऐसे ही दिमाग के कुछ याददाश्त संबंधी रोग होते हैं जिनको कि अल्जाइमर्स डिमेंशिया कहते हैं, वह हमको साधारण तौर पे 75 से 80 वर्ष की उम्र के बाद देखने को मिलते हैं
1: तो
0: ये।
1: एक निश्चित आयु वर्ग के बाद जब ये रोग आते हैं तो ये मान लेना चाहिए कि एक सामान्य बात है, अब ठीक होना मुश्किल है क्योंकि ये आयु के साथ जुड़ी हुई है।
0: नहीं, अगर आयु के साथ कोई रोग आ रहा है तो बिल्कुल ये सामान्य है कि उस आयु में वो रोग किसी को भी आ सकता है, परंतु उसका इलाज भी उपलब्ध है, उसका इलाज भी उपलब्ध है। तो मेरे हिसाब से जिन भी लोगों को या जिनके परिवार में या जिनके रिश्तेदारों को ऐसा कुछ रोग देखने को मिलता है तो उनको किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ से कंसल्ट करना चाहिए।
1: जी, ये तो हमने सब जाना कि किस तरह के लक्षण होते हैं और क्या क्या उसके कारण हैं। अब किस प्रकार से, मान लो कोई मानसिक स्थिति किसी की ठीक नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए किस तरह से शारीरिक या मानसिक व्यायाम आप रिकमेंड करते हैं, अनुशंसा करते हैं, जिनके माध्यम से उनको स्वास्थ्य लाभ होता है?
0: देखिए बिल्कुल, वैसे भी कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर एक अच्छा अनुशासित और बैलेंस्ड जीवन हम रखें तो हम काफी तरह के मानसिक रोगों से बच सकते हैं। उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि एक हमारी एक ऐसी दिनचर्या हो जिसमें कि लगभग 40 से 50 मिनट हम एक नियमित व्यायाम को दें, 20 मिनट, 15 से 20 मिनट हम ध्यान या प्राणायाम को दें। इसके साथ एक हमारा एक प्रॉपर डेली रूटीन हो, एक दिनचर्या हो, एक समय जागने का, एक ही समय सोने का, खाना खाने का एक समय,

0: अपने काम करने का, काम पर जाने का, आने का एक पर्टिकुलर अगर हम दिनचर्या रखते हैं तो भी हम इन मानसिक रोगों से काफी तौर पे बच सकते हैं। इसके अलावा हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ रुचि होती है, किसी की खेल में रुचि होती है, किसी की कला में रुचि होती है, किसी की रीडिंग में रुचि होती है, किसी की राइटिंग में रुचि होती है। तो थोड़ा बहुत समय अपनी रुचियों के लिए निकाल के भी हम एक आत्म संतुष्टि प्राप्त करते हैं और वह भी हमें मानसिक रोगों से बचाने में काफी मददगार।
1: डॉक्टर साहब, जब हम मानसिक अवस्था की बात करते हैं तो कुछ शब्दावलियां हमारे सामने आती हैं, जैसे कि अब अवसाद है, तनाव है, डिप्रेशन या टेंशन जिसको बोलते हैं, तो दोनों एक ही हैं या ये अलग अलग किस्म की बातें हैं, क्या है, थोड़ा सा
0: हाँ,
1: इसके बारे में
0: देखिए,
1: बताइए।
0: टेंशन और तनाव तो एक ही चीज है,
1: जी
0: लेकिन टेंशन और तनाव तो हर किसी की जिंदगी में रहता है। टेंशन, तनाव या स्ट्रेस दो तरह के होते
1: पॉजिटिव भी
0: हैं।
1: हो सकता है।
0: हाँ, यू स्ट्रेस यानी कि पॉजिटिव स्ट्रेस और डिस्ट्रेस यानी कि नेगेटिव स्ट्रेस। पॉजिटिव स्ट्रेस तो हमें मोटिवेट करता है कि हम अपने कार्य समय पर करें,
1: जी
0: हमारी एक प्रॉपर दिनचर्या हो, और जब वह एक सीमा को पार कर जाता है तो वह डिस्ट्रेस यानी कि नेगेटिव स्ट्रेस बन जाता है। और जब वह नेगेटिव स्ट्रेस काफी तीव्र और काफी लंबी अवधि के लिए रहता है तो वह अवसाद या डिप्रेशन में परिवर्तित हो जाता है।
1: जी तो साहब, ये कहना तो बहुत आसान है कि भाई देखो, टेंशन मत लो, स्ट्रेस में मत रहो, क्योंकि ये हमारे वश में भी नहीं है, हमारे
0: बिल्कुल
1: नियंत्रण में भी नहीं है। कहना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो घटनाक्रम चल रहा होता है उसको सिर्फ वही जानता है, वही झेलता है। तो किस प्रकार से कोई भी व्यक्ति है वो तनाव में ना रहे, डिप्रेशन में ना जा पाए, इसके लिए कोई ऐसा ठोस आप उपाय ऐसा बताएं इसका, जिसको कि
0: देखिए,
1: अपने
0: हाँ,
1: जीवन में वो उतारें और अपने डिप्रेशन, तनाव इन सब से दूर रहें।
0: तनाव तो मनुष्य के जीवन की एक आने जाने वाली स्थिति है और वह हम सबके जीवन में आता है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस तनाव को हेल्दी तरीके से उसका सामना करें और उसको किसी बीमारी में या डिप्रेशन में न बदलने दें। तो इसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम तनाव को अपने परिवारजनों से या अपने मित्रों से शेयर करना, बांटना सीखें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जिस चीज का सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे होते, वह हम अगर अपने परिवारजनों से या मित्रगणों से शेयर करते हैं तो हमें एक बहुत ही आसान सॉल्यूशन मिल जाता है और हम किसी बुरी स्थिति में जाने से बच जाते हैं। दूसरी बात, अब व्यक्तिगत स्तर पर बात बात करें तो किसी भी घटना का होना ना होना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उस घटना के प्रति हमारा क्या रिएक्शन हो या हमारा क्या नजरिया हो, यह हमारे हाथ में है।
1: जी
0: तो उस घटना से प्रभावित न होकर, अपना धैर्य बनाकर, समय लेकर क्या उस घटना के लिए हम कर सकते हैं, अगर यह हम थोड़ा सोचें तो भी हम एक मानसिक दुष्प्रभाव होने से रोक सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि कुछ व्यक्तियों के सामने इतने संकट आते हैं कि वो संकट प्रूफ हो जाते हैं, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका जीवन बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा होता है, सपाट होता है, लेकिन कभी छोटी मोटी कोई बात हो जाती है तो उसको बहुत बड़ा करके और उसको मानसिक कह सकते हैं कि टेंशन में आ जाते हैं। तो क्या ये सच बात है कि व्यक्ति के जीवन में इस तरह की जब घटनाएं होती रहती हैं, कुछ ऐसी बाधाएं आती हैं तो उसको मजबूत करती हैं?
0: देखिए, ये सही है, पर इनका निर्धारण करने में कि किसी व्यक्ति की तनाव को सहने की क्या प्रतिक्रिया है, इसमें बहुत सारे और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। जैसे कि एक महत्वपूर्ण फैक्टर है उस व्यक्ति का बचपन या चाइल्डहुड, कि उसको एक बचपन में क्या पारिवारिक माहौल मिला, उसने क्या देखा अपने पेरेंट्स को या अपने आसपास के व्यक्तियों को, कैसे उसने तनावों को झेलते हुए देखा, तो आगे चल के उसका भी वही एक पैटर्न बन जाता है तनावों को झेलने का या तनावों के प्रति क्या प्रतिक्रिया देने का।
1: जी
0: यह बात आपकी सही है कि जब बहुत लंबे टाइम तक किसी व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से भी परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, और उसको उसके तनाव झेलने की सहन शक्ति, जिसको कि अपन कोपिंग एबिलिटी बोलते हैं, वो बढ़ जाती है।
1: जी, अंत में कोई मैसेज हमारे तमाम श्रोताओं को देना चाहें जो इस समय आपको सुन रहे हैं?
0: बिल्कुल, मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि देखिए, शारीरिक स्वास्थ्य की तरह मानसिक स्वास्थ्य भी हमारे जीवन में बहुत जरूरी हिस्सा है, और हमें जिस तरह हम अपने शरीर को प्रॉपर समय देते हैं, अपनी डाइट पर ध्यान देते हैं, अपनी एक्सरसाइज पर ध्यान देते

0: सकते हैं, उसी तरह हमें अपने इमोशंस, हेल्दी इमोशंस, हेल्दी थॉट्स पर भी ध्यान देना चाहिए। उसके लिए हम अच्छा लिटरेचर पढ़ सकते हैं, अच्छे लोगों की संगत में रह सकते हैं, अच्छे विचारों को सुन सकते हैं। और फिर भी अगर किसी को कोई मानसिक प्रॉब्लम या कोई मानसिक सिम्टम रहता है जो कि इतना तीव्र यहाँ इतनी अवधि के लिए है जिससे कि उस व्यक्ति का जीवन प्रभावित हो रहा है, तो उसे किसी डॉक्टर से, किसी मनोचिकित्सक से मिलने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करना
1: जी।
0: चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, आज आपने बहुत ही सटीक, तार्किक और प्रभावपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखा और वक्त निकालकर आज आपने ये महत्वपूर्ण बातें बताई, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं।
0: मैं भी आपको और हमारे सभी श्रोताओं को धन्यवाद देता हूँ।
1: श्रोताओं, अब हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो अक्सर चुपचाप हमारे भीतर पलता रहता है, अकेलापन। अकेलापन वो एहसास है जो भीड़ में भी हो सकता है और कभी कभी पूरी दुनिया साथ होते हुए भी मन को खाली कर देता है। श्रोताओं, अकेलेपन का क्या होता है मनोविज्ञान, ये जानते हैं राजश्री शर्मा से।
2: आमतौर पर कुछ लोगों को अकेले रहना पसंद होता है। ऐसे लोगों को देखकर हम तुरंत एक धारणा बना लेते हैं, लेकिन मनोविज्ञान कुछ और ही कहता है। जब हम हमेशा अकेले रहने वाले लोगों को देखते हैं तो हम तुरंत एक निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि उनमें कुछ गड़बड़ है, वे किसी के साथ समय नहीं बिताते। दरअसल अकेले रहना कोई आदत नहीं बल्कि एक चुनाव हो सकता है। ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक बचाव का तरीका हो सकता है। चलिए आपको बताती हैं जो हमेशा अकेले रहते हैं उनके बारे में मनोविज्ञान क्या कहता है। मनोविज्ञान के अनुसार एकांत दो प्रकार का होता है, एक है स्वेच्छा से चुना गया एकांत और दूसरा है पीड़ादायक एकांत। स्वेच्छा से चुना गया एकांत में रहने वाले लोग अक्सर अकेले रहकर शक्ति प्राप्त करते हैं। वे अच्छी तरह से सोचते हैं, वे पढ़ते हैं, वे स्वयं से बातें करते हैं। ये विशेष रूप से अंतर्मुखी लोगों में देखा जाता है। वे लोगों के बीच रहने की तुलना में अकेले रहकर भावनात्मक रूप से अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। असहनीय अकेलापन। जो लोग असहनीय अकेलेपन से पीड़ित होते हैं वे अकेले रहना नहीं चाहते, लेकिन परिस्थितियां, अनुभव या अतीत के आघात उन्हें अकेलेपन की ओर धकेल सकते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार रिश्ते में उपेक्षा, दोस्ती में टूटा हुआ विश्वास, अस्वीकृत का अनुभव या बार बार होने वाली गलत फहमियां कुछ लोगों को धीरे धीरे अपने चारों ओर एक दीवार बनाने के लिए मजबूर कर सकती हैं। हालांकि वे बाहर से शांत दिखते हैं लेकिन वे अंदर से खाली हो सकते हैं।

अभी श्रोता सुन रहे थे स्वास्थ्य पत्रिका FM बैंड 103.1 MHz पर। यह आकाशवाणी अलवर है। कुछ ही क्षणों में सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी जयपुर केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली, घोषणा पत्र 2026 जारी। सभी देशों ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का संकल्प दोहराया। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के तहत सभी 309 निकायों के लिए वोटों की गिनती कल की जाएगी। लोक देवता बाबा रामदेव की जयंती आज। जैसलमेर के रामदेवरा में ध्वजारोहण के साथ मेले की विधिवत शुरुआत हुई और सक्रिय मॉनसून के असर से कुछ पश्चिमी जिलों को छोड़कर आज प्रदेश भर में बारिश का येलो अलर्ट। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में चल रहे 18वें ब्रिक्स सम्मेलन का दूसरा और

0: अंतिम दिन आज है। सम्मेलन में कल पहले दिन ब्रिक्स देशों के समर्थन से नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 जारी किया गया। ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी इस दौरान कड़ी निंदा की गई और आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों से निपटने के अपने संकल्प को फिर से दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक है। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत कार्य प्रणाली में सुधार से करनी होगी।
1: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
0: इससे पहले कल भारत मंडपम में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में ब्रिक्स सिंफनी, वन रिदम, मैनी कल्चर्स के माध्यम से सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने मिलकर प्रस्तुति दी। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के तहत सभी 309 निकायों के लिए वोटों की गिनती कल की जाएगी। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि मतगणना शांतिपूर्ण और समयबद्ध तरीके से कराने के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने बताया कि गणेश चतुर्थी के पर्व को देखते हुए मतगणना की व्यवस्थाओं में आंशिक बदलाव किया गया है। जयपुर नगर निगम की मतगणना भवानी निकेतन कॉलेज में होगी, जबकि जिले के अन्य 18 निकायों में संबंधित निकाय मुख्यालय पर बनाए गए स्ट्रांग रूम में मतगणना होगी। वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मतगणना के दिन विजय जुलूस निकालने पर रोक रहेगी। हालांकि प्रत्याशी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद अपने घर पर समर्थकों के साथ जश्न मना सकेंगे। आयोग के अनुसार भड़काऊ नारों और माहौल खराब होने की आशंका को देखते हुए विजय जुलूस पर रोक लगाई गई है। जैसलमेर के पोखरण रेंज में भारतीय वायुसेना कल से ड्रोनाथॉन 2026 आयोजित करेगी। 3 दिन के इस ड्रोनाथॉन में भारतीय उद्योग जगत की कंपनियां स्वदेशी ड्रोन और ड्रोन रोधी तकनीकों का विकास, परीक्षण और प्रदर्शन करेंगी। इस आयोजन का उद्देश्य घरेलू निर्माताओं को मानव रहित हवाई प्रणालियों और ड्रोन रोधी प्रणालियों में अपनी क्षमताओं और तकनीकी प्रगति को प्रदर्शित करने का अवसर देना है। ड्रोनाथॉन के जरिए मौजूदा जरूरतों के अनुरूप तकनीकी समाधान तलाशने और उनके युद्धक प्रभावशीलता का आकलन करने में मदद मिलेगी। आयोजन को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, YouTube चैनल राजस्थान AIR न्यूज और Facebook AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। जैसलमेर के रामदेवरा में आज लोक देवता बाबा रामदेव मेले की विधिवत शुरुआत हुई। भादवा शुक्ल द्वितीया पर बाबा रामदेव की जन्म जयंती के अवसर पर भरने वाले इस मेले का आगाज आज सुबह पंचामृत अभिषेक और शिखर पर ध्वजारोहण के साथ हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया कि देश भर में प्रसिद्ध इस मेले में राजस्थान के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु बाबा रामसा पीर के जयकारों के साथ पहुंच रहे हैं।
2: मेले में देश भर से आए श्रद्धालुओं को देखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं मेला प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा एवं सुगम दर्शन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की गई है। कानून एवं शांति व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। चिकित्सा, पेयजल, विद्युत, सफाई, यातायात, पार्किंग एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। मेले की प्रत्येक गतिविधि पर प्रभावी निगरानी के लिए क्लोज सर्किट कैमरे लगाए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विद्युत विभाग द्वारा मेले में

0: 24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नए ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
1: बाबा रामदेव के प्राकट्य दिवस पर जोधपुर के मसूरिया स्थित गुरुवाली नाथ जी की समाधि पर भी मेला भर रहा है। बाड़मेर, पाली, भीलवाड़ा सहित सभी जिलों में बाबा रामदेव जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं के उमड़ते सैलाब को देखते हुए कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है, साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व कल देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। राजधानी जयपुर स्थित मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पर्व को देखते हुए प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं। यातायात पुलिस ने शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया है। श्रद्धालुओं को जाम से राहत और पार्किंग की जानकारी देने के लिए पहली बार विशेष QR कोड जारी किया गया है। इसे स्कैन कर नजदीकी पार्किंग, यातायात डायवर्जन और लाइव ट्रैफिक की जानकारी ली जा सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये पवित्र ग्रंथ सदियों से मानवता को निस्वार्थ सेवा, मानवीय गरिमा और एकजुटता का मार्ग दिखाता आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये पावन अवसर लोगों को इन मूल्यों को मजबूत बनाने और अधिक करुणामय तथा सौहार्दपूर्ण विश्व के निर्माण में प्रेरित करेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी प्रदेशवासियों से सिख धर्म के पांचवें गुरु अर्जुन देव जी के गुरु गद्दी दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। और अब मौसम। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय रहने से कल राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में बारिश हुई। अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, कोटा, दौसा और माउंट आबू में हल्की बरसात दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान जताया है। आज कुछ पश्चिमी जिलों को छोड़कर समूचे प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट है। उदयपुर संभाग और आसपास के जिलों में कहीं कहीं मध्यम से भारी बरसात का अनुमान है। इस दौरान राज्य के शेष हिस्सों में भी कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र से राज्य में बारिश का नया दौर शुरू हो गया है। इसका असर 16 सितम्बर तक बने रहने की संभावना है। पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों यानी जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में हल्की से मध्यम बरसात होने के आसार हैं। उदयपुर संभाग और आसपास के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश का पूर्वानुमान है। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार दुबई में रात 8 बजे से खेला जाएगा। भारत ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराया था। 7 बार का चैंपियन भारत ग्रुप ए में अपने सभी मैच जीतकर शीर्ष पर रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 जारी। सभी देशों ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का संकल्प दोहराया। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के तहत सभी 309 निकायों के लिए वोटों की गिनती कल की जाएगी। लोक देवता बाबा रामदेव की जयंती आज। जैसलमेर के रामदेवरा में ध्वजारोहण के साथ मेले की विधिवत शुरुआत हुई। और सक्रिय मानसून के असर से कुछ पश्चिमी जिलों को छोड़कर आज प्रदेश भर में बारिश का येलो अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में प्रादेशिक समाचार FM बैंड 103.1 MHz पर। यह आकाशवाणी अलवर है। आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई से।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर के स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में अब वक्त है एक अंतराल का।

अंतराल के बाद आइए आपको सुनवाते हैं प्रेम रतन धन पायो फिल्म का गीत, मोहम्मद इरफान, दर्शन रावल और पलक मुछाल की आवाजों में। इरशाद कामिल ने इसे लिखा है।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हमारी अधूरी कहानी इस फिल्म का गीत सुनिए, कुणाल वर्मा ने इसे लिखा है, आवाज और संगीत अमी मिश्रा का।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार, ये प्रोग्राम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: जुदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आप सभी को रेनू बंसल का नमस्कार। आज हमारी फनकार हैं अभिनेत्री महिमा चौधरी।

0: दोस्तों, ये गाना फिल्म परदेश का था और परदेश महिमा चौधरी की पहली फिल्म थी। वो शोमैन सुभाष घई की खोज है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सुभाष घई जब भी किसी अभिनेत्री को पहली बार हीरोइन बनने का अवसर देते हैं तो उसे एक नया नाम भी देते हैं और ये नाम हमेशा म से शुरू होता है और महिमा के साथ भी यही हुआ। माता पिता का दिया हुआ नाम ऋतु चौधरी घर में ही रह गया और फिल्मों के लिए महिमा मंडित हुआ नया नाम महिमा। लेकिन इस बात की पूरी जानकारी स्वयं महिमा चौधरी के स्वर में।
1: क्रेडिट दे देते हैं कि सुभाष जी ने मुझे नाम दिया, ये मैंने खुद चुना था। उन्होंने जरूर कहा था कि तुम्हारा नाम दे रहा हूँ मैं प्रेस में, तो ऋतु चौधरी ही दूं कि कुछ और रखना है। तब मेरे ध्यान में आया कि अरे नहीं, नाम तो बदला जा सकता है। मुझे वैसे ही ऋतु के नाम से ये हो गया था कि मेरी क्लास में ही चार चार ऋतु थी, तो एक कंफ्यूजन हो जाता था। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही कॉमन नेम है, आई डोंट बी कंफ्यूज्ड विद एनीवन। मम्मी पापा ने सोचे बगैर ही मेरा नाम ऋतु रख दिया, तो कोई अच्छा सा नाम रखते हैं। मैंने बहुत सारे नाम ढूंढे और अगले दिन जब सुभाष जी को मैंने पढ़ाया तो उन्होंने कहा कि इसमें एम से कोई नाम नहीं है, एम से नाम होना चाहिए क्योंकि एम मेरे लिए बहुत लकी है। मैंने कोई भी नाम, कोई भी फर्म जब शुरू की है, जैसे मुक्ता आर्ट्स फिल्म्स, वो सक्सेसफुल रही है। टेलीविजन पे मैंने दृष्टि शुरू की थी, वो एकदम फ्लॉप हो गई, तो एम से नाम रखो तुम। तो मेरे जो पापा हैं उनके बेस्ट फ्रेंड, उनकी बेटियों का नाम है रिधिमा महिमा। मैंने कहा महिमा कैसा है, ही सेइंग इट्स नाइस, तो फिर हमने महिमा रखा।

0: अपने देश से प्रेम करने वाली महिमा चौधरी का जन्म दार्जिलिंग में हुआ था। उनकी पढ़ाई लिखाई भी वहीं हुई। हॉस्टल में रहने से उनमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता शुरू से ही रही। हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ वो नेपाली भाषा भी बहुत अच्छी तरह जानती हैं और बोलती भी हैं।
1: दार्जिलिंग को एकदम याद आउँछ। अन्त जे पनि म आज हुँ त्यो त्यही दार्जिलिङ मा सिकेको। अन्त हाम्रो नेपाली भाइ बहिनी को बाटै सिकेको। अन्त मेरो सबै म्यानरिजम्स त्यहीँबाट हो। एन्ड टु लभ अल्सो इज आई लर्न फ्रम द नेपालीज पिपल। वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं।
0: महिमा चौधरी शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, पर उनका करियर फिल्मों में बनेगा ये उन्होंने सोचा भी नहीं था। खैर, शुरुआत मॉडलिंग से हुई और उन्होंने एक शीतल पेय का विज्ञापन किया। बस यहीं से वो लाइमलाइट में आई और फिल्मी दुनिया के दरवाजे उनके लिए अपने आप खुल गए। फिल्म परदेश में गंगा के रोल में उन्हें फिल्मी दुनिया में एंट्री भी मिली और फिल्म की कामयाबी से शोहरत भी मिली और बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का डेब्यू अवार्ड भी उन्हें मिला। फिल्म परदेश के बाद महिमा की बहुत दिनों तक ऐसी कोई फिल्म नहीं आई जो बॉक्स ऑफिस पर वैसी भीड़ जुटा पाती जैसी कि परदेश ने जुटाई थी। लेकिन महिमा के नाम की लगन लोगों को उनकी फिल्में देखने के लिए खींच ही लाती।

महिमा चौधरी की जितनी फिल्म्स अब तक रिलीज हुई हैं, उनमें से ज्यादातर फिल्में मल्टी स्टार कास्ट वाली हैं। फिर भी हर फिल्म में महिमा ने अपने रोल के साथ न्याय तो किया ही है, अपनी अदाकारी के तीरों से देखने वालों को घायल भी किया है।

दिखने में शोक और चंचल महिमा चौधरी स्वभाव से गंभीर हैं। बहुत से लोगों में घिरे रहना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन जब सेट पर आती हैं तो रोल जैसा भी हो उसमें पूरी तरह से डूब जाती हैं। फिल्म ये तेरा घर ये मेरा घर एक ऐसी फिल्म थी जिसमें सरस्वती की भूमिका में उन्होंने लोगों को रुलाया भी तो बहुत हंसाया भी।

महिमा चौधरी के संवेदनशील अभिनय से सजी एक और बहुत प्रभावशाली फिल्म थी दिल क्या करे। ये एक ऐसी पत्नी की कहानी है जो अपनी गोद ली हुई बेटी से बेहद प्रेम करती है और नहीं जानती कि उसका पति ही उस बच्ची का जन्मदाता है। लेकिन जब ये राज जाहिर होता है तो जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है।

0: सीमा चौधरी ने अपने करियर में तरह तरह के रोल्स अदा किए हैं। फिल्मी दुनिया में महिमा चौधरी उन चंद अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं जिन्हें अपने अभिनय को विभिन्न रंगों में रंगने का अवसर मिला। शुरुआत हुई सन 1997 में फिल्म परदेश से। इस फिल्म में उन्होंने गांव की सीधी साधी संस्कारों में बंधी लड़की गंगा का रोल किया। 1999 में फिल्म आई प्यार कोई खेल नहीं, इसमें एक ऐसी विधवा के रोल में थी वो जिसे अपने पति के भाई से ब्याह रचाना पड़ा।
1: राम हो।
0: फिल्म धड़कन आई सन 2000 में, इसमें महिमा चौधरी शीतल वर्मा के किरदार में थी। शीतल वर्मा एक

महिमा चौधरी के अभिनय से सजी अगर फिल्म लज्जा की बात करें तो इस फिल्म में उनके साथ स्क्रीन शेयर की माधुरी दीक्षित और मनीषा कोइराला ने। इसमें उनका रोल मैथिली का था, सशक्त अभिनय था। मैथिली के रूप में एक ऐसी लड़की जो अपने पिता की इज्जत की खातिर दहेज के लोभियों को बहुत करारा जवाब देती है और शादी के मंडप से उठकर इनकार कर देती है। और फिल्म लज्जा महिमा चौधरी की पर्सनल फेवरेट फिल्म भी है।

बात करें अगर फिल्म बागबान की तो उसमें उनकी स्पेशल अपीयरेंस थी। सलमान खान की वो संस्कारी पत्नी बनी थी और इस रूप में उन्होंने सबका दिल जीत लिया।

महिमा चौधरी की कुछ और फिल्में हैं ओम जय जगदीश, एलओसी करगिल, सैंडविच, गुमनाम द मिस्ट्री और मुंबई द गैंगस्टर्स। दोस्तों, फिल्म परदेश में स्क्रीन पर महिमा चौधरी ने गाना गाया था जहां पिया वहां मैं। ये तमन्ना उनकी पूरी हुई सन 2006 में, जब उन्होंने आर्किटेक्ट बॉबी मुखर्जी को अपना पिया माना और अपनी गृहस्थी में रम गई। एक प्यारी सी उनकी बच्ची है। श्रोताओं, ये था आज के फनकार कार्यक्रम, जो आज केंद्रित था अभिनेत्री महिमा चौधरी पर। प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता विजय दीपक छिपर। अब दीजिए रेणु बंसल को भी इजाजत। नमस्कार। आज के फनकार।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे विविध भारती FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। आइए सुनते हैं जरूरी संदेश।
1: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
2: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
3: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
2: हाँ।
3: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
2: हाँ।
3: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
2: हाँ? पता नहीं।
3: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
4: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
1: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो

0: मेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: श्रोताओं, अंतराल के बाद सुनते हैं विविध भारती सेवा के कार्यक्रम मुंबई से।
5: बाबा आजमी ने आपको,
6: उन्होंने तो एक राह दिखाई, हाथ पकड़ के उस राह पे जबरदस्ती लेके गए कि ये आप कर क्या रही हैं अपने जीवन के साथ, ये उनका मानना था। उस वक्त जब हम ऐसा कुछ नहीं सोचते थे, और फिर उनके कहने की वजह से आई टुक इट वेरी सीरियसली और हम सोचे कि अब रियाज शुरू किया जाए। बचपन का वो काम जो हम हमेशा से करते थे, रियाज जब शुरू किया तो पता चला गले का जो चाम है
5: वो फ्लैट हो गया,
6: जा चुका है। वो एक कार्यक्रम के लिए निकल जाए वो अलग बात है, बट अब गला दर्द होने लगता था लंबा गाने पर, यू नो। तो 2 साल तो हमको सिर्फ रियाज में लग गया, चुपचाप, न कोई काम न कोई पैसा। पता नहीं क्यों कैसे ये हुआ मेरे साथ कि वो जो फेज था उसमें एक बार फिर से माँ बाप को डर लगा कि ये तो यू नो फिर करियर, फिर कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा, ये लड़की कहाँ जाएगी। तो उस समय भी सुझाया गया कि बेटा अभी भी मौका है, एक अटेम्प्ट बचा है, यूपीएससी निकाल लोगी तो।
5: अरे बाप रे,
6: 2014 की बात है, एफटीआई के बाद। और पैकिंग शुरू हो गई कि चलते हैं दिल्ली, एक इंस्टीट्यूट में जाएंगे, और ये तो तय था कि एक अटेम्प्ट में ही निकाल लेंगे, इतना कॉन्फिडेंस था। और अभी एक ही अटेम्प्ट बचा था एज के हिसाब से। तो पैकिंग जब शुरू हुई, और तब मेरी दीदी की शादी हुई थी जस्ट, मेरे जीजा जी हमारे जीवन में आए और उन्होंने बोला कि मेरा सुझाव ये, काफी पढ़े लिखे हैं वो, उन्होंने बोला कि मेरा सुझाव है कि जब इतने साल दे दिए, 2007 से 2014 आ गया और तुम अभी तक हार नहीं मानी हो तो अब भी नहीं मानो, रुको करो, क्योंकि अब भरोसा नहीं था कि हम कर भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि गाना तो छूटे हुए बचपन में छूट गया गाना ना। बट वही तो है कि मेरे अलावा मेरे आसपास के लोग भी बड़े कमाल के मिले हमको, मेरे अलावा सबको मेरे अंदर विश्वास था कि ये कर सकती है। और फिर बाबा आजमी जैसे मिले हमको, यू नो, उनका जब सुझाव मिला, जीजा जी भी बोले कि नहीं तुम कर सकती हो, शुड स्टॉप, वेट, मत जाओ दिल्ली, मत करो यूपीएससी, तुम इसके लिए नहीं बनी हो, तुम वहां जहां हो, तुम जिस चीज के लिए बनी हो तुम वहीं हो।
5: वाह।
6: और फिर हम 2 साल जेन्युइनली मेहनत किए, हम रियाज किए, डिप्रेशन भी आया उस फेज में क्योंकि काम नहीं है, जो काम ऑफर हो रहा है आप उसको मना कर रहे हैं, क्योंकि आप 2 जगह नहीं जा सकते एक साथ। अगर हम शूटिंग करेंगे, अगर डायरेक्शन में असिस्ट करेंगे, तो हम रियाज नहीं कर पाएंगे, फोकस तो करना पड़ेगा। सो दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट फेज।
5: कैसे निराशा का सामना किया?
6: इस बार हम टूट गए बिल्कुल, इस बार ऐसा लगा कि जीवन ठीक नहीं है, तो वो डिप्रेशन ही था। और ये इस बार ये दीपाली नेगेटिव हो गई थी बहुत ज्यादा।
5: कितना लंबा चला
6: ये चला? कुछ एक 1.5 साल।
5: किसकी मदद मिली?
6: माँ बाप फिर से, क्योंकि अब वो स्थिति थी कि पैसे भी थे, मतलब पिछले इतने सालों में तो पैसे अच्छे से कमाए थे, तो पैसे की कमी तो नहीं थी, ये डर नहीं था कि मुंबई में जीवन यापन कैसे होगा, पर क्योंकि वो राह, वो जीवन, और फिर जीवन में आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं बहुत सारे, वो सब आपको एक अलग एहसास देते हैं। और हम उसी फेज में पहुंच चुके थे जहां पे जीवन ने आपको बहुत सारे एहसास के दर्शन करा दिए थे। हमको याद है कि एक गाड़ी भी हम बुक कर दिए थे, नई गाड़ी, मेरे पास जो गाड़ी थी पिछले कई सालों से उसको हटा के नई गाड़ी भी लेने का प्लानिंग हो गया। बट एक दिन हमको याद है कि अकेले थे हम और दूध उबल के मेरे सामने गिर रहा था और हमको समझ नहीं आ रहा था,
5: अपने ख्यालों में
6: और मेरी आंखों से हम वो देख रहे थे, ये दूध उबल के गिर रहा है और हम गिरने दे रहे थे, और नमक था हाथ में क्योंकि चीनी समझ के डालने जा रहे थे।
5: अरे बाप रे।
6: तो वो यू नो दैट मोमेंट, उस वक्त हमको लगा कि ये तो हम है ही नहीं, इतने लॉस्ट तो हम है ही नहीं, आई एम वेरी फोकस्ड एज अ पर्सन, हम इंसान बहुत डिसिप्लिन्ड है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत फोकस्ड है, बहुत मोमेंट में रहने वाले हैं, तो ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है।

0: मतलब यू नो आई वॉज नॉट एबल टू हैंडल वो जो ब्लैंक जीवन था ना, कि हम काम करना चाहते हैं पर कर नहीं रहे क्योंकि कोई बोल रहा है कि हम अच्छा गाते हैं और हम गाते भी अच्छा है, पर क्या हम ये कर पाएंगे? मेरी तो किसी म्यूजिक डायरेक्टर से जान पहचान भी नहीं है, हम कैसे करेंगे? डायरेक्शन में क्या है, तो हम स्पॉट बॉय बन के भी नीचे से भी ऊपर उठ सकते हैं। एक्टिंग हम छोड़ चुके हैं, एक्टिंग नहीं करना है क्योंकि वो एक ही चीज कराते हैं, रोज रुलाते हैं, रोज किसी से यू नो वैम्प है तो बदमाश ही है। वो मेरा क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है। सिंगिंग हम किए नहीं कभी, डायरेक्शन अब कर नहीं सकते क्योंकि वहां जितना इन्वेस्टमेंट लगता है वो दिन और रात बराबर होते हैं वहां पे। अगर हम वो करेंगे तो हम रियाज नहीं कर पाएंगे। पर क्या हम सच में सिंगर हैं?
1: बहुत बड़े सवाल थे।
0: हाँ, क्या सच में मेरे में ये योग्यता है कि हम एक ऑलरेडी सेट करियर जिसको हम इन्वेस्ट करके बना चुके हैं वो छोड़ के हम फिर से बैक टू स्क्वायर वन चले आए क्या? क्या हम गा पाएंगे कभी? क्या सच में मेरा गला ठीक हो गया है?
1: मेरा दिमाग घूम गया।
0: हाँ। और फिर हम आई रिमेम्बर जब वो दूध वाला इंसिडेंट हुआ तो हम अपने पापा को फोन किए और हम बोले पापा कुछ गड़बड़ है। तो वो घबरा गए, क्या गड़बड़ है? हम बोले पता नहीं कुछ गड़बड़ है, हमको घर आना है। बोले आओ, कितने दिन के लिए आओगी? उनका पहला ये सवाल होता था कि आ रही हो तो फिर जल्दी नहीं चली जाए। तो हम बोले पता नहीं 6 महीना 1 साल। तो उनको लगा कुछ तो बहुत मेजर हो गया है इसके साथ,
1: ये ऐसे नहीं,
0: ये ऐसे बात नहीं करती है। और फिर हम घर पहुंचे और वो 1 साल बहुत परेशान रहे। मेरे पिताजी को ये भी था कि शादी हो जाए इसकी। उनको, माँ बाप को ऐसा लगता है ना कि कंपेनियनशिप होता तो शायद ये इतनी परेशान नहीं होती। नहीं। एक साथ होता है तो ढाढ़स बधा रहता है आपके पास। वो भी कमी होगी, आई एम श्योर वो भी कमी थी मेरी लाइफ में, बट उससे ज्यादा कमी ये थी कि हमको क्लैरिटी नहीं था कि हमको चाहिए क्या, क्योंकि हमको सब कुछ चाहिए था। किशोर कुमार के भक्त हैं हम, तो हमको किशोर कुमार बनना था।
1: गजब।
0: आई कुड एक्ट ऑल्सो, आई कुड सिंग ऑल्सो, आई कुड राइट ऑल्सो। और किशोर कुमार का की भक्ति मेरे अंदर बहुत ज्यादा थी, पर ये नहीं पता था कि वो रास्ता इतना आसान नहीं है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, ये बहुत कठिन रास्ता है। और जब आप डिसाइड करते हैं कि आपको एक काम करना है तो उसमें कितनी शिद्दत और मेहनत जाती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: कितने सारे सैक्रिफाइसेस जाते हैं, कितना सारा डर होता है।
1: कैसे अपने आप को संभाला और इस 1 साल में खुद को वापस पटरी पे लाया?
0: पता नहीं वो कैसे, वो माँ बाप के पास वापस आना ही सही डिसीजन था। क्योंकि उस वक्त मुंबई में अकेले रहना मेरे लिए ठीक नहीं था। तो थैंकफुली यू नो आज डिप्रेशन के ऊपर इतनी बातें होती हैं, हमारे पास इतने डॉक्टर्स हैं और खुल के ये बातें हो रही हैं। तब तो मेरी अंडरस्टैंडिंग में भी नहीं था कि ये एक क्लिनिकल प्रॉब्लम हो सकता है।
1: यू नो हम तो इसमें किसी एक्सपर्ट की
0: राय मदद, हमको ये अंदाजा नहीं था।
1: हाँ।
0: हमको ये भी नहीं समझ आ रहा था कि मेरे साथ कुछ गलत एहसास यू नो टूट रहे हैं हम अंदर ही अंदर, ये सब समझ ही नहीं था। हमको बस पता था कि जब भी हम हारते थे तो मेरे माँ बाप चाहिए हमको, तो बस हम, दैट वाज अ गुड डिसीजन।
1: लेकिन ये कितनी प्यारी बात है कि एक लड़की दुनिया के तमाम गमों और तमाम थपेड़ों से हार के अपने माँ बाप की गोद की तरफ लौटती है।
0: हाँ, ये
1: दुनिया की सबसे प्यारी बात है।
0: सबसे प्यारी बात है। और ये मेरा सौभाग्य है मेरे माँ बाप ऐसे हैं। मतलब आज तक हम अपने, मेरे पिताजी भी तो वही मर्द है ना जो इस समाज में जीते हैं, उसी उसी उसी समाज का हिस्सा है। पर मेरे पिताजी के मुंह से आज तक हम ऐसा कुछ नहीं सुने कि बेटा तुम तो लड़की हो, तुम ऐसा कैसे कर दी। कितनी बड़ी बात है ये।
1: बिल्कुल।
0: वो भी तो मर्द ही है ना।
1: बिल्कुल।
0: शायद मेरा पति ये बोल दे, पर मेरे पिता ने आज तक ये नहीं बोला है। थैंकफुली मेरा पति भी ऐसा नहीं है। पर आई एम जस्ट सेइंग कि वो उस समाज से निकला हुआ एक मर्द जिसने अपने पिता से बहुत मार खाई है बचपन में, उसने आज तक एक उंगली से भी नहीं छुआ है हम लोगों को। आप जनरली वही पास ऑन करते हैं ना, जेनरेशनल, जो आपने देखा सीखा। आपको यही पता है बच्चे को टेम करने के लिए, बच्चे को वश में रखने के लिए मारना पड़ता है। और मेरे पिताजी ने आज तक हम लोग को मतलब डांटा भी नहीं होगा शायद। बहुत दुखी होते थे तो बोल देते थे कि दुख हुआ बेटा ये सुन के कि तुम ऐसा की, यू नो। तो ऐसे माँ बाप के पास आप वापस नहीं जाएंगे तो आप किसके पास जाएंगे, जो आपके हर ऊट पटांग सपने पे खड़े हैं पंख लेके कि ठीक है बेटा चलो पंख पहना देते हैं, जाओ उड़ो। बाइक चलाना है उड़ो, गाड़ी चलाना है उड़ो। यू नो बचपन में हमारे पापा का, हमारा सरकारी क्वार्टर था जो उसमें कैंपस था, वहां पे पापा मेरे सब्जियां उगाते थे, फूल गोभी, बंदा गोभी, मूली, गाजर, तो हमें वो भी रोपना होता था। आप देखिए हमारा कितना मल्टी

0: पर्पस स्टूडियो है जैसे ये, कितना हमारा मल्टीटास्किंग ग्रोथ हो रहा था, हमें खुद का काम खुद करना है। तो आपके माँ बाप और हमको नहीं पता कि वो लोग ये कॉन्शियसली कर रहे थे या वो ऐसे ही है, आई डोंट नो, क्योंकि वो बिल्कुल भी वैसे नहीं थे जैसे बाकी के माँ बाप थे। ये कुछ अलग तो थे, ये एक अलग तरीके से अपने बच्चे के साथ थे,
1: और इसलिए आप संभल गए।
0: इसलिए हम संभल गए।
1: यहाँ एक गाना सुनते हैं,
0: बिल्कुल
1: संभलने का गाना, फिर आगे बढ़ते हैं।

0: क्या बात है, क्या बात है। तो इसके बाद दीपाली वापस आ गई?
1: बिल्कुल, पूरी तरह से।
0: और मुंबई में जिंदगी की हकीकतों का सामना करने के लिए तैयार?
1: तैयार। और ये 2016 की बात है जब हम बहुत बुरे स्टेज में थे, 15-16, और 15-16 वॉज वेरी डिफिकल्ट। बट 2017 में वापसी हुई मुंबई में, वापस आए, घर बदला, यू नो, जिस घर में रह रहे थे वो घर चेंज किया, और डिसाइड किया कि भोजपुरी भाषा में कुछ करना है। क्योंकि ये जो एक साल हम घर पे रहे, और क्योंकि अब हम भोजपुरी का मेरा एक्सपोजर हो गया एक्टिंग की वजह से, तो समझ आया। और इस बीच एक बहुत ही कमाल का शो नेटफ्लिक्स पे आता था, अब नहीं आता है, सतरंगी नाम का एक शो हुआ मेरे जीवन में। इसमें आई वॉज द होस्ट ऑफ दैट शो। ये कुछ ही दिन चला, ये कुछ 12 एपिसोड या 13 एपिसोड का था, पर एक एपिसोड का मतलब एक राज्य। तो समझिए कि फ्री में हमने पैसे के लिए ये काम किया था, बट ये एक्सपीरियंस सुन के लगा कि अगर पैसे देखेंगे तो काम, तो ये एक्सपीरियंस चला जाएगा। इसमें एक मौका ये था कि आप अलग अलग राज्य में जाते और वहां के फोक म्यूजिक को आप एक्सप्लोर करेंगे एज अ होस्ट।
0: वाह वाह वाह।
1: तो FTII का जो टाइम चल रहा था उसी वक्त ये शो आया था। तो आई डिड इट, और एक महीने का ही ट्रैवल था जो ब्रैकेट्स में था, एक एक हफ्ते का, तो वो हो गया। और इसकी वजह से हम दुनिया के, हिंदुस्तान के 13 अलग अलग स्टेट्स में गए और वहां के फोक म्यूजिक को सुने। और जब वो लिस्ट आई थी कि हम लोग को जिस जिस स्टेट जाना है, उसमें बिहार का नाम नहीं था। और ये बात हमको बहुत चुभी थी कि मतलब हम लोग इस योग्य भी नहीं है। झारखंड है,
0: झारखंड था,
1: यूपी है,
0: तो बिहार क्यों छोड़ दिया था?
1: मध्य प्रदेश है पर बिहार नहीं है। अब वो क्यों नहीं है हमको नहीं पता। और ये बात हम पूछे भी डायरेक्टर से कि बिहार क्यों नहीं है, तो वहाँ पे एक्चुअली वहाँ कोई बहुत सारे लोग हैं नहीं जो फोक करते हैं। ये बात हमको बहुत चुभी, ये बात सच है। मेरे जैसे जो यंगस्टर्स हैं, क्योंकि उस शो का पर्पस ये था कि जेनरेशन नेक्स्ट फोक विधा को कैसे आगे ले जा रहा है, तो बोला वहाँ पे बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है ना फोक लैंग्वेज में। और ये बात मेरे दिल में बहुत घर कर गई कि बात तो बिल्कुल सही है। मेरी अपनी भाषा है भोजपुरी और हम उससे दूर रहते हैं क्योंकि उसमें अश्लील गंदे गाने बन रहे हैं, पर अगर गाना गाने वाला ही उससे दूर हो जाएगा तो अच्छा गाना गाएगा कौन? हम गा सकते हैं, पैसा मेरी प्रायोरिटी है नहीं लाइफ में। तो अगर हम ये नहीं करेंगे, एक आइडियल सिचुएशन है ये जहाँ पे पैसे की कमी नहीं है, देवी की कृपा से कलाकार हैं हम, और मेरी सोच ये है कि ये गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाइबो या बनी जई हो बनी के जोगिनियार हो रामा पिया के करनवा, ये गाने मेरी जनरेशन को पता भी नहीं है कि सुमन कल्याणपुर ने या लता जी ने भोजपुरी के लिए गाया है, या भोजपुरी में जो मेरी नानी गाती थी या अम्मा गाती थी, दादी गाती थी, वो गाने, उन गानों में अश्लीलता नहीं होती थी। जब हम ही को इंटरेस्ट नहीं होगा तो इनकी लिस्ट में मेरा नाम होना भी नहीं चाहिए।
0: ओह, ये बहुत बड़ा झटका था,
1: बहुत बड़ा झटका था। सो दिस इज व्हेन आई डिसाइडेड कि अब भोजपुरी के लिए कुछ करना है। और वहां कुछ ऐसा सामंजस्य बन गया जीवन में कि एक हिंदी कविता का एक यूट्यूब चैनल है, उर्दू पोएट्री,
0: मनीष गुप्ता का
1: उनके लिए एक किस्मत से एक गजल आपकी याद आती रही रात।
0: अच्छा, ओ हो हो हो हो, वो आपने किया था?
1: जी
0: देखिए मनीष गुप्ता बहुत प्रिय दोस्तों में से एक हैं।
1: जी, तो उनके लिए ये, उनके चैनल के लिए ये, और क्योंकि हम यू नो जस्ट उस फेज से निकले थे, वो जो मेरा लाइफ बहुत डिफिकल्ट फेज था, तो वो गाना जो है यूट्यूब पे वीडियो में है और आज भी हमको
0: खूब चलता है, वो
1: खूब चलता है हमको आज भी बहुत।

0: जी ने गाया है
1: जी।
0: और मजेदार बात यह है कि छाया जी विविध भारती परिवार का हिस्सा रही।
1: ओ कैसा ये सर्कल है। हाँ,
0: बिल्कुल।
1: तो आपकी याद आती रही रात भर की वजह से आई अंडरस्टूड कि यूट्यूब का क्या पावर है। मतलब मेरे जैसा एक इंसान जिसको कोई नहीं जानता है, जिसका कोई नामो निशान नहीं है संगीत के जगत में, वो लड़की एक किसी दूसरे के चैनल के लिए एक गाना गाती है, वो भी बैठ के बिना म्यूजिक रो रही है, गा रही है और रो रही है, और वो वायरल हो जाता है, और हमको फेसबुक पे और हम कहीं भी जा रहे हैं तो हमको लोग पकड़ के बोल रहे हैं, जो पहचान ले रहे हैं, आपको हम कहाँ ढूंढ सकते हैं, आपके और गाने कहाँ सुन सकते हैं, और मेरे पास कोई जवाब नहीं है।
0: और मैंने क्या समझा पता है?
1: हाँ।
0: किसी एक्ट्रेस ने गाया है। मुझे नहीं मालूम था कि हम इस तरह से एक मेज पर बैठे होंगे और विविध भारती के लिए बातें कर रहे होंगे। मैंने वो वीडियो बहुत देखा है।
1: अच्छा।
0: और बल्कि मैंने भी मनीष के लिए काम किया है, कुछ
1: अच्छा।
0: कुछ कविताएं पढ़ी हैं।
1: ओ हो, तो हमको तो मिलना ही था सर। तो उसकी वजह से ना हमको सोशल मीडिया का पावर समझ आया कि अब जो है आपको एक रियलिटी शो के प्लेटफॉर्म का वेट नहीं करना है, अब आपके हाथ में एक प्लेटफॉर्म है, उठाइए अपना कैमरा, अपने आप को शूट करिए और डाल दीजिए। क्योंकि अगर आपकी याद आती रही जिस तरह से लोगों के बीच गया, उसमें तो कुछ नहीं था, ना हम खूबसूरती से सज के बैठे हैं, ना कोई म्यूजिक है, ना कोई बैकड्रॉप है, ना कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक लड़की, नॉर्मल सी लड़की घर के कपड़ों में बैठ के गा रही है और एक आदमी ने उसको कैप्चर कर लिया है
0: दो कैमरास
1: लगा के। बोले अगर ये पॉसिबल है तो कितना स्कोप है मेरे पास, एंड आई कैन डू दिस विद माय ओन लैंग्वेज। भोजपुरी में अगर हम सेम चीज रिक्रिएट कर दें और लोगों को समझा के कि ये गाना क्या कहना चाहता है, अगर हम समझाएं अंग्रेजी में, तो जो यंग क्राउड है वो कनेक्ट करेगी कि अरे ये भोजपुरी भी बोल रही है लेकिन इंग्लिश में समझा रही है। तो जैसे हम कनेक्ट कर जाएंगे वैसे कोई भी कनेक्ट कर सकता है। और मनीष गुप्ता की वजह से मिल गए नीलेश मिश्रा। उनका चैनल आया था गांव कनेक्शन। उनको चाहिए थे लोकगीत,
0: वो बड़ी शिद्दत से तब ढूंढ रहे थे। ऐलान किया था,
1: तो उन्होंने जब ये ऐलान किया तो हम तो ताक में बैठे थे क्योंकि हम तो थे उनके फैन,
0: वो भी हमारे दोस्त।
1: अरे तो उन्होंने ऐलान किया कि वो मुंबई आ रहे हैं और उन्होंने सामने से मैसेज कर दिया था आपकी याद आती रही, आपकी याद आती रही की वजह से हम थोड़े फोकस्ड हो गए अपने फेसबुक इंस्टाग्राम ये प्रोफाइल्स पे काम करने लगे कि लोगों को मैसेज का रिप्लाई कर दें, बस इतना हम करने लगे थे। लेकिन जब नीलेश मिश्रा का मैसेज आया तो हमको लगा ये मामला सीरियस हो गया है, मतलब यू नो समवन लाइक नीलेश मिश्रा इज मैसेजिंग मी कि आपने बहुत अच्छा गाया है और हम साथ में कुछ कर सकते हैं क्या एक्सप्लोर। तो हमको लगा ये मौका अच्छा है भोजपुरी के लिए, वैसे भी हमको कोई पैसा तो देगा नहीं, ये बनाना प्रोडक्शन करना थोड़ा महंगा काम है, तो अगर व्हाट इफ आई नीलेश मिश्रा को ये आइडिया पिच करते हैं कि आप हमको अपने चैनल पे, वो ढूंढ रहे थे फोक आर्टिस्ट, तो लेकिन हम अपने अंदाज से गाना चाहते हैं, हम उसको गाएंगे पर वैसे नहीं जैसे लोग गाते आ रहे हैं, हम उसको समझाएंगे और फिर गाएंगे। एंड आई मेट नीलेश मिश्रा एंड वो बहुत खुश हुए इस कॉन्सेप्ट से, उनको लगा हाँ ये कुछ नया एक्सपेरिमेंटल होगा, और वहां से भोजपुरी क्लासिक्स दीपाली सहाय की शुरुआत हुई थी।
0: क्या बात है। और वो खूब चला और पूरी दुनिया में धूम मचाई,
1: बहुत चला।
0: और एक और चीज चली, पार्किंग सीरीज,
1: पार्किंग लॉट।
0: वो भी मजेदार है, उसमें तो आपने पता नहीं क्या क्या गाया है।
1: हाँ, उसमें तो
0: जब जो मर्जी आई है गाया है,
1: जब जो दिल में आया। और पता है लोग हमको हमेशा बोलते थे, जो मेरे आसपास के दोस्त लोग थे, कि तुम क्या गाती हो यार, कितना पुराना, कोई सुन, हम सुने भी नहीं है ये गाना तुम जो गाती हो।
0: और मुझे ना ये लगता था कि ये कौन लड़की है जो मतलब सीरियसली, ये बहुत अमेजिंग बात है। मतलब पार्किंग लॉट वाला जो पूरा मामला है, तो
1: ये दोनों पैरेलली शुरू हुआ
0: और ये इंस्टाग्राम की फीड में आते जाते थे और वो गूंजती हुई आवाज में गाने हम सुनते रहते थे, पर हमने ये सोचा ही नहीं कि ये,
1: हाँ, ये
0: मतलब ये बहुत मजेदार है। मुझे ये
1: हाँ।
0: आज ये एहसास हो रहा है कि मैं तो बहुत लंबे समय से दीपाली के गाने सुनता आ रहा हूँ।
1: ये कमाल है। 2017 पार्किंग लॉट सीरीज शुरू,
0: और वो भी बहुत चली थी,
1: बहुत चला,
0: बहुत ज्यादा।
1: मतलब आई रिमेम्बर जिस दिन हमको रहमान सर के लिए रिकॉर्ड करना था, तो अंदर से मेरे एक एहसास आ गया था कि शायद अभी हम इतने बह जाएंगे इस इमोशन में, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आया है। 9 साल लगातार हम पार्किंग लॉट सीरीज की है, 9 साल से हम सोशल मीडिया पे

0: आइव गा के गाना डालते हैं, और आप विश्वास करिएगा मेरे दिल में बस एक ही तमन्ना थी कि मेरी आवाज रहमान सर तक पहुंच जाए, ए आर रहमान सुन ले हमको, बस। और कोई तमन्ना ही नहीं थी मेरी।
1: और उन्होंने सुन ली।
0: और उन्होंने सुन ली।
1: उन्होंने क्या बताया, कहां, किस तरह से सुना?
0: उन्होंने इंस्टाग्राम पे ही फॉलो करना शुरू किया हमको।
1: अच्छा,
0: 6 जनवरी जो मेरा जन्मदिन है,
1: उनका भी,
0: उनका भी जन्मदिन है।
1: ये भी इत्तेफाक है।
0: दिलजीत दोसांझ का भी जन्मदिन है, ये मुझे इम्तियाज सर ने बताया है।
1: अरे बाप रे।
0: तो 6 जनवरी को इंस्टाग्राम पे ए आर रहमान की टीम का मैसेज आ जाता है, ए आर रहमान स्टार्ट्स फॉलोइंग मी, और उनके टीम का मैसेज आ जाता है कि ए आर रहमान सर आपको एक गाने के लिए आपका वॉइस ट्राई करना चाहते हैं। और जब हम गए तो पता चला कि उन्होंने मेरा कोई भोजपुरी गाना सुना था इंस्टाग्राम पे। एंड फिर आई एम श्योर उन्होंने पार्किंग लॉट के भी गाने
1: सारे सुने होंगे।
0: और यू नो ए आर रहमान जब किसी को फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली वो काफी सोच समझ के करते होंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो हमको समझ आया कि ये यू नो जितना पावरफुल हम सोशल मीडिया को समझ रहे थे आज से 10 साल पहले, और जब हम ये जर्नी शुरू किए थे कि हम लाइव ही गाएंगे, हम कभी भी मुंह नहीं चलाएंगे वीडियो में, जब भी गाएंगे लाइव गाएंगे, क्योंकि ऐसा बहुत सिंगर्स करते थे अच्छा रिकॉर्ड करके और वो अपने गाने पे एक्टिंग करके मुंह चला के डाल देते थे। बट आई स्टार्टेड ट्रीटिंग दिस प्लेटफॉर्म एज माय इंडियन आइडल ऑडिशन प्लेटफॉर्म, क्योंकि वो जो इंसिडेंट हुआ था ना मोंटी शर्मा वाला, वो हमको बहुत डरा दिया था। सो मेरे दिमाग में ये था कि अगर एक जावेद अख्तर बोल देते हैं कि रहमान सर आप जरा दीपाली को सुन लीजिए, वो एक अलग प्लेसमेंट होगा। पर अगर उनकी ऑफिस में काम करने वाला एक आदमी बोल देता है कि आप दीपाली को सुन लीजिएगा, वो एक अलग प्लेसमेंट होता है। अब मेरे भाग्य में ये नहीं है कि हमको जावेद अख्तर सब जगह भेज पाए, वो मेरे रिश्तेदार नहीं है, वो मेरे पिताजी नहीं है, तो हम कैसे पहुंचे?
1: ये एक जरिया बना।
0: हाँ, यही जरिया मेरे दिमाग में, यही जरिया हम बनाए। आपको पता नहीं है, मतलब आज मेरा सौभाग्य है कि इम्तियाज अली सर का नंबर है मेरे पास और हम उनको फोन कर सकते हैं और यार रहमान सर से हम बात कर सकते हैं। पर इम्तियाज अली सर के मैसेंजर में, इंस्टाग्राम के मैसेज में हमने अपने पार्किंग लॉट के गाने भेजे हुए हैं इस उम्मीद पे कि क्या पता इनको कुछ अच्छा लग जाए, क्या पता ये गलती से देख लें। तो ये जो था मेरे लिए, हम चाहते थे कि जिस दिन भी हमको कोई म्यूजिक डायरेक्टर बुलाए, हमको किसी और के माध्यम से नहीं जाना पड़े, वो सीधा हमको बुलाए, क्योंकि फिर बात क्लियर है। किसी पैरवी से हम नहीं आए, किसी की सिफारिश नहीं लगी है मेरे लिए, मेरी योग्यता है इसलिए हम उनके सामने बैठे हैं।
1: वाह।
0: और ये योग्यता जो है सिद्ध करने में अगर हमको जन्म भी बीत जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो 10 ही साल लगा। ये जो
1: लेकिन ये 10 साल बहुत कठिन साल, बहुत फोकस के, जद्दोजहद के,
0: हाँ
1: कंफ्यूजन के साल।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मेहनत, बहुत मेहनत, क्योंकि अब हमको क्या लगा कि सोशल मीडिया इतना पावरफुल है तो इसके ऊपर कंटेंट तो आपको बनाना पड़ेगा ना। अगर कोई आपके प्लेटफॉर्म पे, आपके दीपाली सहाय के हैंडल पर आता है तो उसके पास देखने के लिए कुछ होना तो चाहिए, आप उसको फंसाएंगे कैसे कि वो आपके गाने तक पहुंच तो सके। अब अगर ये लड़की गाना ही शुरू कर दे तो फंस जाएगा कोई भी, लेकिन अगर एक ही वीडियो डालेगी तो कोई नहीं फंसेगा, क्योंकि एक करे और नहीं। अब ये शुरू हो गया रेकरिंग, मतलब एक सिलसिला शुरू हो गया जो यूनुस पिछले 10 साल से चल रहा था। और इस पूरे 10 साल में बस यही था कि जो भी हमको कोई भी सुने वो बस ये समझे कि ये लड़की अच्छा गाती है। और दिल के अंदर दम कोने में एक ख्वाहिश थी कि एक दिन मेरा गलती से भी भगवान तुम गाना पहुंचा देना यार रहमान के पास प्लीज।
1: वाह वाह वाह।
0: क्योंकि कुछ 3 साल पहले रहमान साहब का एक इंटरव्यू था इंस्टाग्राम पे और उनसे पूछा गया कि आप नया टैलेंट कहाँ ढूंढते हैं,
1: उन्होंने कहा था इंस्टाग्राम,
0: उन्होंने कहा था इंस्टाग्राम।
1: यस बिल्कुल, बहुत चर्चित हुआ था ये।
0: तो ये 3 साल पहले की बात है, मेरे अंदर फिर से वही विश्वास कि अब तो पहुंचेगा ही। पर पता नहीं है पहुंचेगा कि नहीं, पर विश्वास था कि पहुंचेगा।
1: वो पल जब आप गा रही थी वो कितना सपनीला पल था।
0: ओहो कैसे बताए हम। हम उस स्टूडियो में बैठे थे जहाँ रोजा और लगान जैसी फिल्में बनी थी और वहां पर हमको बुलाया गया था
1: चेन्नई में, एआर रहमान स्टूडियोज,
0: एआर रहमान जी का जो स्टूडियो है पंचतन नाम है उसका, वो उनका घर है, होम स्टूडियो है उनका।
1: बिल्कुल।
0: और जब हम पहुंचे तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि 6 जनवरी की रात मेरे पति जो है ऐश्वर्य निगम, वो प्लेबैक सिंगर है और बहुत बेहतरीन कलाकार है, वो हमसे पूछे थे कि अब जब तुमको सच में ए आर रहमान सर फॉलो करना शुरू कर दिए हैं

0: और अगर तुमको सच में बुला ले तो तुमको क्या लगता है तुमको क्या चाहिए? तो हम बोले एकदम दिल से बताएं क्या चाहिए। तो बोला हाँ। तो हम बोले यार सपना तो यही है कि इम्तियाज अली की फिल्म हो, इरशाद कामिल के बोल हो और एआर रहमान का एक गाना हो सोलो।
1: एग्जैक्टली ये बोला।
0: एग्जैक्टली ये मेरे शब्द थे।
1: वाह वाह वाह क्या बात।
0: जेवा पे सरस्वती बिराजती हैं भाई, बिराजती।
1: क्या बात है, क्या बात है। और ये संभव हुआ।
0: ऐश्वर्या ने बोला भी कि यू नो एआर रहमान जिसको भी फॉलो करते हैं वो पूरे दुनिया में डिडोरा पीटता है। कि अब तुम सबको बता दो कि यू नो तो उससे तुम्हारी क्रेडिबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। उन लोगों की नजर में जो म्यूजिक कर रहे हैं, जो सीरियस हैं, उनको पता चल जाएगा कि अगर एआर रहमान इनको फॉलो कर रहे हैं तो हमको भी इनको सुनना चाहिए। तो मेरे क्या शब्द थे कि अभी नहीं बताएंगे। आज 6 जनवरी है, आज से 6 महीने में मेरा एक गाना रिलीज होगा एआर रहमान सर के साथ, तब बताएंगे दुनिया को।
1: अरे गजब।
0: और 10 जून को मेरा गाना रिलीज हुआ था।
1: एग्जैक्ट 6 महीने।
0: एग्जैक्ट 6 महीने।
1: वाह वाह वाह वाह, बड़ा जादुई मामला है।
0: जादुई है, जादुई है सर। इसमें टैलेंट का कुछ लेना देना नहीं है, ये सिर्फ भाग्य है, सिर्फ मेरा सौभाग्य है। टैलेंटेड, मेरे जितने टैलेंटेड हजारों लोग हैं, हजारों।
1: दीपाली ये एक ऐसा गाना है, मैं वापस आऊंगा का गाना, कि आज इस पर लाखों करोड़ों रीलें बन गईं, कितने सारे लोग इसको टॉकीज में सुन कर रोते हैं, फिर अपने साथ ले आते हैं, फिर घरों में सुन रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहां हम आपसे वो गाना लाइव सुने।
0: जी जरूर।

0: जब आप ये सारे गाने एक के बाद एक गा रही थी, ये गाने भी बहुत इंटेंस गाने हैं, ये किसी कमर्शियल फिल्म के धूम धड़ाम गाने नहीं है, ये गाने बिल्कुल जज्बात में भीगे हुए गाने हैं। तो जब आप ये गाने गा रही थी, कितनी बार आंखें भीगी, कितनी बार आवाज कांपी?
1: बहुत बार। एक तो जब सिचुएशन समझाया गया कि यू नो फिल्म में ये क्यों है गाना और ये कहाँ आता है और कैसे एक पोता अपने मरते हुए दादाजी की आखिरी ख्वाहिश पूरा कर रहा है, तो वो सिचुएशन सुन के तो हम रोने लगे। क्योंकि जब गाना सुने और जो सिचुएशन था, और इम्तियाज अली की फिल्म थी, आपने सपने देखे थे इन चीजों के और वो सच हो रहा था अभी, तो जब हम सुने तो हम रोने लगे। तो रहमान सर की जो असिस्टेंट है हीरल, उन्होंने बोला कि आपको नहीं रोना है, आपको रुलाना है लोगों को, आप नहीं रो सकती हैं। तो खैर प्रोफेशनली 20 साल से हम ये कर रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं था उस दीपाली को पीछे रख के और प्रोफेशनल सिंगर को आगे लाना। मेरे पति का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है, क्योंकि हम प्लेबैक कभी किए नहीं थे, तो उनके बनाए हुए गाने हम गाते थे उनके लिए स्टूडियो में, वो हमको सिखाते थे माइक पे कैसे गाते हैं। वो 6 साल की ट्रेनिंग भी काम आई मेरे इस काम में। और जब हम गाना सुने थे तो हमको सच में अविश्वास हो गया था अपने इस पूरे सिचुएशन पे कि रहमान सर को हम इतने काबिल लगते हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं वो हमको। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है,
0: बहुत बड़ी।
1: पर मेरे अंदर खुद को ही लेके यू नो
0: संशय था,
1: हाँ, कि ये जो बात हो रही है, और आपको पता है इरशाद कामिल के बोल कैसे होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और ये गाने का रूप कुछ और था, जो अब जो आप सुन रहे हैं वो उससे काफी अलग था। ये तो इवॉल्व होता है, ये जो इनका जो क्राफ्ट है वो बिल्कुल इंसान की जैसा है, ये इवॉल्व होता है और ये अपनी शक्ल लेता है, ये बिल्कुल एक एक बच्चा पैदा करते हैं, ये जीनियसेस हैं। तो ये गाना जैसे जैसे शक्ल ले रहा था, हमको याद है कि रात के 2 बजे इरशाद सर का मैसेज आया कि ये नया लिरिक्स आया है। और जो नया लिरिक्स था वो ये था जो इस गाने में है कि अपनी कहानी उतनी रहेगी चाहे बढ़ा लो चाहे घटा लो।
0: वाह वाह।
1: काजल नहीं मैं गालों का तिल हूँ, तुम सामने से शीशा हटा लो क्योंकि मैं तो मिटने वाला नहीं हूँ। ये जो बातें थी, ये जब हम पढ़े तो पता है हमको ना बहुत अपना सा लगा, ये बहुत अपना सा। ये सिर्फ एक प्रेमी की बात नहीं है, ये एक प्रकार का इंसान है, ये एक प्रकार की प्रजाति है इंसानों की, इस ब्रैकेट में हम भी आते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो हमको पढ़ के ऐसा लगा कि ये तो मेरी कहानी है, तो ये तो हम गा सकते हैं। और जनरली क्या होता है, आपको अप्रोच बताया जाता है कि इस लाइन को ऐसे लेना है या ये एटीट्यूड है, पर ये कुछ जो चार ये जो पैराग्राफ था, कोई नहीं था उस रात स्टूडियो में, हम थे और एक टेक्नीशियन थे मेरे साथ, तो उन्होंने बोला आपको जैसे लेने की इच्छा है आप ले लीजिए। तो ये गाना हम जब गाए तो जाता है अप्रूवल के लिए सर के पास,
0: बिल्कुल,
1: और इंस्टेंट अप्रूवल आ गया कि बिल्कुल सही है।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: रहमान सर ने वो मेरे अंदर देखा जो हमको खुद भी नहीं पता था कि मेरे अंदर है।
0: एक तो ये गाना, फिर उसमें कुछ शोक गाने भी है, तो मुझे लगता है कि बहुत अलग अलग रेंज सामने आई।
1: बापरे, ये एल्बम हमको लगता है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हिंदुस्तान में एक बहुत
0: कंप्लीट एल्बम,
1: कंप्लीट एल्बम है, यस।
0: तो मस्कारा भी सुना दीजिए।
1: आज हम पहली बार गाएंगे ये गाना।
0: अच्छा।
1: जिसने गाया है ये गाना वो इतनी प्यारी लड़की है, नीलांजना नाम है उसका।
0: बिल्कुल।
1: और वो बेसिस्ट है, शी इज अ बेस गिटारिस्ट।
0: उसको ये मौका दिया गया,
1: उसको ये मौका दिया गया। देखिए कितना कमाल है रहमान सर,
0: हमको तो आपकी आवाज में सुनना है।
1: किसी में से

0: जब रहमान साहब से मुलाकात हुई, क्योंकि जब आप रिकॉर्ड कर रही थी तब रहमान नहीं थे सामने।
1: नहीं थे जी।
0: और बाद में मुलाकात का एक पूरा ब्यौरा है
1: जी,
0: हम चाहते हैं कि हम वो भी दर्ज करें, हमारे श्रोताओं तक वो बात पहुंचे
1: जी। तो जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो एक जो छवि है उनकी, वो बहुत कम बोलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम भी बहुत थोड़े से शाय हैं, लोगों को हम जल्दी अप्रोच नहीं कर पाते हैं, शायद इसी वजह से हमको यू नो 10 साल लग गया एक गाना मिलने में, क्योंकि हम मांग नहीं पाते हैं, ना तस्वीर मांग पाते हैं, ना बात करने का शुरुआत कर पाते हैं। तो रहमान सर जब सामने आए तो हम तो बिल्कुल ही फ्रोजन हो चुके थे उनको देख के। और तब तक ये गाना रिकॉर्ड हो चुका था, इस गाने पे काम चल रहा था। तो जब उन्होंने हमको देखा तो रहमान सर ने बोला, ए दीपाली हाय। तो मेरे लिए यही आश्चर्य की बात थी कि ये हमको बाय फेस बाय नेम हमको पहचान चुके हैं पूरी तरह से।
0: क्या बात,
1: ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी।
0: बिल्कुल,
1: वो पटना वाली दीपाली ये दिन नहीं सोची थी, चाहती थी, बोला ना सपने में भी नहीं था कि ऐसा कुछ सच हो जाएगा, इच्छा थी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कम वॉक विद मी, मेरे साथ चलो, और हम लोग चलना शुरू किए। और फिर उन्होंने बोला कि अंग्रेजी में बोला, दैट सॉन्ग हैज कम आउट रियली ब्यूटीफुल दीपाली।
0: वाह वाह वाह वाह वाह।
1: तो मेरे लिए तो वो एक ऐसा सर्टिफिकेट था उस समय।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और उसके बाद हम लोग अंदर गए, और वो जहां भी होते हैं एक ग्रैंड पियानो जरूर होता है, वो उसको हमेशा बजाते हैं, और उनका काफी आई थिंक वो उससे बहुत कनेक्ट करते हैं उस काम से। और जब आप रहमान सर को पियानो बजाते देख लेंगे अगर सामने से, तो आई एम श्योर आपने देखा होगा, वो आपको कुछ दैवीय दर्शन कराता है, कुछ दैवीय देवलोक में लेके जाता है,
0: उनके लिए एक समाधि जैसा है,
1: उनके लिए समाधि है, पर उनके आसपास जो लोग खड़े हैं या बैठे हैं वो उनके लिए भी एक एक्सपीरियंस है।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि जब इतना पावरफुल कुछ हो रहा होता है, अगर यहीं पे इस कमरे में अगर कोई बहुत पावरफुल इंसान आ जाए तो पूरा कमरा दमकने लगता है। वो है रहमान सर और उनके पियानो का जो साथ में प्रेजेंस है ना, वो एक बड़ा कमरा बन जाते हैं खुद।
0: वाह वाह।
1: और उसके अंदर सब आ जाते हैं, सब बह जाते हैं उसमें। वो पियानो बजा रहे थे, हम उनको देख रहे थे, और हम देख के सोच रहे थे कि हम सच में देख रहे हैं कि हम सपना देख रहे हैं, और हम नहीं नींद से नहीं उठे हैं अगर ये सपना है तो, क्योंकि हम ए आर रहमान को लाइव पियानो बजाते देख रहे थे। और जब तक हम ये सोचते ही कि ये सच है कि सपना, उधर से आवाज आती है, दीपाली कम लेट्स जैम।
0: ओ हो हो हो हो।
1: और हम उनके पास गए, वो ऐसे ही पियानो बजा रहे थे, हम वहां खड़े हुए और हमने गाए पुराने गाने।
0: क्या बात है, क्या गाया?
1: पार्किंग लॉट सीरीज का एक बहुत मशहूर गाना है

0: क्या बात है, कितना इंटेंस गाना है, और मुझे अच्छा लगा कि आपने यहाँ से उठाया इस गाने को।
1: हाँ, ये अच्छा एक ये मेरा स्टाइल है वैसे। किसी भी गाने को हम पता नहीं क्यों अंतरा से गाते हैं। ये क्यों है मेरे अंदर पता नहीं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है ना कि आज मैं भी इसलिए शायद, वेरी गुड एक्चुअली गुड ऑब्जर्वेशन आपने बोला, तो हम ये सोचे लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत घट गया है और गाने की खूबसूरती उसके साथ रह करके आगे बढ़ने में है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल।
1: लेकिन अब आजकल लोगों को हुक करना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है मछली के, यू नो, कांटे जैसा जाल फेंकना पड़ता है।

0: ये जो अंतरे हैं ना इन गानों के,
1: असली रूह इनमें
0: असली
1: है।
0: रूह इनमें है। तो मछली पकड़ना है तो सही दाना डालना पड़ेगा।
1: क्या बात है।
0: तो हम ये नोटिस किए कि जब भी हम अंतरा से गाना शुरू करते थे वो गाने का व्यूज बहुत बढ़ जाता था। और उस समय 5 मिलियन स्पॉटिफाई व्यूज नहीं थे मेरे पास, उस समय 500 व्यूज से 5,000 हो जाते थे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो आई रियलाइज्ड कि जब भी हम किसी गाने को अंतरा से शुरू करते हैं, क्योंकि अंतरे में ही बात है, अंतरे में ही
1: बिल्कुल,
0: सारे
1: बिल्कुल,
0: एहसास है,
1: बिल्कुल।
0: मुखड़ा तो रिपीट होता है।
1: और ये तो रहमान के साथ गाने वाला एक्सपीरियंस है। क्या
0: तो
1: बात है,
0: वो लोग अटकते हैं इसमें।
1: क्या बात है। एक गाना
0: जी
1: जिसके जादू में पूरी दुनिया गिरफ्तार है
0: जी,
1: इस कामयाबी ने दीपाली को क्या सिखाया है और दीपाली कैसा महसूस कर रही है?
0: सिखाया ये है कि अपने आप को यही बोलो कि इस दुनिया में कुछ भी संभव है।
1: वाह,
0: कुछ भी हो सकता है। अपने आप को यहां तक बोल दो कि जो चीज हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं वो भी हो सकता है, क्योंकि यही मेरी सच्चाई है। तो दीपाली ने सीख लिया है ये।
1: क्या बात है,
0: अब मेरे सपनों की भी कोई सीमा नहीं है।
1: बहुत ही सही, बहुत ही सही। दीपाली, इतनी सारी बातें की हमने ऐश्वर्य की बात नहीं की। तो चलते चलते उनकी बातें की जाएं, किस तरह से मुलाकात हुई थी और कैसे वो आपकी जिंदगी में आए?
0: ऐश्वर्य से मेरी मुलाकात एक स्टेज शो के ही दौरान हुई थी। और कमाल की बात यह है कि हम लोग इतने सालों से, 2006 में ऐश्वर्य ने एक रियलिटी शो जीता था। वो बिहार से पहले थे। और हमको याद है 2005 में जब इस कार्यक्रम का ऑडिशन चल रहा था, उस लाइन में मेरे पीछे ऐश्वर्य भी खड़े थे।
1: अच्छा?
0: हम भी ऑडिशन देने गए थे। ऐश्वर्य को ये याद नहीं है, पर ऐश्वर्य का अगर आप उनसे मिलेंगे तो वो 6 फीट के बाहुबली है। बहुत बहुत भारी भरकम इंसान है वो। तो वो आप उनको बोले ना, एक पर्सनालिटी होती है जो आप देखते हैं तो याद रह जाती है। तो मेरे लाइन में मेरे पीछे वो इंसान था। तब हम नहीं जानते थे कि ये मेरा फ्यूचर पति होने वाला है। पर फिर मेरी उनसे मुलाकात हुई 2018 में एक स्टेज शो के दौरान,
1: मतलब बरसों बाद।
0: बरसों बाद 2005 में हम उनको देखे थे, 2006 में पूरा बिहार उनके लिए वोट कर रहा था क्योंकि वो उस रियलिटी शो के विनर थे। और 2006 में जब ऐश्वर्य को हार्ड मांस में देखने के बाद जब उन्होंने शो जीत लिया, हम बिहार से दूसरे इंसान और पहली लड़की थे जिसने रियलिटी शो में एक जगह बनाई थी। वो हिम्मत हमको ऐश्वर्य से ही आई थी, नॉट द हस्बैंड ऐश्वर्य टुडे, द कंटेस्टेंट ऐश्वर्य जो मेरे साथ लाइन में खड़ा था, एक आम सा लड़का। वो भी गया था, हम भी गए थे, पर वो जीत गया उस शो को। तो अगर वो जीत सकता है तो हम क्यों नहीं, हम क्यों नहीं वहां पहुंच सकते हैं? जीतने की सोच नहीं थी मेरे अंदर, क्योंकि हम लड़की थे इसलिए हम नहीं जीत सकते थे। मेरे दिमाग में गलत सोच है ये, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, पर वो ही मेरा उस समय का यथार्थ था। तो ऐश्वर्य की वजह से हमको बहुत मोटिवेशन मिला लाइफ में कि हम भी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि एक इंसान बिहार के मुजफ्फरपुर के छोटे से जगह से अगर निकल के ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। और जब हम ऐश्वर्य से मिले तो 2018 में, तो हम उनको ये बात बताए भी कि यू नो यू हैव बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर मी टू गो टू मुंबई, क्योंकि हमको लगा कि अगर तुम कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं। और क्योंकि ऐश्वर्य का वैसे तो सबसे मशहूर गाना है मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, और ऐसे कई सारे गाने हैं, पर ऐश्वर्य भी रफी साहब भक्त हैं।
1: वाह वाह वाह,
0: रफी भक्त हैं।
1: लेकिन ये मजेदार बात है कि एक रफी भक्त, एक किशोर भक्त।
0: हाँ, ये
1: किशोर प्लस गुलजार भक्त,
0: करेक्ट। ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है, घर ये घर में मुद्दा है हमारे लिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और मजेदार बात यह है कि किशोर कुमार रफी साहब को बहुत पसंद करते थे।
0: बहुत
1: है ना,
0: बहुत।
1: अपने घर में उनकी तस्वीर लगा रखी थी।
0: तो बस समझ लीजिए कि हम लोग भी वही है, हम किशोर कुमार का ही छोटा रूप है और रफी साहब का ही छोटा रूप है। हम लोग एक दूसरे से वैसे ही प्यार करते हैं। और ऐश्वर्य एक बहुत ही गुणी कलाकार है, बहुत समझदार कलाकार हैं, और मर्दों में जो मिसिंग है, यू नो, जिसको हम लोग कहते हैं कि मर्द बहुत दिमाग से सोचते हैं, बहुत कठोर होते हैं, ऐश्वर्य वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अगर ये कहें कि उसके अंदर की जो स्त्री है, हर इंसान के अंदर मर्द और औरत दोनों होता है, लेकिन जिस जेंडर में आप पैदा होते हैं, आप नेचुरली समाज की वजह से आप उस जेंडर को ज्यादा तूल देते हैं, ज्यादा महत्व देते हैं, और आप ज्यादा उनके जैसा बन जाते हैं। ऐसे समाज में जहां एक मर्द प्रधान, पुरुष प्रधान समाज में एक ऐसा लड़का पैदा होता है जिसके अंदर की औरत जीवित है,
1: वाह वाह वाह,
0: ये बहुत कमाल की बात है। वो उतना ही मर्द है जितना वो औरत है, वो उतना ही कठोर है जितना वो मुलायम है।
1: वाह
0: ये बहुत खूबसूरत, और शायद यही वजह

0: है कि वो वैसा कलाकार है जैसा वो है, क्योंकि मेरे घर में मर्द का डेफिनेशन ही कुछ और था. मेरे घर में पुलिस वाले हैं, मेरे घर वाले पापा मम्मी पापा माँ पूरी औरत है, पिताजी पूरे मर्द हैं. पर ऐश्वर्य से मिलके समझ आया कि पूर्ण तो वही है जिसके अंदर दोनों है.
1: बिल्कुल,
0: और पूर्णता से है.
1: बिल्कुल.
0: तो बहुत मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सपोर्ट आज के डेट में वो है ऐश्वर्य निगम.
1: वो
0: जो सिर्फ मेरे साथी ही नहीं है, हमको सिखाए भी हैं. माइक पे गाना एक कला है और उनके पास एक्सपीरियंस है. बहुत पहले वो प्लेबैक सिंगर बन गए थे, तो ये मेरा सौभाग्य है कि हम उनकी पत्नी बने. तो शायद यू नो रहमान सर तक पहुंचने का ये सारा जो रास्ता था, गुरुजी से ऐश्वर्य जी से भी मिलना इसी में लिखा था.
1: उनके लिए कुछ गाने को बोलूं तो
0: हाँ.

0: क्या बात है, मुझे पार्किंग लॉट सीरीज याद आ गया।
1: यस, ये पार्किंग लॉट सीरीज में था,
0: ये बहुत चला था क्योंकि उस वक्त बिल्कुल सुंदर गाना आर डी बर्मन
1: जी,
0: और इस गाने का जो पूरा चलन है, जो धुन है, जो बनावट है, अनमोल है। ये गाना सुनते हैं।

0: लगता है कि इन बातों का सिलसिला कहीं तो खत्म ना हो, लेकिन कहीं तो खत्म करना पड़ेगा
1: जी।
0: बहुत शुक्रिया हम तक आने के लिए और इस पूरी यात्रा को हमारे साथ शेयर करने के लिए। हम ये कहेंगे कि विविध भारती में आप आती रहें
1: जी।
0: और यहाँ हमारे साथ बातें करती रहें। बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद यूनुस जी। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम पिछले 20 साल से इस प्रोफेशन में हैं, पर मेरी मुलाकात आज तक किसी आपके जैसे इंसान से नहीं हुई। हमको बहुत लोगों ने इंटरव्यू किया है सर, पर ऐसा हम कभी नहीं महसूस किया। इम्तियाज सर और रहमान सर से मिलके हमसे किसी ने पूछा कि आपने क्या सीखा, तो उनकी कला सीखने की तो मेरी औकात नहीं है, पर उनके सानिध्य में एक चीज हम जरूर सीखे कि जब वो किसी के साथ होते हैं तो वो उस इंसान के साथ पूर्णतः होते हैं, चाहे वो 100 की भीड़ में भी क्यों ना खड़े हो। वो अगर 15 सेकंड के लिए भी किसी की तरफ पलटते हैं तो वो 15 सेकंड उस इंसान के और उनके बीच कोई नहीं होता है। आप वो इंसान हैं, आप जो मेरे साथ थे, आप मेरे साथ पूर्णतः रहे, और वो आपकी खूबसूरती है कि इस तरीके से हम बात कर पाए। इस तरह से मेरे अंदर से चीजें सिर्फ मेरे पति ने निकलवाया है, मेरी बहन ने निकलवाया है, मेरे माँ बाप ने निकलवाया है, जिस तरह से आपने मेरे अंदर से वो चीजें निकलवाई हैं, आप कमाल हैं सर।
0: बहुत शुक्रिया दीपाली, बहुत शुक्रिया।
1: अमेजिंग,
0: थैंक यू।
2: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जानी मानी गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग प्रभा भटनागर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविधा विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से हिंदी दिवस के उपलक्ष में आज प्रस्तुत है विशेष रूपक साहित्य कल और आज। दोस्तों हिंदी दिवस केवल हिंदी बोलने या हिंदी में भाषण देने का दिन नहीं है, ये दिन हमें एक छोटा सा सवाल पूछने का अवसर देता है। क्या हम अपनी भाषा से उतना ही प्रेम करते हैं जितनी अपनी भाषा पर गर्व करते हैं? भाषा तभी जीवित रहती है जब वो बोली जाती है, लिखी जाती है, पढ़ी जाती है और अगली पीढ़ी तक पहुंचाई जाती है। 14 सितंबर हमारे लिए केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इसी ऐतिहासिक निर्णय की स्मृति में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 343 में राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी।
1: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, आइए सुनते हैं जरूरी।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने

0: अटकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
4: अंतराल के बाद आइए सुनते हैं विविध भारती सेवा के कार्यक्रम मुंबई से।

0: दोस्तों, हिंदी आज हर वर्ग हर दौर के लिए कितना, कैसे और क्यों आवश्यक है, हिंदी किस तरह समृद्ध है, आइए जानें एक ऐसे साहित्यकार से जो लेखन की दुनिया के हस्ताक्षर हैं, जिन्हें पढ़कर युवा लेखकों की कलम समृद्ध होती है। आप हैं प्रियमवत जी।
1: किसी पीढ़ी के मन से जुड़ने के लिए किसी साहित्य या कहानी की भाषा में कोई बदलाव नहीं किया जाता। पीढ़ी से जुड़ना महत्वपूर्ण नहीं है, ना कि ये कि कहानी या कि साहित्य अपने आप में समर्थ, प्रभावी और विस्तृत हो। भाषा को आप पीढ़ी के हिसाब से या समय के हिसाब से नहीं बदल सकते, बेशक कथ्य को बदल सकते हैं। कथ्य इसलिए बदल जाता है कि समाज बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, राजनीति बदलती है और चीज़ों के विश्लेषण और उसके अर्थ बदलते हैं। यदि नई पीढ़ी इनको समझती है तो वो अपने आप साहित्य से और कहानी से जुड़ेगी, और यदि मुद्दों को नहीं समझती तो वो कुछ भी करने पर इससे नहीं जुड़ेगी। प्रचार और प्रसार तो किसी भी भाषा का तब होता है जब वो रोजी रोटी से जुड़े या कामकाज की भाषा बने, या फिर लोग उस भाषा को स्वयं बनाए और स्वीकार करें, जैसा कि उर्दू के साथ उसने किया और जिसे अब हम हिंदुस्तानी के नाम से जानते हैं। ये वही भाषा है जिसे लोग ने खुद गढ़ा। इसमें विदेशी शब्द भी हैं, इसमें फ्रांसीसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली भी हैं, इसमें बंगला, मराठी भी हैं, संस्कृत के शब्द भी हैं, अवधी, भोजपुरी, ब्रज, इनके शब्द भी हैं। ये भाषा लोक की भाषा है और इसका प्रचार प्रसार अपने आप होता चलेगा। बाकी इसके अलावा सिनेमा ये काम करता है, रेडियो ये काम करता है, दूरदर्शन ये काम करता है, मनोरंजन के साधन ये काम करते हैं जो सब जगह पहुंचते हैं। साहित्य का ये काम मुख्य रूप से नहीं होता और वो ये काम इसलिए करता भी नहीं।
0: हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने में भारतेंदु हरिश्चंद्र की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। उन्होंने केवल कविता नहीं लिखी, केवल नाटक नहीं लिखे, बल्कि उन्होंने भाषा को सामाजिक जागरण का माध्यम बनाया। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उनका योगदान बड़ा महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी जैसी पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी में नए विचारों के लिए मंच तैयार किया। उनकी प्रसिद्ध पंक्ति हम सबको याद आती है, निज भाषा उन्नति यह है, सब उन्नति को मूल। आज भी हिंदी के प्रति हमारे दृष्टिकोण को मजबूत बनाती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद भी हिंदी की मशाल बुझी नहीं। सन 1993 में क्वींस कॉलेज

वाराणसी के तीन विद्यार्थियों श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह ने हिंदी भाषा साहित्य और देवनागरी लिपि की उन्नति के लिए नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की। नागरी प्रचारिणी सभा के प्रयासों से हिंदी के विकास को नई दिशा मिली। देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार, हिंदी साहित्य के संरक्षण और शब्द संपदा को समृद्ध करने में इस संस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदी के अनेक दुर्लभ ग्रंथों का संग्रह और प्रकाशन हुआ यहीं से। शब्दकोश और साहित्यिक सामग्री तैयार की गई। इस तरह नागरी प्रचारिणी सभा ने हिंदी को केवल बोलचाल की भाषा से आगे बढ़ाकर ज्ञान, साहित्य और विचार विमर्श की सशक्त भाषा बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया। हिंदी के विकास में पत्रकारिता ने बड़ी भूमिका निभाई। उदंत मार्तंड को हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है। इसके प्रकाशक और संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। 1826 को कलकत्ता से इसका पहला अंक निकला। कल्पना कीजिए, उस समय न इंटरनेट था, न सोशल मीडिया, न टेलीविजन। एक छपा हुआ पन्ना ही विचारों को दूर दूर तक ले जाने का माध्यम था। इसलिए हिंदी पत्रकारिता का इतिहास केवल समाचारों का इतिहास नहीं है, ये जागती हुई भाषा और जागते हुए समाज का इतिहास भी है। हिंदी की यात्रा में कितने ही साहित्यकार आए, कबीर, सूर, तुलसी से लेकर मुंशी प्रेमचंद तक का हिंदी में रचा गया साहित्य आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह था। मुंशी प्रेमचंद ने किसान, मजदूर, स्त्री, गरीब और मध्यम वर्गीय जीवन की पीड़ा को साहित्य की आवाज बनाई। गोदान का होरी हो या कफन का संसार, प्रेमचंद ने हिंदी को केवल मनोरंजन की भाषा नहीं रहने दिया, उन्होंने उसे समाज का आईना बना दिया। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान पर फिल्म बनी गोदान, जिसके निर्देशक थे त्रिलोक जेटली। आइए यहाँ पर गोदान फिल्म का गाना सुनते हैं।

इसके बाद हिंदी में आई एक नई संवेदना, महादेवी वर्मा। उनकी लेखनी में करुणा थी, संवेदना थी और स्त्री मन की गहरी अनुभूति। महादेवी वर्मा का एक गीत फिल्म त्रिकोण का चौथा कोण में शामिल था,

मैथिली शरण गुप्त ने राष्ट्र और समाज की चेतना को स्वर दिया। रामधारी सिंह दिनकर ने ओज भरा। सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन सब ने हिंदी कविता को अलग अलग रंग दिए और इसीलिए हिंदी साहित्य कोई एक रंग की तस्वीर नहीं, ये तो रंगों से भरी एक विशाल चित्रशाला है। यहाँ आपको सुनवा रहे हैं जयशंकर प्रसाद की रचना, जिसे आशा भोसले ने गाया है।

टोबैको जैसे अन्य कई देशों में भारतीय मूल के समुदायों के बीच हिंदी की अपनी अहम उपस्थिति है। डिजिटल युग ने तो हिंदी को एक नया आकाश दे दिया। आज मोबाइल के स्क्रीन पर हिंदी पढ़ी जा रही है, हिंदी में ब्लॉग लिखे जा रहे हैं, हिंदी के पॉडकास्ट सुने जा रहे हैं, फिल्में और वेब सीरीज हिंदी में देखी जा रही है। हिंदी किताबों के साथ साथ फिल्मी गीतों में भी सांस लेती है। फिल्मी गीतों ने हिंदी के शब्दों को उन श्रोताओं तक भी पहुंचाया जिन्होंने शायद कभी कविता की किताब भी न खोली हो। और यहाँ हमें याद आते हैं एक ऐसे कवि जिनकी कविता मंच से लेकर सिनेमा तक पहुंची, वो हैं बाल कवि वैरागी। उनके साहित्य में मालवा की मिट्टी की खुशबू थी, लोक जीवन की सहजता थी और शब्दों में आत्मीय मिठास। फिल्म रेशमा और शेरा के लिए उन्होंने लिखा ये गीत।

0: ये गीत केवल एक फिल्मी गीत बनकर नहीं रह गया दोस्तों, उसमें राजस्थान की लोक संस्कृति, प्रेम और प्रकृति का ऐसा सम्मोहन था कि गीत सुनते ही लगता है जैसे रेगिस्तान की रात में चांद उतर आया हो। बालकवि बैरागी ने दो बूंद पानी, वीर छत्रसाल, क्षितिज, रानी और लालपरी, जादू टोना और अनकही जैसी फिल्मों के लिए भी गीत लिखे। अनकही में उनका गीत मुझको भी राधा बना ले नंदलाल बहुत ही पसंद किया गया। हर दौर में कवियों का कविता के साथ साथ गीतकारी का सफर चलता रहता है और कवि अपनी उपस्थिति दर्ज करते रहते हैं। जाने माने लेखक, फिल्म समीक्षक, गीतकार और लता सुरगाथा के रचयिता यतीन्द्र मिश्र ने अपने विचार साझा किए हैं।
1: जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है, हिंदी में हजारों किताबें आई, थोड़ा सा अगर बढ़ के हम 25 से 30 साल का दायरा करें तो मैंने कुछ कैटेगरीज में विभाजित किया जो मुझे हमेशा प्रेरित करती हैं किताबें। उसमें अगर हम नॉन फिक्शन या कथेतर के लिए जाएं तो मुझे लगता है कि सर्वाधिक जो अच्छी किताबें थी जिनका आज भी असर है भाषा के स्तर पर, जिनका एक सकारात्मक संदेश है जो किसी समाज के किसी तबके की या किसी विचार की बात करती हैं, उनमें सबसे बड़ी किताब मुझे लगती है आज भी खड़े हैं तालाब अनुपम मिश्र की, जो जल संरक्षण पर है और जो शायद पहली किताब है उस पर।
0: जी जी।
1: दूसरी किताब शेखर पाठक की दास्ताने हिमालय मुझे लगती है भाषा के स्तर पर भी और हिमालय को समझने के लिए, उस वनखंड को और उस पूरे पहाड़ को समझने के अर्थ में।
0: जी।
1: और तीसरी किताब जो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगती है वो है स्वदेश दीपक की मैंने मांडू नहीं देखा।
0: क्या बात है।
1: और अगर हम कविता संग्रह पे आए, दो मास्टर पीसेस मुझे लगते हैं, एक केदारनाथ सिंह का टॉलस्टॉय और साइकिल और दूसरा कुंवर नारायण का कुमार जीव, बहुत बड़ा दार्शनिक ढंग का आख्यान है। और बिल्कुल इधर हाल के कुछ वर्षों में प्रकाशित डॉक्टर विनय कुमार की श्रेयसी, जो सरस्वती नदी को आधार बना के ढेर सारी कविताएं उस पर लिखी गई। इसी तरीके से अगर हम चले उपन्यासों की ओर तो मुझे तीन उपन्यास बहुत बहुत समझ में आते हैं। पहला है अलका सरावगी का शेष कादंबरी, दूसरा है अनामिका जी का तृणधरी ओठ, जो सीता को सीता पत्र लिखती हैं और राम के संदर्भ में पूरा रामायण का आख्यान बताती हैं, और मनीषा कुलश्रेष्ठ का त्रिमाया, जो मातृसत्तात्मक समाज को लेकर के पूरी बात करती है। इसके अलावा और आलोचनात्मक किताबें या नॉन फिक्शन किताबों में मुझे अनंत विजय की मार्क्सवाद का अर्धसत्य बहुत समझ में आती है, इस अर्थ में कि मार्क्सवाद की एनालिसिस है वो और वो कोई आलोचना नहीं है, लेकिन वो एक पूरे ढंग से एक पड़ताल करती है, वो सारी बातें दिखाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सोपान जोशी की एक किताब है जल थल मल, और वो पूरी तरह से गांधीवादी रहे हैं और किस तरीके से मैला ढोने को लेकर के पूरी किताब लिखी गई है। दो किताबें मुझे बहुत पसंद आती हैं, हालांकि दोनों

0: हिंदी में अनुवादित हुई और बेहद चर्चित हुई। एक आत्मकथा है बेबी हालदार की, आलो अंधारी। दूसरा हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर का अनुवाद अग्नि की उड़ान, जिसका उर्दू तर्जुमा भी और ऑडियो बुक भी बनाई गुलजार साहब ने परवाज के नाम से। तो मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसी किताबें हैं जो तुरंत याद आती हैं। बाकी दार्शनिक पक्षों को लेकर, राजनीतिक पक्षों लेके बेहद सुंदर किताबें लिखी गई हैं। राम बहादुर राय ने एक किताब लिखी थी रहबरी के सवाल, तो वो किताब है पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से संवाद पर। तो मुझे लगता है कि वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट किताब है, एक बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है पॉलिटिक्स के थ्रू पूरे भारतीय परिदृश्य को समझने का। और वैसे तो हमेशा से जो महान किताबों का मामला है, मैं मैला चल, गोदान, राग दरबारी, निर्मल वर्मा की वे दिन, धुन से उठती धुन, मेरी सबसे फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट हिंदी किताब अगर कोई है तो निर्मल वर्मा की डायरी और संस्मरणों की किताब है धुंध से उठती धुन। मैं उसे बिल्कुल गीता या रामायण की तरह, भाष्य की तरह देखता हूँ। और अगर क्लासिक लिटरेचर में चले जाएं तो भारत सावित्री वासुदेव शरण अग्रवाल की जो 3 वॉल्यूम में टीका है महाभारत की, उसे जरूर पढ़ना चाहिए कम से कम नई जनरेशन को, जिसे जेन ज़ी कहते हैं। और उसी तरीके से रामायण का काव्य मर्म या हिंदी भाषा दर्शन की टीका विद्यानिवास मिश्र की पढ़नी चाहिए, और सारी किताबें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पढ़नी चाहिए
1: जी,
0: और राहुल जी की किताब वोल्गा से गंगा। तो ये सब किताबें ऐसी हैं जो हिंदी का परिदृश्य बुलती हैं। और एक बहुत इम्पोर्टेंट किताब है अच्छी हिंदी डॉक्टर रामचंद्र वर्मा की
1: जी,
0: अच्छी
1: जी।
0: हिंदी कैसे सीखें, पढ़ें, समझें, ये बातें। जैसे हम सांस लेते हैं तो जीवन पाते हैं, किताबें पढ़ते हैं तो हमारी सांसें परिष्कृत होती हैं।
1: बिल्कुल। और हमें नैनन में आन बान के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए।
0: नैनन में आन बान मैंने बिल्कुल युवा पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए एक किताब लिखी, उसमें 12 मूर्धन्य शास्त्रीय संगीतज्ञों पर लेख हैं, जिसमें पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर, कुमार गंधर्व, भीमसेन जोशी, केसरबाई केरकर, रसूलन बाई, बेगम अख्तर, उस्ताद अमीर खां, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां के बारे में निबंध है। और 100 पेज का उसमें नोट्स है भारतीय संगीत को, फोक म्यूजिक को, ज्यादातर शास्त्रीय संगीत और सेमी क्लासिकल की बात है। ये समझने की दृष्टि देने के लिए उस किताब के लिखने के पीछे का ध्येय था कि हम गाना सुनते क्यों हैं और गाना सुन के सराहते क्यों हैं। उस किताब को लिखने की प्रेरणा जॉन बर्जर की किताब वेज ऑफ सिंग के ऊपर आधारित है, किस तरह से पेंटिंग को देखना समझना चाहिए, किस तरह से शास्त्रीय संगीत को सुनना चाहिए। और अगर मेरी किताब पढ़ते हुए किसी युवा व्यक्ति में, किसी विद्यार्थी में, किसी संगीतज्ञ में, जो बच्चा सीख रहा है, जो गाने की तैयारी कर रहा है, भले वो प्लेबैक सिंगर बन रहा हो या शास्त्रीय संगीत रागदारी में सीख रहा हो, उसे ये मन कर जाए कि हमें रसूलन बाई की ये ठुमरी सुननी चाहिए, या हमें बड़े गुलाम अली खां का ये दादरा सुनना चाहिए, या हमें पंडित कुमार गंधर्व का ये निर्गुण सुनना चाहिए, तो वो किताब एक रीडर की तरह, एक सहायिका की तरह आपके साथ चलती। और मैं ये जरूर कहूंगा जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा कि किसी भी किताब को, किसी भी कलाकृति को, किसी भी संगीत को, किसी भी सिनेमा को, किसी भी रचनात्मक कार्य को खारिज करने से पहले उसे एक बार देखें, उसे बरते, उसके साथ हम कदम चले, सुनी सुनाई बातों पर, रिव्यू पर, या इसलिए कि फलाने ने इसकी चर्चा नहीं की तो हमें नहीं देखना चाहिए, इस तरह का कोई निर्णय ना ले। किताबें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, आपके अकेलेपन की साथी, और वो आपको कहीं ना कहीं से संस्कारवान बनाती है।
1: एक अच्छी कविता जब गीत बनती है तो वो किताब के पन्ने से निकलकर लाखों लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। एक ऐसे ही कवि हुए गोपाल दास नीरज, जिन्हें गीतों का राजकुमार कहा जाता था। नीरज के गीतों में ललित काव्य दृष्टिगोचर होता है। नीरज के गीतों में कविता थी, दर्शन था, प्रेम था और जिंदगी को देखने का एक बेहद खूबसूरत अंदाज। फिल्म मेरा नाम जोकर हो या फिर हो प्रेम पुजारी, उनके गाने कालजयी होते हैं। उनके गीत जब हम गुनगुनाते हैं तो हमारे जीवन से जुड़ते हैं। आइए सुने प्रेम पुजारी फिल्म का ये गीत।

गीतकार नीरज ने सिद्ध कर दिया कि साहित्य और सिनेमा दो अलग अलग संसार नहीं हैं। हिंदी साहित्य में कुछ कवि ऐसे हैं जिनकी पंक्तियां किताबों से निकलकर जन जन की आवाज बन गई। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन उन्हीं में से एक थे। 1920 और 30 के दशक में हिंदी कविता के मंच पर बच्चन जी की आवाज ने एक अलग ही आकर्षण पैदा किया। उनकी काव्य पंक्तियों में दर्शन था, जीवन का उत्सव भी था और मनुष्य की पीड़ा भी।

की कृति मधुशाला ने उन्हें घर घर में लोकप्रिय बनाया। मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला। लेकिन डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविता सिर्फ मधुशाला तक नहीं ठहरी, उनकी कविता अग्निपथ ने संघर्ष और जीवन के प्रति अदम्य विश्वास जगाया। तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। और दोस्तों देखिए कितना सुंदर संयोग है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की यही कविता हिंदी सिनेमा तक पहुंची और फिल्म अग्निपथ के साथ एक नई पीढ़ी की जबान पर चढ़ गई। इस फिल्म में उनके सुपुत्र अमिताभ बच्चन ने मुख्य भूमिका निभाई। यही तो हिंदी की ताकत है, कविता किताब से निकलती है, गीत बनती है, सिनेमा तक पहुंचती है और फिर लोगों के दिलों में बस जाती है। दोस्तों विविध भारती के संग्रहालय में कुछ ऐसे अनमोल मोती हैं जिन्हें हम आप तक आज पहुंचा रहे हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविता उन्हीं के स्वर में।

0: इस कार्यक्रम में अब जरा चर्चा कर लें ज्ञानपीठ पुरस्कारों की। आपको जानकारी दे दें, सन 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। 1972 में रामधारी सिंह दिनकर, 1978 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को मिला ज्ञानपीठ। 1982 में महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1992 में नरेश मेहता को, 1999 निर्मल वर्मा, 2005 में कुंवर नारायण को मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार। 2009 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को। 2013 में मिला केदारनाथ सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार। 2017 में कृष्णा सोबती को। 2024 में मिला विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार। हिंदी भाषा हमें किताबों से किस तरह जोड़ती है, इन दिनों कौन कौन सी किताबें पढ़ी जा रही हैं, बता रहे हैं एक विलक्षण कथाकार मनोज रूपड़ा।
1: पच्चीस साल का वक्फा तो काफी लंबा है, बहुत सारे लोग इसमें हो सकते हैं। अगर मैं ये करूं कि भाई मेरी अपनी जो पसंद है या जो मैंने बहुत मन से तो बहुत गहराई से जिन किताबों को पसंद किया, तो उसमें मंजूर एहतसाम की किताब है बशारत मंजिल, काशीनाथ सिंह का उपन्यास है काशी का 80, फिर रणेंद्र का उपन्यास है ग्लोबल गांव के देवता, और शिवमूर्ति का तो अभी हाल ही में आया है, मतलब बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, फिर भी मैं इन 25 सालों के, क्योंकि वो एक क्लासिकल उपन्यास है वो।
0: जी जी बिल्कुल।
1: और मैं अब उन उपन्यासों का जिक्र कर रहा हूँ जो समकालीन होते हुए भी क्लासिकल दर्जा पा चुके हैं। तो शिवमूर्ति का उपन्यास है गम भय दरियाओं, और नासिरा शर्मा का एक उपन्यास है पारिजात। तो ये पांच उपन्यास पसंद के जो मैंने जिक्र किया, और उसके अलावा क्योंकि मेरा अध्ययन जो है ना अनुवादों पर भी बहुत ज्यादा मैं फोकस करता हूँ, तो पांच ऐसी किताबें जो सबको पढ़नी चाहिए, उसमें हंगरी की एक लेखिका है मागदो साबा, उसका उपन्यास है दरवाजा। नॉर्वेजियन राइटर है थारियो वेसास, बहुत प्यारे लेखक हैं, और उसका बहुत खूबसूरत अनुवाद तेजी ग्रोवर ने किया है। उपन्यास का शीर्षक है परिंदे। समरसेट मॉम का उपन्यास है चांद और छह आने, ये कला की दुनिया के बहुत अलग तरह के जो कश्मकश होती है उसका उपन्यास है ये। फिर उसके बाद मार्गो वर्सेस लोसा का उपन्यास है किस्सा वो, और हमारे जो सबसे बड़े इन 25 सालों के बीच के जो अंतराल के जो मास्टर हैं गैब्रियल गार्सिया मार्केस, उनका उपन्यास है एकांत के 100 वर्ष। ये तो सबको पढ़ने चाहिए, मैं भी ये रिकमेंड करूंगा, इन उपन्यासों को पढ़कर कई तरह के मतलब परिप्रेक्ष्य खुलते हैं।
0: आपने एकांत के 100 वर्ष का जो जिक्र किया मार्केस, तो इसका अनुवाद उमा शर्मा जी ने किया, बहुत ही बेहतरीन किताब है। एक किताब और आपको याद दिला रही हूँ मैं, काला बछड़ा सफेद बर्फ,
1: हाल ही में अनुवादित हुआ है, पढ़ा है मैंने वो भी, मतलब अगर इन 25 सालों में उसको हम रखें तो वाकई वो एक क्लासिकल उपन्यास है। हमारे यहाँ इस तरह की राइटिंग है नहीं, हमारे यहाँ अंदरूनी जो संश्लिष्ट यथार्थ है उसकी जो बारीक

0: ओनर अभी तक हमारे लेखक में नहीं है। इसलिए हिंदी के लेखक को खास तौर से वो उपन्यास पढ़ना चाहिए कि अंदरूनी जो परतें होती है यथार्थ की, उसको कितनी महीनता से, कितनी बारीकी से एक लेखक खोलता है, ये अगर जानना है तो ये उपन्यास पढ़ना चाहिए, काला बछड़ा। इसका अनुवाद भी बहुत खूबसूरत हुआ है। मैं तो हमेशा ये मानता हूँ कि एक लेखक का काम सिर्फ लिखना नहीं होता, एक लेखक का काम रचनात्मक माहौल बनाना भी होता है। अगर हम अपना लेखन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अपने बाद के लेखकों के लिए कोई माहौल नहीं बना पा रहे हैं, तो हमारा रचना कर्म भी अधूरा है। मैं ऐसा मानता हूँ, ये मैंने सीखा है मेरे से जो सीनियर थे, मंजू रेखता साहब, सत्येन कुमार थे, कमला प्रसाद जी थे, इन लोगों ने हमेशा युवा लेखकों को, जिनको कुछ भी नहीं आता था, जैसे मैंने लिखना शुरू किया था एक वर्कशॉप में शुरू किया मैंने, वो वर्कशॉप यानी कहानी का एक छोटा सा मतलब एक प्रशिक्षण। अब आप सोचेंगे कि भाई लेखन का भी कोई प्रशिक्षण शिविर होता है? हाँ, मैंने प्रशिक्षण शिविर में कहानी लिखना सीखी है। वो युवाओं के लिए था जिन्होंने एक कहानी भी नहीं लिखी थी, पहली कहानी उसमें लिखी गई उस प्रशिक्षण शिविर में। तो हमारे यहाँ परंपरा है मतलब युवा लेखन को प्लेटफॉर्म देने की, ये कोशिश होती रहनी चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे जाने माने कथाकार मनोज रूपड़ा के विचार। दोस्तों, किताबों से नाता जोड़कर हम समाज से जुड़ते हैं, हम संवेदनशील होते हैं, कल्पनाशीलता का विस्तार होता है। इन दिनों कौन कौन सी जरूरी किताबें आई जिन्हें पढ़ना चाहिए, बता रहे हैं भारतीय प्रशासनिक अधिकारी और जाने माने साहित्यकार कैलाश वानखेड़े। आइए सुनते हैं कैलाश वानखेड़े के विचार।
2: ये एक बेहद मुश्किल सवाल है कि एक किताब का नाम बताया जाए, और भारत में जिस तरह से जटिलता है और जो सामाजिक परिवेश है, मुझे लगता है कि पाठकों ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की झूठन नाम की जो आत्मकथा है वो जरूर पढ़ना चाहिए, जिसमें कि भारतीय समाज की जो अंतर्निहित व्यवस्था है और जिसमें जो प्रताड़ना और उपेक्षा के साथ साथ एक संघर्ष का हिस्सा है, वो इस किताब में है। और मुझे लगता है कि हर पाठक को भारतीय समाज को समग्र रूप से समझने के लिए जरूरी है कि वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की किताब जरूर पढ़े। और उसी तरह से तुलसीराम की मुर्दहिया भी एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है, जो कि हमारे परंपरागत समझ और जो हमें विरासत में मानसिकता मिलती है उसकी जड़ता से प्रहार करने के लिए और समग्र समाज को समझने के लिए जरूरी है कि हम इस किताब को भी जरूर पढ़े। एक भारतीय समाज के उस रूप को और व्यवस्था को उजागर करती है जिससे कि अमूमन सामान्य पाठक अछूता रहता है। इन किताबों को इस लिहाज से पढ़ा जाना चाहिए कि समग्र भारत, समग्र समाज किस तरह से है और उसकी क्या क्या दिक्कतें, परेशानी, संघर्ष और सपने क्या क्या है। सारे पाठकों को हिंदी की किताबें जरूर पढ़ना चाहिए, जो उसकी पसंद सुविधा हो उस दिशा में उन्होंने अपना एक कदम बढ़ाना चाहिए। अपनी पसंदीदा किताब इसी तरह से बनती जाएगी, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, किताबों के संसार में दाखिल होते जाएंगे तो नई नई किताबों का भी उन्हें दर्शन होगा और वो इन किताबों को देख सकेंगे, पढ़ सकेंगे और अपने मानस को समझने के लिए, अपने दृष्टिकोण को व्यापक, उदार और समतामूलक बनाने के लिए वो इस दिशा में जरूर एक प्रभावी कदम उठा सकेंगे। कुछ मराठी साहित्यकार है जिनको कि बचपन के समय में पढ़ा था, वामन निंबाड़कर हो, नामदेव ढसाल हो, मनोहर वाकोड़े हो, या फिर अगर मैं बात करूं दया पवार की, इन लोगों को बचपन और किशोरावस्था में पढ़ा था, बाद में प्रेमचंद से जो है कहना चाहिए कि एक अच्छी मुलाकात हुई जिनके की समग्र साहित्य को पढ़ा गया, राजेंद्र यादव को पढ़ा, तरह के लेखक रहे हैं जिन्होंने मेरे अपने लिखने और समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हर व्यक्ति को जो है किताब जरूर पढ़नी चाहिए, अपने साथ अपनी यात्रा में किताबों का साथ रहना चाहिए, जब भी मौका मिला वो किताबों के पन्ने उल्टे और उसको पढ़ने में अपना वक्त दे। किताबें सबसे अच्छी दोस्त होती है, उससे दोस्ती जो करेगा वो आदमी, वो इंसान जिंदगी भर व्यस्त रहेगा, खुश रहेगा, ये ही मुझे लगता है।
1: आप सुन रहे थे भारतीय प्रशासनिक अधिकारी और जाने माने कथाकार कैलाश वानखेड़े के विचार। अब एक ऐसे साहित्यकार के विचार जिन्होंने कहानियाँ भी लिखी हैं, उपन्यास भी लिखे हैं,

0: संस्मरण भी लिखे हैं, यात्रा वृत्तांत भी लिखा है और अनुवाद भी किया है। ये है उर्मिला शिरीष।
1: हिंदी साहित्य में कहानी कहने के नए माध्यम आ गए हैं। मुझे लगता है कि बदलाव की जरूरत इसलिए है कि आज जो भी पाठक हैं, श्रोता हैं, वो इस तरह के साहित्य की तरफ उन्मुख हो रहे हैं जिसका कट सीधे सीधे भाषा के माध्यम से उनके दिल दिमाग में उतर जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि जितना कसाव होगा कथ्य में और भाषा जितनी रोचक होगी, संप्रेषणीय होगी, उतने ही अच्छे ढंग से किसी भी कहानी को आत्मसात किया जा सकता है। बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाकर और कहानी को यदि हम कहते हैं तो जो मूल कहानी का भाव है वो कहीं ना कहीं बाधित होता है। और मुझे लगता है कि आज के इस बदलाव के समय में जब मीडिया और सोशल मीडिया चारों तरफ हमारे है और हम उन माध्यमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे में हमें कथ्य के कसाव पर, कथ्य पर बहुत ध्यान देना चाहिए और भाषा पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए जो भाषा सीधे सीधे हमारे श्रोताओं को और हमारे पाठकों को हमारी रचना का जो मूल भाव है, जो केंद्रीय भाव है, हम कहानी में जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो रोचकता के साथ उनके अंतरतम में पहुंच सके। दूसरी बात ये कि साहित्यकार, मीडिया और नई पीढ़ी, ये बिल्कुल सही बात है कि तीनों आज बराबर से साहित्य जगत में अपने अपने स्तर पर सक्रिय हैं और इन लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी कहानी या कविता जब हम लिखते हैं तो यदि वो श्रोताओं या दर्शकों तक नहीं जाती है तो उसका कोई मायने नहीं रहता है। लेकिन मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि हमें अपनी जो परंपरा है उस परंपरा का निर्वाह करते हुए जो आधुनिक नए माध्यम आए हैं उनको भी अपनाना जरूरी है। तो दोनों परंपरा और आधुनिकता, नए माध्यमों के बीच इस तरह का तालमेल बैठाकर हम चल सकते हैं कि उसकी भाषा और शैली अक्षुण रहे और हमें ये लगे कि हम स्तंभ में जो हमारी कहानी की परंपरा चली आ रही है उस परंपरा का निर्वाह करते हुए आधुनिक माध्यमों के रूप में भी हम कहानी को सुन रहे हैं। जैसे मैंने अनुभव किया है कि प्रेमचंद की कहानियां आज भी उतनी ही अच्छे ढंग से नए माध्यमों के द्वारा सुनी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं। तो आधुनिकता का और परंपरा का दोनों का समन्वय मैं मानती हूँ कि होना चाहिए।
0: तो ये थे जानी मानी कथाकार उर्मिला शिरीष के विचार। दोस्तों, हिंदी साहित्य में बहुत सारे ऐसे कवि रहे जिन्होंने कविता के क्षेत्र में प्रतिष्ठा पाने के साथ साथ हिंदी सिनेमा को भी यादगार गीत दिए। कुछ कवि और गीतकारों का जिक्र हमने पहले किया। एक जाना माना नाम है कवि और गीतकार शैलेंद्र, प्रगतिशील कवि और गीतकार जिन्होंने गीत लिखा आवारा हूँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, सजन रे झूठ मत बोलो।

शकील बदायूनी, नक्श लालपुरी शायरी के साथ साथ फिल्मी गीतों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। कवि प्रदीप का नाम भला हम कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने कवि के रूप में प्रसिद्धि पाई और बाद के दिनों में उन्होंने ललित गीत लिखे।

0: लीजिए अब सुनिए उनकी बात, जो पेशे से प्रोफेसर हैं, सुधी पाठक हैं और हैं रेडियो प्रेमी विनीत कुमार।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आकाशवाणी, शुक्रिया ममता जी। पिछले 15-20 साल में जो किताबें जो मुझ पर बहुत असर कर पाई, उसमें सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा तुलसीराम जी की मुद्दैया और मणिकर्णिका, ये दोनों किताबें उनकी आत्मकथा है। और एक तो ये जीवन संघर्ष और जीवटता की किताब है। इसके बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जो तुलसीराम जी के बचपन के जीवन संघर्षों को बताती है। छात्रों को ये किताब हर हाल में, या फिर युवाओं को जो संघर्ष कर रहे हैं करियर बनाने की, छोटे शहरों से आकर बड़े शहरों में जद्दोजहद कर रहे हैं, उन्हें ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि उससे बहुत एक हौसला उनका बढ़ता है, मिलता है। और तुलसीराम ने उत्तर प्रदेश के जिस छोटे से गांव से अपना सफर शुरू किया और बाद में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर तक हुए, लेखक हुए, पूरी किताब की यात्रा से जब गुजरेंगे हमारे युवा और युवा पीढ़ी के लोग, बहुत हिम्मत मिलेगी। दूसरी किताब आई दाता पीर, और पटना की पूरी पृष्ठभूमि पर लिखी हुई सुलभ का ये उपन्यास है। ये किताब इसलिए भी पढ़ी जानी चाहिए क्योंकि इसमें जो भाषा की मिलावट और घुलावट है, आमतौर पर हम भाषा में मिलावट शब्द को बड़े ही निगेटिव, बहुत नकारात्मक ढंग से देखते हैं, कितनी अलग अलग खित्ते की भाषा बड़ी ही खूबसूरती के साथ आती है। और ये

0: इसलिए पढ़ी जानी चाहिए क्योंकि गलत और सही की बहस से अलग कैसे अलग अलग जनपद की भाषा, उसकी बनावट एक मुकम्मल, एक बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमारे ऊपर असर करती है। तो ये किताब मैं चाहूंगा दाता पीर लोग पढ़ें और मुझ पर असर करती है ये किताब बहुत गहरे जाकर। चौथी किताब रेडियो कोसी, पुष्यमित्र ने लिखी है, पेशे से पत्रकार। रेडियो कोसी के बहाने एक मार्मिक कथा बिहार की तो लिखते हैं, लेकिन साथ ही साथ सोशल मीडिया और न्यू मीडिया के जो थोड़े उजास पक्ष हो सकते हैं, जो उजले उसके रूप हो सकते हैं और उससे कैसे जिंदगी बेहतर हो सकती है, एक तरफ वो कहानी बताती है और दूसरी तरफ इसके जो स्याह पक्ष है उसकी कहानी बताती है। तो नए लोगों को ये किताब बहुत पसंद आएगी और पढ़ी जानी चाहिए। कविता में ईश्वर और बाजार मैंने काव्य संग्रह जयंतिता क्रिकेटा की पढ़ी है और जो तार्किक समझ होती है जल जंगल जमीन के बीच की हमारी जो जिंदगी है उसे किस तरह से बचाया जाना चाहिए, उसके क्या तर्क हो सकते हैं और कैसे वो हमारे पैदा होने के साथ ही सवालों के साथ ये चीजें जुड़ती है, इसके लिए ईश्वर और बाजार किताब मुझे बहुत पसंद आई। एक आखिरी किताब की मैं चर्चा करना चाहूंगा, तुम चुप क्यों रहे केदार। ये हृदयेश जोशी हैं जो पेशे से पत्रकार रहे हैं, टीवी पत्रकार रहे, और हृदयेश जोशी ने 2013 में जो उत्तराखंड में भारी तबाही हुई, साइक्लोन जाने गई, उस दौरान वो कवर करते रहे और तब से लेकर कई सालों तक बार बार फॉलो अप करते रहे, उस देखते रहे उस घटना के बाद की जिंदगी को। तो उस सिरे से इस किताब को पढ़ने की जरूरत है, तुम चुप क्यों रहे केदार। और यहाँ केदार एकदम बिल्कुल मानवीकृत रूप में हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं और लगता है कि जितनी जिंदगी हमें कीमती लगती है उतनी जिंदगी पहाड़ की भी, जंगल की भी, खेतों की भी, नदियों की भी है और होनी ही चाहिए।
1: जी क्या बात है, बहुत अच्छा लगा इतनी सारी किताबों का आपने जिक्र किया। यहाँ पर दो किताबें हम भी अपनी ओर से जोड़ दें, एक तो ऋषिकेश सुलभ जी की दाता पीर का आपने जिक्र किया, तो उन्हीं की किताब जूठी गली, उन्हीं का उपन्यास है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें कैलाश बानखेड़ी की किताब उजला अंधेरा, ये किताब भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आप खुद एक युवा हैं, तो आप युवाओं और आपसे बाद की जो पीढ़ी आ रही है उनके लिए हिंदी पखवाड़े पर, हिंदी दिवस पर क्या संदेश देंगे, कैसे आप हिंदी से जोड़ना चाहेंगे उन युवाओं को जो पढ़ने से, किताबों से कहीं दूर जा रहे हैं।
0: ममता जी, मैं जिस पेशे से जुड़ा हुआ हूँ, टेलीविजन रेडियो और क्लासरूम के बीच जो मेरी दुनिया है, मैं उनको यही संदेश देना चाहूंगा कि चाहे किसी भी रूप में आपको मीडिया और अभिव्यक्ति दिखाई देती है, लेखन और भाषा के बिना कुछ भी नहीं है। आपके पास भाषा नहीं होगी तो आप दुनिया की तमाम चमकीली चीजों को ऊपरी ऊपरी तौर पर समझ पाएंगे, उसके अंदरूनी दुनिया को आप कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हिंदी की जो पूरी बनने की यात्रा रही है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही संघर्ष है इसमें। मैं चाहूंगा कि रील्स, वीडियो और नए माध्यमों की चमक के बीच इसे खोने मत दें, वापस मुड़कर पुस्तकालय की तरफ जाएं, किताबों की तरफ जाएं, लेखक पत्रकारों की लिखी दुनिया भर की चीजें हैं, आप एक बार जरूर देखें।
1: जी
0: गुजरे,
1: बिल्कुल, बहुत बढ़िया बातें आपने बोली हैं, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत जी। आप सुन रहे थे प्रोफेसर और सुधी पाठक, रेडियो प्रेमी विनीत कुमार के विचार, हिंदी साहित्य कल और आज। आप सुन रहे थे ये विशेष रूपक। आज के विविधा कार्यक्रम में जिन साहित्यकारों को हमने शामिल किया उनके नाम हैं प्रियमवद, यतीन्द्र मिश्र, मनोज रूपड़ा, कैलाश वानखेड़े, उर्मिला शिरीश और विनीत कुमार। शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का। संपादन सहयोग मनीषा सिंह। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। तो अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा। तो कुदरत को जिसको बनाना होता ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ। तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती कार्यक्रम FM बैंड 103.1 MHz पर। आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से।
0: लता
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपदाओं और व्यवधानों ने यह साबित किया है कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आज दूसरे और अंतिम दिन भागीदार देशों के मुख्य सत्र में श्री मोदी ने ये बात कही।
3: महामारियां, क्लाइमेट डिजास्टर्स और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन ने दिखाया है कि आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। चुनौतियों को समय रहते पहचानना और तुरंत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों की जरूरतों को पूरा करेगा।
3: ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों के लिए नई संभावनाएं तैयार करेगा। इसके माध्यम से AI, जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को किसानों की वास्तविक आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाएगा। टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन हमारी साझा प्रगति में बाधा बन सकता है। इसलिए हमने टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन में इंक्लूसिविटी पर बल दिया है।
2: श्री मोदी ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है।
3: भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, रिसर्चर्स, विमेन, यूथ और सामान्य नागरिक भी इसके सक्रिय भागीदार बने।
2: और जानकारी के लिए चलते हैं भारत मंडपम में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित के पास। अंकित, ब्रिक्स सम्मेलन भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है और आज अंतिम दिन सम्मेलन में क्या कुछ खास होने वाला है?
4: जी कनक, आपको बता दूं कि भारत चौथी बार ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता कर रहा है। वर्ष 2006 में चार देशों के साथ शुरू हुए इस समूह में अब 11 सदस्य देश और 10 साझेदार देश शामिल हैं। भारत का ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार पिछले 5 साल में दोगुने से ज्यादा बढ़ा है, जो ये दिखाता है कि ब्रिक्स समूह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक और व्यापारिक साझेदार के रूप में उभर रहा है। इस शिखर सम्मेलन के पहले दिन कल सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया।
2: जी,
4: इसमें ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। कनक, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर बाद कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्र

0: राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा वह नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से भी वार्ता करेंगे। ठीक है न,
1: जानकारी के लिए धन्यवाद अंकित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ईरान के वित्त मंत्री सैयद अली मदनी जादेह से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ईरान की भागीदारी और फाइनेंस ट्रैक की चर्चाओं में सकारात्मक योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वतंत्रता सेनानी जतेंद्र नाथ दास की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा है कि जतेंद्र नाथ दास ने छोटी उम्र में ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष का रास्ता चुना था और जेल की यातना भी उनके हौसले को नहीं डिगा सकी। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में भी तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर में भी आज तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली में भी अगले तीन दिन के दौरान बारिश के आसार हैं। दुबई में एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के फाइनल में भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से आज रात 8 बजे होगा। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन और अरुण चक्रवर्ती की वापसी हुई है। वैभव सूर्यवंशी भी टीम में शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी अलवर का सर इसका चैनल है। सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई से।

0: तन्हा दिल एल्बम से ये गीत अभी आप सुन रहे थे शान की आवाज में, राम संपत का म्यूजिक। प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी अलवर का सर इसका चैनल है। आइए सुनते हैं जरूरी संदेश।
2: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
3: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
4: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
5: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
4: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
5: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
4: पर रेरा तो शहरों में।
5: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
4: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
3: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
4: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
5: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
4: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
5: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
4: पर रेरा तो शहरों में।
5: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
4: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
1: अंतराल के बाद आइए सुनते हैं विविध भारती सेवा के कार्यक्रम मुंबई से।

0: उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में गीत दाग द फायर फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। समीर ने इस गीत को लिखा।
1: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
2: पिताजी के जो जो फिल्में बनी हैं, सभी लिटरेचर बेस्ड है। सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
1: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितम्बर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: सोनू निगम की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे चंदा की डोली एल्बम का नाम। नुसरत बद्र ने इसे लिखा, संगीत सोनू निगम का।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
1: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
1: बिल्कुल। वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

फाल्गुनी पाठक की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, मेरी चुनर उड़ उड़ जाए एल्बम से। ललित सेन ने इसे लिखा और उन्हीं का संगीत था। और इससे पहले जो आपने गीत सुना दीवाना एल्बम से, सोनू निगम की आवाज में, फैज अनवर ने उसे लिखा और साजिद वाजिद का संगीत था।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपस में जुड़ी आज की दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता है, इसलिए ब्रिक्स देशों के समूह ने भीतर लचीलापन और संकटों से निपटने की क्षमता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के खुले सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित सत्र में प्रधानमंत्री ने चुनौतियों की समय पर पहचान करने, उनके लिए पहले से तैयारी करने और तुरंत कदम उठाने पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि छोटे उद्यमों को ज्ञान, वित्त और नए बाजारों से जोड़ने के लिए ब्रिक्स एमएसएमई सहयोग पोर्टल स्थापित करने की पहल का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा शहरों के बीच बेहतर तौर तरीकों को साझा करने की सुविधा के लिए ब्रिक्स अर्बन मोबिलिटी हब का गठन किया गया है।
1: अर्बन मोबिलिटी हब की स्थापना की गई है। भारतीय सभ्यता में प्रकृति को माँ का दर्जा दिया गया है। सदियों से हमारी मान्यता रही है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विकल्प नहीं, पूरक है। ब्रिक्स में भी हमने मानव विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन पर बल दिया है। यही सस्टेनेबिलिटी का आधार है। यह भावी पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। इस दिशा में हमने कई पहलुओं पर प्रगति की है।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स देशों द्वारा अपनाए गए नई दिल्ली घोषणा पत्र की सराहना की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानम घेब्रेयेसस ने सोशल मीडिया पोस्ट में तपेदिक को समाप्त करने, स्वास्थ्य कार्यबल को मजबूत करने, डिजिटल स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा को एकीकृत करने और सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के ब्रिक्स देशों के प्रयासों की सराहना की। केंद्र सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की ओर से यंग लीडर्स डायलॉग 2027 का राष्ट्रीय आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य विकसित भारत 2047 के निर्माण में युवाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाना है। ये आयोजन अगले साल 10 से 12 जनवरी तक नई दिल्ली में होगा। कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को अपनी सोच, नवाचार, नेतृत्व क्षमता और रचनात्मक प्रतिभा प्रस्तुत करने तथा अपने विचारों को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का अवसर मिलेगा। इसमें 15 से 29 वर्ष की आयु के युवा माई भारत पोर्टल के माध्यम से भाग ले सकते हैं। हनुमानगढ़ में जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशाल यादव ने इस संबंध में युवाओं को जागरूक करने के लिए आज पोस्टर का विमोचन किया। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 29 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात हुई, वहीं पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बहुत हल्की बारिश दर्ज हुई। इससे पहले झालावाड़ में 8 सेंटीमीटर, निम्बाहेड़ा में 5, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में 4 तथा चित्तौड़गढ़ में 3 सेंटीमीटर बरसात

रिकॉर्ड की गई। राज्य के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में बारिश का दौर 16 सितंबर तक जारी रह सकता है। अगले 2 से 3 दिनों में कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। महिला टी20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार दुबई में रात 8 बजे से खेला जाएगा। भारत ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराया था। 7 बार का चैंपियन भारत ग्रुप ए में अपने सभी मैच जीतकर शीर्ष पर रहा। वहीं श्रीलंका ने भी सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराकर फाइनल में जगह बनाई। भारत 7 बार ये खिताब जीत चुका है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत अफगानिस्तान के साथ 3 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। दूसरा मैच मंगलवार को और तीसरा अंतिम मुकाबला गुरुवार को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भेज सकते हैं। ये सुझाव 25 सितंबर तक स्वीकार किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे खानदान फिल्म से, खयाम का संगीत था। इस गीत को लिखा था नक्श लालपुरी ने। और अब संदेशों की बारी आती है, आपने बहुत से संदेश हम तक पहुंचा दिए हैं। हमारी एक श्रोता लिखती है कि कभी कभी जिंदगी के सफर में कोई अजनबी यूं मिलता है कि छोटी सी मुलाकात भी दिल पर उम्र भर की छाप छोड़ जाती है। उनसे कहना बहुत कुछ होता है लेकिन शब्द कम पड़ जाते हैं, और ऐसा ही एहसास आज की इबारत में उनको पढ़ने को मिलता है। जी हाँ बिल्कुल, ऐसे ही कुछ एहसास के साथ सजी है आज की इबारत। एक और श्रोता लिखते हैं कि छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, ये गीत उन्हें लगता है कि इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए। देखते हैं लिस्ट में आता है ये गीत या नहीं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज महफिल में अजनबी की मुलाकात और उसके बाद की संगीत में जुगलबंदी सुनने का बढ़िया आनंद मिलेगा, और इसे आनंद कहना भी अतिशयोक्ति होगी। फिलहाल वो इस प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जिस खूबसूरत अनुभूति से लिखा गया है, प्रेम की यात्रा और स्मृति सौंदर्य का ये सुंदर रूपक है जिसमें राग भी शामिल होंगे, और प्रेम आत्मा का एक सुंदर ठहराव है जो जिंदगी के सफर में राह में मिले किसी अजनबी को आपकी जिंदगी का हम सफर बना देता है। वो चेहरा बार बार याद आने लगता है तो समझिए कि प्रेम का अंकुर फूट चुका है। इकरार होते ही मुलाकातों का सिलसिला प्रेम को परवान चढ़ाते हुए मंजिल की ओर हम सफर बनकर हमदम हो जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि कुछ मुलाकातें तारीखों में नहीं मिलती, बस दिल की किसी खामोश तह में ठहर जाती है। वो भी एक सफर था, कुछ पल साथ चले फिर रास्ते अपने अपने हो गए। जी हाँ, ऐसा भी होता है कि मुलाकात मुलाकातें नहीं बन पाती और बस एक मुलाकात बन जाती है, लेकिन वो जो एक मुलाकात होती है वो बड़ी सारी मुलाकातों पर भारी पड़ जाती है, जिंदगी भर ताउम्र याद रहती है। बिल्कुल, हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि वो हमसफर था या मेरी कोई खूबसूरत दुआ, जो मिला तो लगा जिंदगी मिल गई और बिछड़ा तो जाना कुछ लोग साथ नहीं सिर्फ एहसास बन जाते हैं। जी हाँ, बहुत खूबसूरत लिखा है आपने। और चलिए, जब मुलाकात की बात हुई और इस तरह से सुंदर संदेश आए, क्यों ना आज के इस प्रोग्राम में कुछ ऐसे संदेश लिखे जाएं जहां एक ही मुलाकात काफी है जिंदगी भर याद रखने के लिए। वो मुलाकात जरूरी नहीं कि प्रेमी के संग हो या फिर कुछ रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन वो मुलाकात किसी के साथ भी हो सकती है। एक ऐसी मुलाकात जिसने आपकी जिंदगी बदल दी और फिर वो मुलाकात या उनसे मिलना दोबारा नहीं हुआ, इस तरह का कुछ अनुभव आप लिख भेजें तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे पढ़ने में, और हमारे साथी श्रोताओं को भी सुनने का मौका मिलेगा। फिलहाल ये अगला गीत आपको सुनवा

0: बर्मन की तर्ज। वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए। तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल। वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे प्रोग्राम सुरीला सफर। हमारे श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी के लंबे और अनजाने सफर में कई राहगीर मिलते हैं, पर कुछ अजनबी दिल पर अपनी अमिट छाप छोड़ देते हैं। और कभी किसी शांत मोड़ या सफर में जल्दबाजी में भी हुआ अगर छोटा सा संवाद होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं आपकी आत्मा को रूह को सुकून पहुंचाता है। फिर वो इंसान दोबारा मिले या ना मिले, लेकिन वो जो प्यार की गर्माहट है वो कहीं ना कहीं रह जाती है। जी हाँ बिल्कुल। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि एक छोटी सी मुलाकात उन्हें याद आती है, उसका चेहरा आज तक याद आता है, बार बार याद आता है। और इस इबारत से मुलाकात शब्द पर ये जो पहला गीत हमने सुनवाया वो ही उन्होंने गेस किया था। बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि दो अजनबियों का आपस में टकराना, ये छोटी सी मुलाकात यादों में बस जाना, धीरे धीरे मुलाकात बढ़ती गई और लगा यही पल सबसे अनमोल है। इस रंग बिरंगी जिंदगी में मिलन के कुछ दिन जो आते हैं, लेकिन फिर बिछड़ना भी होता है, लेकिन वो सुनहरे पल हमेशा यादों में बस जाते हैं। बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि इबारत जो है प्यार के उस सबसे पावन और परिपक्व रूप को दर्शाती है जहां पा लेने से ज्यादा महत्व है महसूस कर लेने का। और इस कहानी में मिलना बिछड़ना और फिर तड़प तो है ही, लेकिन आखिर में कोई शिकायत नहीं है। ये इस बात का प्रतीक है कि सच्चा प्यार जवाब या हक नहीं मांगता है, वो सिर्फ मौजूदगी का एहसास मांगता है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने एक्सप्लेन किया इसे, बहुत ही सुंदर मैसेज आपने हम तक पहुंचाया है। एक और श्रोता लिखते हैं कि वक्त अपनी रफ्तार से चला जा रहा है, वो उसके प्यार के रंग में कुछ यूं रंग गया कि हर मौसम में उसे उसी की छवि दिखाई देने लगी। ये इबारत से उन्होंने पंक्ति उठाई है और कहा है कि इस इबारत में ये जो रंग शब्द है इससे हमने ये रंगीला रे गीत जो है अभी आपको सुनवाया। जी हाँ बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही समझा और सही लिखा है। और आपके जो अनुभव उस पहली मुलाकात या यूं कहिए कि एक मुलाकात के, वो किसी से भी हो सकते हैं जिसने आपकी जिंदगी को बदल दिया हो, आपको बदल दिया हो, आपके सोचने के नजरिए को बदल दिया हो। इस तरह के संदेश आप मुझ तक पहुंचाएं। हम चलते हैं अपने दूसरे गीत की तरफ, दूसरे यानी कि अगले गीत की तरफ इस प्रोग्राम के।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में गीत शक्ति फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, आर डी बर्मन की तर्ज। और मुलाकात जिसने बदल दिया हो या जो याद रह जाए, उसमें एक संदेश आया है हमारे श्रोता का। लिखते हैं कि कुछ साल पहले, बहुत साल पहले वो सिंगापुर गए थे और वहां 3 साल की मासूम जापानी बच्ची साशा से मुलाकात हो गई थी, जिसने उस सफर में अपनी बाल लीलाओं से दिल लुभा दिया था। और अब तो साशा काफी बड़ी हो गई होगी, 20-25 साल की युवती हो गई होगी, लेकिन हमारे पास सिर्फ उसकी सुंदर तस्वीर और यादें ही रह गई है। जी हाँ, बहुत ही सुंदर संदेश। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जब वे स्कूल में थे तो एक लड़की जिसका न्यू एडमिशन हुआ था, वो 1 सप्ताह तक स्कूल आई, लेकिन फिर उसको स्कूल में नहीं देखा।

शायद वो लोग दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए हों और उस समय तो नंबर्स भी एक्सचेंज नहीं कर सकते थे। एक सप्ताह में हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी, आज तक उन्हें वो बात याद है। हमारे एक श्रोता लिखती हैं कि कुछ लोग जरा देर से खुलते हैं तो पहली मुलाकात से मायूस नहीं होना चाहिए। जी हाँ, लेकिन वो अगली मुलाकात आनी भी तो चाहिए। अगले हमारे श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि पहले सफर में किसी अजनबी से मुलाकात का एहसास दिल में एक अनूठी हलचल, अनजाना सा अपनापन और एक खूबसूरत याद छोड़ जाता है। बिल्कुल। एक और श्रोता का लिखना है कि परिपक्व प्रेम मुलाकातों का मोहताज नहीं होता, अदृश्य रहकर भी समर्पित प्रेम किया जा सकता है। जी हाँ, बहुत ही सुंदर भाव। हमारे एक और श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि सभी को यथा योग्य सप्रेम अभिवादन करते हुए उन्होंने लिखा है कि आज जागो सुबह हो गई से जगे कुछ अपने ही पग में पगे, संगीतमय सुरों की सरिता में घुलकर भूले बिसरे गीतों की चांदी में नहाकर और हम हराई प्यार की आंधी में त्रिवेणी तट से सुबह कालीन चित्र लोग के साथ फिर आज के फनकार से मिलते हुए और गीतों के पिटारे को खोलते हुए साहित्य परिचर्चा यादों की महफिल से उभरते हुए अपने सुरीली धड़कन के सुरीला सफर कार्यक्रम तक वो पहुंच चुकी हैं, वो शामिल है हमारे साथ। जी हाँ, हमारे सभी सुबह से जो प्रोग्राम आप सुन रहे हैं उनका एक सुंदर, कहते हैं एक सुंदर माला बना दी है आपने इन शब्दों को जोड़कर, उन शीर्षक को जोड़कर। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यार के लिए। फिलहाल हम ये गीत आप तक पहुंचाते हैं।

किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे बेमिसाल फिल्म से आनंद बख्शी ने इसे लिखा आर डी बर्मन की तर्ज। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मुलाकात की जब बात चली है तो एक बहुत ही खास मुलाकात उन्हें याद आती है और वो अपनी शादी का जिक्र कर रहे हैं कि उनकी जो शादी हुई है वो भी विविध भारती के जरिए ही हुई है। ये बड़ी दिलचस्प बात है, आपको सुनवाते हैं कि ये भी विविध भारती के फैन रहे हैं और इनकी जो अर्धांगिनी है वो भी विविध भारती की दीवानी थी और बस ऐसे ही धीरे धीरे विविध भारती से जुड़ाव होता रहा और नजदीकियां हुई और फिर शादी हो गई। आज हम साथ साथ हैं और साथ साथ में ही ये हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको और बहुत अच्छा लगा ये मैसेज पढ़कर हमें। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि कुछ मुलाकातें बस याद बनकर रह जाती है। आज लगता है उस धुंधली यादों से कोई चादर हटा दे और हम खो जाएं उन पुरानी मुलाकातों में। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि अहमदाबाद जाते हुए परिवार से ट्रेन में हुई जो सामने की बर्थ पर जा रहे थे वहां उनसे मुलाकात हुई और वे सज्जन तो भद्र पुरुष थे ही, उनकी श्रीमती जी बड़ी हंसमुख और मिलनसार महिला थी और वो अकेले जा रहे थे, मैगजीन में डूबने की कोशिश कर रहे थे लेकिन दोनों से इतने घुल मिल गए कि बात हुई बातों में घंटों का सफर कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। ऐसा होता है अक्सर। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि मुलाकात तो सभी करते हैं लेकिन मुलाकातों में जीते भी हैं, लेकिन ये मुलाकातें कैसी हैं और उसके मूल्यांकन क्या है ये कितने सोच पाते हैं, किंतु ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ मुलाकातें याद बनकर हृदय में बस जाए तो उसका क्या ही कहना। सदियों से विभिन्न मुलाकातों के बीच ऐसी मुलाकात की तो प्रतीक्षा रहती है हमेशा। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि ट्रेन में सफर करते हुए एक लड़की और उनकी सहेलियों से मुलाकात हुई और अंताक्षरी वगैरह खेली और अभी उन्हें वो याद आती है, वो सुनहरी मुलाकात आज तक भुलाए नहीं भूलती है। हमारे एक और श्रोता है, उनका कहना कुछ अलग तरीके से है। वो कहते हैं कि सफर में न जाने कितने लोग साथ आते हैं कितने साथ छोड़ देते हैं, कभी हिसाब नहीं रखा क्योंकि चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला, वो इसमें बिलीव करते हैं। कोई बात नहीं, सफर तो हमें करना ही है, कभी कोई साथ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिले तो हमें अकेले ही चलना है, लेकिन ये सफर जो है वो जरूर तय करना है। फिलहाल सुरीला सफर में आप मेरे साथ हैं और हम बढ़ते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

0: अभिमान फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे, किशोर कुमार की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी ने से लिखा, एस डी बर्मन की तर्ज थी।
1: वो लिखती है रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती है जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों

0: को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम याद, प्रोग्राम सुरीला सफर। यादों की बात चली है तो यादों की महफिल बोलने वाली थी, लेकिन सुरीला सफर इस वक्त आप सुन रहे हैं मेरे यानी अनुराधा के संग। आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच चुके हैं और एक श्रोता लिखते हैं कि ट्यूशन पढ़ते समय शिक्षक द्वारा मेरी गलतियों पर मुझे डांटते देखकर उसकी नज़रें उठाना और फिर मुस्कुराना और फिर मुझसे नज़रें मिलते ही नज़रें झुकाकर बस मंद मंद मुस्काना, जाने कैसी बिजली सी कौंध गई थी दिल में और दिल रोशन हो गया था। संवाद का लेन देन तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये सुनहरी यादें बनकर अब तक दिल में बसी हुई है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मुलाकातों का मौसम आ गया है तो गाने तो बनते हैं, बिल्कुल गाने हम आपको सुनवा रहे हैं, लेकिन आप कौन से गीत का इंतजार कर रहे हैं ये जरूर लिख भेजिए। देखते हैं अब फेहरिस्त जो बाकी की बची है उसमें वो गीत आता है या नहीं। एक और श्रोता लिखते हैं कि वो अजनबी था मगर कुछ जाना पहचाना सा लगा, जैसे कोई भूला हुआ ख्वाब अचानक सामने आ गया। मुलाकात तो बस चंद लम्हों की थी पर उसकी खामोशी देर तक मेरे साथ चलती रही। जी हाँ बिल्कुल, कुछ मुलाकातें एकदम खामोश रहती हैं, संवाद भी बहुत कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं, लेकिन वो एक चेहरा, वो एहसास कभी नहीं भूल पाता। चलिए बढ़ते हैं अगले गीत

किशोर कुमार की आवाज में गीत धर्मात्मा फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। इंदिवर ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि एक ऐसी मुलाकात का जिक्र करना चाहूंगा जिसने मेरी सोच और शख्सियत को ही बदल दिया है। कुछ साल पहले अपने दोस्तों के साथ मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर एलिफेंटा केव्स जाने के लिए बोट की कतार में खड़े थे और वहां उन्होंने देखा कि एक बहुत ही मशहूर उद्योगपति अपने दोस्तों के साथ खड़े हैं और ठीक उनके पीछे खड़े हैं और इन्होंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि आप लाइन में खड़े होने के बजाय पहले बोट में बैठ जाइए, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए मना किया और ये कहा कि मैं यहाँ एक आम नागरिक के तौर पर हूँ और मैं लाइन में ही खड़े रहूँगा। ये कहीं का जो बातें हैं कहीं ना कहीं उन्हें झकझोर के रख दिया और तब से उनकी सादगी के और भी ज़्यादा फैन हो गए। जी हाँ, ये तो है कि सादगी तो हमें ज़रूर सीखनी चाहिए जहाँ से भी हमें सीखने को मिले और ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा हमें ऊंचाइयों तक लेकर जाती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती इस वक्त न जाने कितने सारे करोड़ों की तादाद में लोग सुन रहे होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए पेश हो रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा वो रिलेट कर पा रहे हैं गीतों से और बातों से। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं, एक श्रोता लिखती हैं कि वो और उनके पति भी उन्हें रेडियो से ही मिले। सूरत FM पर उन्होंने ये गीत पसंद किया था और सामने जो बैंक में बैठे उनके पति हैं उन्होंने सुना था और बात भी पैसों पैसों की हुई थी क्योंकि वो बैंक में काम करते हैं और इस तरह से कहीं ना कहीं उनका मिलना हुआ, बातचीत हुई और आगे उनकी शादी हुई। बहुत अच्छा लगा कि रेडियो के मार्फत आप मिले। हम चलते हैं आगे इस प्रोग्राम में।

किशोर कुमार की आवाज में गीत गोलमाल फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। गुलजार ने इसे लिखा आर डी बर्मन की तर्ज। हमारे श्रोता लिखते हैं कि ये जो सुरीला सफर है इसमें गीत तो सुनने को मिलते ही अच्छे अच्छे, लेकिन साथ ही साथ हम संदेश भेजें या ना भेजें, लेकिन जो बाकी श्रोता लोग हैं उनके संदेश पढ़कर कहीं ना कहीं उनसे जुड़ाव महसूस होता है और ऐसा लगता है कि इस प्लेटफॉर्म पर आकर हम अपने संदेश अगर यहाँ पर लिखें तो कहीं ना कहीं उनसे एक रिश्ता बन जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे को श्रोता लिखते हैं कि मोहब्बत का अर्थ हमेशा साथ पाना नहीं, कभी कभी मिले हुए खूबसूरत पलों को मुस्कुराकर संजो लेना भी है, और ऐसा ही कुछ इबारत में एक छोटी सी मुलाकात के द्वारा बताया गया है। बिछड़ने की कसक तो है, लेकिन जाते जाते उन खूबसूरत याद जो है वो दिल में हमेशा जीवित रहनी चाहिए, ये भी बताया हुआ है। हमारी एक और श्रोता लिखती हैं कि जिंदगी के सफर में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो मंजिल नहीं बनते मगर सफर को यादगार बना जाते हैं। वक्त उन्हें दूर कर देता है लेकिन उनकी यादें दिल के किसी कोने में हमेशा महकती रहती है, और बस जब मन करता है हम उन्हें याद कर लेते हैं। ऐसे पलों को हमेशा याद करते रहना चाहिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि सफर के दौरान किसी अजनबी से सिर्फ एक मुलाकात होने के बाद कभी दोबारा मिलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो जो मुलाकात होती है वो बहुत से खूबसूरत पलों से जिंदगी को भर देती है। बिल्कुल सही कहा आपने।

किशोर कुमार की आवाज में पड़ोसन फिल्म का ये छोटा सा गीत का छोटा सा हिस्सा हमने आपको सुनवाया। फिलहाल वक्त की कमी की वजह से हमें अलविदा कहना पड़ेगा। आपने आज का ये सफर, सुरीला सफर तय किया अनुराधा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को हथियार बनाने के खिलाफ चेतावनी दी। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त महीने में माल ढुलाई में 5.4% की वृद्धि दर्ज की। गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। इंडोनेशिया में 240 से अधिक यात्रियों वाली नौका के पलटने से लगभग 140 लोग और चालक दल लापता। और दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में आज रात भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आज दूसरे और अंतिम दिन भागीदार देशों के मुख्य सत्र में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभों को विकासशील देशों की जरूरतों के अनुसार ढाला और उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
1: कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं, उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियलिटीज बट टुगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी। हमारी विविधता हमारी पहचान रहे, हमारा सहयोग हमारी प्रेरणा बने और हमारी प्रगति पूरी मानवता के काम आए।
0: प्रधानमंत्री ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों यानी क्रिटिकल मिनरल्स का हथियार की तरह प्रयोग प्रगति के मार्ग में बड़ी बाधा बन सकती है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों ने नई तकनीकों को अपनाने में समावेशिता पर विशेष जोर दिया है। श्री मोदी ने कहा कि आपदाओं और बाधाओं ने यह साबित किया है कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता।
1: आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। चुनौतियों को समय रहते पहचानना, उनके लिए तैयार रहना और तुरंत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है। इसी सोच के साथ इन्फेक्शियस डिजीज के प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सहमति बनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ली वार्निंग डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइन तैयार की गई है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे उद्यमों को ज्ञान, वित्त और नए बाजारों से जोड़ने के लिए ब्रिक्स एमएसएमई सहयोग पोर्टल स्थापित करने की पहल का प्रस्ताव रखा गया है। उन्होंने बताया कि शहरों के बीच बेहतर तौर तरीकों को साझा करने की सुविधा के लिए ब्रिक्स अर्बन मोबिलिटी हब का गठन किया गया है।
1: अर्बन मोबिलिटी हब की स्थापना की गई है। भारतीय सभ्यता में प्रकृति को माँ का दर्जा दिया गया है। सदियों से हमारी मान्यता रही है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विकल्प नहीं पूरक है। ब्रिक्स में भी हमने मानव विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन पर बल दिया है। यही सस्टेनेबिलिटी का आधार है। ये भावी पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। इस दिशा में हमने कई पहलुओं पर प्रगति की है।
0: श्री मोदी ने बताया कि स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण के लिए ब्रिक्स से डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है।
1: स्मार्ट ग्रिड्स और एनर्जी स्टोरेज के लिए हमने ब्रिक्स डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया है। यह हमारे क्लीन एनर्जी सिस्टम्स को अधिक रिलायबल, एफिशिएंट और

0: एक्सेसिबल बनाने में मदद करेगा। एग्रो इकोलॉजी और रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर के सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस पारंपरिक ज्ञान को मॉडर्न साइंस से जोड़ेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों की जरूरतों को पूरा करेगा।
0: ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों के लिए नई संभावनाएं तैयार करेगा। इसके माध्यम से AI, जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को किसानों की वास्तविक आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाएगा। टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन हमारी साझा प्रगति में बाधा बन सकता है, इसलिए हमने टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन में इंक्लूसिविटी पर बल दिया है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है।
0: भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, रिसर्चर्स, विमेन, यूथ और सामान्य नागरिक भी इसके सक्रिय भागीदार बने।
1: अब चलते हैं भारत मंडपम, जहां हमारे संवाददाता दीपेंद्र मौजूद हैं। दीपेंद्र, सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की मुख्य बातें क्या हैं?
2: देखिए जिस तरह आपको बता दूं कि वर्ष 2006 में चार देशों के साथ शुरू हुए ब्रिक्स समूह में अभी 11 सदस्य देश और 10 साझेदार देश शामिल हैं। ब्रिक्स देश दुनिया की करीब 50% आबादी और वैश्विक व्यापार के लगभग 25% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के लिहाज से बात करें तो ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार जो है पिछले 5 सालों में 2 गुने से ज्यादा बढ़ा है, जो दर्शाती है कि ब्रिक्स समूह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक और व्यापारिक साझेदार के रूप में उभर रहा है। ब्रिक्स की स्थापना की बात करें तो 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं और भारत चौथी बार जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है और इस कड़ी में अलग अलग विषयों पर लगभग 350 से अधिक बैठकें हो चुकी हैं। शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन कल सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया, जो भारत के लिहाज से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। इसमें ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। आपको बता दूं कि भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस शिखर सम्मेलन में भारत ने ग्लोबल साउथ की एक प्रमुख आवाज और समर्थक के रूप में अपनी वैश्विक भूमिका को और मजबूत किया है। जी कनक,
1: संबोधन की मुख्य बातें क्या थी प्रधानमंत्री की?
2: देखिए संबोधन में प्रधानमंत्री ने कई सारे बातें की, जिसमें सभी देशों को साथ लेकर चलने की बात थी। उसमें सबसे जो प्रमुख बात थी वो थी साउथ की आवाज, जो वैश्विक भूमिका जो है ग्लोबल साउथ, उस पर उनकी रही। जी
1: जानकारी के लिए धन्यवाद दीपेंद्र। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। श्री मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों सहित नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। और जानकारी के साथ है हमारे संवाददाता अक्षित वैद्यान। अक्षित, इन बैठकों में किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है?
3: जी कनक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से लेकर आज भी कई अहम द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 2 दिनों से लगातार दुनिया के अलग अलग नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं और आज भी बैठकों का ये सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी आज कजाकिस्तान, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों से के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। वहीं नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपतियों के साथ भी प्रधानमंत्री की अहम बैठकें निर्धारित हैं। यानी आज का दिन भी कूटनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इन बैठकों पर सबकी नजर टिक है, जिनके माध्यम से भारत को द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने और क्षेत्रीय और वैश्विक विकास के विषयों पर अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। कुल मिलाकर ब्रिक्स के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की ये द्विपक्षीय मुलाकातें भारत की कूटनीति सक्रियता और वैश्विक साझेदारियों को नई दिशा देने के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। जी कनक,
1: धन्यवाद अक्षित। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि ब्रिक्स की सफल बैठक और नई दिल्ली घोषणा पत्र का अपनाया जाना भारत और वैश्विक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपने सभ्यतागत मूल्यों में दृढ़ विश्वास रखते हुए एक बार फिर अपनी कूटनीति की शक्ति का प्रदर्शन किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ब्रिक्स में ऐसे कई ठोस कदम उठाए गए जिससे भारत विकसित देश बनने की राह पर तेजी से अग्रसर होगा।
4: भारतीय हितों की सर्वाधिक रक्षा हो, भारतीय हितों का संरक्षण हो, यही मूल उद्देश्य होता है किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का, कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये भारत के लिए गर्व

0: का विषय है कि भारत में 11 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए और बहुत से विषयों पर चर्चा हुई। भारत विकसित भारत बने, इस दिशा में बहुत से ठोस कदम भी ब्रिक्स में भी उठाए गए।
1: भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ब्रिक्स में भारत की विदेश नीति सफल हुई है।
2: यह बहुत ही ऐतिहासिक सफलता है ब्रिक्स सम्मेलन की। इतनी बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं, उन्होंने एक वैकल्पिक बहुत प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय मंच रखा है। और राष्ट्रपति पुतिन ने एक बहुत बड़ी बात कही कि आज ब्रिक्स का जीडीपी पूरे यूरोप अमेरिका के जीडीपी से ज्यादा है। और जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ पहलगाम में जो हुआ, एक जबरदस्त कंडेमनेशन हुआ है, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो भारत की विदेश नीति बहुत ही सफल हुई।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त माह के दौरान माल ढुलाई में सालाना आधार पर 5.4% की वृद्धि दर्ज की है। इस अवधि में रेलवे ने 137.9 मिलियन टन माल की ढुलाई की, जबकि अगस्त 2025 में यह आंकड़ा 130.9 मिलियन टन था। अगस्त 2025 की तुलना में इस बार माल ढुलाई से मिलने वाले राजस्व में भी 6.27% की वृद्धि हुई है। मिजोरम में बैराबी सैरांग रेलवे लाइन को शुरू हुए आज एक वर्ष हो गया है। इस रेलवे लाइन का उद्घाटन पिछले वर्ष आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुंबई में श्री गणेश ज्ञानरात्रि शीर्षक वाली पांडुलिपियों की एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि भारत एक समृद्ध और तेजस्वी ज्ञान परंपरा का स्वामी है।
3: तो जो राष्ट्र अपनी स्मृति, इतिहास, संस्कार, भाषा, अभिलेख, परंपराओं की रक्षा नहीं कर सकता, वो कितना भी शक्तिशाली हो, उसको समाप्त होने में देर नहीं लगती है। और जो राष्ट्र अपनी स्मृति, इतिहास, परंपराएं, संस्कार, अभिलेख, भाषाएं, व्याकरण की रक्षा करता है, वो कितने भी साल गुलाम रहे, उसको कोई गुलाम नहीं बना सकता है। भारत इसका उदाहरण।
1: गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई है। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात के नवसारी, वलसाड और केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दादरा और नगर हवेली में अत्यंत भारी बारिश की आशंका जताई है। अमरेली, भावनगर, भरूच, सूरत, तापी और डांग जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान किया गया है। अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और गिर सोमनाथ सहित 13 अन्य जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। आज सुबह 6 बजे तक राज्य के 193 तहसील में बारिश दर्ज की गई। हर्षल पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। आज मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ, तेलंगाना, विदर्भ और मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस दौरान महत्वपूर्ण नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन समारोह में प्रतिभागी देशों की सहभागिता के लिए उनका आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए चीन को शुभकामनाएं भी दी। भारत ने नेपाल के बाढ़ प्रभावित बेतरावती क्षेत्र में यातायात और संपर्क व्यवस्था को बहाल करने के लिए 70 मीटर लंबे बेली ब्रिज के पुर्जों की पहली खेप भेजी है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने बताया कि पुल के पुर्जों की ये पहली खेप कल हेटौड़ा में नेपाल के सड़क प्रभाग को सौंप दी गई। इंडोनेशिया में आज जावा सागर में खराब मौसम के कारण 240 से अधिक यात्रियों वाली एक नौका के पलटने से लगभग 140 लोग और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल ने बताया कि कम से कम 102 लोगों को बचा लिया गया है और एक यात्री का शव बरामद किया गया है। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से आज रात 8 बजे होगा। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को हथियार बनाने के खिलाफ चेतावनी दी। 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता

0: एजेंसी से द्विपक्षीय वार्ता की। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त महीने में माल ढुलाई में 5.4% की वृद्धि दर्ज की। गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। और दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में आज रात भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: में ये गीत तेरे घर के सामने फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी ने से लिखा, एसडी बर्मन की तर्ज।
1: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
2: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
1: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितम्बर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

0: उल्फत में ताज बने, ये भी तुम्हें याद होगा, मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने।
1: देखिए

0: मोहम्मद रफी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे तीन देवियां फिल्म का नाम, मजनू सुल्तानपुरी ने से लिखा, एस डी बर्मन की तर्ज थी।
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर, सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

0: मधुमति फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजों में। शैलेंद्र ने इसे लिखा, सलिल चौधरी का संगीत।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
1: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मुकेश की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे हिमालय की गोद में, फिल्म का नाम। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे यहीं संपन्न होता है।

0: यह है विविध भारती। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
0: श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है मन चाहे गीत। आपके फरमाइशी गीत जो आपने लिख भेजे हैं पत्रों के जरिए हम तक पहुंच चुके हैं और आज इस प्रोग्राम में मैं अनुराधा उपाध्याय सुनवाने वाली हूं आपके पसंदीदा गीत। और लीजिए शुरुआत करते हैं इस पहले गीत के साथ और उसके बाद हम नाम लेंगे उन श्रोताओं का जिन्होंने उसकी फरमाइश लिख भेजी है।

अमित कुमार की आवाज में गीत तेरी कसम फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और आरडी बर्मन का संगीत था। इस गीत को सुनना चाहा था समलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, इशिका यादव ने। नेपाली पारा नाजिरगंज, हावड़ा वेस्ट बंगाल से दीपक स्वीटी, उषा ज्योति, किरण दिरशा, रितेश लिंबू और उनका परिवार। तेलंगाना से मोहम्मद बुरहाद्दीन और यूसुफुद्दीन ने। अब्दुल बाबा अंजाना ने भी इसे सुनना चाहा था। वाड़ी वडोदरा गुजरात से गिरीश बाम, वैशाली बाम, अजिंक्य और अक्षय ने इसे सुनना चाहा था। और इसी गीत को सुनना चाहा था बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा, दानिश अंसारी, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी, जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती ने इसी गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी।

किशोर कुमार को आप सुन रहे थे। इस गीत में अनुरोध फिल्म का नाम आनंद बख्शी ने से लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज, और इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी कोल सिटी बरका गाना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, निप्पी साहनी, मोहम्मद अफजाल इब्राहिमी, पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्विनी और गोविंद चुग ने, परसा टोला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसीहा, सिलोचनी मसीला और तुषारिणी, साथ ही साथ खुमेंद्र मसीहा ने इसे सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी। फ्रेंड्स कॉलोनी बैंगलोर से आरिफ हुसैन और मोहम्मद हुसैन ने, साथ ही पटवा हिम्मतलाल हरकचंद ने, वर्धमान नगर जैन सोसाइटी भचाऊ

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे इज्जत फिल्म से। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण ने। उल्हास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति और चेतन शामतकर ने। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डेनी पवार, मनीष पवार।

गांव चलाना काठियावाड़ से सुलेमान भाई दल, इकबाल, खलील और महबूब दल ने पुराना तालाब डुमराव से वली अल्लाह अंसारी, आसमा नाज अंसारी, वसीम अकरम, अजीम वकार और बिटिया सोनम ने, इंदिरा विहार दिल्ली से डब्लू अंसारी और बेबी अंसारी ने इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में गीत आप सुन रहे थे साजन बिना सुहागन फिल्म से, इंदिवर ने से लिखा, उषा खन्ना का संगीत। और इस गीत को सुनना चाहा था लावरिया भेरू इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदिनी, मुस्कान, नीलम और उनका समस्त परिवार, कपाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षिता और अभिषेक, वरोड़ा चंद्रपुर से लवकुश खाडिलकर, उमा देवी खाडिलकर, रोहित और प्रणीत ने, डबवाली हरियाणा से जेके बोकोलिया, सुनीता बोकोलिया, संजय, अनिल, मीनू ने, और अकोला महाराष्ट्र से इस गीत को सुनना चाहा था गजानन कुम्भार, पद्मावती कुम्भार, विशाल, ज्योति, मधुर और उनके परिवार ने।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही।

0: बिल्कुल वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मन चाहे गीत।

चलते चलते ये गीत पाकीज़ा फिल्म से हमने आपको सुनवाया और इस गीत को सुनना चाहा था गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़ और विशाल निशा ने, पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार झाझूरिया, गीता रानी, गगनदीप और आरजू ने, रामना हल्ली बेंगलुरु से मोहम्मद आरिफ, अरफा फातिमा, एमएच शरीफ और आरिफ हुसैन ने, तालुका उमरखेंड ढांकी से राम गाड़ेकर, सुनीता गाड़ेकर और अभिजीत, साथ ही कोमल अभिषेक, रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से

जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक और शोभा नायक, साथ ही उनका समस्त डागला परिवार इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम मनचाहे गीत यहीं संपन्न होता है।

0: ये है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज आपको सुनवाते हैं नाटक साबुन की टिकिया। साकी के लिखे नाटक का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण है। रूपांतरकार शैलेंद्र, निर्देशक विजय दीपक छिब्बर। तो आइए सुनते हैं नाटक साबुन की टिकिया।

0: छोटी, मेरी तो समझ में नहीं आता हम इस पार्क में क्यों चले आए।
1: क्यों, तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा फिलिप?
0: अच्छा लगने को यहाँ क्या है, क्या मैं जान सकता हूँ?
1: फिलिप, यहाँ कुछ नहीं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ।
0: अच्छा, मिस्टर नॉर्मन गॉट्सबाय, आप जरा उस बहुत कुछ पर रोशनी डालेंगे जिसे आपकी सूक्ष्म दृष्टि ने देखा है और ये नाचीज अपनी खुली आंखों से भी नहीं देख पाया।
1: देखो फिलिप, इस शहर में सभी लोग सुखी और सफल नहीं। अब बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो जीवन के संघर्ष में अभी तक असफल रहे हों और निराशा का मुंह देख रहे हैं, लेकिन वो अपनी निराशा और असफलता को दूसरों के सामने जाहिर नहीं करना चाहते। ऐसे लोग शाम के धुंधलके में यहाँ आकर बैठ जाते हैं ताकि कोई भी उन्हें पहचान ना सके।
0: लेकिन गोटी, इसमें पार्क की खूबी कहाँ से आ गई?
1: देखो देखो देखो, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। जिंदगी में थके हारे ये लोग अपने दुखी मन को थोड़ी सी शांति, थोड़ा सा आनंद देने के लिए यहाँ आ जाते। इस शांत वातावरण में, चंद्रमा की चांदनी में कुछ देर बैठकर उन्हें बहुत सुकून मिलता है। वो अपना दर्द, अपनी परेशानी सब भूल जाते हैं और जब यहाँ से जाते हैं तो चेहरे पर उदासी की जगह ताजगी और निराशा की जगह आशा झलकने लगती है। आप बताओ फिलिप, क्या ये कम बड़ी बात?
0: वाकई बहुत बड़ी बात है। और गौश भाई साहब, अब मेरी समझ में आया कि आप आज यहाँ क्यों तशरीफ लाए हैं।
1: मैं?
0: हाँ, तुम। आज के दिन तुम्हारी मानसिक स्थिति भी किसी निराश और हारे हुए आदमी जैसी ही है।
1: कैसे?
0: तुम्हारी प्रेमिका ने अचानक तुमसे मुंह फेर लिया और उधर बिजनेस में भी थोड़ा घाटा हो गया। ऐसी निराशा में, जैसा कि तुम्हारा कहना है, यहाँ आकर ही तुम्हें कुछ सुकून मिल सकता था, है ना?
1: नहीं नहीं नहीं दोस्त, ये बात नहीं है। रोजली ने मुझसे मुंह नहीं मोड़ा, बस थोड़ा सा नाराज हुई है, जो कि उसकी आदत। दो दिन बाद गुस्सा थूक कर खुद ही मुझसे मिलने चले आएगी।
0: अच्छा, ऐसा?
1: हाँ, हमारी दोस्ती इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं है। अब रही बात बिजनेस की, तो तुम जानते ही हो कि बिजनेस में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते। आज घाटा हुआ तो कल मुनाफा हो सकता। सच मानो फिलिप, यहाँ आने की वजह मेरी निराशा कतई नहीं है। हाँ,
0: तो फिर कौन सी वजह तुम्हें आज यहाँ खींच लाई और तुम मुझे खींच लाए?
1: फिलिप, शायद मैंने तुमसे कभी जिक्र नहीं किया, मैं अक्सर इस पार्क में आता हूँ।
0: अच्छा?
1: यहाँ आते जाते लोगों के चेहरे पढ़ना मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। अब तुम ही देखो, वो उस बेंच पर अभी अभी जो साहब आकर बैठे हैं ना, उनका चेहरा देखकर ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने मकान का किराया नहीं दिया और मकान मालकिन के डर से यहाँ चिपे बैठे हैं।
0: अच्छा, वो देखो, वो औरत जो उधर घास पर बैठी है, उसका चेहरा क्या बता रहा है?
1: साहब बता रहा है कि उसकी मैडम ने उससे महीने भर काम कराया, लेकिन तनख्वाह देते समय इधर उधर के नुकसान थोप कर सिर्फ 15 दिन के पैसे पकड़ा दिए। लेकिन तुम देखना, थोड़ी देर बाद ही इन

0: के चेहरों के भाव बदल जाएंगे। किरायेदार कल का पक्का वादा करके आत्मविश्वास के साथ अपने कमरे में जाएगा और वो औरत अपना दब्बूपन छोड़कर मालकिन से पूरी तनख्वाह वसूल करने का निश्चय लेकर घर जाएगी। हाँ देखना।
1: तुम्हारी संवेदनशीलता की दाद देनी पड़ेगी यार। तुम्हें तो कोई लेखक या चित्रकार होना चाहिए था।
2: पता नहीं यार तुम लोहे के धंधे में कैसे पड़ गए।
0: नहीं दोस्त नहीं, बिजनेस से तो मुझे शुरू से ही लगाव रहा है। ये सब तो खाली वक्त के शगल है।
2: अरे गोटी हाँ। भाई तुम्हारा शगल पूरा हो गया हो तो अब चलें यहाँ से।
0: हाँ चलो।
2: देखो भाई मैंने तुम्हें इतना वक्त दिया है, अब चलकर मुझे कहीं कुछ बढ़िया सा खिलाओ ना।
0: नहीं नहीं नहीं आज नहीं, कल या किसी और दिन।
2: क्यों भाई आज क्यों नहीं?
0: भाई मैं व्यापारी आदमी हूँ, आज बिजनेस में पहले ही नुकसान उठा चुका हूँ, अब और नुकसान नहीं करूंगा।
2: मान गया यार तुम पक्के बिजनेसमैन हो। चलो आज की दावा

0: बढ़िया सा खिलाओ ना।
1: नहीं, आज नहीं, कल या किसी और दिन।
0: क्यों भाई, आज क्यों नहीं?
1: भाई मैं व्यापारी आदमी हूँ, आज बिजनेस में पहले ही नुकसान उठा चुका हूँ, अब और नुकसान नहीं करूंगा।
0: मान गया यार, तुम पक्के बिजनेसमैन हो। चलो आज की दावत मेरी तरफ से रहेगी, चले।
1: हाँ चलो।
0: अरे हाँ यार, याद आया यार, मुझे तो 7 बजे डॉक्टर हैगर्ड के पास जाना है, वहाँ थोड़ी देर लग जाएगी, थोड़ा इंतजार कर लोगे क्या?
1: नहीं फिलिप, नहीं, डॉक्टर के क्लिनिक में दूसरे मरीजों की शक्ल घूरते रहने से अच्छा है कि मैं यहीं बैठकर तुम्हारी राह देखूं।
0: ठीक है, मैं जल्दी ही वापिस आता हूँ।
1: हाँ।
0: लेकिन ध्यान रहे, इस बीच अपना और नुकसान मत कर लेना।
1: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।

0: बेटा क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ?
1: जी जरूर जरूर बुजुर्गवार, बेंच में बहुत जगह है, आप आराम से बैठिए। आइए आइए।
0: आराम अब कहाँ, अब तो ऊपर जाकर ही आराम नसीब होगा।
1: पर जाने की उम्र से तो ये अभी बहुत दूर लगते हैं, फिर ऐसी निराशा की बातें क्यों कर रहे हैं? ऐसा मत कहिए। अच्छा आप यहाँ रोज आते हैं?
0: और कहाँ जा सकता हूँ, किस तरह वक्त काट नहीं है।
1: लगता है आपके घर में कोई और सदस्य नहीं है, आप अकेले रहते हैं क्या?
0: हाँ ऐसा ही समझो, मेरी पत्नी पिछले साल निमोनिया से चल बसी। घर में दो शादीशुदा बेटे जरूर हैं, लेकिन किसी के पास मेरे लिए वक्त नहीं है। मुझे घर में अकेला छोड़कर बेटे बहुएं सब बाहर चले जाते हैं।
1: अब कहाँ कहाँ चले जाते हैं?
0: अपनी अपनी नौकरी पर।
1: अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, कोई निठल्ला नहीं बैठा रहता, और इस तरह घर में कुछ पैसा भी आ जाता है, गृहस्थी और अच्छी तरह चलने लगती है।
0: लेकिन मैं तो अकेला रह जाता हूँ, रिटायर होने का ये मतलब तो नहीं कि मुझसे कोई बात करने वाला ना हो, कोई हंसने बोलने वाला ना हो। मैं किस चीज से अपना दिल बहलाऊं, सच मानो ये उपेक्षा मुझसे बर्दाश्त नहीं होती।
2: ये क्या सहानुभूति दिखाने की बजाय तुम हंस रहे हो?
1: अरे क्या करूं बुजुर्गवार, आपने तो तिल का ताड़ बनाकर रख दिया, जरा सी बात को लेकर आप इतने उदास हैं? है?
2: ये जरा सी बात है, है? इस उम्र में इतना अकेलापन?
1: श्रीमान इस अकेलेपन का इलाज भी आप ही के पास है, आजमा कर देखिए।
2: मैं समझा नहीं तुम कहना क्या चाहते हो।
1: श्रीमान आप अपने आप को घर में बंद क्यों करते, बाहर निकलिए, अपने पुराने दोस्तों से मिलिए, अपनी उम्र के कुछ नए लोगों से जान पहचान बढ़ाइए, कोई ऐसा हल्का फुल्का काम शुरू कीजिए जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, फिर देखिए ना आपको वक्त का पता चलेगा ना ही अकेलेपन का एहसास होगा। क्यों क्या सोचने लगे श्रीमान?
0: नौजवान तुम्हारी बात में वजन है,
3: इस पर अमल करके देखता हूं कितनी कामयाबी मिलती है।
0: अच्छा अब चलूंगा।
1: अरे ऐसी जल्दी क्या है, अभी अभी तो आप आए हैं।
0: आज कुछ जल्दी है, ये थैला देख रहे हो ना?
1: हाँ
0: यहाँ आते हुए बाजार से कुछ जरूरी चीजें खरीदी थी।
1: अच्छा अच्छा
0: इन्हें घर पहुंचाना है। अच्छा
1: हाँ जरूर जरूर जरूर। फिलिप अभी तक नहीं आया, कह रहा था डॉक्टर की क्लिनिक से जल्दी ही लौटूंगा, इतनी देर हो गई लेकिन इसका इंतजार तो कर नहीं पाया। एक जगह बैठे बैठे पांव सोने लगे।

0: तनाव आकर विराजमान हो गए?
1: लगता है इस बेंच में कोई खास बात है, तभी जिसे देखो आकर यहीं बैठ जाता। इस बार गुण बुजुर्गवार की जगह एक खूबसूरत नौजवान ने ले ली, लेकिन इसके चेहरे पर उन साहब से ज्यादा उदासी छाई। अरे ये तो जैसे अपने आप से कुछ बोलता भी जा रहा है। सुनना चाहिए ये नौजवान क्या बड़बड़ा रहा है।
2: साइमन साहब, आप तो अपने आप को बहुत समझदार और होशियार समझते थे, आज देख लिया आप कितने होशियार हैं। आप जरा भी सावधान रहते तो ये नौबत नहीं आती। अब भुगतिए अपनी लापरवाही का नतीजा। और जैसा बुरा दिन तो
1: माफ करना जेंटलमैन, पूछ सकता हूँ आप किससे बातें कर रहे हैं?
2: और किससे करूंगा साहब, नील साइमन से, यानी अपने आप से ही बात कर रहा हूँ। बात नहीं कर रहा बल्कि अपने आप को कोस रहा हूँ।
1: साइमन साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप जरूर किसी परेशानी में हैं।
2: जिस भंवर जाल में मैं फंसा हूँ, अगर आप फंस जाते तो मेरी ही तरह परेशान मिलते।
1: अच्छा,
2: समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा।
1: किसी ने आपको धोखा दिया है क्या?
2: अरे नहीं साहब, अपनी इस दुर्दशा के लिए और कोई दूसरा नहीं, मैं खुद जिम्मेदार हूँ। मैंने एक बहुत बड़ी बेवकूफी कर डाली, उसी का नतीजा भुगत रहा हूँ।
1: आखिर बात क्या हो गई, जरा मुझे बताएंगे?
2: अरे क्या बताऊँ, दरअसल बात ये हुई कि मैं आज दोपहर लंदन आ गया था।
1: अच्छा।
2: और चूंकि मैं यहाँ पहली बार आ रहा था, इसलिए मेरे दोस्त ने मुझे एक अच्छे होटल का पता दे दिया था।
1: हाँ, वो कौन सा होटल?
2: अब वो होटल क्या, हाँ, पेंटागोनियन होटल, वर्कशायर स्क्वायर।
1: पेंटागोनियन होटल? लेकिन वो होटल तो शायद अब नहीं रहा।
2: हाँ वही तो, स्टेशन से टैक्सी लेकर मैं सीधा वर्कशायर स्क्वायर पहुंचा, लेकिन वहां जाकर पता चला कि होटल को कुछ दिन पहले गिरा दिया गया और उसकी जगह वो सिनेमा घर बना रहा है। कुछ देर मैं यूं ही खड़ा उस इमारत को देखता रहा, समझ में नहीं आ रहा था कि कहां जाऊं, कहां ठहरूं।
1: वहां तो आसपास कई अच्छे होटल हैं, आप कहीं भी चले जाते।
2: अब ये सब तो आप जानते हैं ना, मैं तो इस शहर में बिल्कुल अनजाना था। खैर, मैंने टैक्सी वाले से किसी अच्छे होटल में ले चलने को कहा तो वो मुझे आसपास नहीं बल्कि काफी दूर ले गया।
1: आपको जानबूझकर दूर ले गया ताकि टैक्सी का अच्छा भाड़ा बन जाए।
2: हो सकता है, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, पैसे की मुझे कोई कमी नहीं है, बल्कि मैंने टैक्सी ड्राइवर को अच्छी खासी टिप भी दी। वो इसलिए कि वो होटल बहुत अच्छा और आरामदायक था।
1: अच्छा अच्छा।
2: खैर, होटल पहुंचकर मैंने अपने घर वालों को चिट्ठी लिखी और उन्हें अपना नया पता भी लिख दिया, और फिर एक कप चाय पीकर मैं साबुन खरीदने बाहर बाजार की ओर निकल पड़ा।
1: साबुन खरीदने?
2: जी
1: साइमन साहब, मैं कुछ समझा नहीं।
2: वो आप समझेंगे भी कैसे, मैं आपको क्या बताऊं मिस्टर, वो सॉरी, आपका शुभ नाम जान सकता हूँ?
1: हाँ, गोट्स भाई, नॉर्मन गोट्स भाई। वैसे आप मुझे गोटी कहकर बुला सकते हैं।
2: हाँ ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ तो मिस्टर गोटी, मैं आपको क्या बताऊं, मैं जब भी कहीं बाहर जाता हूँ साबुन अपना ही इस्तेमाल करता हूँ। होटल का साबुन इस्तेमाल करना मुझे पसंद नहीं है।
1: अजीब आदत है।
2: हाँ है तो अजीब ही, वैसे शुरू से ही मैं अपना अलग साबुन रखता हूँ, इस बार मैं सामान में साबुन रखना भूल गया। खैर, मैंने होटल में एक प्याला चाय पी और साबुन खरीदने निकल पड़ा। साबुन खरीदा और घूमता फिरता दूर तक निकल गया, सोचा बाजार की रौनक ही देख लूं।
1: लगता है आपको हमारा शहर बहुत पसंद आ गया। वैसे लंदन बुरा शहर नहीं है, आपका क्या ख्याल?
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप, लंदन बड़ा ही अच्छा शहर है, लेकिन मैंने अपनी बेवकूफी से यहाँ रहने का सारा मजा किलकिला कर दिया।
1: वो कैसे?
2: अब वही बता रहा हूँ। अब देखिए, काफी दूर निकल जाने के बाद मैंने सोचा कि अब लौटना चाहिए।

0: बस मैं वापस जाने के लिए मुड़ा, अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं उस होटल का नाम ही भूल गया हूँ।
1: अरे
0: अब होटल का नाम ही नहीं, मैं उस सड़क उस एरिया का नाम भी नहीं जानता था जहाँ वो होटल था।
1: तो फिर आपने क्या किया?
0: क्या करता, कभी कभी एक सड़क पर चला जाता, कभी दूसरी तरफ निकल जाता, लेकिन ना तो वो होटल मिला और ना ही उसका नाम याद आया।
1: ओह,
0: तब से मैं यूं ही भटक रहा हूँ। मिस्टर गोटी, जो आदमी लंदन पहली बार आया, जिसका यहाँ ना कोई दोस्त हो ना रिश्तेदार, उसकी परेशानी का आप अच्छी तरह अंदाजा लगा सकते हैं।
2: हाँ, वाकई परेशानी की बात तो है साइमन साहब।
1: हाँ,
2: मैं क्या आपकी समस्या का कोई हल नहीं है?
0: समस्या का एक ही हल है, वो ये कि मैं अपने घर पर तार कर दूं और उनसे होटल का नाम पता भेजने को कहूं। लेकिन इसमें भी एक मुश्किल है।
2: वो कैसी मुश्किल?
0: अब देखिए, घर वालों को मैंने आज ही चिट्ठी भेजी है, उन्हें 2-3 दिन बाद चिट्ठी मिलेगी, तब तक मैं कहां रहूंगा, कहां जाऊंगा? सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा है।
2: देखिए, इस तरह परेशान होने से क्या होगा, शांत रहिए और सोचिए कि इस उलझन से निकलने का अब क्या रास्ता हो सकता है। अरे हाँ हाँ साइमन साहब, एक रास्ता तो है।
0: क्या?
2: आप अपने घर तार भेजिए और कल परसों तक, जब तक उनका जवाब आता है, आप किसी दूसरे होटल में चले जाइए। आपके बटुए में फिलहाल इतने पैसे तो होंगे कि आप कोई सस्ता सा होटल।
0: मिस्टर गोटी, वही तो समस्या है, इस वक्त मेरी जेब बिल्कुल खाली है। दरअसल मैं 1 शिलिंग जेब में डालकर होटल से बाहर निकला था, जो मैंने साबुन में खर्च कर दिया। अब तो जेब में बस ये 2 पेंस पड़े हुए हैं। ये देखिए, काश मैं होटल से अपना बटुआ लेकर चलता।
2: कहीं ये आदमी झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये आदमी कपड़ों से, बोलचाल से संपन्न ही दिखाई देता है। बेचारा आज कैसी परेशानी में पड़ गया।
0: मिस्टर गोटी, आप क्या सोचने लगे?
2: जी वो
0: समझ गया। आप सोच रहे हैं कि मैंने अपने मन से किस्सा गढ़कर आपको सुनाया है। नहीं, इसमें आपका दोष नहीं, ये वाकया है ही इतना अजीब कि कोई आसानी से यकीन नहीं करेगा।
2: नहीं नहीं नहीं नहीं साइमन साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने जो कहानी सुनाई है, उसका एक एक शब्द सच हो सकता है। मेरे साथ एक बार बिल्कुल ऐसी ही घटना हो चुकी है। हाँ हाँ
0: अच्छा
2: हाँ, एक बार पेरिस में मैं भी कुछ ऐसी ही भूल कर बैठा था।
0: हो,
2: और मजेदार बात यह है कि मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था।
0: अच्छा?
2: हाँ, हम दोनों ही भुलक्कड़ निकले। गनीमत थी कि हमें इतना याद रहा कि हमारा होटल नहर के किनारे, बस नहर के साथ साथ चलते रहे और किसी तरह होटल पहुंच ही गए।
0: चलिए, तब तो आपको मेरी बात पर पूरी तरह विश्वास हो गया। क्या है मिस्टर गोटी, के अगर मैं आपकी तरह विदेश में रास्ता भूल गया होता तो इतना घबराता नहीं, लेकिन अपने ही देश में मैं।
2: अरे ये आप क्या कह रहे हैं, पराए देश में तो आदमी और भी ज्यादा घबरा जाता है।
0: नहीं, नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए, अगर मैं विदेश में होता तो ऐसी स्थिति में अपने दूतावास से जरूर मदद ले सकता था।
2: हाँ,
0: लेकिन यहाँ तो मैं अपने ही देश में हूँ। गोटी साहब, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस वक्त मैं अपने आप को कितना असहाय महसूस कर रहा हूँ।
2: साइमन साहब, मुझे आपसे पूरी सहानुभूति है। क्या आपका होटल ढूंढने में मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ?
0: नहीं नहीं, इस तकलीफ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। मेरे साथ आप भी खामखा इधर से उधर भटकते रहेंगे। अब तो थेम्स के किनारे मैदान में रात गुजारने के सिवाय और कोई चारा नहीं। अब मिस्टर गोटी,
2: हाँ हाँ कहिए कहिए।
0: हाँ, आप अगर मेरी मदद करना ही चाहते हैं तो
2: हाँ हाँ बताइए बताइए, संकोच मत कीजिए, बताइए ना।
0: अब

0: क्या क्या आप मुझ पर विश्वास करके मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? सिर्फ एक दो दिन के लिए, जब तक मैं अपने होटल नहीं पहुंच जाता। बहुत ज्यादा नहीं, बस बस इतने कि दो दिन अच्छी तरह बिता सकूं, बस।
1: सचमुच ये आदमी मुसीबत में है, इसकी मदद करनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है ये मेरे पैसे जरूर लौटा देगा।
0: मिस्टर गोटी, हाँ, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं।
1: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए साइमन साहब, मुझे पूरा विश्वास है मैं आपकी मदद जरूर करूंगा।
0: हाँ, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, इस भलमन साहब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप फिर कुछ सोचने लगे?
1: हाँ, इस बार जरूर कुछ सोच रहा हूँ। साइमन साहब
0: जी,
1: आपने कहानी तो विश्वास करने लायक सुनाई है,
0: कहानी
1: लेकिन इसमें एक कमजोर कड़ी है। वो खासी कमजोर कड़ी है।
0: मैं कुछ समझा नहीं।
1: साइमन साहब, आप वो साबुन नहीं दिखा रहे हैं जो आपने खरीदा था? मैं वो साबुन देख सकता हूँ?
0: वो साबुन की टिकटिकिया मेरी जेब में होनी चाहिए। अभी दिखाता हूँ। यहाँ इस जेब में,
1: हाँ,
0: इसमें भी नहीं है।
1: कोट की सारी जेबें अच्छी तरह देख लीजिए। हाँ हाँ,
0: वही वही वही देख रहा हूँ। यहाँ भी नहीं है, कहीं नहीं है। लगता है वो साबुन की टिकिया भी कहीं खो गई है।
1: खो गई? एक ही दिन में अपना होटल भूल जाना और साबुन भी खो देना,
0: जी
1: ये कुछ विश्वसनीय नहीं लगता साइमन साहब।
0: आप मेरी बात
1: आपको कोई ठोस कहानी गढ़नी चाहिए थी जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती। ये कहानी तो पिस हो गई साइमन साहब। अब किसी और आदमी से पैसे ऐसना चाहो तो कोई ठीक बहाना बनाइएगा, वरना। अरे कहाँ चल दिए साइमन साहब, कहाँ चल दिए? अरे रुकिए तो। बेचारा, कहानी तो बहुत बढ़िया गढ़ी थी। एक एक हिस्सा ऐसा था जिस पर कोई आंख मूंद कर विश्वास कर लेता, लेकिन साबुन खरीदने के प्रसंग ने सब गड़बड़ कर दिया। अरे ये प्रसंग ना होता या साबुन की एक टिकिया भी जेब में डाल लाता तो धोखा धड़ी के धंधे में आज उसकी प्रतिभा का सिक्का जम जाता। लगता है इस धंधे में अभी नौसिखिया है।
2: अरे ये मेरे पांव से क्या चीज टकराई? क्या है ये कागज में लिपटी हुई कोई गोल सी चीज? साबुन की खुशबू भी आ रही। अरे ये तो साबुन की टिकिया है। अरे ये जरूर साइमन की जेब से गिर गई होगी। इसका मतलब उसने सचमुच साबुन खरीदा था। ये तो अनर्थ हो गया। मैं अभी जाकर उस मुसीबत जदा की मदद करता हूं। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, अभी जाता हूं।
0: अरे साइमन साहब, साइमन साहब रुकिए।
2: साइमन साहब,
0: मिस्टर गोटी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मेहरबानी करके मुझे जाने दीजिए।
1: अरे नहीं नहीं साइमन साहब, गलती आपसे नहीं मुझसे हुई है, मैं आपसे माफी मांगता हूँ।
0: ये आप क्या कह रहे हैं?
1: देखिए, आप जैसे भले आदमी पर शक किया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। दरअसल मुझे आपकी कहानी की सच्चाई का मुख्य गवाह मिल गया है। ये देखिए साबुन की टिकिया आपकी कोट से गिर गई होगी। देखिए मुझे ये वहीं उसी बेंच के पास पड़ी मिली।
0: हाँ, वो पता नहीं कब जेब से गिर गई, वो परेशानी में कुछ ध्यान ही नहीं रहा।
1: खैर, जो हो गया सो हो गया। अब मुझे आपकी मदद करने में देर नहीं करनी चाहिए। मैं एक गिन्नी उधार देता हूँ मैं आपको, ये इससे काम चल जाएगा आपका।
0: जैसा आप ठीक समझे।
1: नहीं नहीं नहीं, आपको दिक्कत हो सकती है।
0: हाँ,
1: मैं आपको दो गिन्नियां दे देता हूँ। उम्मीद है अब आपका काम आराम से चल जाएगा। ये लीजिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे भारी मुसीबत से बचा लिया। अब मैं

0: जान। अरे हाँ, आप अपना पता दे दीजिए, मैं जल्द से जल्द आपके घर आकर ये उधार चुका दूंगा।
1: अरे नहीं नहीं साइमन साहब, ऐसी कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से मेरे पैसे लौटा दीजिएगा। अच्छा। ये लीजिए, ये रहा मेरा कार्ड।
0: थैंक यू वेरी मच। अच्छा अब इजाजत दीजिए।
1: अच्छा अच्छा। अरे अरे साइमन साहब, ये साबुन तो लेते जाइए।
0: लाइए। थैंक यू वेरी मच।
1: और देखिए अब इसे दोबारा मत खो देना, ये आपके आड़े समय में काम आया है। बाय बाय बाय।
2: बेचारा मेरे इस व्यवहार से कितना खुश हो गया, चेहरे पर निराशा की जगह उत्साह दिखाई देने लगा था। शुरू में मैं उसके साथ कुछ ज्यादा ही होशियारी बरत रहा था, ये अच्छी बात नहीं थी। मैंने अपनी गलती सुधार ली, ये अच्छा ही हुआ। अरे बाप रे, 8 बज गए। अरे वहां पार्क में फिलिप पता नहीं कब से मेरा इंतजार कर रहा होगा, मुझे फौरन वहीं पहुंचना चाहिए। चलता हूं मैं।

0: फिलिप, माफ करना, मैं जरा बाजार की तरफ निकल गया था। अब आए, ये तो फिलिप नहीं, कोई और ही साहब है। ओह, ये तो वही बुजुर्ग वार हैं जो थोड़ी देर पहले मेरे साथ यहाँ बैठे थे। लेकिन ये बेंच के नीचे झुककर क्या ढूंढ रहे हैं? बुजुर्ग वार, लगता है आपका कुछ खो गया है।
1: हाँ, मेरी साबुन की टिकिया खो गई है।
0: क्या, साबुन की टिकिया?
1: हाँ, अब मैंने जो सामान खरीदा था,
0: हाँ,
1: उसमें एक साबुन की टिकिया भी थी, वो कहीं गिर गई।
0: लेकिन वो
1: मेरा ख्याल है वो यहीं गिरी है। बेंच पर बैठते समय थैला टेढ़ा मेढ़ा हो गया होगा और टिकिया नीचे गिर गई। चिंता न करो, यहाँ गिरी है तो मिल ही जाएगी।
0: इसका मतलब वो साबुन की टिकिया उस धोखेबाज की नहीं, इन बुजुर्गवार की थी। मैंने ये क्या बेवकूफी कर दी, उस धोखेबाज को साबुन की टिकिया के चक्कर में एक नहीं दो दो गिनियां दे दी। आज ही आज मैं अपना दूसरा नुकसान कर बैठा। इस गलती के लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा।

श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज आपने सुना नाटक सावन की टिकिया। साकी के लिखे नाटक का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण था। रूपांतरकार शैलेंद्र, निर्देशक विजय दीपक छिब्बर। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।

0: दोस्तों नमस्कार। पिछले दिनों विविध भारती की टीम फिल्मकार विमल रॉय की सुपुत्री रिंकी भट्टाचार्य के घर गई, रिकॉर्डिंग की उजाले उनकी यादों के। तो चलिए सुनते हैं आज वही कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं फिल्मकार विमल रॉय की सुपुत्री रिंकी भट्टाचार्य से मंदाकिनी जोशी की बातचीत।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ हैं जिनके लिए सिनेमा सिर्फ एक पेशा या कला नहीं बल्कि परिवार की विरासत भी है। यानी आज हम बातचीत करने जा रहे हैं महान फिल्मकार विमल रॉय की बेटी रिंकी भट्टाचार्य से। वो विमल रॉय जिन्होंने भारतीय फिल्मों को अलग अर्थों में गढ़ा। तो रिंकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्ते, मैं बहुत खुश हूँ
1: जी।
2: मेरे से जो भी होगा पिताजी के बारे में मैं कहूँगी
1: जी। बिल्कुल। तो रिंकी जी, हम आपकी आंखों से देखने की आज कोशिश करेंगे महान फिल्मकार विमल रॉय साहब को। हम विमल रॉय को एक महान फिल्मकार के रूप में जानते हैं, लेकिन आप उन्हें एक पिता के तौर पर जानती हैं। तो सबसे पहले हम सभी का यही सवाल होगा कि कैसे थे पिता के रूप में विमल रॉय साहब।
2: मैं तो बहुत बहुत ब्लेस्ड हूँ
1: जी,
2: क्योंकि पिताजी का जैसा पिताजी मिलना ये छोटी बात नहीं है। और हम लोगों को कभी पता ही नहीं चला कि इतना बड़ा महान का वो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं। एकदम घर में जैसे साधारण हम लोग मिडिल क्लास फैमिली में सब बड़े हुए हैं उनके साथ, उससे हमको पता ही नहीं चलता था कि पिताजी बाहर उनका एक रूप है, बाहर उनका कोई स्टेटस है। और चाइल्डहुड मेरा, हमारा चाइल्डहुड बहुत ही एकदम सुखदायक था
1: जी।
2: बहुत ही बहुत खुश, हम लोग सब बहुत खुश थे। फैमिली मैन थे वो, फर्स्ट फैमिली मैन थे वो
1: जी।
2: घर में आके उनका पूरा यही बदल जाता था,
1: एक रूप ही बदल जाता था।
2: हाँ, रूप ही बदल जाता था।
1: मतलब आपके पिता घर पर फिल्मकार नहीं होते थे, एक पिता ही होते थे
2: जी। सही बात है
1: जी। तो आपको ऐसा कब महसूस हुआ कि आपके पिता बाकी लोगों से कुछ अलग है, बाहर उनका बहुत बड़ा रुतबा है या वो इतने महान फिल्मकार हैं?
2: ये हमको पता ही नहीं चला कि बाहर उनका क्या रूप है, क्या स्टेटस है, क्योंकि पिताजी को जो उनका बिहेवियर था घर में तो वो एकदम साधारण जैसे कोई मिडिल क्लास फैमिली में होता है। पिता पुत्री का जो रिलेशनशिप होता है एकदम सहज सरल। हम लोग जो बड़े हुए हैं, हम बहुत ही, इस वेले मैं तो एक ही अंग्रेजी शब्द बोलती हूँ, ब्लेस्ड
1: जी,
2: ट्रूली ब्लेस्ड
1: जी। जी, तो आप अपने परिवार के बारे में बताइए, कितने भाई बहन आप लोग थे, और आपकी माताजी के बारे में भी हम जानना चाहेंगे, वो किस तरह से उनकी फिल्मों से जुड़ी रही, उनके व्यक्तित्व से जुड़ी रही
2: जी। लेकिन मेरी माँ जो थी वो एकदम अलग थी, और उनका जो खुद आइडेंटिटी एक था
1: जी,
2: शी वॉज ए फोटोग्राफर, और उनके बारे में सब लोग आजकल जानते हैं। उनका जो फोटोग्राफी है वो बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े व्यक्ति के फोटोग्राफ लिया है, जैसे टैगोर का लिया है, और नेहरू का लिया है, इंदिरा गांधी का लिया है। मैंने, मेरी माँ का जो पोर्ट्रेट्स है उसमें इन सब लोगों को नाम जुड़ता है
1: जी।
2: तो पिता, और वो बहुत पिताजी के साथ बहुत ही उनका एकदम बहुत सुंदर रिश्ता था
1: जी,
2: बहुत सुंदर रिश्ता था।
1: क्या नाम था आपकी माँ का?
2: मेरी माता का नाम था मनोबिना रॉय
1: जी।
2: जी,
1: तो वो एक बहुत बड़ी फोटोग्राफर थी, और उनका एक व्यक्तित्व था। आपके और भाई बहन भी हैं जो उनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे।
2: मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे बाद में दो और दो सिस्टर्स हैं और एक भाई है जॉय, जो अभी देखभाल करता है अपना, मेरा पिताजी का जो लेगेसी है उसके साथ हम लोग सभी मिलकर काम करते हैं एक साथ
1: जी। जी, तो रिंकी जी, आपको पहली बार उनकी फिल्मों से जुड़ना आपका कैसे हुआ, किस तरह से आप उनकी फिल्मों से जुड़ी? क्या बचपन में आप अपने पिता के साथ उनकी फिल्में देखने जाया करती थी, या उनकी जो फिल्म बनाने की प्रक्रिया थी उनसे वाकिफ थी, या उनके साथ जाया करती थी, ऐसा कुछ हुआ कभी?
2: नहीं, पिताजी हमेशा, पिताजी का एक कोशिश ये रहता था कि वो फिल्मी दुनिया से हम लोग को अलग रखे।
1: अच्छा।
2: और हम कभी, हमको अगर बुलाते थे शूटिंग देखने के लिए तो कोई गाना वाना शूट होता तो हमको बुलाते थे, जो बच्चों को जो अच्छा लगता है उसके लिए बुलाते थे, नहीं तो हम कभी स्टूडियो में जाते ही नहीं थे। उनका अलग ही था कि वो दोनों जो दुनिया है ना, फिल्म का दुनिया और घर का दुनिया अलग था हमारे घर में
1: जी।
2: और वो बहुत एडुकेशनिस्ट थे पिताजी। मैं तो

0: बॉम्बे चली आई, मेरे तब 9-10 साल होगा तो, लेकिन उन्होंने ऐसे कोशिश किया कि मैं बंगला सीखूं क्योंकि मेरा मातृभाषा बंगाली है
1: जी।
0: तो उन्होंने मेरे लिए सब बंगाली किताब मंगाते थे घर कलकत्ता से, और हमको देखते थे कि हम करते हैं कि नहीं। उनका उत्साह था कि हम बंगला सीखें, बंगला बंगाली कल्चर को भी अपनाएं, इस सब उनका बहुत बहुत उनका देन ये है मेरे जिंदगी में कि पिताजी के लिए मैंने ये सीखा है, नहीं तो मैं शायद नहीं करती थी।
1: पिता का प्रभाव बहुत ज्यादा,
0: बहुत प्रभाव। हाँ,
1: तो एक बेटी होने के नाते रिंकी भट्टाचार्य पर क्या प्रभाव था, कितना प्रेशर था, कितना दबाव था, तो आप क्या कहेंगी?
0: नहीं, दबाव तो मैं नहीं कहूंगी, पिताजी का जो पूरा कल्चर था उससे हमने बहुत कुछ सीखा है कि पिताजी को खाली घर के लिए नहीं, पिताजी को इंडियन कल्चर से बहुत प्राउड थे वो। इंडियन कल्चर, कोई भी कल्चरल ये होता था, वो नेहरू को जानते थे पर्सनली, इंदिरा गांधी को जानते थे पर्सनली, तो ऐसे जो जिंदगी जिसके ये होता है तो उनके लिए तो अलग ही होता ना,
1: बहुत एथिक्स थे,
0: एटीट्यूड। हाँ, उनका एटीट्यूड ही अलग था इस सब के बारे में, और हम लोग ने वो ही सीखा है पिताजी। वो बहुत जल्दी चले गए, पिताजी की उम्र बहुत कम था जब चले गए, तो इसीलिए उनका सबसे बड़ा फिल्म एक जो बनने वाला था वो नहीं बनी, और हमको इसका बहुत दुख है। और जो लिखा था गुलजार लिख रहे थे उसको, तो उसका उसका नाम था अमृत कुंभ।
1: अच्छा,
0: अमृत कुंभ के ऊपर एक रियल लाइफ स्टोरी था
1: जी।
0: उसको उन्होंने लिया कि उसको वो था, लेकिन उसका शूटिंग करते करते पिता का ये हो गया, कैंसर में भुगते थे, स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते थे
1: जी।
0: उनका हाथ में हमेशा सिगरेट होता था, और उनका ये जो सामने का उंगलियां है ना उसमें से सिगरेट निकोटीन का दाग हो गया था इतना। तो उससे उनको दुख भरी बात ये है कि उनको वो कोई हम नहीं छोड़ा सके उसको
1: जी।

बिमल रॉय एक महान फिल्मकार के रूप में उन्होंने इतनी कालजयी फिल्में हमें दी और गुरु के रूप में उन्होंने एक नई श्रृंखला बनाई उनके जैसी फिल्मों का आगे निर्माण।

0: किया लोगों ने, तो एक फिल्मकार के रूप में या एक गुरु के रूप में आप क्या मानती हैं, वो किस तरह से रही होंगी?
1: पिताजी ने जो उनके उनके साथ जो जो काम किया, जैसे गुलजार है, ऋषिकेश मुखर्जी है, आशीष सेन है, इनको सबको उनका प्रभाव से बहुत उत्साहित किया था फिल्म बनाने के लिए, और उनको उत्साह देते थे और उनको चांस भी मिलता था कि हमारा प्रोडक्शन भी, मलरा प्रोडक्शन में उनका फिल्म भी बनती थी। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि असली गुरु का हिसाब, जो गुरु दक्षिणा इनको देना चाहिए
0: जी,
1: सबको
0: जी। उनकी कालजयी फिल्में हैं जैसे दो बीघा जमीन है, देवदास है, परिणीता है, मधुमती है, सुजाता है, परख है और बंदिनी। इन मतलब एक एक फिल्म पर अगर हम चर्चा करें तो शायद कितने एपिसोड निकल सकते हैं, कितनी लंबी विस्तृत चर्चा हो सकती है। तो रिंकी भट्टाचार्य उस उम्र में उन फिल्मों को देखकर क्या सोचती थी?
1: पिताजी का क्या था ना, पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है
0: जी,
1: सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता
0: जी,
1: वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, हाँ, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से, हाँ। तो इसलिए ना पिता खाली दो बीघा जमीन को लिखा था सलील चौधरी ने, तो वो फिल्म के लिए लिखा था, पिताजी के लिए लिखे थे। तो उसको जो फिल्म बनाए पिताजी, उसका कोई लिटरेरी वर्शन नहीं था,
0: जी।
1: हाँ, उनको लिखा था पिताजी के लिए सलील चौधरी ने, और उनको जो फिल्म है आज तो दो बीघा जमीन को सबसे बड़ा मान्यता मिलती है, यहाँ वहाँ फॉरेन कंट्रीज में सब में दिखाया जा रहा है।
0: बिल्कुल सही बात है। तो जब बात चली है दो बीघा जमीन की, तो कैसे इस महान फिल्म की रचना हुई होगी, किस तरह की घटनाक्रम में फिल्म बनी होगी उस जमाने में?
1: ये मुझे कभी कभी लगता है कि दो बीघा जमीन तो से उनका जिंदगी इसका बहुत असर है
0: जी,
1: क्योंकि पिताजी भी जब छोटे थे उनको घर से उनका जो जमीन था ईस्ट बंगाल, हम लोग ईस्ट बंगाल के हैं ढाका के
0: जी,
1: तो वहाँ से उनको निकाला गया था, तो वो भूल वो उनका जो वो दर्द था, वो ट्रेजेडी था, हाँ, तो वो भूल नहीं सके थे। तो मुझे लगता है इससे दो बीघा जमीन में और बहुत बहुत इंटेंसिटी हो गई है। इसके लिए ना पिताजी के लिए वो जो वो दुर्घटना थी कि उनको घर से निकाला गया था, वो भूल नहीं पाए कभी भी, हमेशा चाहते थे कि जाएं, हम जब ईस्ट बंगाल चलेंगे वो सोचते थे कि हम जाएंगे वहाँ पे, तो उसका वो ट्रेजेडी जो था वो जिंदगी भर उन्होंने उसका ये किया,
0: मन में रहा,
1: मन में रहा,
0: और उसी पीड़ा का परिणाम दो बीघा जमीन के रूप में उतरा
1: जी, जी
0: जी। तो जब हम उस फिल्म को देखते हैं तो बलराज साहनी और बिमल राय की जोड़ी ने जिस तरह से यथार्थ को पर्दे पर उतारा वो अद्भुत था। तो उस वक्त उस फिल्म की सफलता को घर में आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया होगा?
1: नहीं, हमारे घर में ऐसे सेलिब्रेशन कोई नहीं होते थे फिल्म फिल्म को लेके, लेकिन पिताजी का ये जो दो बीघा जमीन है ना, ये मैं कहूंगी कि पिताजी का श्रेष्ठ है, लोग सोचते हैं, लेकिन मैं तो बोलूंगी सबसे फिल्म, सब फिल्म सुजाता, बंदिनी, सबको लेके जब लोग देखते हैं ना तभी बोलते हैं कि कैसे कहाँ से आया स्टोरी। उनको लिटरेचर पे बहुत ये था, बहुत वो ये थे, प्रभावित थे लिटरेचर, बंगाली लिटरेचर के
0: जी जी जी। तो फिल्म दो बीघा जमीन के जो शंभू की पीड़ा थी वो आज भी कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में व्याप्त है।
1: जरूर, मैं तो बोलूंगा ये बहुत सच बात है। हमने जो फिल्म दिखाई थी वेनिस फेस्टिवल में लास्ट ईयर, तो वहाँ सब लोग खड़े होते हैं, जैसे फिल्म खत्म हुई सब लोग रो रहे थे
0: जी,
1: इतना उसका प्रभाव था। हाँ, एक इंडियन फिल्म, कोई स्टार नहीं उसमें, हाँ, फिर भी वेनिस फिल्म फेस्टिवल जैसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल में उसका क्या भूमिका थी तो मैं आपको बता ही नहीं सकते, आप वो देखने वाली एक्सपीरियंस करने वाली चीज थी। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैं गई उनके साथ, वहाँ फेस्टिवल मैंने एक अटेंड किया, और हम लोग जब वापस आए तो मुझे बहुत बहुत बहुत मुझे प्राउड फील रहा कि इतना बड़ा काम हम लोगों ने किया है, हासिल किया है, बहुत बहुत ही बढ़िया बात है ये
0: जी। तो रिंकी जी, जब बात दो बीघा जमीन की चल रही है तो क्यों ना इसी फिल्म का एक गीत हम सुन ले, आप बताएंगे कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप?
1: जो लोरी है जिसमें मीना कुमारी ने एक छोटा सा भूमिका किया है।

0: बहुत सुंदर लोरी है ये रिंकी जी, इस लोरी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे?
1: जरूर, मैं बताना चाहूंगी कि मीना कुमारी जो मेरे पिताजी के बहुत करीब थे
0: जी,
1: और पिताजी उनको बहुत स्नेह करते थे
0: जी,
1: तो उन्होंने बोला कि दादा आपने फिल्म तो बनाई लेकिन मुझे आपने रोल नहीं दिया कुछ, तो पिताजी ने बोला कि उसमें तो तुम्हारे लिए लायक कोई रोल नहीं था, लेकिन ठीक है हम एक गाना डालेंगे तो उसमें तुमको मैं ले लेती हूँ
0: जी।
1: तो इसीलिए मीना कुमारी ऑन स्क्रीन मीना कुमारी सिंगिंग द लोरी।
0: और ये लोरी और बहुत, हाँ आप बता,
1: ये लोरी बहुत, हम लोग सब गए थे रिकॉर्डिंग के लिए
0: जी,
1: कहाँ मुझे पता नहीं कौन सा स्टूडियो, शायद दादरा में कोई स्टूडियो था, वहाँ बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स हुए और ये लोरी का रिकॉर्डिंग हुआ 4 बजे सुबह चार बजे
0: तो लता मंगेशकर की गाई भी लोरी है हाँ। ये तो सुबह 4 बजे इसकी रिकॉर्डिंग हुई,
1: सुबह 4 बजे रिकॉर्डिंग
0: जी जी,
1: और तब तक लता जी वहीं पे बैठी थी।
0: अच्छा,
1: और नेचुरली
0: हाँ।
1: वो उनका ही गाना है ना,
0: तो बहुत टेक रिटेक हुई होंगी, मतलब
1: नहीं नहीं बहुत टेक नहीं
0: हाँ।
1: वो तो एक स्पेशलिस्ट थी।
0: इस तरह के बहुत सारे गीत पर हम बात करेंगे, फिल्म देवदास पर हम आना चाहेंगे। एक ऐसी फिल्म है देवदास जो अमर हो गया ये किरदार,
1: और एक चीज, फर्स्ट टाइम साहिर लुधियानवी ने गाना लिखा था उसमें
0: हाँ जी जी,
1: और एस डी बर्मन
0: साहब का संगीत हाँ। है, और इतना यूनिक संगीत है, और गाने के बोल जो है आज भी मतलब
1: मुझे तो एक सीक्वेंस बहुत अच्छा लगता है, मितवा करके गाना है जो
0: जी,
1: गीत तो पसंद है, और ऑन स्क्रीन मीना कुमारी बहुत सुंदर लग रही है
0: जी जी,
1: उनका जो ये है ना वो सीक्वेंस ही बहुत सुंदर है।
0: तो फिल्म देवदास की जैसे हमने बात की कि ये एक ऐसा कालजयी फिल्म, और एक ये जो पात्र है ये भी अमर हो गया, और क्या उस वक्त जब ये फिल्म बनाई गई थी तो क्या ये सोचकर बनाई गई थी कि ये प्रेम और विरह की कहानी है, आप क्या सोचती हैं?
1: नहीं, देवदास का क्या है, फर्स्ट देवदास जब बनी थी पिताजी उसका कैमरामैन थे।
0: अच्छा
1: हाँ, बड़ुआ का देवदास का।
0: जब केएल सहगल साहब जिसमें
1: केएल सहगल थे, पिताजी उसका मेन ये थे, कैमरामैन थे।
0: अच्छा,
1: तो उनको तब से उनको लगता, और पिताजी का सबसे

0: मुझे अजीब लगता है कि पिताजी तो घर में, हमारे घर में दारू शारू का कुछ यही नहीं था, लेकिन पिताजी ने फिल्म बनाई एक, एक पियक्कड़ के ऊपर। लेकिन यो ये आज भी देवदास के लिए लोग बोलते हैं कि कितना अच्छा, और गाने भी बहुत सुंदर,
1: बहुत शानदार,
0: बहुत सुंदर गाने हैं।
1: हालांकि देवदास के आज तो कई फिल्मी संस्करण निकल गए, कई फिल्में कितनी बार बन चुकी है, लेकिन बिमल रॉय की जो देवदास है वो आज भी बिल्कुल अलग लगती है।
0: जी मैं आपसे बहुत सहमत हूँ इसके बारे में।
1: बिल्कुल, तो उस फिल्म के बारे में कुछ बताइए कि क्या बिमल रॉय ऐसा मानते थे कि उस वक्त सिनेमा समाज को बदल सकता है? आप उस वक्त किस कितनी उम्र की थी और आपने क्या समझा होगा, क्या जाना होगा उस वक्त?
0: मैं, मेरा उम्र कुछ ज्यादा नहीं था, तब 15 साल की थी। तो जब देवदास बनी, देवदास का जो ये खास बात मुझे बोलना है कि देवदास के पारो का अभिनय जो है सुचित्रा सेन
1: जी,
0: उसको पिताजी ने पहले रिजेक्ट कर दिया था।
1: अच्छा।
0: दूसरा, हाँ, वो आई थी, वो हमारे घर की बहू समझा जाती थी, उनका शादी हुआ था हमारे घर में
1: जी।
0: तो जब एक दफे उनको फिल्म में उतरना था तो पिताजी के पास सबसे पहले आए, तो पिताजी ने बोला तुम घर की बहू हो, तुम कैसे फिल्म में काम करोगे, तो उनको रिजेक्ट कर दिया। फिर उसी को पिताजी ने बुलाया देवदास के लिए, तो हम लोग बहुत हंसते थे कि पिताजी को फिर से दोबारा उनको बुलाना पड़ा, क्योंकि उससे बढ़िया तो कोई नहीं, पारू का ये जो किया था
1: अभी नहीं था, वो कोई और कर ही नहीं सकता था, ऐसा बिमल रॉय साहब का मानना था।
0: कोई कर नहीं सकता था।
1: और वो अद्भुत सुंदर लगी है उसमें, और ये पात्र कितना जीवंत हो गया, पारो की भूमिका कितनी, मतलब कालजयी एक भूमिका हो गई है, आज भी याद की जाती है।
0: जी,
1: लोगों का रिएक्शन क्या रहा होगा उस वक्त देवदास फिल्म को देखने के?
0: लोग तो एकदम पूरा हाउसफुल जाता था, पूरा हाउसफुल जाता था, लेकिन मेरा हिसाब से पिताजी का देवदास जो इतना बड़ा बना है, क्योंकि उससे पिताजी उसको समझते थे, वो सामाजिक जब ये है ना समस्या
1: जो व्यवस्थाएं थी उस वक्त,
0: हाँ, उनको समझते थे, इसीलिए उसका इतना प्रभाव आज भी है। आज भी कोई, मैं तो आज भी देवदास देखने में मुझे डर लगता है कि इतना इसका जो ये है ना माहौल जो है वो बहुत बहुत एक इम्प्रेस करता है
1: जी,
0: बहुत ज्यादा
1: जी।
0: और आई थिंक मुझे लगता है कि वैजयंतीमाला भी जस्ट उसके पहले ही मधुबन किया था उन्होंने, क्योंकि वो डांसर भी थे ना, इसीलिए उसमें देवदास में डांस तो है, इसीलिए
1: बहुत सुंदर है। तो इस फिल्म को जब निर्माण किया जा रहा था, इस फिल्म का जब निर्देशन कर रहे थे बिमल रॉय, तो उनकी दिनचर्या क्या रहती थी, और आप परिवार वालों की दिनचर्या क्या उस वक्त थोड़ी बदल जाती थी?
0: नहीं नहीं नहीं, पिताजी जो काम करते, काम को अलग ही रखते थे वो घर से, हमारा घरेलू जो ये है ना
1: वो अलग था,
0: अलग था एकदम, और काम का ये बहुत ही अलग था, तो कभी नहीं मिक्स करते थे, कोई तकलीफ नहीं थी। पिताजी बहुत डिसिप्लिन थे एज ए डायरेक्टर, और फिल्मी दुनिया में तो ऐसा इतना डिसिप्लिन मैं देखा नहीं किसी को आज तक
1: जी,
0: कि इतना डिसिप्लिन थे, उनको कहाँ पे कब जाना है, क्या करना है, सब उनको बहुत पता था। तो इससे हमको हमारा भी बहुत प्रभाव हुआ कि हमको पिताजी का शायद समय बिताने को मिला। तो इसीलिए ना कि हमको कोई ये नहीं है, कोई कंप्लेन ही नहीं है कि देवदास बनाते थे या कोई बंदिनी बनाते थे। बंदिनी तो उनकी लास्ट फिल्म है, बंदिनी के बाद तो उनका बंद हो गया काम
1: जी।
0: हाँ, तो ये बहुत बहुत अहम बात है कि पिताजी कभी दोनों को मिक्स नहीं करते थे
1: जी। जी, तो आप लोग क्या फिल्म हॉल में जाकर इस फिल्म को देखा था?
0: नहीं, जाते थे, देखते थे, हम लोग हॉल में भी जाते थे, लेकिन जो एडल्ट फिल्म है, जैसे देवदास तो एक एडल्ट फिल्म है
1: जी,
0: तो देवदास के लिए हमारा हम लोग को जाना ठीक नहीं लगता था, तो पिताजी ने हमको देवदास हमने हॉल में कभी नहीं देखा।
1: अच्छा।
0: हाँ, उसमें एडल्ट सर्टिफिकेट नहीं था, लेकिन मैं बोलती हूँ कि उसका स्टोरी का तो एडल्ट, उसका एडल्ट इंटरप्रिटेशन है, तो इसीलिए उनके लिए जो रिलीज हुई थी, मुझे तो याद नहीं कि मैं हॉल में जाके कभी भी देवदास देखा। मैंने फर्स्ट देखा दूरदर्शन में।
1: अच्छा। दूरदर्शन में आपने ही फिल्म देखी होगी। तो इस फिल्म के गानों के बारे में तो हम क्या ही आपसे कहें, एसडी बर्मन साहब का संगीत है, साहिर लुधियानवी के बोल हैं। कौन सा गीत आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगी जो आपकी खास पसंद होगा?
0: मेरा खास पसंद है आगे तेरी मर्जी।
1: आगे तेरी मर्जी जी, बिल्कुल।

0: आपके घर में बराबर पढ़ाई का माहौल रहता था, बच्चे घर में पढ़ाई करना
1: पूरा? पिताजी का ये भी था कि हमको ऑक्सफोर्ड में ले जाए पढ़ाए।
0: अच्छा।
1: हमको लेके भी गए थे लंदन
0: जी
1: दिखाने के लिए, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा कि हम परिवार से इतना दूर रहेंगे, इसलिए मैंने हाँ नहीं किया। नहीं तो आज मैं ऑक्सफोर्ड रिटर्न होती थी
0: जी,
1: अगर मैंने उनका इस पर
0: बात को माना था। घर से दूर जाना आपको पसंद नहीं था। तो घर में एक आपसी सब में एक तारतम्य था, सामंजस्य था, प्रेम की भावना, सब एक दूसरे से गूंथे हुए थे।
1: एकदम।
0: बहुत बड़ी बात होती है कि सभी लोग मिलजुल कर रहे और
1: फिल्मी दुनिया में स्पेशली
0: फिल्मी दुनिया में रहकर एक दूसरे की विचारधारा का सम्मान करना और मिलजुल कर रहना, विश्वास करना, सबसे बड़ी बात ये रही थी।
1: और हमारे सामने हम दूसरा फिल्मी दुनिया देखते थे, फिल्मी घर आना देखते थे, मुझे लगता था कि हमारा घर इतना अलग क्यों है, क्योंकि हमारे घर में कोई माहौल ऐसा नहीं था, कोई भी माहौल नहीं था कि हम लोग कुछ पढ़ा लिखा ये सब हमको उत्साह करना। पिताजी का बहुत अहम बात था, पिताजी बहुत मानते थे, ही वॉज एक्चुअली एजुकेशनिस्ट। आपने देखा है ना पिताजी हमारे विमल रॉय में, विमल रॉय फिल्म्स का जो लोगो है, कौन सा है आपको मालूम है? कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे
0: जी, जी
1: बॉम्बे यूनिवर्सिटी का जो ये है टावर है, हाँ। वो उनका फिल्म का ये है
0: लोगो
1: तो है। ये भी कोई सोचने लायक बात है ना
0: जी, जी। हाँ। जब बिमल रॉय की बात हो और सुजाता फिल्म की बात नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो हम बात करते हैं सुजाता फिल्म की। आपको अपने पिता बिमल रॉय की फिल्म जो है सुजाता के बारे में सबसे खास बात तो क्या लगती है?
1: जैसे मैंने बोला कि पिताजी तो लिटरेचर बेस्ड थे ना
0: जी,
1: हमेशा फिल्म बनाने के पहले वो सोचते थे कहाँ से लाए, बंगाली लिटरेचर से। सुजाता का बारे में मैं ये बताऊंगी, एक फेस्टिवल में मैं गई थी, फॉरेन फेस्टिवल, जहाँ पे सुजाता पिताजी का सब फिल्म से उन्होंने सुजाता को चूज किया। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे यूरोप में कौन जात पात का कोई ये करेगा, लेकिन मैं एकदम बुद्धू बन गई सोच के। लोग बाहर आ रहे थे सब रोते रोते सुजाता देख के, उनको जो वो जो मदर डॉटर का जो है ना, मदर एंड डॉटर का जो है,

0: जी
1: रिलेशनशिप है उसको लेके वहाँ यूरोप में तो एकदम सब जो आए थे सबको सब रो रहे थे देख के। तो मुझे ये भी खुलासा मिला कि देखो ये भी हमने सोचा नहीं था पहले।
0: इस विषय को उठाने का सुजाता फिल्म को बनाने के पीछे क्या विचार रहे होंगे आपके पिता के?
1: ये तो मैं नहीं कह सकती, मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है। हाँ लेकिन चूज किया उन्होंने, जरूर अच्छा लगा होगा इसीलिए चूज किया।
0: उस समय बहुत बड़ी समस्या थी, आज भी ये समस्या है, लेकिन उस वक्त इसको उठाना इस विषय को बहुत ही बोल्ड विषय था और बहुत ही निर्भीक होकर उन्होंने इस बात को आवाज दी कि किस तरह से माँ और बेटी के किरदार को जीवंत किया। और इस फिल्म में उन्होंने नूतन को चुना, इसके पीछे क्या कुछ
1: नूतन पिताजी का सबसे फेवरेट एक्ट्रेस थे
0: जी।
1: नूतन की जो खास फिल्म है सुजाता और बंदिनी, तो पिताजी ने जब बंदिनी पिताजी ने सोचा बनाने का तो वो नूतन को साइन करने को गए। तो नूतन ने बोला दादा मुझे तो स्टोरी बहुत अच्छा लगा लेकिन शायद मैं आपके साथ नहीं कर सकूंगी। तो पिताजी ने बोला क्यों, क्या बात है
0: जी?
1: तो बोले हम प्रेग्नेंट हैं, तो मैं अभी कैसे, मैं प्रेग्नेंट तो मैं फिल्म में काम नहीं करूँगी। तो पिताजी ने बोला कि तब मैं नहीं बना सकूँगी बंदिनी। तो उनका हस्बैंड जो थे उन्होंने उनको उत्साह दिया, बोला विमलदा आप जरा जल्दी जल्दी शूटिंग कर लीजिए तो फिर नूतन आपके साथ काम करेगी। तो वही हुआ बात
0: जी जी,
1: शी वाज प्रेग्नेंट व्हेन शी वाज शूटिंग बंदिनी
0: जी। और उन्होंने क्या लाजवाब अभिनय किया है, अद्भुत अभिनय किया। और उसके बाद तो वो मतलब महान अभिनेत्रियों की एक लाइन में खड़ी हो गई। आप लोग गए इस फिल्म को देखने फिल्मी पर्दे पर?
1: हम लोग गए थे हॉल में देखने के लिए, मुझे याद है यहाँ पे जो ओपेरा हाउस है ना
0: जी,
1: ओपेरा हाउस पे रिलीज हुई थी और सिल्वर जुबली किया था।
0: तो चलिए इस फिल्म का कोई गीत सुन लिया जाए।
1: श्योर जरूर।
0: चलिए तो फिल्म सुजाता का एक गीत सुनते हैं।
1: हाँ।

बहुत सुंदर गीत। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं रिंकी जी कि अपनी फिल्मों के संगीत को लेकर कितने जागरूक थे, क्या उनकी फिल्मों में गीत और संगीत भी उतना ही मायने रखता था?

0: बहुत सुंदर गीत। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं रिंकी जी कि अपनी फिल्मों के संगीत को लेकर कितने जागरूक थे, क्या उनकी फिल्मों में गीत और संगीत भी उतना ही मायने रखता था जितनी फिल्म की कहानी या फिल्म का किरदार?
1: ऑफ कोर्स, जरूर, क्योंकि पिताजी ने जो पिक्चराइजेशन किया है गाने को, जैसे मैं तो, मुझे तो अभी तक कोई इतना ये नहीं लगता है कि कोई दूसरा डायरेक्टर इतना ये करता है, मायने रखता है। बहुत ही अच्छा उन्होंने पिताजी का गाने पिक्चराइजेशन, एक स्पेशल ये था उनका टैलेंट था।
0: उनकी पसंदीदा गायिका लता मंगेशकर और ये सभी रहे
1: था। उनके पसंदीदा जो थे ना,
0: संगीतकार भी एस जी बर्मन और सलील चौधरी साहब।
1: संगीतकार सलील चौधरी, एस जी बर्मन।
0: बहुत सारी फिल्में, ज्यादातर फिल्में सलील चौधरी साहब ने उनकी जो है संगीत में ढाली है, और एस जी बर्मन साहब का तो खैर संगीत हम सुन ही रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिल्म बंदिनी का जिक्र हम आपसे सुनना चाहते हैं। जब फिल्म बंदिनी उन्होंने बनाई तो आप क्या कहना चाहेंगी, फिल्म कैसे बनी और इस फिल्म की कोई शुरुआत कैसे हुई होगी, कुछ याद है आपको?
1: नहीं, मुझे नहीं याद है, लेकिन मैंने जब सुना कि पिताजी इस पर फिल्म बनाना चाहते हैं, वो एक इससे था, एक लिटरी बंगाली लिटरेचर से था
0: जी।
1: तो मैंने जाके मैं उसको रीड किया पहले।
0: अच्छा, हाँ, मुझे इस कहानी को,
1: उस कहानी
0: किताब को,
1: उसकी कहानी को, तो मुझे लगा कि हाँ इससे अच्छा बढ़िया बन जाता है। ये कल्लानी का स्टोरी है, वो जो है ना, जो लिटरेरी जो ये है वो लिखा है जरा संध करके, जिनका नाम था जरा संध, पेन नेम, तो उन्होंने लिखा था। तो उनको जो ये स्टोरीज कलेक्शन था उसमें कल्लानी का स्टोरी पिताजी ने चूज किया था।
0: तो उस वक्त उनको ये फिल्म बनाने का विचार इसीलिए आया क्योंकि उस समय की ये समसामयिक एक कहानी थी, घटना थी। तो आपके पिता जब कलाकारों के साथ काम करते थे तो उनके काम करने की प्रक्रिया क्या रहती होगी, कलाकारों के साथ क्या संबंध रहते होंगे, किस तरह का व्यवहार रहता होगा, किस तरह से समझाना होता होगा एक डायरेक्टर के तौर पर?
1: हाँ, पिताजी कभी भी एक्टिंग नहीं दिखाते थे किसी को।
0: अच्छा,
1: जैसे राज कपूर है ना,
0: हाँ।
1: राज कपूर हर भूमिका को एक्टिंग करके अपना स्टार को दिखाते हैं। पिताजी ने बहुत बहुत डिस्टेंस से उनको ये था। उनका एक डायलॉग राइटर था जो बहुत हिंदी एंड बंगाली जो जानता था, उनको पिताजी ने बताया था कि तुम जाके बोलो एक्ट्रेस को इस नूतन का है तो इतना इतना ये करे, हाँ ये ऐसा करना है ऐसा करना है, तो वो डिस्टेंस से करते थे, वो कभी एक्टिंग नहीं दिखाता था
0: जी। तो बंदिनी फिल्म की जो कल्याणी किरदार था नूतन जी का, तो बिमल रॉय ने जिस गहराई से इसे पिरोया ये बहुत लाजवाब था।
1: हाँ, ऐसा हुआ कि गुलजार प्रोडक्शन में था, बिमल रॉय प्रोडक्शन में ऐसे असिस्टेंट था, तो एक गाने का कहीं जरूरत हो तो शैलेंद्र नहीं लिख पाए उसको, तो गुलजार ने उसको लिख दिया ओपनिंग सॉन्ग ऑफ बंदिनी, मोरा गोरा अंगलेला
0: जी।
1: अच्छा, तो सुन, तो फिर मैंने पिताजी ने बोला कि तुम गाना भी लिखते हो क्या, तो उन्होंने बोला ऐसे हाँ लिखता हूँ कभी कभी दादा, तो बोले अच्छा तुम एक काम करो, तुम अभी उस सब जहाँ वो काम करते थे मैकेनिक गैराज, गाड़ी का गैराज में, तो बोले तुम गाड़ी वो सब छोड़ो, तुम आ जाओ हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन में, तुम गाना लिखोगे। तो गुलजार का फर्स्ट गाना पिताजी हमारे प्रोडक्शन में था, हाँ वो था नॉट मोरा गोरा एंगले, वो गाना का रिकॉर्डिंग उन्होंने किया था, दैट इज हिज फर्स्ट सॉन्ग फॉर विमल रॉय प्रोडक्शंस
0: जी।
1: हाँ, पिताजी का बोलने पर फिर वो छोड़ भी दिए, फिर एकदम से ज्वाइन कर लिए।
0: चलिए, तो बंदिनी फिल्म का गीत हम सुन लेते हैं।

0: उन्होंने जब ये चूज किया स्टोरी कल्याणी की स्टोरी बांधने के लिए, तब मैं पढ़ने को गई तो मुझे भी लगा कि हाँ ये बहुत अहम बात है कि ऐसा कोई एक स्टोरी है जिसमें किसी ने जेल से आके लिखा है उसका केस, एक केस हिस्ट्री था ये रियल केस हिस्ट्री। हाँ, तो इसीलिए बहुत इसका बहुत माने रखता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उस वक्त ये एक बहुत सच्ची घटना पर आधारित फिल्म बनाई गई थी। तो वही हम मधुमति के बारे में भी बस यही जानना चाह रहे थे कि पुनर्जन्म से संबंधित ये फिल्म थी।
0: मधुमति का अलग ही बात है, क्योंकि मधुमति का जो मधुमति लिखा गया था खाली पिताजी का प्रोडक्शन के लिए लिखा गया था, वो कोई लिटरेरी वे नहीं था।
1: जी बिल्कुल,
0: उसको क्लेम करते हैं ऋतिक घटन ने लिखा था, पता नहीं, लेकिन वो लिखा था पिताजी के लिए।
1: लेकिन वो बहुत उस जमाने की सुपर डुपर हिट फिल्म थी।
0: वो तो है।
1: हाँ।
0: बिकॉज ऑफ द म्यूजिक, बिकॉज ऑफ ऑल द कास्टिंग, दिलीप कुमार, वैजयंती माला, प्राण, बहुत बढ़िया। ये पिताजी ऐसे बनाए थे क्योंकि हमारा प्रोडक्शन हाउस तभी फाइनेंशियली थोड़ा डाउन था, तो किसी ने बोलता है कि दादा आप इतना फिल्म बना रहे हैं लेकिन आप प्रोडक्शन का नहीं देख रहे, तो प्रोडक्शन ये हो जाएगी, बंद हो जाएगी, क्योंकि आप इतना खर्चा, पिताजी खर्चे का देख नहीं थे, देख भी नहीं थे कि क्या था। तो जब उन्होंने बोला तो पिताजी ने बोला से ठीक है मैं ऐसा फिल्म बनाऊंगा जिसमें सब कुछ है, कॉमेडी है, ट्रेजिडी है, गाने हैं, डांस है, सब कुछ है, विलेन, हीरो, हीरोइन, हाँ
1: वो तो सब था जो एक फिल्म में होना चाहिए।
0: वो जो था वो सब फिल्म में होना चाहिए, तो मधुमति उसी हिसाब से बना गया।
1: जी, तो वो जो गाने पूरे इतने सुपर डुपर हिट हुए, घर घर में वो गाने बजने लगे, क्या आपके घर में भी रेडियो था उस वक्त?
0: हाँ, हाँ,
1: में आप गीत संगीत तो सुन सकते थे, ये माहौल तो था घर में।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: तो चलिए हमारे श्रोता उन्हें गीत हम सुना देते हैं, आप कहें।

0: बहुत ही सुंदर गीत हमने सुने। और रिंकी जी, आप उनकी बड़ी पुत्री हैं, आपने पिता को बचपन से फिल्मकार के रूप में देखा है, फिल्में बनाते हुए देखा है, एक पुत्री होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे, इस विरासत को आप किस ढंग से संभाल रही हैं आज तक?
1: मैं इस तरह से संभाल रही हूँ कि मेरे पिताजी का जो फिल्म है उसको रीइशू
0: जी,
1: उसको रिस्टोर करना, तो मैंने काफी एक यहाँ पे है रिस्टोर कर रहे हैं, तो हमने 4 फिल्में तो अभी रिस्टोर करने के लिए दे दिया है, वो भी अभी न्यू DVD बन के आ जाएगी अभी। तो हो गया है 4 फिल्म की
0: जी
1: बातें।
0: कौन-कौन सी फिल्में हैं वो?
1: मधुमती, देवदास
0: जी,
1: बंदिनी और 2 बीघे जमीन
0: जी,
1: ये 4। इधर है एक जो रिस्टोरर है शिवेंद्र डूंगरपुर करके,
0: अच्छा,
1: तो शिवेंद्र ने इसको किया है, रिस्टोर किया है 4 फिल्में। नेक्स्ट ईयर समटाइम ये सब फिर से दोबारा आ जाएगी, DVD नया DVD आ जाएगी।
0: अच्छा,
1: सबके सब हाँ।
0: बहुत बड़ी एक इस विरासत को आपने संभाला है और इसे जीवंत बनाए रखा है आज तक। तो रिंकी जी, आपको अपने पिता की कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगी?
1: ये क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा है
0: जी।
1: मुझे तो अभी भी मधुमती देख, कभी भी मैं देखती हूँ ना मधुमती, तो मुझे लगता है कि देखते ही रहूँ,
0: यू नो,
1: इतना उसका असर है, और एकदम मैं ऑडियंस ही बन जाती हूँ।
0: हाँ,
1: ये तो मधुमती के साथ है। दो बीघे जमीन देखने को थोड़ा कष्ट होता है क्योंकि ट्रेजिक है
0: जी।
1: हाँ, लेकिन जैसे ये दोनों फिल्म तो मुझे बहुत पसंद है, मधुमती और दो बीघे जमीन दोनों।
0: हाँ, तभी आपको लगा कि मैं अपने पिता के नक्शे कदम पर चलती और आगे चलकर एक बहुत बड़ी फिल्मकार बनती और बहुत सारी फिल्मों का निर्माण या निर्देशन करती जैसे मेरे पिता ने उस वक्त किया?
1: नहीं, ये कभी

0: आया, बल्कि मैंने अभी तक मैंने सोचा ही नहीं था कि हम फिल्म बनाएंगे, इसीलिए इसी डर से कि मेरे को कोई कंपेयर करेगा पिताजी से।
1: अच्छा।
0: इसीलिए मैंने बोला कि नहीं, मुझे नहीं बनाना है फिल्म, और जो बनी है वो एक्सीडेंटली बन गई है
1: जी। तो उन फिल्मों के बारे में आप हमें बताइए जो जो आपने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है। आपने?
0: मैंने दो ही डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, एक है डोमेस्टिक वायलेंस पे, क्योंकि मैंने औरतों के साथ बहुत सारा काम किया है एनजीओ के साथ
1: जी,
0: तो उसको बनाया है बिहाइंड क्लोज डोर्स करके, और बस ये एक फिल्म है मैं जिसके बारे में बोलना चाहूंगी
1: जी,
0: कि बिहाइंड क्लोज डोर्स है, वो वेरी बिग डॉक्यूमेंट्री, वो फेस्टिवल्स में भी गई है और इसको लेके लोग देखते भी हैं, अभी भी देखते हैं, डीवीडी में है वो।
1: इस फिल्म में जो महिलाओं के साथ जो अन्याय होता है उसके हाँ, बारे में आपने हाँ, काफी और आपने बहुत सारी महिलाओं के साथ काम किया है हाँ, काफी लंबे समय तक आप सोशल वर्कर के रूप में काम करती रही हैं
0: हाँ,
1: बहुत सारी किताबों का लेखन भी किया है, तो हमारे श्रोता जानना चाहेंगे आपकी किताबें कौन कौन सी थी, आपने किन किन विषयों पर ये किताबें लिखी?
0: मैंने ज्यादातर किताबें लिखी और वुमेन्स इश्यूज को लेके, और दो एक पिताजी पे लिखा है, दो एक मेरे पास दो किताबें हैं, जो एक तो है मधुमति खास, मधुमति का क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसके ऊपर मैंने एक किताब लिखी है
1: जी,
0: वो पब्लिश हुआ है, और एक किताब है जिसके डोमेस्टिक वायलेंस के बोला ना मैं बिहाइंड क्लोज डोर, ये दोनों बहुत खास है।
1: इनका रिएक्शन आपको कैसा मिला जब ये किताबें दुनिया के समक्ष गई लोगों के, खासतौर से महिलाओं का?
0: बहुत अच्छा, इट इज वेरी बिग, ये लोग पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन भी हो जाए इसका
1: जी कई भाषाओं में,
0: हाँ कई भाषाओं में ट्रांसलेशन हो जाए।
1: आपको कहीं ना कहीं ये दबाव रहता होगा कि पिता से कंपेयर करेंगे, तो क्या ऐसी मानसिक स्थिति में भी आप दबाव में रही?
0: नहीं नहीं, मैं दबाव में नहीं थी, मैंने बोला ना इसीलिए मैंने कॉन्शियसली
1: हाँ,
0: मैंने ऐसे किया कि मैं फिल्म नहीं बनाऊंगी, क्योंकि लोग तो मुझे कंपेयर करेंगे ही ना पिताजी से, इसीलिए मुझे लगा कि नहीं मुझे नहीं करना चाहिए फिल्म में। तो एक डोमेस्टिक वायलेंस पे था, वो मुझे करना ही था, क्योंकि उसके लिए मेरे फंडिंग मिली गवर्नमेंट फंडिंग।
1: अच्छा।
0: हाँ, फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, तो इसीलिए मुझे पैसा भी मिला था बनाने के लिए, तो इसलिए मैंने बनाया, और नहीं तो मैं फिल्म के लिए मैं कुछ आग्रही नहीं थी इतना। मैं कॉन्शियसली पिताजी का जो आइडियल्स है, उनका जो ये है फिलोसफी है, उसको फॉलो करने का मैं कोशिश करती हूँ।

0: अगर आपको अपनी पूरी रचनात्मक यात्रा, जिसमें पत्रकारिता है, किताबें हैं, सिनेमा है और बिमल रॉय की विरासत है, को एक वाक्य में देखना हो तो आप क्या कहेंगे कि आप वास्तव में किसकी आवाज दर्ज कर रही हैं? फिल्म की, स्त्रियों की, परिवार की, या उन लोगों की जिनकी आवाज को दबा दिया जाता है?
1: आपने जो कहा ये बहुत सही बात है, जो जिसका आवाज दबा दिया गया है, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट देम, जो वॉइसलेस है उनके बारे में मैं, मेरा ये हमेशा कोशिश रहा कि मैं उसी को वही करूं।
0: जी, और उसमें आप लगी भी हैं आज भी। हाँ। उम्र के इस पड़ाव पर आकर भी आप लगातार अपनी इस यात्रा को बनाए हुए हैं।
1: जी।
0: रिंकी भट्टाचार्य जी, आपने अपना अमूल्य वक्त हमारे लिए दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इंटरव्यूइंग मी।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे फिल्मकार बिमल रॉय की सुपुत्री रिंकी भट्टाचार्य से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। उजाले उनकी यादों के अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: उजाले उनकी

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: ट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल। वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। संध्या के 5 बजे हैं, आइए सुनते हैं बच्चों का मनपसंद कार्यक्रम फुलवारी।

नमस्ते प्यारे प्यारे बाल दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त शिखा शर्मा और लेकर आई हूं आपका पसंदीदा रंग बिरंगा मजेदार कार्यक्रम फुलवारी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है हमारे सभी नन्हे मुन्ने दोस्त एकदम मस्त स्वस्थ और मुस्कुराते हुए इस फुलवारी की तरह

0: महक रहे होंगे। बच्चों, आज की हमारी फुलवारी में ज्ञान, मनोरंजन और कहानियों की एक से बढ़कर एक सुंदर कलियां खिली हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं फुलवारी का सफरनामा संगत से गुण होत है विषय के साथ। बच्चों, जब हम किसी बगीचे के पास से गुजरते हैं तो वहाँ चारों तरफ रंग बिरंगे और महकते फूलों की खुशबू आती है। ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी भी एक सुंदर सा बगीचा है और हम जिनके साथ रहते हैं, खेलते हैं और बातें करते हैं, उन सबका असर हम पर पड़ता है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जैसी संगति हम रखते हैं वैसे ही गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। बच्चों, संगति का सीधा सा अर्थ है साथ। हमारे दोस्त, सहपाठी, आसपास के लोग और यहाँ तक कि जो किताबें हम पढ़ते हैं या जो टीवी शोज हम देखते हैं, वे सब भी हमारी संगति का हिस्सा है। जब आप किसी ऐसे दोस्त के साथ समय बिताते हैं जो हमेशा सच बोलता है, सबकी मदद करता है और मुस्कुराता रहता है, तो आप भी धीरे धीरे उसकी तरह दयालु और सच्चे बन जाते हैं। अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ समय बिताते हैं जो बात बात पर गुस्सा करता है या झूठ बोलता है, तो ना चाहते हुए भी वैसी ही आदतें आपके अंदर आने लगती हैं। बच्चों, इसे समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार बारिश की एक नन्ही सी बूंद आसमान से गिरी। जब वह बूंद लोहे के गर्म तवे पर गिरी तो छन छन करके तुरंत जल गई और उसका अस्तित्व खत्म हो गया। वही बूंद जब कीचड़ में गिरी तो गंदी और बदबूदार हो गई। फिर वही बूंद जब केले के पत्ते पर गिरी तो उसकी बूंद की तरह चमकने लगी। और जब वही बूंद समुद्र में एक सीप के मुंह में गिरी तो जानते हैं क्या हुआ, वह एक मूल्यवान और सुंदर मोती बन गई। बच्चों, बूंद तो वही एक ही थी, लेकिन वह जहां जहां गिरी, जैसी उसकी संगति हुई, वैसे ही उसके गुण बदलते चले गए। प्यारे बच्चों, पढ़ाई के मैदान में हो या खेल के मैदान में, संगति हमारे जीवन को बनाती है या बिगाड़ती है। अगर आपके दोस्त मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, समय पर अपना गृह कार्य करते हैं, तो आप भी उनके साथ रहकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाते हैं। जब हम अच्छे दोस्तों के साथ रहते हैं, बड़ों का आदर करना, अपनी चीजों को दूसरों के साथ बांटना और अनुशासित रहना सीखते हैं। अगर हम ऐसे लोगों से दोस्ती कर लेते हैं जो पढ़ाई से जी चुराते हैं, गलत शब्द बोलते हैं या मोबाइल में दिन भर गेम खेलते रहते हैं, तो हमारी आदतें भी बिगड़ने लगती हैं। बच्चों, अब आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि कैसे पहचाने कि कौन सा दोस्त अच्छा है और कौन सा नहीं। बहुत ही आसान है। एक सच्चा दोस्त वो होता है जो आपको हमेशा सच बोलने और सही रास्ता चुनने की सलाह दे। जब आप दुखी हो या आपको कोई बात समझ ना आ रही हो तो आपकी मदद करे। आपको कभी भी कोई गलत काम या नियम तोड़ने के लिए ना उकसाए। आपकी सफलता पर दिल से खुश हो। बच्चों, संत कबीर दास जी ने बहुत ही सुंदर बात कही है, कबीरा संगति साधु की, बेगी करे फल होए। यानी अच्छी संगति का असर बहुत जल्दी और बहुत सुंदर फल देता है। इसलिए बच्चों, हमें अच्छे और सच्चे दोस्त बनाने चाहिए, अच्छी और ज्ञानवर्धक किताबें पढ़नी चाहिए, टीवी पर ऐसे कार्यक्रम देखने से बचना चाहिए जो हमें गलत व्यवहार के लिए प्रेरित करते हों। बच्चों, केवल अच्छे दोस्त ढूंढना ही पर्याप्त नहीं होता, हमें स्वयं भी किसी के लिए एक अच्छा दोस्त बनना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी के जीवन में अच्छाई लाते हैं तो वही अच्छाई आगे बढ़कर कई लोगों तक पहुंच सकती है। तो प्यारे बच्चों, आज से ही छोटा सा संकल्प लें कि अच्छी संगति चुनेंगे, अच्छी बातें सीखेंगे, गलत बातों को ना कहेंगे और स्वयं भी अच्छे मित्र बनेंगे। प्यारे बच्चों, हमारे साथ आपके कुछ नन्हे मुन्ने दोस्त हैं जिनसे हम संगति ही गुण है विषय से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। देखते हैं हमारे नन्हे मुन्ने दोस्त हमें क्या जवाब देते हैं। हेलो, आपका नाम क्या है?
1: मिशिका।
0: आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं?
1: फर्स्ट
0: में। आपकी सबसे अच्छी दोस्त का नाम क्या है?
1: सानविका।
0: सानविका आपके साथ स्कूल में पढ़ती है?
1: हाँ।
0: ओके, आपको अपनी दोस्त सानविका में सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है?
1: हम दोनों

0: एक दूसरे के टिफिन शेयर करता है। वो मुझसे कभी नाराज नहीं होती। हम दोनों स्कूल में एक साथ खेलते हैं।
1: आपका नाम क्या है?
2: मेरा नाम काशवी है।
1: आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं?
2: दूसरी कक्षा में पढ़ती हूँ।
1: ओके, आपकी सबसे अच्छी दोस्त का नाम क्या है?
2: ताशी।
1: ताशी आपके साथ में पढ़ती है स्कूल में?
2: हाँ।
1: अच्छा, आप ताशी के साथ स्कूल में क्या क्या करते हैं?
2: मैं ताशी के साथ स्कूल में पढ़ाई करती हूँ, उसके साथ लंच शेयर करती हूँ, उसके साथ खेलती हूँ, उसके साथ आर्ट एंड क्राफ्ट करती हूँ।
1: ओके, आपको अपनी दोस्त ताशी में सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है?
2: ताशी मेरे से कभी नाराज नहीं होती है। वो मेरी हेल्प करती है हर चीज में और वो मेरे साथ बैठती है।
1: ओके, बेटा आपका नाम क्या है?
3: सात्विक।
1: आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
3: आठवीं
1: कक्षा में पढ़ते हो। ओके, आपके सबसे अच्छे दोस्त का नाम क्या है?
3: मेरे सबसे अच्छे दोस्त का नाम कुणाल।
1: कुणाल है, अच्छा। आपने अपने दोस्त कुणाल से कोई अच्छी आदत सीखी है कभी?
3: वे हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए हाजिर रहता है।
1: आप भी उसकी मदद करते हैं? अच्छा सात्विक, आपके अनुसार संगति का मतलब क्या होता है?
3: संगति का मतलब साथ, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, खेलते हैं, जिनके व्यवहार का असर हमारे व्यवहार पर भी पड़ता है।
1: आपका नाम क्या है?
4: मेरा नाम नक्षत्र है।
1: ओके, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं?
4: मैं नवी कक्षा में पढ़ता हूँ।
1: आपके भी दोस्त होंगे?
4: हाँ।
1: कितने सारे हैं?
4: मेरे दोस्त तो खूब सारे हैं।
1: अच्छा, आप नाम बताएंगे अपने दोस्तों का?
4: मेरे दोस्तों का नाम उद्भव, अरिहंत, अनग और भी कई सारे हैं।
1: और आपके सबसे अच्छे दोस्त का नाम क्या है?
4: अनग।
1: अनग, अच्छा। आपको अपने दोस्त में सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है?
4: मुझे अपने दोस्त में सबसे अच्छी बात यह लगती है कि वह सभी बड़ों की इज्जत करता है और हमेशा दूसरे मुसीबत में पड़े लोगों की सहायता करने के लिए तैयार रहता है।
1: अच्छा, अगर आपका दोस्त कोई गलत काम करे तो आप क्या करोगे?
4: अगर मेरा दोस्त कोई गलत काम करता है तो फिर मैं उसे उसके बारे में समझाऊंगा कि वह गलत है और उसे सही राह पर चलने के लिए आगाह करूंगा।
1: अच्छा, सात्विक और नक्षत्र, क्या केवल अच्छे दोस्त होना जरूरी है या खुद भी अच्छा दोस्त बनना जरूरी है?
3: खुद भी अच्छा दोस्त बनना बहुत जरूरी है।
4: खुद भी अच्छा दोस्त बनना जरूरी है।
1: बच्चों, आप सभी मिलकर बताएं कि कैसी संगति करेंगे?
5: अच्छी संगति।
1: और खुद कैसे दोस्त बनेंगे?
5: अच्छे।
1: शाबाश बच्चों, यही है आज की फुलवारी की सबसे प्यारी सीख कि अच्छी संगति अच्छे गुणों को बढ़ाती है और हमारा अच्छा व्यवहार दूसरों को भी अच्छा बनने की प्रेरणा देता है। थैंक यू बच्चों।
0: वेलकम।
6: बच्चों, आपके दोस्तों ने बताया कि वे अपने दोस्तों के साथ क्या करते हैं और उनके दोस्त के व्यवहार से क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चों, अब वक्त हो गया है आपके मनोरंजन का, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

7 8 9

बच्चों, अब हमारी जानकारी का विषय है क्यों आते हैं भूकंप। आपने कभी ना कभी अपने बुजुर्गों से सुना होगा, हमारी धरती एक शेषनाग के फन पर या फिर किसी गाय के सींग पर टिकी हुई है। जब वे अपना सींग या फन बदलते हैं तो पृथ्वी हिलने लगती है और भूकंप आता है। बचपन में यह कहानी सुनने में बहुत मजेदार लगती थी, लेकिन विज्ञान हमें इसके पीछे का असली और सही कारण बताता है। बच्चों, हमारी धरती बाहर से जैसी सख्त और एक जैसी दिखाई देती है, अंदर से वैसी बिल्कुल नहीं है। पृथ्वी की बाहरी परत ठोस पत्थरों और चट्टानों के कई टुकड़ों से मिलकर बनी है। इन टुकड़ों को विज्ञान की भाषा में टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स बहुत धीमी गति से हमेशा तैरती या खिसकती रहती है। जब ये प्लेट्स खिसकते खिसकते आपस में टकराती है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ती है या रगड़ खाती है, तो उनके बीच भारी दबाव या घर्षण पैदा होता है। जब यह दबाव सहने की क्षमता खत्म हो जाती है तो चट्टाने टूटती है और जमा हुई ऊर्जा एक झटके के साथ तरंगों के रूप में बाहर निकलती है। यही तरंगे जब धरती की ऊपरी सतह पर पहुंचती है तो हमें कंपन या झटका महसूस होता है। इसी को भूकंप आना कहते हैं। बच्चों, धरती के अंदर जिस स्थान से भूकंप की ऊर्जा निकलती है उसे भूकंप का केंद्र कहते हैं। भूकंप की तरंगे इस स्थान से अलग अलग दिशाओं में फैलती है, जिस वजह से भूकंप के झटके केंद्र के साथ अलग अलग क्षेत्रों में भी महसूस होते हैं। बच्चों, कुछ भूकंप हल्के होते हैं तो कुछ भूकंप में तेज कंपन होता है, जिस वजह से इमारतों और दूसरी संरचनाओं को नुकसान पहुंचता है। बच्चों, अगर कभी भी भूकंप के झटके महसूस हों तो आपको घबराना नहीं है। अगर आप घर के अंदर हैं तो किसी मजबूत मेज या डेस्क के नीचे जाकर अपने आप को सुरक्षित करें। ऐसी जगह छिपने से बचें जिनके गिरने से आपको नुकसान हो सकता है। अगर आप बाहर हैं तो इमारतों, बिजली के खंभों, पेड़ों से दूर किसी खुले स्थान पर जाने की कोशिश करें। प्यारे बच्चों, आज की जानकारी में हमने जाना कि हमारी धरती जो ऊपर से शांत दिखाई देती है, जिस पर हम चलते हैं, खेलते हैं, घर बनाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, उसके अंदर लगातार प्राकृतिक गतिविधियां चलती रहती हैं। बच्चों, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जिसे रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन सही जानकारी और सावधानी से हम अपनी सुरक्षा जरूर कर सकते हैं। बच्चों, यह तो हुई धरती के हिलने डुलने और भूकंप की बातें। क्यों ना अब आपका मनोरंजन कराया जाए एक अच्छे से गीत से। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

बच्चों आज फुलवारी के बगीचे में हम आपके लिए पंचतंत्र का पिटारा खोलकर एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और मजेदार कहानी लाए हैं। एक ऐसी कहानी जो आपको बताएगी कि हमारे आसपास रहने वाले लोग और हमारी संगति हमारे जीवन को कैसे बदल सकती है। बच्चों एक जंगल में एक बरगद के विशाल पेड़ पर तोते का एक जोड़ा रहता था। उनके दो प्यारे प्यारे बच्चे हुए, एक का नाम था गंगा और दूसरे का नाम था यमुना। एक दिन अचानक मौसम बिगड़ा, आसमान में काले बादल छा गए, तेज तूफान आया और हवा के झोंके में तोते के दोनों छोटे बच्चे उड़कर अलग अलग दिशाओं में जा गिरे। एक बच्चा गंगा जंगल के उस पार डाकुओं की गुफा के पास जाकर गिरा और दूसरा बच्चा यमुना एक शांत और सुंदर आश्रम के पेड़ पर जा गिरा। समय बीतता गया, दोनों तोते बड़े हो गए। एक दिन किसी राज्य के राजा शिकार करते हुए भटककर डाकुओं की गुफा के पास पहुंचे। राजा बहुत थके हुए थे, तभी गुफा के बाहर से एक तीखी और भारी आवाज आई। गंगा तोता चिल्लाया, अरे पकड़ो पकड़ो, कोई आया है, इसके पास तो सोने के गहने और घोड़ा है, लूट लो इसे, मारो मारो। राजा हैरान और भयभीत हो गए, वे तुरंत अपने घोड़े को मोड़कर वहां से डर के मारे तेजी से भाग निकले। भागते भागते राजा जंगल के दूसरे कोने में स्थित एक ज्ञानी साधु के आश्रम के पास पहुंचे। आश्रम के शांत माहौल में एक पेड़ की छाया में बैठ गए। तभी पेड़

0: की डाल से एक बहुत ही मधुर और मीठी आवाज आई। यमुना तोता बोला, आओ आओ हे राजन, आपका इस पावन आश्रम में स्वागत है। आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, भीतर पधारिए, शीतल जल पीजिए और विश्राम कीजिए। राजा दंग रह गया। दोनों तोते दिखने में बिल्कुल एक जैसे थे, लेकिन एक की बोली में जहर और दूसरे की बोली में शहद जैसी मिठास थी। तभी आश्रम के साधु महाराज बाहर आए। राजा को उन्हें प्रणाम करके पूछा, ऋषिवर, यह कैसा चमत्कार है, एक ही जंगल में दो एक जैसे तोते हैं, पर एक मारने काटने की बात करता है तो दूसरा इतना मीठा बोलता है। साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, राजन, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह तो केवल संगति का असर है। जो तोता डाकुओं के साथ रहा उसने गालियां और हिंसा सीखी, और जो आश्रम में ऋषियों के बीच रहा उसने आदर और प्रेम की भाषा सीखी। मेरे प्यारे बाल मित्रों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हम जैसी संगति में रहते हैं हमारी सोच और हमारी बोली भी वैसी बन जाती है। प्यारे प्यारे बच्चों, अब वक्त हो गया है आज के इस प्यारे से सफर को यहीं रोकने का। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए फूलों की तरह मुस्कुराते रहो, अपनी सेहत का ध्यान रखो, दोस्ती और प्यार का दीप जलाकर अपनी फुलवारी महकाते रहो, साथ ही अपनी इस दोस्त को दीजिए अब जाने की इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।
1: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा, सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो। प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

अभी आप सुन रहे थे बच्चों का मनपसंद कार्यक्रम फुलवारी। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है FM 103.1 MHz पर।

ये आकाशवाणी अलवर का सीरीज का चैनल है एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 5:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी।

मिलाते हो उसी को खाक में जो दिल से मिलता है, मेरी जान चाहने वाला तो बड़ी मुश्किल से मिलता है। स्टूडियो के टाइम मशीन में वक्त हुआ जाता है शाम के 5:30, साल के 365 दिनों में खत्म होता हुआ दिन शुमार 255। आवाज़ आप सुन रहे हैं संतोष चौधरी की। कुछ बातें जो आप कहना चाहते हैं, कुछ बातें जो मैं सुनना चाहता हूं, तो आइए थामिए मेरा हाथ और चल पड़िए सुहाने सफर पर इस प्रोग्राम के साथ जिसका नाम हुआ करता है दोस्तों युववाणी। उम्मीद और आशा है दोस्तों आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और लगातार अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। आइए अपनी चर्चा को

जारी करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बात की जिसे हम जानते तो सभी हैं लेकिन अक्सर अपनी जिंदगी में भूल जाते हैं, हमारा भविष्य। हम सभी अपने भविष्य को लेकर सपने तो देखते हैं, कोई अच्छी नौकरी चाहता है, कोई अपना कारोबार शुरू करना चाहता है, कोई परीक्षा में सफल होना चाहता है और कोई अपने परिवार के लिए एक बेहतर जिंदगी बनाना चाहता है। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या हमारा भविष्य सिर्फ हमारे सपनों से बनेगा? नहीं, हमारा भविष्य इस बात से बनेगा कि हम उन सपनों के लिए आज क्या कर रहे हैं। क्योंकि सच तो यही है दोस्तों, हमारा भविष्य उससे बनता है जो हम आज करते हैं, उससे नहीं जो हम कल करेंगे। हम अक्सर कहते हैं कि कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, कल से मेहनत करूंगा, अगले महीने से अपनी सेहत पर ध्यान दूंगा। लेकिन ये कल आखिर आता कब है? जब कल आता है तो वो भी आज ही बन जाता है और फिर हम अगले कल का इंतजार करने लगते हैं। इसी तरह कई बार हमारी जिंदगी में महीने और साल निकल जाते हैं लेकिन हमारी शुरुआत हो ही नहीं पाती। जरा एक स्टूडेंट को ही देख लीजिए, परीक्षा में 4 महीने बाकी है तो वह सोचता है कि अभी बहुत समय है, कल से पढ़ूंगा। फिर 4 महीने 3 में बदल जाते हैं, 3 महीने 1 में और अचानक परीक्षा सामने आ जाती है। दूसरी तरफ एक और स्टूडेंट है, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता है तो शायद उसे हर दिन कोई बड़ा बदलाव दिखाई ना दे, लेकिन कुछ महीनों बाद वो छोटी छोटी मेहनतें उसकी सबसे बड़ी ताकतें बन जाती है। यही नियम जिंदगी के हर हिस्से में लागू होता है दोस्तों। अगर हमें स्वस्थ भविष्य चाहिए तो आज अपने शरीर का ध्यान रखना ही होगा। अगर आर्थिक रूप से मजबूत बनना है तो आज सही फैसले लेने होंगे। अगर किसी रिश्ते को मजबूत बनाना है तो आज समय देना होगा। और अगर अपने सपने को सच करना है तो आज ही उसके लिए पहला कदम उठाना ही होगा। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, आज कुछ करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हमें आज ही कोई बहुत बड़ा बदलाव कर देना है। कभी कभी सिर्फ एक छोटा कदम काफी होता है। आज 10 पन्ने पढ़ लेना, 1 घंटा अपने हुनर को दे देना, किसी जरूरी काम की शुरुआत करना या किसी बुरी आदत को थोड़ा कम कर देना, ये छोटे छोटे कदम उस समय मामूली लगते हैं लेकिन यही कदम धीरे धीरे हमारी जिंदगी की दिशा बदलते हैं। हम अक्सर परिणाम जल्दी चाहते हैं, मेहनत का पहला दिन शुरू करते ही सफलता का आखिरी दिन देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। बीज बोने के अगले दिन पेड़ नहीं बनता, उसे समय देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है और इंतजार करना पड़ता है कि ठीक उसी तरह हमारी मेहनत को भी समय चाहिए। जरूरी ये नहीं कि हम एक दिन में कितना बदल गए, जरूरी तो ये कि हम हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कर भी रहे हैं या नहीं। और अगर आपको लगता है कि आपने अब तक बहुत समय गंवा दिया तो भी निराश होने की कोई जरूरत नहीं दोस्त, क्योंकि आज भी आपके पास एक चीज है, आज का दिन। आप वहां हैं, वहीं से शुरुआत कर सकते हैं, आपके पास जितना उसी से शुरुआत कर सकते हैं। जरूरी ये नहीं कि शुरुआत कितनी बड़ी है, जरूरी तो ये है कि शुरुआत कब होती है। तो आज खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा कि मैं अपने भविष्य के लिए आज क्या कर रहा हूँ। शायद जवाब बहुत बड़ा ना हो लेकिन अगर उस जवाब में आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी और आपके सपने की तरफ बढ़ता हुआ एक छोटा सा कदम भी शामिल है तो समझिए कि आप सही दिशा में हैं। क्योंकि भविष्य कोई ऐसी जगह नहीं कि जहां हम अचानक पहुंच जाएंगे, हमारा भविष्य हर दिन हमारे वर्तमान में तैयार हो रहा है दोस्तों। आज की हमारी आदतें, आज के हमारे फैसले और आज की मेहनत, यही मिलकर हमारे आने वाले कल को बनाते हैं। इसलिए अगली बार जब आप कहें मैं कल से शुरू करूंगा तो एक पल रुककर खुद से पूछिएगा क्यों ना आज से। और क्यों ना अभी हम आपको एक प्यारा सा गीत सुनाएं दोस्तों।

उम्मीद है दोस्तों आपको ये गीत पसंद आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट टेक ज्ञान की तरफ और जानते हैं एक इंटरेस्टिंग तथ्य। दोस्तों आपने मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान पर एक छोटा सा निशान जरूर देखा होगा, एक डस्टबिन जिस पर क्रॉस का निशान बना होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस निशान का मतलब क्या है? आइए हम बताते हैं। दरअसल दोस्तों इसे WEEE यानी कि वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मार्क कहा जाता है। इसका सीधा सा संदेश है, इस इलेक्ट्रॉनिक सामान को इस्तेमाल के बाद सामान्य कूड़े के डिब्बे में नहीं फेंकना चाहिए। इसे अलग तरीके से इकट्ठा करके उचित प्रक्रिया के तहत रिसाइकल या डिस्पोज किया जाना चाहिए। अब सवाल है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान को सामान्य कचरे से अलग रखने की जरूरत क्यों पड़ती है? दरअसल दोस्तों पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में कई तरह के पदार्थ और रसायन मौजूद होते हैं। अगर इन्हें गलत तरीके से फेंका जाए या जलाया जाए तो इनसे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचता है। ई कचरे में मौजूद कुछ पदार्थ मिट्टी और पानी को प्रदूषित कर सकते हैं और गलत तरीके से रिसाइकलिंग करने पर स्वास्थ्य के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए छोटा सा क्रॉस वाला डस्टबिन हमें एक बड़ी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। जब हमारा मोबाइल, लैपटॉप या टीवी या कोई दूसरा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो जाए या इस्तेमाल के लायक ना रहे तो उसे घर के बाकी कचरे के साथ नहीं मिलाना चाहिए। उसे ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर या उचित रिसाइकलिंग व्यवस्था तक पहुंचाना चाहिए। तो अगली बार जब आपको अपने किसी गैजेट पर ये क्रॉस वाला डस्टबिन दिखाई दे तो समझ जाइए कि सिर्फ एक निशान नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए एक संदेश है। इसे सामान्य कचरे में मत फेंकिए, जिम्मेदारी के साथ डिस्पोज कीजिए। छोटा सा निशान है लेकिन संदेश बहुत बड़ा है, क्योंकि तकनीक हमारी जिंदगी को आसान तो बनाती है और उसे इस्तेमाल करने के बाद उसकी जिम्मेदारी निभाना हमारा कर्तव्य है। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं।
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट टेक ज्ञान की तरफ और जानते हैं एक और रोचक तथ्य। दोस्तों, आपने अक्सर बड़े बड़े शोरूम, मॉल, अस्पताल या दुकानों के दरवाजों के ऊपर एक मशीन लगी देखी होगी, है ना, जो लगातार हवा नीचे की तरफ फेंकती रहती है। हाँ, वही मशीन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये मशीन करती क्या है? आज हम इसी के बारे में जानेंगे। ये है एयर कर्टेन मशीन। एयर कर्टेन यानी हवा का पर्दा। ये एक ऐसा उपकरण है जिसमें पंखे की मदद से तेज गति से हवा की एक अदृश्य परत बनाई जाती है। इसे आमतौर पर दरवाजे या प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर लगाया जाता है। यह हवा का प्रवाह अंदर और बाहर के वातावरण के बीच एक तरह के अदृश्य सीमा बनाने की काम करता है। अब सवाल यह है कि इसकी जरूरत आखिर क्यों पड़ती है? मान लीजिए कि किसी दुकान का दरवाजा लगातार खुला है और अंदर एयर कंडीशनर चल रहा है। बाहर की हवा गर्म है और अंदर भी आ रही है, और अंदर की ठंडी हवा बाहर जा रही है। इससे एसी को कमरे का तापमान बनाए रखने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एयर कर्टेन इस हवा के आदान प्रदान को कम करने में मदद करता है, जिससे अंदर का तापमान बनाए रखना आसान हो जाता है। लेकिन इसका काम सिर्फ गर्मी और ठंड को रोकना ही नहीं, बल्कि एयर कर्टेन धूल, प्रदूषण, बाहर की गंध और उड़ने वाले कीड़ों के प्रवेश को कम करने में भी मदद कर सकता है। यही कारण है दोस्तों कि इसका इस्तेमाल दुकानों, मॉल, होटल्स, अस्पतालों और कई औद्योगिक जगहों पर किया जाता है। और सबसे दिलचस्प बात, इसके लिए दरवाजा बंद करने की जरूरत ही नहीं होती। लोग आसानी से अंदर बाहर आते जाते रह सकते हैं, जबकि ऊपर लगा एयर कर्टेन अपनी

हवा की अदृश्य दीवार बनाकर काम करता रहता है। यानी अगली बार जब आप किसी दुकान के दरवाजे से गुजरें और ऊपर से हवा महसूस करें, तो समझ जाइए वो सिर्फ हवा नहीं बल्कि एक तकनीकी एयर कर्टेन है जो आराम बनाए रखने और ऊर्जा की बचत में मदद कर रहा है। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: बुद्धू, नई कार जीतने का मौका? वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुद्धू।
2: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
3: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है, स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।
5: चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं हिमसागर एक्सप्रेस के बारे में। दोस्तों, भारतीय रेलवे से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिन्हें जानकर हमें अपने देश की विविधता और विशालता का अंदाज होता है। आज हम आपको एक ऐसी ट्रेन के बारे में बताएंगे जो एक ही सफर में भारत के कई राज्यों को पार करती हुई देश के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचती है। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी ट्रेन भी है जो अपनी यात्रा के दौरान करीब 12 राज्यों से होकर गुजरती है? हाँ दोस्तों, इस ट्रेन का नाम है हिमसागर एक्सप्रेस। हिमसागर एक्सप्रेस जम्मू कश्मीर के श्री माता वैष्णो देवी कटरा से चलकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाती है। लगभग 3,790 किलोमीटर का ये सफर करीब 3 दिनों में पूरा होता है, यानी एक ही ट्रेन यात्रा में आपको उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत के समुद्री तट तक पहुँचने का अनुभव मिल सकता है। इसका रूट भी बहुत दिलचस्प है। यात्रा के दौरान ट्रेन जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश

बीच राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। यानी रास्ते में भाषा बदलती है, खान पान बदलता है, पहनावा बदलता है और बदल जाता है भारत को देखने का आपका नजरिया भी। कल्पना कीजिए, एक तरफ उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाके, फिर मध्य भारत के शहर और पठार, और आखिर में दक्षिण भारत की हरियाली और समुद्री हवाएं। ये सिर्फ एक रेल यात्रा नहीं बल्कि मानो चलती फिरती भारत यात्रा हो। हालांकि एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि हिमसागर एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन नहीं है। दूरी के मामले में डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस इससे आगे है, लेकिन 12 राज्यों को जोड़ने वाली हिमसागर एक्सप्रेस अपने आप में भारतीय रेल की एक अनोखी पहचान जरूर है। तो अगली बार जब आप ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए सफर करें तो याद रखिए, भारतीय रेलवे सिर्फ हमें एक शहर से दूसरे शहर तक नहीं लेकर जाती, बल्कि रास्ते में हमें भारत की भाषाओं, संस्कृति और विविधताओं से भी मिलाती है। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: दादाजी कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले
1: तेरी समझदारी का फल।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: तो दोस्तों, ये था आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम। उम्मीद और आशा है कि रोचक जानकारियों ने आपको काफ़ी लुभाया होगा और आपके मनपसंद गीत सुनकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपने दोस्त संतोष चौधरी को दीजिए इजाज़त।

अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है FM 103.1 MHz पर।

ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 6 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं है बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है और पिछले दो दिनों की चर्चाओं ने इस विश्वास को और मजबूत किया है। श्री मोदी ने आज लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता निर्माण पर सत्र में आशा प्रकट की कि ब्रिक्स सम्मेलन में स्वीकार किया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स अपने तीसरे दशक में प्रवेश करने जा रहा है और दुनिया अब इस समूह से ठोस परिणामों की आशा करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। उन्होंने नई दिल्ली सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी ब्रिक्स देशों, सहयोगी देशों और उनकी टीमों की सराहना की। इससे पहले सम्मेलन के खुले सत्र में प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे उद्यमियों को ज्ञान, वित्त और नए बाजारों से जोड़ने के लिए ब्रिक्स सहयोग पोर्टल स्थापित करने की पहल का प्रस्ताव रखा गया है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित

0: समाधानों के लाभों को ग्लोबल साउथ की जरूरतों के अनुसार ढाला और उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
1: कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियलिटीज बट टुगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्त तोकायेव के साथ द्विपक्षीय बैठक में आपसी संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी के साथ भी बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान क्षेत्रीय घटनाक्रम और भारत मिस्र की साझेदारी सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ मुलाकात में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश कई क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे। श्री मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति आर मार्कोस जूनियर के साथ भी बातचीत की। उन्होंने मौजूदा आसियान अध्यक्ष के तौर पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में फिलीपींस की भागीदारी का स्वागत किया। श्री मोदी दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति तथा नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति के साथ और द्विपक्षीय बैठकें करने वाले हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि महामारी से निपटने की तैयारियों में भारत एक दशक पहले की स्थिति से बहुत आगे निकल चुका है। देश ने ऐसी जीवंत जैव अर्थव्यवस्था, टीका विकसित करने की बेहतर क्षमता और वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया है जिनसे भविष्य में महामारियों से निपटने की वैश्विक तैयारियों में योगदान दिया जा सकता है। उन्होंने ये बात आज नई दिल्ली में महामारी के लिए तैयारी नवाचार गठबंधन के बोर्ड और निवेशक परिषद के लिए आयोजित एक समारोह में कही। चीन के मोकी में भारतीय महिला और पुरुष टीम ने जूनियर एशिया कप का खिताब जीत लिया है। महिला वर्ग के फाइनल में भारत ने चीन को 1-0 से हराया जबकि पुरुष वर्ग फाइनल में भारत ने कोरिया को 4-1 से शिकस्त दी। जापान पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में आज प्रमोद भगत ने पुरुष सिंगल्स SL3 में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM बैंड 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। संध्या के 6:05 हुए हैं। आइए अब आपको जानकारी देते हैं हमारी आज और कल की सभा के शेष कार्यक्रमों की।

हमारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों में अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 6:30 का समय रहेगा हिंदी में प्रादेशिक समाचारों का, 6:45 पर राजस्थानी भाषा में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से। संध्या के ठीक 7 आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम भारती आकाशवाणी जयपुर से। संध्या के 7:30 पर आप सुनेंगे महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 अंतर्गत दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे भारत बनाम श्रीलंका क्रिकेट मैच के फाइनल का आंखों देखा हाल। 8:45 पर आप सुन सकेंगे समाचार संध्या। रात्रि के 9 अंग्रेजी में समाचार और इन समाचारों के साथ ही आप एक बार पुनः सुन सकेंगे महिला एशिया कप T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। रात्रि के 11:45 पर संपन्न होंगे हमारी आज की सभा के प्रसारण।

कल की सभा आरंभ होगी हमारी सवेरे 6 बजे हिंदी में समाचारों के साथ। 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदनवार। 6:30 का समय रहेगा कार्यक्रम झरोखा। सवेरे 6:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रामचरित मानस गान। संगीत सरिता का समय रहेगा सवेरे 6:45 पर। कार्यक्रम नमस्कार अलवर आप सुनेंगे सवेरे 7 बजे। 7:10 पर आप सुनेंगे हिंदी दिवस के अवसर पर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का संदेश, और इसके बाद एक बार आप पुनः सुन सकेंगे कार्यक्रम नमस्कार अलवर। फिल्म संगीत आप सुनेंगे सवेरे 7:30 पर। समाचार प्रभात होंगे सवेरे 8 बजे आकाशवाणी दिल्ली से। सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा सवेरे 8:15 पर। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का समय रहेगा सवेरे 8:30 पर। हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे सवेरे 9 बजे। 9:10 पर आप सुनेंगे प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। श्रृंखला के अंतर्गत डॉक्टर अर्चना शुक्ला पर्यावरणविद से बातचीत, और इसके बाद 9:40 से लेकर संध्या के 5 बजे तक आप सुन सकेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

संध्या के ठीक 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम महिला जगत। चर्चा का विषय रहेगा बदलते परिवेश में मित्रता के मायने। इसके साथ ही साथ आपको जानकारी देंगे जन जन के मन की भाषा हिंदी दिवस। संध्या के 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी। विषय रहेगा गलत व्यक्ति पर भरोसा करने के बाद ही सही इंसान को पहचानने की समझ आती है, और बातें कैरियर की होंगी। SBI स्कॉलरशिप 2026-27 फ्री गवर्नमेंट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, और चर्चा होगी हिंदी दिवस के बारे में। संध्या के 6 बजे होंगे हिंदी में समाचार। फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे 6:10 पर। संध्या के 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 6:45 पर होंगे राजस्थानी भाषा में प्रादेशिक समाचार। संध्या के 7 बजे कार्यक्रम होगा ग्राम भारती। चर्चा का विषय रहेगा जलवायु परिवर्तन व मृदा पर उसका प्रभाव, समस्याएं एवं समाधान। भेंट वार्ता में आप सुनेंगे प्याज में लगने वाले कीट एवं रोग का प्रबंधन। 7:30 का समय रहेगा फिल्म संगीत का। रात्रि के 8:15 आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम। समाचार संध्या होंगी रात्रि के 8:45 पर। रात्रि के 9 बजे होंगे अंग्रेजी में समाचार, और समाचार के बाद रात्रि के 9:15 से लेकर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। रात्रि के 11 बजे होंगे हिंदी में समाचार, और इन्हीं कार्यक्रमों के साथ रात्रि 11:05 पर संपन्न होंगे हमारे कल की सभा के प्रसारण। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है, FM बैंड 103.1 MHz पर। संध्या के 6:10 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों के इस गीत के साथ।

ये गीत आपने सुना फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से, और आइए अब सुनते हैं इस कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म ताल से। आवाजें हैं सोनू निगम और अनु

0: दहक के इस गीत के बाद अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार और 6:45 पर राजस्थानी भाषा में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से।
1: आकाशवाणी की वेबसाइट पर यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ हमेशा, देश और दुनिया भर में कहीं भी।
2: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और, आपका डीडी फ्री डिश।
3: हर बैंक के अलग अलग केवाईसी पेपर्स, काश एक चाबी होती।
4: एक चाबी है सीकेवाईसी आईडी।
3: सीकेवाईसी मतलब?
4: बैंक आपके केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसी रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट सीकेवाईसी आईडी। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह केवाईसी अपडेट तो सब जगह अपडेट।
3: वाह, आरबीआई कहता है
4: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
5: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का इकोसिस्टम है। नई दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन संपन्न। प्रदेश के 309 नगर निकायों के चुनावों के तहत कल होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी, रैली और विजयी जुलूस पर रोक रहेगी। रामदेव जयंती पर आज प्रदेश भर में धार्मिक उल्लास, गणेश चतुर्थी का पर्व कल, प्रथम आराध्य की आराधना को लेकर तैयारियां जोरों पर। और एशिया कप महिला T20 क्रिकेट का फाइनल आज भारत और श्रीलंका के बीच दुबई में खेला जाएगा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों का सम्मेलन आज सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। दो दिवसीय इस महत्वपूर्ण सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन समारोह में अपने संबोधन में प्रतिभागी देशों की सहभागिता के लिए आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं है

0: की समाधानों का एक इकोसिस्टम है और दो दिनों की चर्चाओं ने इस विश्वास को और मजबूत किया है। श्री मोदी ने अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए चीन को शुभकामनाएं देते हुए सभी परिणामों को समय सीमा के भीतर ऐसे कामों में बदलने की जरूरत पर जोर दिया जिनका जमीनी स्तर पर असर दिखाई दे। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे कि ब्रिक्स का ढांचा कागजी कार्रवाई से आगे बढ़कर असल जिंदगी में ठोस असर डाले।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: गौरतलब है कि ये शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इसका मुख्य विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण रखा गया था। प्रदेश में 309 नगरीय निकायों के चुनावों के तहत कल मतगणना की जाएगी। स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम में कैद 38,889 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला दोपहर तक आने की उम्मीद है। सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली वोटों की गिनती को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद मतगणना को पारदर्शी, स्वतंत्र और निष्पक्ष रखने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। मतदान कार्मिकों को पूरी तैयारी के साथ समय पर मतगणना केंद्र पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र पर अधिकृत प्रवेश पत्र धारी को ही अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी। मतगणना के दिन विजय जुलूस और रैली निकालने पर रोक रहेगी। कल गणेश चतुर्थी के आयोजनों को देखते हुए भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है। वहीं भड़काऊ नारों और समर्थकों की भीड़ इकट्ठी करने पर रोक लगाई गई है। गौरतलब है कि 9 और 11 सितंबर को दो चरणों में संपन्न मतदान के पहले दौर में 162 निकायों में 76.42% मतदान हुआ, जबकि दूसरे चरण में 147 नगर निकायों में करीब 71% मतदाताओं ने वोट डाले। 21 सितंबर को निकायों के अध्यक्ष चुने जाएंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कहा है कि देश में लगभग 87,000 स्वच्छता कर्मचारियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण किट PPE प्रदान की गई है। मंत्रालय के सचिव सुधांश पंत ने बताया कि कामकाज के सुरक्षित माहौल और स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 76,000 से अधिक कर्मचारियों को विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के दायरे में लाया गया है। उन्होंने बताया कि 983 स्वच्छता कर्मचारियों के लिए लगभग 34 करोड़ रुपए की अग्रिम पूंजीगत सब्सिडी जारी की गई है। रेलवे ने अगस्त 2026 के दौरान माल ढुलाई में सालाना आधार पर 5.4% की शानदार बढ़त दर्ज की है। इस अवधि में रेलवे ने 137.9 मिलियन टन माल की ढुलाई की, जबकि अगस्त 2025 में ये आंकड़ा 130.9 मिलियन टन था। मंत्रालय के अनुसार पिछले महीने 5 नए गति शक्ति कार्गो टर्मिनल शुरू किए गए हैं। इसके बाद कुल कार्गो टर्मिनलों की संख्या बढ़कर 149 हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि बीते महीने 14 अमृत भारत विशेष ट्रेनों को नियमित सेवाओं में बदल दिया गया, जिससे देश में कुल अमृत भारत सेवाओं की संख्या बढ़कर 86 हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व कल परंपरागत श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रथम आराध्य की पूजा अर्चना को लेकर लोगों में विशेष उल्लास देखने को मिल रहा है। गणेश मूर्तियां और पूजन सामग्री खरीदने को लेकर बाजारों में भीड़ देखी जा रही है। मिट्टी और पत्थर से बनी मूर्तियों के साथ ही गोबर और जूट की इको फ्रेंडली मूर्तियां भी प्रचलन में हैं। गणेश चतुर्थी के साथ ही 10 दिवसीय गणेश उत्सव के आयोजनों की भी कल से विधि

0: पर शुरुआत होगी। घर घर गणपति बप्पा की चौकियों की स्थापना के साथ ही जगह जगह गणेश पांडाल सजाए जा रहे हैं। इससे पहले आज पूर्व संध्या पर प्रदेश भर के गणेश मंदिरों में आकर्षक रोशनी की गई है। जयपुर के गढ़ गणेश, रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश, कोटा के खड़े गणेश, अजमेर के खोड़ा गणेश, पाली के सिद्धपीठ गणेश मंदिर और बीकानेर के किला स्थित मंदिर सहित सभी छोटे गणेश मंदिरों में गौरी पुत्र के पूजन और अभिषेक को लेकर विशेष तैयारियां की गई है। राजधानी के मोती डूंगरी मंदिर में आज गणेश जी को मेहंदी चढ़ाई गई। यहां कल के आयोजन को देखते हुए मंदिर कमेटी और जिला प्रशासन द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हमारे सवाई माधोपुर संवाददाता ने बताया कि रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर में भर रहे मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। अभयारण्य से होकर गुजरने वाले रास्ते में लोगों को जंगली जानवरों से सुरक्षित रखने के लिए वन विभाग और जिला प्रशासन भी सतर्क मोड़ पर है।
1: त्रिनेत्र गणेश के दरबार में ढोक लगाकर परिवार की सुख समृद्धि के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पदयात्रियों और भक्तों के आने का यह सिलसिला रात भर चलेगा। कल गणेश चतुर्थी

0: के किला स्थित मंदिर सहित सभी छोटे गणेश मंदिरों में गौरी पुत्र के पूजन और अभिषेक को लेकर विशेष तैयारियां की गई है। राजधानी के मोती डूंगरी मंदिर में आज गणेश जी को मेहंदी चढ़ाई गई। यहां कल के आयोजन को देखते हुए मंदिर कमेटी और जिला प्रशासन द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता ने बताया कि रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर में भर रहे मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। अभयारण्य से होकर गुजरने वाले रास्ते में लोगों को जंगली जानवरों से सुरक्षित रखने के लिए वन विभाग और जिला प्रशासन भी सतर्क मोड़ पर है।
1: त्रिनेत्र गणेश के दरबार में ढोक लगाकर परिवार की सुख समृद्धि के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पदयात्रियों और भक्तों के आने का यह सिलसिला रात भर चलेगा। कल गणेश चतुर्थी के अवसर पर सुबह मंगला आरती और दोपहर में जन्म की झांकी मेले का मुख्य आकर्षण रहेंगे। पुलिस और प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिजली, पानी, चिकित्सा, रसद के विशेष प्रबंध किए गए हैं। रेलवे की ओर से मेला स्पेशल गाड़ियां चलाई जा रही हैं, जबकि परिवहन विभाग की ओर से रेलवे स्टेशन से गणेश धाम तक रियायती दरों पर बसें चलाई जा रही है। धर्मार्थ संगठनों की ओर से भी अनेक भंडारे लगाए गए हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
0: भाद्र माह की दूज पर आज लोक देवता बाबा रामदेव की जयंती प्रदेश भर में धार्मिक उल्लास के साथ मनाई जा रही है। जैसलमेर के रामदेवरा स्थित मंदिर में सालाना मेला पूरे परवान पर है। सुबह पंचामृत अभिषेक और शिखर पर ध्वजारोहण के साथ मेले की विधिवत शुरुआत हुई। दशमी तिथि तक चलने वाले इस मेले में राजस्थान के अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा रामसा पीर की जयकारों के साथ पहुंच रहे हैं। बाबा रामदेव के प्राकट्य दिवस पर जोधपुर के मसूरिया स्थित बाबा बालीनाथ जी की समाधि पर भी आज मेला भर रहा है। हमारे जोधपुर संवाददाता ने बताया कि रामदेवरा जाने से पहले श्रद्धालु यहां माथा टेक कर आगे बढ़ते हैं।
2: बाबा रामदेव जी का मेला उनके गुरु बालीनाथ जी के समाधि स्थल जोधपुर के मसूरिया मंदिर से शुरू हुआ। सुबह 4 बजे मंगला आरती के साथ मेले का औपचारिक आगाज हुआ। 108 दीपों से महाआरती की गई और 108 किलो पंचमेवे के लड्डुओं का भोग लगाया गया। समाधि स्थल पर बाबा रामदेव जी अपने गुरु बालीनाथ जी से भेंट करते हुए तस्वीर उकेरी गई, जिस पर सोने चांदी का वर्क कर पूजन किया गया। बाबा के दर्शनों के लिए हजारों श्रद्धालु दिन भर से मंदिर पहुंच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। मान्यता है कि बाबा रामदेव जी के रूणीचा धाम जाने से पहले जोधपुर स्थित गुरु बालीनाथ जी की समाधि के दर्शन करने से यात्रा सफल होती है। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: जैसलमेर के पोखरण रेंज में भारतीय वायुसेना कल से ड्रोनोथॉन 2026 आयोजित करेगी। 3 दिन के इस ड्रोनोथॉन में भारतीय उद्योग जगत की कंपनियां स्वदेशी ड्रोन और ड्रोन रोधी तकनीकों का विकास, परीक्षण और प्रदर्शन करेंगी। इस आयोजन का उद्देश्य घरेलू निर्माताओं को मानव रहित हवाई प्रणालियों और ड्रोन रोधी प्रणालियों में अपनी क्षमताओं और तकनीकी प्रगति को प्रदर्शित करने का अवसर देना है। ड्रोनोथॉन के जरिए मौजूदा जरूरतों के अनुरूप तकनीकी समाधान तलाशने और उनकी युद्धक प्रभावशीलता का आकलन करने में मदद मिलेगी। आयोजन को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। पुरुष क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 क्रिकेट सीरीज का पहला मैच आज खेला जाएगा। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाले इस मैच में श्रेयस अय्यर भारतीय टीम के कप्तान होंगे, जबकि तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। दूसरा मैच मंगलवार को और तीसरा तथा अंतिम मुकाबला गुरुवार को होगा। वहीं एशिया कप के महिला T20 क्रिकेट फाइनल में आज भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। दुबई में रात 8 बजे से खेले जाने वाले मैच में भारत ग्रुप ए में अपने सभी मैच जीतकर शीर्ष पर रहा है। भारत ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को हराया था, जबकि श्रीलंका की टीम ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का इकोसिस्टम है। नई दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन संपन्न हुआ। प्रदेश के 309 नगर निकायों के चुनाव के तहत कल होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी। रैली और विजयी जुलूस पर रोक रहेगी। रामदेव जयंती पर आज प्रदेश भर में धार्मिक उल्लास। गणेश चतुर्थी का पर्व कल, प्रथम आराध्य की आराधना को लेकर तैयारियां जोरों पर। और एशिया कप महिला T20 क्रिकेट का फाइनल आज भारत और श्रीलंका के बीच दुबई में खेला जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन

0: समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से डीग जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आरजू शर्मा ने तैयार किया है। नगरीय निकाय चुनाव के तहत जिले के 6 निकाय क्षेत्रों डीग, कामा, पहाड़ी, सीकरी, कुम्हेर और ब्रजनगर में मतदान शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ। मतगणना कल होगी। इन नगरीय निकायों में कुल 1,17,885 मतदाताओं में से 1,257,000 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कुल मिलाकर जिले में कुल 85.5% मतदान दर्ज किया गया। साइबर अपराधों से बचाव के लिए सितंबर महीने में साइबर सुरक्षित राजस्थान जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला स्तर पर अभियान की निगरानी कर रहे हैं। अभियान के तहत पुलिस शिक्षण संस्थानों में व्याख्यान, कार्यशालाएं, प्रश्नोत्तरी, सेमिनार और विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित कर साइबर सुरक्षा का संदेश दिया जा रहा है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों और पर्यटन स्थलों पर नुक्कड़ नाटक, पोस्टर, ऑडियो वीडियो संदेश और साइबर जागरूकता स्टॉल भी लगाए गए हैं। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत जिले ने बड़ी सफलता हासिल की है। जिले को हरियालो राजस्थान के तहत 6 लाख से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया था, जिसे पूरा करते हुए अब तक 12 लाख से भी अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। जिला वन अधिकारी सुरेश मिश्रा ने बताया कि जिले में 300 हेक्टेयर से भी अधिक का ग्रीन कवर बनाया जा चुका है, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही एक जिला एक वृक्ष योजना के तहत विशेष रूप से अर्जुन के पौधों को आम लोगों के बीच बांटा जा रहा है, ताकि औषधीय और छायादार वृक्षों की संख्या में इजाफा हो सके। जिले के 220 पंचायतों में 440 अमृत पोषण वाटिकाएं विकसित करने की भी योजना है। इस योजना के तहत बच्चों को कुपोषण से मुक्त किया जाएगा, साथ ही महिलाओं की आजीविका भी बढ़ाई जाएगी। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन सिंह ने बताया कि इन वाटिकाओं में ताजी जैविक सब्जियां, फल और औषधीय पौधे उगाए जाएंगे। इनका उपयोग मिड डे मील और महिलाओं तथा बच्चों के पोषाहार में होगा। विभाग आजीविका समूहों और ग्राम पंचायतों के साथ बैठक कर स्थान का चयन और कार्य योजना को अंतिम रूप देगा। मौसम बदलने के साथ ही इन्फ्लुएंजा और स्वाइन फ्लू जैसी मौसमी बीमारियों के मामले जिले में बढ़ गए हैं। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। जिले के सभी सरकारी अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वाइन फ्लू की दवाएं, आवश्यक जाँच और आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार सिंघल ने बताया कि समय रहते लक्षणों की पहचान और सावधानी बरतने से स्वाइन फ्लू के संक्रमण से बचा जा सकता है। तेज बुखार, गले में खराश, सूखी खांसी, सिर दर्द और मांसपेशियों में तेज दर्द स्वाइन फ्लू के प्रमुख लक्षण हैं। जिले में पशुओं में फैल रही लंपी स्किन डिजीज के मामले बढ़ने के बाद सरकार ने प्रभावित इलाकों में पशुओं की आवाजाही रोकने और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर भावना यादव ने पशुपालकों से अपील की है कि बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर नजदीकी पशु चिकित्सा केंद्र को सूचना दें, पशु बाड़े और उपकरणों की सफाई रखें तथा मृत पशु का सुरक्षित निस्तारण करें। वहीं पशुपालन विभाग ने जिले में पशु औषधि विक्रय केंद्र शुरू करने की तैयारी की है। इन केंद्रों पर पशुओं के उपचार के लिए गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं बाजार की तुलना में कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही पशुपालकों को मिनरल मिक्सचर, पशु पूरक आहार और अन्य जरूरी पशु चिकित्सा सामग्री भी एक ही स्थान पर मिल सकेगी। जिले में पिछले दिनों कई दिनों से बारिश का दौर बना हुआ है। कई इलाकों में भारी बरसात होने के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। कई निचले इलाकों में पानी भर जाने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं दूसरी ओर किसानों को खरीफ की फसल की चिंता सता रही है। ज्वार और बाजरे की पकी हुई फसलें बेमौसम की बारिश से खराब होने की आशंका बनी हुई है। प्रशासन ने किसानों को सलाह दी है कि वे अपनी कटी हुई फसलों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर सहेज लें, ताकि खराबे की आशंका कम हो सके। डीग जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है सिंझा भगतरा प्रादेशिक समाचार।

0: पहले खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कयो ब्रिक्स फगत देशा रो समूह नी बल्कि समाधान रो इकोसिस्टम है। नवी दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन पूर्ण। प्रदेश रा 309 नगर निकाय रा चुनाव रे तहत काले होण वाला वोटां री गिनती री सगली तैयारियां पूरी। रैली अरजीत रा जुलूस माथे रोक रे वेला। रामदेव जयंती माथे आज प्रदेश भर में धार्मिक उमाव। गणेश चतुर्थी रो त्योहार काले पहला आराधेरी आराधना ने लेर तैयारियां जोरां माथे। और एशिया कप महिला T20 क्रिकेट रो फाइनल आज भारत श्रीलंका रे बीच दुबई में खेलियो जायला। समाचार रे साथ है मैं शंभू सिंह और अबे समाचार विगतवार। नवी दिल्ली में ब्रिक्स देशों रो सम्मेलन आज कामयाब पूर्ण पूरो वेग्यो। दो दिन रो ई महत्व सम्मेलन रे दौरान नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाई जो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समापन जलसा में बोलता प्रतिभागी देशों री भागीदारी सारू आभार जतायो। प्रधानमंत्री कयो के ब्रिक्स फगत देशों रो समूह नहीं है बल्कि निपटारा रो एक इकोसिस्टम है जो लारला दिना री बतल ने और मजबूत करे है। श्री मोदी आवता ब्रिक्स शिखर सम्मेलन री मेजबानी सारू चीन ने शुभकामना देवता। सगला नतीजा ने भगत सर इन तरह रा कामा में बदलन री जरूरत माथे जोर दियो जिन रो जमीनी थर माथे असर दिखे। वना कयो के ब्रिक्स देश मिलने ओ तय करेला के ब्रिक्स रो ढांचो कागजी कार्रवाइया ने आगे बदने असल जिंदगी में ठोस असर करे।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: ध्यान जोगे के ओ शिखर सम्मेलन भारतीय सदारत माय वियो जिन रो खास मुद्दों लचीलोपन नवाचार सहयोग और स्थिरता सारू निर्माण राखी जो हो। प्रदेश रा 309 नगरीय निकाय माय विया चुनावा रा वोटां री गिनती काले करी जायला। स्ट्रांग रूम माय राखी जी ईवीएम माय कैद 38,889 उम्मीदवार रा चुनावी भाग्य रो फैसलो दोपहर ताई आवण री आस है। सवारा 8 बजे शुरू होने वाली वोटां री गिनती ने लेर सगली तैयारियां पूरी कर लीजी है। निर्वाचन आयोग रा निर्देश रह पछे निर्वाचन महकमो वोटां री गिनती ने साफ गोई स्वतंत्र और निष्पक्ष राखण सारू कई कदम उठाया है। मतदान कर्मियां ने पूरी तैयारी रे साथे भगत सर मतगणना केंद्र माथे पुगण रा निर्देश दीजिया है। केंद्र माथे मान्यता वाला प्रवेश पत्र धारी नहीं माय जावण री मंजूरी दी जायला। मतगणना रे दिन विजय जुलूस रैली निकालन माथे रोक रेवेला। काले गणेश चतुर्थी रा आयोजन ने देखता खास सावचेती बरती जावे। भड़काऊ नारा समर्थकारी भीड़ भेड़ीकरण माथे ही रोक लगाई जी है। ध्यान जोगो के 9 और 11 सितंबर ने दो चरणा माय पूरा विया मतदान रा पहला दौर माय 162 निकाय माय 76.42% वोट पड़िया जबकि दूजा चरण माय 147 नगर निकाय माय कोई 71% वोट पड़िया। निकाय माय अध्यक्ष रो चुनाव 21 सितंबर ने करियो जायला। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कयो है कि देश में कोई 87,000 स्वच्छता कार्मिका ने निजू हिफाजती उपकरण किट PPE दिरिजिया है। मंत्रालय रा सचिव सुधांशु पंत बतायो कि कामकाज रे हिफाजती माहौल और स्वास्थ्य हिफाजत तय करण सारू 76,000 कार्मिका ने न्यारा न्यारा स्वास्थ्य बीमा योजना वाला दायरा में लाई जा है। वना कयो सरकार स्वच्छता कार्मिका ना कल्याण और सम्मान सारू बरोबर कदम उठा रही है। इस सारू कार्मिका नी विगतवार रूपरेखा तैयार करण हिफाजती उपकरण देवण स्वास्थ्य बीमा कवरेज रोकड़ मदद और हिफाजत रा बुनियादी ढांचा ने मजबूत करण जैसा कदम उठाया जावे। श्री पंत बतायो के 983 स्वच्छता कार्मिका सारू कोई 34 करोड़ रुपया री एडवांस पूंजीगत सब्सिडी काढ़ी जी है। आ मदद मशीनी स्वच्छता अभियान ने बढ़ावो देवण रे साथ ही कार्मिका सारू आजीविका रा नुआ मौका तय करे है।

0: भारतीय रेल अगस्त 2026 रे दौरान माल ढुलाई में सालाना आधार माथे 5.4% चौकी बढ़त दर्ज करी है। ई बगत में रेलवे 137.9 मिलियन टन मालरी ढुलाई करी, जबकि अगस्त 2025 में ओ आंकड़ो 130.9 मिलियन टन रियो हो। रेल मंत्रालय बतायो कि अगस्त 2025 री तुलना में ई बार माल ढुलाइयों मिलन वाली आमद में 6.27% बढ़वार हुई है, जो रेलवे रा माल ढुलाई कारोबार में बरोबर मजबूती हालात ने दर्शावे है। मंत्रालय मुजब लारला मीना 5 नुआ गति शक्ति कार्गो टर्मिनल शुरू करी जा, इन रे पछे कुल कार्गो टर्मिनल री तादाद बदने 149 वेगी है। मंत्रालय बतायो के लारला मीना 14 अमृत भारत विशेष रेलगाड़िया ने रोज री सेवा में बदली जा, जीणो देश में कुल अमृत भारत सेवा में री तादाद बदने 86 वेगी है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान माथे सुन सको हो। इनके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in माथे समाचार सुन सको हो और इनों से जुड़िया फोटो और वीडियो देख सको हो। गणेश चतुर्थी रो त्यौहार काले सिरदारे साथ मनायो जायला, ई मौके पहला आराध्य री पूजा अर्चना ने लेर लोगा माय खास उमाव देखण ने मिले। गणेश मूर्त और पूजन री चीजा खरीदण ने लेर बाजारा माय भीड़ देखी जावे। माटी और पत्थर बनी मूर्तां रे साथ ही गोबर और जूट री इको फ्रेंडली मूर्ति चलन माय है। गणेश चतुर्थी रे साथ ही 10 दिन रा गणेश उत्सव रा आयोजना रोई काले विधि पूर्ण शुरुआत वेला, घर घर गणपति बप्पारी चौकियां थर्पण रे साथ ही ठोर ठोर गणेश पांडाली सजाया जावे। इनो पहला आज पहले सिंझा प्रदेश भर रा गणेश मिंद्रा माय मोवनी रोशनी करी जी है। जयपुर रा गढ़ गणेश, रणथंबोर रा त्रिनेत्र गणेश, कोटा रा खड़े गणेश, अजमेर रा खोड़ा गणेश, पाली रा सिद्धपीठ गणेश मिंदर और बीकानेर रा किलारा मिंदर समेत सगला छोटा मोटा गणेश मिंदरा में गोरी पुत्र रा पूजन और तिलक नलेर खास तैयारियां करी जी है। राजधानी रा मोती डूंगरी मिंदर में आज गणेश जी रे मेहंदी चढ़ाई जायला, अठे काले रा आयोजन ने देखता मंदिर कमेटी और जिला प्रशासन कानियो करड़ा बंदोबस्त करी जा है। महाराज सवाई माधोपुर खबरनवीस बतायो कि रणथंबोर रा त्रिनेत्र गणेश मिंदर में भरीजरिया मेला में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। अभ्यारण्य वेर जावण वाला रस्ता में लोगों ने जंगली जिनारों हिफाजतु राखण सारू जंगलात महकमो और जिला प्रशासन सावचेती मोड माते है।
1: त्रिनेत्र गणेश के दरबार में ढोक लगाकर परिवार की सुख समृद्धि के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पदयात्रियों और भक्तों के आने का यह सिलसिला रात भर चलेगा। कल गणेश चतुर्थी के अवसर पर सुबह मंगला आरती और दोपहर में जन्म की झांकी मेले का मुख्य आकर्षण रहेंगे। पुलिस और प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिजली, पानी, चिकित्सा, रसद के विशेष प्रबंध किए गए हैं। रेलवे की ओर से मेला स्पेशल गाड़ियां चलाई जा रही हैं, जबकि परिवहन विभाग की ओर से रेलवे स्टेशन से गणेश धाम तक रियायती दरों पर बसें चलाई जा रही है। धर्मार्थ संगठनों की ओर से भी अनेक भंडारे लगाए गए हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
0: भादवारी दूज माथे आज लोक देवता बाबा रामदेव री जयंती प्रदेश भर में धार्मिक उमावरे साथ मनाई जावे। जैसलमेर रा रामदेव रा माय सालाना मेलो पूरा परवान माथे है। सवारा पंचामृत अभिषेक और शिखर माथे झंडारोहण रे साथ मेला विधिपूर्ण शुरुआत हुई। दशमीताएं चालन वाला ई मेला में प्रदेश रे अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश समेत दूजा राज्यों की घनी तादाद में श्रद्धालु बाबा रामसा पीर रा जयकारा रे साथ पूग रिया है। बाबा रामदेव रा प्राकट्य दिवस माथे जोधपुर रा मसूरिया रा बाबा बालीनाजी री समाधि माथे आज मेलो भरी जय। महाराज जोधपुर खबर नवीस बतायो के रामदेव रा जावणो पहला श्रद्धालु अठे माथो टेक ने आगे बधे है।
2: बाबा रामदेव जी का मेला उनके गुरु बालीनाथ जी के समाधि स्थल जोधपुर के मसूरिया मंदिर से शुरू हुआ। सुबह 4 बजे मंगला आरती के साथ मेले का औपचारिक आगाज हुआ। 108 दीपों से महाआरती की गई और 108 किलो पंचमेवे के लड्डुओं का भोग लगाया गया। समाधि स्थल पर बाबा रामदेव जी अपने गुरु बालीनाथ जी से भेंट करते हुए तस्वीर उकेरी गई, जिस पर सोने चांदी का वर्क कर पूजन किया गया। बाबा के दर्शनों के लिए हजारों श्रद्धालु दिन भर से मंदिर पहुंच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। मान्यता है कि बाबा रामदेव जी के रूणीचा धाम

0: जाने से पहले जोधपुर स्थित गुरु बालीनाथ जी की समाधि के दर्शन करने से यात्रा सफल होती है। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: सितंबर मिनारा पहला पखवाड़ा रे बीतता प्रदेश माए मानसून री गतिविधियां आज पणियोड़ी है। मौसम महकमा कानियों आवता दिना बिरखारा दौर रे चालन री आस जताई जी है। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो के बंगाल री खाड़ी माए बण्या कम दबाव रा तंत्र राज्य माए बिरखारो नुओ दौर शुरू हुयो है, जिनरो असर 16 सितंबर ताई बण्या रहण री आस है। तंत्र रा असर अगुणी और दिखणा हल्का माए बिरखारा आसार है। ई दौरान उदयपुर संभाग रा जिला माए कठे कठे भारी बिरखाई री आस है। ई बीचे आज जयपुर समेत अगुणी जिला माए कठे कठे छांटा छिड़को और हल्की बिरखाओं मौसम खुशनुमा बण्योड़ो है। बांसवाड़ा माए आज दूजे दिन ही आधा घंटा तेज बिरखावी। एशिया कप क्रिकेट रा महिला T20 फाइनल में आज भारत रो मुकाबलो मौजूदा चैंपियन श्रीलंका रे साथ है वेला। दुबई में रात 8 बजे खेलिया जाने वाला मैच में भारत ग्रुप ए में आपरा सगला मैच जीतने चोटी माथे रियो। भारत सेमीफाइनल में बांग्लादेश ने हराया, जबकि श्रीलंका री टीम पाकिस्तान ने हरार फाइनल में ठोड़ बनाई है। जैसलमेर रा पोखरण रेंज में भारतीय वायुसेना काले ड्रोनाथोन 2026 वेला। 3 दिन रा ई ड्रोनाथोन माए भारतीय उद्योग जगत री कंपनियां स्वदेशी ड्रोन और ड्रोन रोधी तकनीका रो विकास परीक्षण और नुमाइश करेला। ने अबे आखिर माए खास समाचार आप एक कर फिर सुन ली रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कयो, ब्रिक्स फगत देशा रो समूह नहीं बल्कि समाधान रो इको सिस्टम है। नवी दिल्ली माए ब्रिक्स सम्मेलन पूर्ण। प्रदेश रा 309 नगर निकाय रा चुनाव रे तहत काले होण वाला वोटां री गिनती री सगली तैयारियां पूरी। रैली अरजीत रा जुलूस माथे रोक रे वेला। रामदेव जयंती माथे आज प्रदेश भर में धार्मिक उमाव। गणेश चतुर्थी रो त्योहार काले। पहला आराध्य री आराधना ने लेर तैयारियां जोरा माथे। एर महिला कप T20 क्रिकेट रो फाइनल आज भारत श्रीलंका रे बीच दुबई में खेलो जायला। इंडर साथ ही प्रादेशिक समाचार और बुलेटिन अटे पूरो। मारो आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजे हिंदी में प्रसारित करो जायला। नमस्कार।

0: लिंक सिक्योर है, सेंडर आपका बैंक ही है। केवाईसी अपडेट के लिए अनजान लिंक खोलना मतलब अनजान लोगों के लिए अपने अकाउंट का दरवाजा खोलना। झूठी जल्दबाजी में ना फंसिए और फर्जी केवाईसी अपडेट लिंक से बचिए। आरबीआई कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। संध्या के ठीक 7 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम भारती।

0: ग्राम भारती कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर। सुने सुनाए,
1: पीत कांति लाएं,
0: उन्नत तकनीकें अपनाएं,
1: सरसों का उत्पादन बढ़ाएं।
0: सुनो किसानों, चाहे खेत हो बेकार,
1: सरसों उपजे शानदार,
0: सरसों खेती का उपचार
1: बढ़ाने, सरसों की पैदावार,
0: खेत पौधे और बीजोपचार।
1: सुनते रहो ये कार्यक्रम,
0: अपना कर उन्नत तकनीकें, बढ़ाओ सरसों का व्यापार।
1: तब जो आए पीत कांति, होगा हम सबका उद्धार
0: और प्रदेश की खुशहाली का
1: तब होगा सपना साकार।
2: ग्राम भारती कार्यक्रम सुनवा वाला सगला हेतालवा ने जखा दूर दराज गांव ढाणी रे माई ने बैठे हुआ तित बंदिया वो कार्यक्रम सुने है। आप सगला हेतालवा ने गणे मान सुपर बुद्धियाल वरमारो राम राम और निवण प्रणाम सा। भाई लोगों क्यों जावे के तनसू से

0: वाह करे और मुख सू बोले सांच, सात दीप और नौ खंड में कदे ने आवे आंच, कदे ने आवे आंच सांच की शोभा फैले, और सुने संता की सीख पाप तज निर्भय खेले, दुख छुटे सब सुख मिले और लगे ज्ञान बीच मन, राम बक्स कवि कहत है होत पवित्र तन। बिल्कुल भाई लोग जगह प्रकृति री सेवा के मायने लागेड़ा है, या तीव काल के मायने जगह मानव मात्र के प्रति दया भाव रखियो, सेवा को भाव रखियो, और प्रकृति री जगी धारा वेवे भी धारा रे मायने बेर मान के री सेवा करी, जिया जुण री सेवा करी, मारो नाव त्यू काल रे मायने जिंदा रेवे। और राजस्थान री आपने भूमि री आप अगर बात करा तो आ धरा तो अस्सी दरी धरा है, कैठे अनेक महापुरुष पैदा होया, जखा टेम टेम रे ऊपर ई जिया जून मान खेरी सेवा के मायने आपरो पूरो जो जिंदगानी है बिना लगा दी। और बसियाई महापुरुष क्यों भी जावे का अपने राजस्थान री भूमि तो पांच पीरारी भूमि रे नाम सु जानी जावे, तो पांच पीरा रे मायने अपना पश्चिमी राजस्थान का जन जन का आराध्य लोक देवता बाबा राम साहब पीर महाराज के नाम से जाने जावे, जखा बाबा रामदेव जी आज जयंती आखी देश रे मायने मनाई जावे है, विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान भी कैसा कैसा के पंजाब हरियाणा और भी जगह जगह राज्य है बासू, लगभग देश सू हर दूजा राज्य सू भी जगह बाबा का भक्त है, बे नाचता गाजता गाता और हतारे मायने बाबा री जगी ध्वजा है बेलिया, बाबा रा जयकारा के सागे पूरो राजस्थान बाबा का जयकारा सू टाइम रे मायने गूंज रे है। आज बाबा री बीज और बाबा री बीज री पूरे आकाशवाणी परिवार की तरफ सू जगह भाई लोग सुन रहे हैं सगला ने बाबा की बीज की मंगल कामनावा और बधाई, ओ बाबा री बीज और जन्म दिवस सगला के जीवन के मायने हरक और उमाव ले रहे, आप जगह भी आपरा सपना है बाबो सा के जीवन रे मायने उजास बनायो रखे, और हमेशा सदबुद्धि मिले अपन मांगा जीवन सो आप सीख सका के भी हमेशा जिया जून दिन दुखिया रे वास्ते संघर्ष करियो, और जिंदगानी रमाई ने अपन आगे बढ़न रो अपन एक मार्ग दिखायो, ये वास्ते हमारे पद चिन्हारी अपन पूजा करा, तो बाबू सब सबरी भली करे ई आशा और उम्मीद आप ई प्रकार से आप रखा, और जिंदगानी रमाई ने हमेशा आप आगे बढ़ता रहवा।
1: सुने सुनाए,
2: पीत कांति लाएं,
1: उन्नत तकनीकें अपनाएं,
2: सरसों का उत्पादन बढ़ाएं।
1: सुनो किसानों, चाहे खेत हो बेकार,
2: सरसों उपजे शानदार,
1: सरसों खेती का उपचार
2: बढ़ाने, सरसों की पैदावार,
1: खेत पौधे और बीजोपचार,
2: सुनते रहो ये कार्यक्रम,
1: अपना कर उन्नत तकनीकें, बढ़ाओ सरसों का व्यापार,
2: तब जो आए पीत कांति होगा हम सबका उद्धार,
1: और प्रदेश की खुशहाली का
2: तब होगा सपना साकार।
0: और भाई लोग अब कार्यक्रम ने जानकारी की तरफ लेट चला, और सरसों की उपयुक्त किस्म और खेत की तैयारी ई विषय पर जानकारी अपन डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा जी दे रहे हैं, आप प्रधान वैज्ञानिक है कृषि प्रसार शिक्षा सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर सू अपन जानकारी देवे, तो सुना जानकारी।
3: श्रोताओं, आज हमारे साथ है डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा, आप प्रधान वैज्ञानिक कृषि प्रसार भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर सू आप पधार्या, और आज आप जानकारी ले वाला सरसों की उपयुक्त किस्म और खेत की तैयारी आप किन भांति करा, तो सबसे पहले करा पावना रो स्वागत, राम राम सा।
4: राम राम किसान भाइयों।
3: डॉक्टर साहब, प्रश्न मारो जो छे और शायद करसा बाहर बड़ा को भी होवे लो कि सरसों की बत्ती पैदावार अगर आप न चाहे जे करसा बाहर बढ़ाना चाहे जे चोखी जो किस्म छे वह बताओ, माको नाम बताओ सर।
4: हाँ देखिए किसान भाइयों, ये बिल्कुल बात सही है कि किसी भी फसल से अधिकतम उत्पादन लेने के लिए जरूरी है कि जो अन्य कृषि क्रियाओं के साथ साथ आप एक अच्छे बीज की और अच्छी किस्म का चयन करें
3: जी,
4: क्योंकि किस्म की जो उत्पादन क्षमता होती है वो अलग अलग कारकों के ऊपर निर्भर करती है, और ये भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान द्वारा अभी तक विभिन्न परिस्थिति हेतु कई किस्मों का विकसित किया गया है
3: जी।
4: जैसे कि अगर आप देखें कि कुछ हमारे देश में ऐसे इलाके हैं जहां पर सरसों की बुआई पहले हो जाती है, कुछ ऐसे हैं जहां पर खरीफ की फसल की कटाई करने के बाद में सरसों की खेती की जाती है, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी की सुविधा नहीं है तो वहां पे असिंचित अवस्था में खेती की जाती है, कुछ हमारे देश के अंदर ऐसे भी इलाके हैं जहां पर सरसों की खेती थोड़ा सा देरी से होती है।

0: यानी कि नवंबर तक भी चली जाती है
1: जी।
0: तो ये जो विभिन्न परिस्थितियां, इन परिस्थितियों के लिए जो भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान है उसके अंतर्गत अखिल भारतीय राई सरसों समन्वित अनुसंधान परियोजना चल रही है, जहां पर विभिन्न अनुसंधान केंद्रों द्वारा जो हमारे देश भर में है और वहां पे इन किस्मों का विकास किया जाता है और उन्हें अलग अलग परिस्थितियों के लिए चिन्हित किया जाता है। जहां तक सरसों की सबसे अच्छी किस्म का सवाल है, तो किसान भाइयों ये ध्यान रखो कि कोई भी एक किस्म सभी परिस्थितियों में एक जैसा उत्पादन नहीं देती है
1: जी।
0: और किस्मों की जो उत्पादन क्षमता है वो जलवायु पे, भूमि पे और आप कौन कौन सी तकनीकें अपना रहे हैं वैसे कई कारकों पे ऊपर निर्भर करती है। हालांकि जो कुछ किस्में ऐसी है जिन्हें हमें भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान द्वारा किसानों के लिए अनुशंसित की गई है, मैं आप किसान भाइयों को ही सलाह देना चाहूंगा कि जब भी आप किस्म का चयन करें तो आप ये देखें कि आपके क्षेत्र की जलवायु कैसी है, वहाँ कितने गर्म रहता है या ठंडा रहता है, साथ के साथ फसल पद्धति क्या है, यानी कि आप खरीफ में खेत खाली रख के सरसों खेती कर रहे हैं या खरीफ में किसी फसल की बुआई करके उसकी कटाई के बाद खेती कर रहे हैं, तो इन सब चीजों को देखना पड़ेगा। भूमि का प्रकार कैसा है, आपके पास सिंचाई की उपलब्धता है या नहीं है, और मिट्टी के आधार पर ही उचित किस्म का चयन करें ताकि आप सरसों के उत्पादन में वृद्धि करके लाभ कमा सकते हैं। अब आप देखें किसान भाई, तो सरसों अपने रबी की प्रमुख तिलहनी फसल है और ये भारतीय अर्थव्यवस्था में किसका विशेष स्थान है
1: जी।
0: और इसकी एक विशेषता ये भी है कि कम सिंचाई और कम लागत में दूसरी फसलों की अपेक्षा अधिक लाभ देती है। और अभी हमारे भारत के अंदर चूंकि तिलहनों का उत्पादन कम है तो भारत सरकार द्वारा भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, और इसका एक फायदा और ये है कि अगर आप इसकी एकल खेती नहीं कर पाए तो मिश्रित खेती भी आप कर सकते हैं, दो फसलीय चक्र में भी आसानी से इसकी खेती की जाती है। और अच्छी किस्म का चयन करके आप करीब 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टर सरसों की पैदावार ले सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि भाई कौन सी किस्म, जैसे आपने सवाल किया कि अलग अलग परिस्थितियों के लिए है, तो जो हमारे सरसों की विभिन्न इलाकों के लिए जो किस्मों की अनुशंसा की गई है उसको कई श्रेणी में बांटा है
1: जी।
0: जैसे कि एक अवस्था होती है सिंचित और समय पे बुआई के लिए है, तो सिंचित और समय से बुआई का मतलब ये होता है कि जैसे आपका 20 अक्टूबर तक और अधिकतम 25 अक्टूबर तक जिन क्षेत्रों में बुआई हो जाए और आपके पास एक सिंचाई की सुविधा है, तो उन क्षेत्रों के लिए हमारे यहाँ से जो अनुशंसित की गई है उसमें से मुख्य किस्में गिरराज है, फिर बीपीएम 1825 है, आरएच 1975 है, आरएच 749 है, पीएम 37 है, तथा कुछ संकर किस्में भी है जिनमें से मुख्य एनआरसी एचबी 506 है, आरएचएच एक उपयुक्त किस्म है। तो किसान भाइयों ये वो किस्में है जो नवीनतम है
1: जी।
0: वैसे तो बहुत सारी किस्में हैं, पुरानी भी है, लेकिन मैं आपको नवीनतम किस्मों की जानकारी दे रहा हूं। तो ये तो हो गया सिंचित और समय से बुआई के लिए। अगर आपका असिंचित क्षेत्र यानी कि आपके पास सिंचाई के कोई साधन नहीं है और जो वर्षा ऋतु का जो पानी है उसी को आपने संरक्षण करके अगर सरसों खेती करना चाहते हैं, तो ऐसी अवस्था के लिए हमारे पास में DRMR 1165-40 है, RH 1424 है, आरएस 725 है, आरएस 761 है, आरएच 406 है, और एक हमारे गंगानगर के केंद्र है राजस्थान के अंदर ही आरजीएन 298 में, ये उपयुक्त किस्म है असिंचित क्षेत्र के लिए। इसके अलावा किसान भाइयों कई क्षेत्र ऐसे भी आते हैं जहां पर किसानों के लवणीय और क्षारीय भूमि है या लवणीय क्षारीय पानी है, तो अगर ऐसी आपके यहाँ परिस्थिति है तो इन किस्मों की बजाय आप CS 58 और CS 60 किस्म का चयन करें। और ये हमारा करनाल में एक संस्थान है, भारतीय केंद्रीय लवणता अनुसंधान संस्थान है, तो वहां से इन किस्मों को आप प्राप्त कर सकते हैं। वैसे अब आप बात करें कुछ ऐसा भी क्षेत्र जो अगेती बुआई करना किसान चाहते हैं, लेकिन हालांकि राजस्थान में ऐसा क्षेत्र नहीं है, फिर भी अगर कोई किसान भाई सितंबर के अंदर ही कोई परिस्थिति ऐसी बनती है किसी जिले के अंदर है, तो वहां पर आप पीएम 27, पीएम 28 और इस तरह की किस्मों की बुआई कर सकते हैं। एक किस्म की परिस्थिति ये भी आती है कि किसान भाइयों आपने देखा होगा कई बार खरीफ की फसलों की कटाई बहुत देर से होती है
1: जी।
0: जैसे अक्टूबर तक कटाई हो रही है तो अक्टूबर के लास्ट तक या 10-15 नवंबर तक अगर आपको बुआई करनी है तो वहां पर आप देरी से बुआई के लिए जो उपयुक्त किस्म उनका चयन करें, और उसके लिए हमारे संस्थान द्वारा ब्रजराज है, राधिका है, बीपीएम 11 है, NRC HB 101 है, RG

0: 236 है, ये एक उपयुक्त किस्म है देरी से बुआई के लिए। और इनके साथ साथ किसान भाइयों, हमने कुछ गुणवत्ता वाली सरसों की किस्मों का भी विकास किया है। क्वालिटी की किस्में बोलते हैं जिसमें कि रूसिक एसिड कम होता है और खली में ग्लूकोसिनोलेट की मात्रा कम होती है। अगर आप उन क्वालिटी वाली किस्मों को करना चाहते हैं तो उसके लिए PM 32 है, PM 34 है, RS 1706 है। ये जीरो क्वालिटी की, यानी कि इनमें रूसिक एसिड कम होता है, 2% से कम है। और इसके अलावा 00 क्वालिटी की, यानी कि जिसमें रूसिक एसिड भी कम है और ग्लूकोसिनोलेट की मात्रा भी कम है, वो PM 31, PM 33 है, PDZ M 35 है, PDZ M 36 है। तो ये किस्में हैं जो गुणवत्ता वाली है। तो अब आप देख सकते हैं किसान भाइयों, यह समझने की बात यह है कि हर परिस्थिति के लिए अलग किस्म है। एक ही परिस्थिति के लिए कोई ऐसी किस्म नहीं है जो हर परिस्थिति उपयुक्त हो। तो आप अपनी परिस्थिति, सिंचाई के साधन, मिट्टी, जलवायु के आधार पर इन्हीं में से आप किस्मों का चयन करें तो आपके उत्पादन में बढ़ोतरी होगी।
1: जी डॉक्टर साहब, आप बहुत ही सरल शब्दा का मायना है। सरसों की चोखी किस्म कौन सी आपने लिए अपना क्षेत्र के लिए, अपना कर्सा बाहर बढ़ा के लिए रहवेली समझाया। सागे ही आपसे ये भी जानबो चाहवाला कि अपना जो कर्सा बाहर बढ़ा चाहे अगर किस्मा को चयन करे तो किन भात की बाता को ध्यान रखे जिससे की वाने हानि नहीं बल्कि लाभ उठावे।
0: देखो किसान भाइयों, एक तो ये याद रखें, जैसा कि हमने पहले कहा आपको कि भाई आपकी जो परिस्थिति का आकलन कर ले कि आप कब बुआई करना चाह रहे हैं, सिंचाई के साधन कैसे हैं, मिट्टी का प्रकार कैसा है, आपका फसल पद्धति कैसी है, उसके हिसाब से किस्म का चयन करें जो मैंने बताया है कि अभी आपको किस्मों का उनमें से चयन करना चाहिए। अब जहाँ तक बात है तो एक तो ये ध्यान रखें किसान भाइयों कि हमेशा एक अच्छे संस्थान से बीज का क्रय करें। कई बार क्या होता है, बाजार में आप जाएंगे और उसका बीज वो आपको किस्म कोई बोलेगा, दे कुछ और देगा। तो एक तो किसी भी दुकान वाले से पक्का बीज लें जिसके ऊपर आप विश्वास करते हैं, चाहे वो दुकान वाला हो, चाहे कोई सरकारी संस्थान हो, कोई कृषि विज्ञान केंद्र हो या कृषि विभाग राजस्थान राज्य बीज निगम हो, यहाँ से आप इन किस्मों को अगर लेते हैं तो उससे एक शुद्धता की एक विश्वास रहता है। दूसरा, हमेशा आप प्रमाणित बीज का ही उपयोग करें कि जब भी आप देखें कि वो प्रमाणित बीज होना चाहिए। तीसरा, जब भी आप बीज का चयन करें, किस्म का चयन करें, तो ये याद रखें कि आपका जो बीज है बुआई से पहले उस बीज को आप उपचारित जरूर करें। हालांकि आजकल कुछ संस्थानों द्वारा बीज को उपचार करके भी दिया जा रहा है, तो ये भी आप जब बीज को खरीदारी करते हैं तो आप पता कर लें। तो इस तरीके से इन बातों का ध्यान रखने, अपनी परिस्थिति के अनुरूप और अपना जो ये किस्मों का चयन करने के बाद में बुआई के समय के हिसाब से उसमें बुआई करें, तो इन बातों का आप ध्यान रखें।
1: जी डॉक्टर साहब, अगर भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान सु अगर आपने चोखो बीज चाहिए और उचित मात्रा में चाहिए तो किन भांति आप ने प्राप्त हो सके, कर्सा बाहर बढ़ाने व ले सके वह बताओ सा।
0: हाँ देखिए किसान भाइयों, हमारे संस्थान द्वारा, हमारा संस्थान भरतपुर में सेवर के अंदर स्थित है और हम प्रतिवर्ष किसानों को जो भी प्रचलित उन्नत किस्में होती है उसका बीज उपलब्ध करवाने का प्रयास करते हैं। और इस साल भी 15 सितंबर से हमारे यहाँ बीज पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है और वर्तमान में संस्थान पर ये जो गिरराज किस्म है वो उपलब्ध है। DRMR 1165-40 उपलब्ध है, BPM 11 हमारे पास में उपलब्ध है, BPM 1825 हमारे पास में उपलब्ध है और इसके अलावा DRMR 150-35 भी उपलब्ध है जो देरी से बुआई के लिए कुछ क्षेत्रों के लिए अनुशंसित की गई है। फिर राधिका हमारे पास में उपलब्ध है, NRCHP 101 उपलब्ध है। ये बीज हमारे पास में उपलब्ध है और 15 सितंबर से हम बीज पखवाड़े के दौरान जब तक हमारे पास में बीज रहेगा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर हम देंगे। और इसमें ये ध्यान रखें किसान भाइयों कि अभी फिलहाल जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर ही आपको ये बीज लेना पड़ेगा। हाँ इतना कर सकते हैं कि जैसे एक किसान भाई अपना एक समूह, मान लीजिए आपका कोई FPO है या कोई आपका 8-10 किसान एक साथ लेना चाहते हैं तो वो एक या दो किसान आके ही उनका बीज भी हम ले सकते हैं, हम उनको उपलब्ध करवा देंगे। तो यही तरीका है कि जो आप 15 सितंबर के बाद से कभी भी हमारे संस्थान में आके 10 से 5 और वो बीज ही आप प्राप्त कर सकते हैं इन किस्मों का।
1: जी डॉक्टर साहब, आप बीज की किस्म बताई, किन भात को आपने ध्यान रखना है ये चीज अभी आप बताई और कठेसु आपा बीज जो छे प्राप्त कर सका ये भी आप बताई। सागे ही आपसे जानबो चाहवाला कि अगर माटी की बात करा तो सरसों का खेती करताई

0: किण भात की माटी उपयुक्त मानी गई छे और खेत की तैयारी किण भाती करा वह बताओ सा।
1: देखिए किसान भाइयों, ये बिल्कुल सही है कि हम मिट्टी को माँ कहते हैं, और जैसे कि हमने कहा कि अच्छे किस्म का चयन कर लिया, फिर अच्छे प्रमाणित बीज का चयन कर लिया, बीज को आपने उपचारित भी कर लिया और समय पे बुआई भी कर ली, उसके बाद जो 4 महीने तक फसल रहेगी वो आपकी उसी मिट्टी में रहेगी। तो इसलिए ये जरूरी है कि हर फसल के लिए प्रकृति ने कुछ मिट्टी के प्रकार बनाए हैं कि कोई फसल किसी तरह की मिट्टी में ज्यादा उत्पादन देती है, कोई दूसरी फसल किसी दूसरी मिट्टी में अच्छा उत्पादन देती है। लेकिन सरसों की एक विशेषता यह है कि ये विभिन्न प्रकार की मिट्टी या भूमि में भी इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। अगर मैं सबसे अच्छी मिट्टी की बात करूं तो किसान भाइयों, जहां पर भूमि दोमट है वहां पर ये सबसे अच्छी किस्म होती है, जिनका पीएच मान भी करीब 7 हो, यानी कि एक तरह से न्यूट्रल होगी, तो वहां पर इसकी खेती अच्छी तरह से कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि अगर इसकी उपज आप चाहें तो हल्की दोमट से चिकनी दोमट मिट्टियों तक में भी इसकी खेती की जा सकती है। वैसे तो हर तरह की मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन अगर ये मिट्टी है तो बहुत ही अच्छी है, और दूसरी मिट्टी में होगा तो कुछ मिट्टी का प्रबंधन करके उसको अच्छी तरह से मैनेज करके भी आप कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, पीएच मान 7 होना चाहिए। अगर आपके सारे भूमि है लवणीय भूमि है तो उनका आप प्रबंधन करें कि किस तरीके से पीएच मान को न्यूट्रल करने की कोशिश करें। अगर राजस्थान में हालांकि ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन भारत में कई जगह ऐसी स्थिति है कि अम्लीय भूमि भी हो सकती है, तो वहां पे लाइम का प्रयोग करके भी उसको पीएच मान को थोड़ा बढ़ाएं। बहुत ज्यादा अगर अम्लीय भूमि होगी, क्षारीय भूमि होगी, तो ये एक तरह से मिट्टी उपयुक्त नहीं है और इस पे उत्पादन पे विपरीत प्रभाव पड़ेगा। हालांकि दूसरी फसलों के मुकाबले लवणीय भूमि क्षारीय भूमि में भी अच्छी पैदावार देती है, और जैसा कि अभी मैंने पूर्व में भी कहा था कि अगर ऐसी जगह है तो आपको किस्म का जो चयन है वो हमारे लवणीय और क्षारीय भूमि के लिए भी, जैसे CS58 है, CS60 है, इन किस्मों का आप चयन कर सकते हैं। साथ के साथ ये भी ध्यान रखें कि इसको कम पानी की आवश्यकता होती है
0: जी,
1: तो खेत में पानी नहीं भरा रहना चाहिए, और अगर लवणीय है तो आपके खेत में कुछ समय तक पानी भरें जिससे लवण पानी के साथ घुलकर मिट्टी के नीचे चले जाए। और जहाँ की जमीन क्षारीय है वहाँ प्रति तीसरे वर्ष आप जिप्सम 5 टन प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग करना चाहिए, और जिप्सम की आवश्यकता आपका पीएच मान कितना उस हिसाब से अलग अलग हो सकती है। लेकिन ये ध्यान रखें किसान भाइयों कि जिप्सम का प्रयोग अगर आप क्षारीय भूमि को थोड़ा न्यूट्रल करने के लिए कर रहे हैं तो उसको मई जून में जमीन में मिला देना चाहिए, ताकि फिर जो बारिश होती है और उसके बाद में उसमें क्रियाएं होकर आपके क्षारीय भूमि का एक अच्छा मैनेजमेंट हो जाता है। दूसरा आपने पूछा सवाल कि खेत की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, तो देखो किसान भाइयों, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा है कि इसकी खेती 2 तरीके से की जाती है राजस्थान में। एक तो किसान भाई ऐसे होते हैं, कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे खरीफ में कोई फसल नहीं लेते हैं, और समय पे यानी कि सितंबर लास्ट से लेके अक्टूबर प्रथम सप्ताह से बुआई शुरू कर देते हैं
0: जी।
1: तो अगर आप इस तरीके की खेती कर रहे हैं तो आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा खेत की तैयारी के लिए कि जब भी हमारे खेत में बारिश होती, अच्छी बारिश हो, तो अच्छी बारिश के बाद में आपको क्या करना है कि नमी के संरक्षण पे विशेष ध्यान देना है। तो अच्छी बारिश के बाद में जब भी खेत जुताई लायक हो जाए तो जुताई लगाएं और पाटा लगाएं, तो नमी संरक्षण बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो संरक्षित नमी है उसी में हमको बुआई करनी है और उसी के अंदर आपको इसमें अंकुरण होना चाहिए। अच्छा, अगर संभव हो तो खेत की जुताई शाम के समय करके खुला छोड़ दें, ताकि रात्रि में अगर ओस वगैरह है तो उससे भी कुछ नमी मिल जाती है, और प्रातः धूप तेज होने से पहले ही पाटा जला दें। और जब अंतिम बारिश हो जाए, जब आपको लगे, हालांकि हमारे को प्रिडक्शंस भी आजकल हमने देखा है कि मौसम विज्ञान विभाग काफी हद तक सही करता है, लेकिन आप ये देखें कि अगर 15 सितंबर के बाद में कोई अगर प्रभावी बारिश हो रही है तो उसके बाद में आप गहरी जुताई करके पाटा लगाकर नमी का संरक्षण कर दें, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक बुआई कर दें। हालांकि ये ध्यान रखें कि उस समय तापमान भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप 15-20 अक्टूबर तक बुआई कर सकते हैं, लेकिन ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके खेत में कितनी नमी है, क्योंकि आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा नमी और तापमान का। क्योंकि मान लीजिए आपके नमी बिल्कुल सूखती जा रही है तो आपको थोड़ा सा बीज की मात्रा ज्यादा रख के भी आप बुआई कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या होता है कि एक स्थिति ये होती है कि जब आपने कोई खरीफ में बाजरा कर रखा है, ज्वार कर रखा है, ग्वार की फसल कर रखी है, तो अगर आप ये फसलें करते हैं तो इन फसलों की कटाई के तुरंत बाद 2 बार आप करीब कल्टीवेटर से आड़ी जुताई करें, मिट्टी को भुरभुरा बना लें, और आजकल तो रोटावेटर भी चलता है, 1 बार आप रोटावेटर चला दें, तो उससे क्या है कि जो इनके जड़ों के इनके वो

0: और ढेले वगैरह होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे, मिट्टी भुरभुरा बन जाएगी जो सरसों के लिए बहुत उपयुक्त होती है। तो ये दोनों परिस्थिति के लिए अगर आप खेत खाली रख के कर रहे हैं तो आपको हर प्रभावी बारिश के बाद नमी का संरक्षण करना चाहिए, और जब आप खरीफ में कोई फसल ले रहे हैं तो कटाई करने के बाद में तुरंत अगर नमी कम है तो फिर आपको एक सिंचाई करनी पड़ेगी बुआई से पहले भी, क्योंकि एक मिनिमम सिंचाई होनी चाहिए तब जाके आप उसके बुआई कर सकते हैं। तो दोनों परिस्थिति में इस तरीके से कर सकते हैं। और सिंचित अवस्था के अंदर जैसा कि बताया ही है कि किसान भाइयों पर पानी की सुविधा होती है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखें किसान भाइयों, अगर आपके पास खारा पानी है तो बुआई से पूर्व सिंचाई ना करें।
1: जी डॉक्टर साहब, सिंचित क्षेत्र का मायने द्विफसलीय पद्धति के अंतर्गत राई सरसों का खेत की जो तैयारी छे वह करसा भाईर बहन कहीं करे वह भी बताओ सर।
0: हाँ देखिए, अभी मैंने बताया द्विफसलीय पद्धति के अंदर, जैसे कहा कि भाई द्विफसलीय पद्धति का मतलब ये है कि खरीफ में कोई फसल हो तो उसकी तैयारी के लिए कि खरीफ फसलों की कटाई के बाद में पलेवा देकर प्रारंभ करें। पलेवा के बाद में जब भी आपका खेत जुताई लायक हो जाता है तो 2 या 3 बार जुताई करें और पाटा लगाएं, और ये ध्यान रखें कि हर दशा में खेत को मिट्टी को भुरभुरा और समतल बना लें। तो अगर वो बनाते हैं तो खेत अच्छी तरह तैयार हो जाएगा, जो सरसों की अधिक पैदावार उसकी जड़ें जमने के लिए बहुत जरूरी है।
1: जी श्रोताओं, अबार आपा जानकारी लिया सरसों की उपयुक्त किस्म और खेत की तैयारियां पा किन भांति करा, और जानकारी देबा खातिर आया डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक कृषि प्रसार भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर सुआ पधार्या। डॉक्टर साहब, इतनी कीमती जानकारी देबा के लिए आपको घणो घणो धन्यवाद सा।
2: सुने सुनाए,
3: पीत कांति लाएं,
2: उन्नत तकनीकें अपनाएं,
3: सरसों का उत्पादन बढ़ाएं।
2: सुनो किसानों, चाहे खेत हो बेकार,
3: सरसों उपजे शानदार,
2: सरसों खेती का उपचार
3: बढ़ाने, सरसों की पैदावार,
2: खेत पौधे और बीजोपचार,
3: सुनते रहो ये कार्यक्रम,
2: अपना कर उन्नत तकनीकें, बढ़ाओ सरसों का व्यापार,
3: तब जो आए पीत कांति होगा हम सबका उद्धार,
2: और प्रदेश की खुशहाली का
3: तब होगा सपना साकार।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: कल सुबह 9:15 पर सुनिए कार्यक्रम फिट एंड फाइन। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर, टॉक रोड, टॉक फाटक, गांधीनगर, जयपुर।
7: भाई लोगों, थोड़ी देर पहले जानकारी सुनी सरसों की उपयुक्त किस्म और खेत की तैयारी विषय पर जानकारी बहुत ही बढ़िया तरीका से अशोक कुमार शर्मा जी अपन दे रहा, और असू बात अपने अदिति भट्ट है जी कर रही है। तो दुनिया ने मोकलो मोकलो धन्यवाद स्वरूप। अब एक बाबारी मिट्टी सी लोक रचना सुन लेवा।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम
1: FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। संध्या के 7:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 अंतर्गत दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे भारत बनाम श्रीलंका क्रिकेट मैच का फाइनल। देखो

0: Oh, well.
1: Thank you.
0: In comes the Sri Lankan skipper. Chamari, had you won the toss, what would you have done?
2: If we won the toss, definitely we will bowl first, honestly. Because we back in our skills. Last few games, we are bowling really good. So if we won the toss, we will decide bat, bowl first.
0: Chamari, you've led Sri Lanka with such great distinction over the years. What would a successful title defense tonight mean for you personally?
2: Actually, it's a really good thing for me as well as the team. As a country, we need to improve our cricket all the time. So we had good players, we stick with our plans and we try to play our positive cricket in the middle.
0: What is your playing combination looking like for tonight?
2: We are going with one change. Wish me back into the side for Sanjana Kavindi.
0: And what necessitates that change?
2: Because we are going with some kind of experience. I feel we need some experienced players, so we decide to go with Vishmi.
0: And what's a good total to restrict India to in the final?
2: Yeah, the thing is, they have good batters, but we prepare ourselves for the challenge, and first 6 overs is very crucial in this game. So if we can get few wickets early, I think pressure on them.
0: Have a good crack at this one.
2: Thank you very much.
0: Well, the news from the center is India, led by Harmanpreet Kaur, have won the toss and decided to bat first.
3: रोज सुबह आपकी आंख खुले और चाय का गर्मा गर्म प्याला आपके सामने हो तो उस चाय की कोई कदर खास होती नहीं, लेकिन किसी एक दिन वो चाय का कप आपके सामने ना हो तो फिर उसकी कमी जरूर खलती है। भारतीय टीम का वुमेन्स एशिया कप में सफर कुछ इसी प्रकार का रहा है। 9 संस्करणों में 7 बार ये टीम चैंपियन बनी है, लेकिन 2024 में जब श्रीलंका के खिलाफ हार मिली तो वो हर एक भारतीय प्रशंसक को बहुत चुभी थी। क्या आज वही कहानी दोबारा दोहराई जाएगी? क्या भारतीय टीम एक बार फिर शिखर के पास पहुंच लड़खड़ाएगी, या फिर आज शाम खत्म होने तक भारतीय टीम बन जाएगी 8वीं बार एशिया कप की चैंपियन? जानेंगे साथ में। आप सुन रहे हैं फ्री हिट 20, मेरा नाम है दर्पण और मेरे साथ हैं मुदिता।
4: शुक्रिया दर्पण, नमस्कार एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल आवर लिसनर्स। द स्टेज इज सेट फॉर द वुमेन्स एशिया कप फाइनल एट दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम। एक बार फिर से, बल्कि लगातार 3री बार भारत और श्रीलंका हैं आमने सामने एशिया कप के फाइनल में। एंड वी आर हियर टू ब्रेक डाउन ऑल द मैचअप्स, की प्लेयर्स, टैक्टिकल शिफ्ट्स विद आर एक्सपर्ट्स। और हमारे साथ मौजूद हैं लतिका कुमारी, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर। बहुत स्वागत लतिका आपका। और साथ ही हैं उत्तरा गणेशन, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। वेरी वार्म वेलकम टू यू उत्तरा।
3: तो सबसे बड़ी खबर ये है, प्रतिका रावल जिनका ये जो प्रदर्शन रहा है इस टूर्नामेंट में, वो थोड़ा नरम थोड़ा गर्म रहा है लतिका, उनकी जगह टीनेज प्रोडिजी कहलाने वाली जी कामलिनी को जगह मिली है। कैसे देखते हैं आप इस बदलाव को?
5: देखिए, मैंने पहले भी ये बात कही थी इसी प्रोग्राम में कि जब प्रतिका रावल को आप मौके दे रहे हैं, नो डाउट वो क्रिकेटर बहुत अच्छी हैं, स्किलफुल हैं, लेकिन लगता है T20 में वो शायद इतना सक्सेसफुल अभी तक नहीं हो पाई हैं, और उन्होंने पिछले कुछ टाइम से T20 गेम्स खेले भी नहीं है। तो ये कहूंगी कि सही डिसीजन है कमलिनी का आज जो उनको मौका मिला है, क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पे भी हम बात करें, चाहे WPL की हम बात करें, तो कमलिनी के पास वो एक्सपोजर है, वो एक्सपीरियंस है, जो कि आज के मैच में शायद उनको और हेल्प करेगा। और ये चेंज मैं पहले ही देख रही थी, लेकिन आज जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर खिला रहे हैं मैनेजमेंट और कप्तान, तो मुझे लगता है कि ये बेटर होगा। एक लेफ्ट हैंड बैटर भी आपके पास जुड़ जाएगा वहाँ पर, क्योंकि श्रीलंका के जो गेंदबाज हैं उनको थोड़ा सा अगर आपको प्रेशर में डालना है, तो आपके पास अगर इस तरह से कोई कॉम्बिनेशन आता है तो वो भी आपके लिए बेटर होगा।
4: जी बिल्कुल उत्तरा, अभी तक जो भारत का सफर रहा है इस टूर्नामेंट में, वो कमोवेश थोड़ा आसान कहेंगे, या काफी हद तक वन साइडेड मैचेस हमने खेले हैं। और वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका को पहले बांग्लादेश और उसके बाद सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने जिस तरह की टक्कर दी है, जिस तरह की चुनौती दी है, और उसके बाद उसी सेमीफाइनल में श्रीलंका ने जिस तरह का खेल दिखाया है, टूर्नामेंट का सबसे रोमांचक मुकाबला खेला है और उसे जीता है, तो डू यू फील उस मैच को देखते हुए कि दैट टुडेज मैच कुड बी इंडियाज बिगेस्ट चैलेंज ऑफ द टूर्नामेंट?
6: डेफिनेटली। एंड अगर इससे पहले खेला भी होता है इंडिया ने, तो फाइनल इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट गेम। तो फाइनल में जो प्रेशर होता है, फाइनल का जो पूरा एटमॉस्फेयर होता है, बहुत अलग होता है हमेशा से। तो ये बिल्कुल सही है, और जैसा कि आपने कहा कि थोड़ा उतना मुश्किल नहीं रहा इंडिया का सफर। फॉर मी, नॉट हैविंग प्लेड अ कंपैरेटिवली टफ मैच इज ऑलवेज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, बिकॉज

On one hand, of course, you've played and you won easily, so you have the momentum, you have the confidence. At the same time, you have actually not been tested, and the one or two times that you were tested, your middle order did not perform the way it should have. आपका शिफाली वर्मा को अगर हटा दिया जाए, स्मृति ने सेंचुरी जरूर मारी थी बट वो हांगकांग के साथ मारी है आपने. शेफाली को अगर हटा दिया जाए तो आपको उस तरह के स्टार्ट्स नहीं मिले हैं जो आपको चाहिए. एंड टी20 में अ गुड स्टार्ट इज हाफ द बैटल वन एंड द मिडिल ऑर्डर हैज एक्चुअली नॉट बीन टेस्टेड एज मच एज दे शुड हैव बीन. और वहां पे मुझे लगता है कि जो श्रीलंका है उनका, आई एम नॉट सेइंग कि उनको एडवांटेज है, but they've had more than one match winners in the four matches that they have played, which is why despite the fact that Chamari Atapattu has not scored many runs, they still have managed to find someone or the other getting those runs in the middle. Lagatar unki middle order struggle kar rahi hai, lekin lagatar wo kahin

0: कि उनको एडवांटेज है, बट देव हैड मोर देन वन मैच विनर्स इन द थ्री ऑफ इन द फोर मैचेस दैट दे हैव प्लेड, विच इज वाई डिस्पाइट द फैक्ट दैट चमरी आतापत्तू हैज नॉट स्कोर्ड मैनी रन्स, दे स्टिल हैव मैनेज टू फाइंड समवन और द अदर गेटिंग दोज रन्स इन द मिडल. लगातार उनकी मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल कर रही है, लेकिन लगातार वो कहीं ना कहीं से एक मैच विनर ढूंढ के ला रहे हैं. एंड एज अ टीम दैट गिव्स यू अ कॉन्फिडेंस दैट we are not dependent on any one player. So every time something goes wrong, they find a new hero. And that for me in a team event is always a little bit of edge to the team.
1: बिल्कुल. और इसके साथ ही एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी. अपना नाम बताएं और आप कहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं.
2: जी मैं ग्राम पोस्ट बोचहा.
1: जी अपना नाम बताएं.
2: बिट्टू कुमार सिंह.
1: जी बिट्टू जी अपना सवाल पूछिए.
2: जी मेरा सवाल लतिका जी से खास करके, क्योंकि वो क्रिकेटर रह चुकी हैं.
1: जी, जी आप पूछिए. लतिका जी सुन रही हैं आपको.
2: जी सवाल यह है कि ऋचा घोष और दीप्ति शर्मा का सेटल क्यों चेंज किया जाता है बार बार, और दूसरी बात मिडिल ऑर्डर एकदम ही नहीं चल पा रही है इंडिया का.
3: बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए. और यही हमारे लिए चिंता का एक विषय बना हुआ है काफी लंबे समय से कि मिडिल ऑर्डर हमारा इस तरीके से क्लिक नहीं कर रहा है. और हम बात पहले करते थे जमीमा को लेकर नंबर तीन के लिए, फिर उसके बाद ऋचा घोष को हम देख रहे थे वर्ल्ड कप में भी, हमने देखा कि एक तरीके से मैच फिनिशर की तरह उनको हमने यूज किया. दीप्ति शर्मा जब भी टीम लड़खड़ाती है तो उनको भेजा जाता है. तो मुझे लगता है कि इस तरह की सिचुएशन में आपके पास जो बल्लेबाज हैं, या तो आप उनकी प्रिपरेशन ऐसे कर रहे हैं पीछे से ताकि आप उनको किसी भी नंबर पे भेजेंगे तो वो वहां जाकर आपको परफॉर्म करके देंगे. और T20 गेम एक ऐसा है जहां पर अगर आपके ओपनर्स अच्छे चलते हैं उसके बाद ओवर्स पे भी डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ बॉल्स कितनी एक मैच में बची हुई है, वहां कौन इम्पैक्ट प्लेयर रहेगा, तो इस हिसाब से भी आपके जो बैटिंग ऑर्डर है वो समटाइम्स चेंज हो जाते हैं. तो ये मैनेजमेंट बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो किस तरह से उनकी प्रिपरेशन करा रहे हैं, वहां पर कौन से मैच के फेज में कौन सा बल्लेबाज जो है जाके अच्छा परफॉर्म करेगा. तो मुझे लगता है कि ये मैच कंडीशन है, मैच सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हमारे मिडिल ऑर्डर में कब कौन कहां कैसे जा रहा है.
4: मैच सिचुएशन और टीम की सोच क्या है ये मायने रखता है. लेकिन उस सोच पर वापस आते हैं, हम बात कर रहे हैं कि कैसे कामेलिनी को जगह मिली है, प्रतिका को आपने ड्रॉप किया है, उतना हम देख रहे हैं श्रीलंका ने बिल्कुल इसका उलट किया है. उन्होंने संजना काविंदी जो कि युवा प्रतिभा है उनको हटाया है और वो कह रहे हैं कि वी वॉन्ट टू बैक एक्सपीरियंस. हसीनी परेरा ने बहुत लंबे से T20 क्रिकेट में कुछ खास किया नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ जो सीरीज हुई एकमात्र मुकाबला मिला जिसमें शून्य उन्होंने बनाया, लेकिन आज उनको वापस लाया गया है. विश्मी गुणरत्ने को वापस लाया गया है. दे आर बैकिंग एक्सपीरियंस. हाउ डू यू लुक एट दैट?
1: दर्पण इस सवाल पे हम आते हैं. फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं तो पहले हम उनका सवाल भी ले लेते हैं आगे बढ़ने से पहले. जी अपना
5: नमस्कार मैडम.
1: नमस्कार.
5: हैदराबाद से बात कर रहा हूं.
1: जी अपना सवाल पूछिए
5: मैडम. एक्सपर्ट से मैं पूछना है, बैटिंग लेने की जगह फील्डिंग में तो मेरे को चांसेस अच्छा जी विन होने का चांसेस ज्यादा रहता. और एक क्या बोलता अपना टीम बहुत कैचेस बहुत छोड़ दे रही है, मिसेज होगा, फील्डिंग बहुत खराब ही है, उसको जो सुधरना बहुत अच्छा है मैडम.
1: जी बिल्कुल. उत्तरा आप इसका जवाब देना चाहेंगे.
0: देखिए अगेन जो हरमनप्रीत ने कहा कहीं ना कहीं उनका आपको पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आता है कि एक तो फाइनल है तो आप नहीं चाहते कि आपकी बैटिंग किसी भी तरह के प्रेशर में खेले. तो जब आप पहले बैट करते हैं तो टारगेट का आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता है, स्पेशली गिवन द फैक्ट दैट आपकी मिडिल ऑर्डर नहीं उस तरह से चल पाई है. तो एडिंग एक्स्ट्रा प्रेशर इज नॉट गोइंग टू हेल्प देम इन एनी वे. फ्री होके खेलेंगे, टारगेट सेट करके खेलेंगे. और अगर आपको अपनी बॉलिंग और फील्डिंग पे भरोसा है कि आप जितना भी टारगेट दें उसको डिफेंड कर पाएंगे, सो फाइनल के हिसाब से अपनी टीम को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस और फ्रीली खेलने देने के हिसाब से मुझे लगता है कि ये बैटिंग करने का फैसला बेटर था थोड़ा सा इनका. और जो दूसरा उन्होंने कहा फील्डिंग का, उस पर तो खैर कम जितना कम बोला जाए उतना अच्छा है, बिकॉज T20 जैसे फॉर्मेट में अगर आप कैचेस ड्रॉप करेंगे तो अगर आपके सामने थोड़ी सी भी मजबूत टीम होगी तो वो आप क्योंकि आप दे विल मेक यू पे द प्राइस फॉर इट. अभी तक इंडिया को वो नहीं झेलना पड़ा.

0: है क्योंकि उस तरह की टीम नहीं मिली है इनको सामने खेलती हुई, बट आई होप के पिछले मैच और इसके बीच में जो इनको थोड़ा सा ब्रेक मिला है उसमें इस चीज पे जरूर बात की हो टीम मैनेजमेंट ने कि आप फील्डिंग को इतना लाइटली नहीं ले सकते हैं।
1: चलिए, टॉस पर हमने सुना कि चामरी ने कहा द फर्स्ट सिक्स ओवर्स आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, श्रीलंका के लिहाज से भी, भारत के लिहाज से भी। भारत के लिए स्मृति मानधना और शेफाली वर्मा की जोड़ी ओपन करेगी। और वापस स्मृति मानधना पर आते हैं लतिका, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, महिलाओं के क्रिकेट में किसी भी खिलाड़ी ने इनसे ज्यादा रन बनाए नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं फैन बेस में एक वो चर्चा रहती है कि बड़े मुकाबलों में शायद उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं रही। जैसा अभी उत्तरा ने भी कहा, जो सेंचुरी आई वो हांगकांग के खिलाफ आई, पिछले दो मुकाबले पाकिस्तान के खिलाफ और सेमीफाइनल बांग्लादेश के खिलाफ, वहां रन नहीं बने। आप कैसे देखते हैं इसको?
2: हाँ, देखिए, कोई भी प्लेयर होता है और खासकर स्मृति जैसा प्लेयर जिसने काफी लंबा सफर अभी तक वुमेन्स क्रिकेट में अपना निभाया भी है, और हमने देखा है कि साल दर साल वो इंप्रूव करते हुए दिखाई दिए हैं। जो नंबर ऑफ रन्स हैं उनके बल्ले से ज्यादा निकल रहे हैं। आप अगर एबिलिटी देखें उनके सिक्सेस लगाने की या बिग शॉट्स लगाने की, वो पहले इतनी नहीं दिखती थी, जो आज के टाइम में उनके बैटिंग में ये फर्क दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है के जिस तरीके से वो रन बनाती हैं वहाँ पर उनकी जो स्किल है वो बहुत इम्प्रूव हो चुकी है, और अब जो बड़े इवेंट्स होते हैं तो उनमें हम ये नहीं कह सकते कि वो परफॉर्म नहीं करेंगे। एक कोई भी प्लेयर होता है, चाहे वो बल्लेबाज हो चाहे वो गेंदबाज हो, वो पर्टिकुलरली डे पे किस तरीके से, किस माइंडसेट से वो खेलना चाहता है, कि अटैकिंग क्रिकेट खेलना चाहता है या किस तरीके से देखता है। T20 खासकर एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पर टॉप ऑर्डर बल्लेबाज, खासकर जो ओपनर्स होते हैं, पावर प्ले का इतना प्रेशर रहता है कि इस पावर प्ले को हम किस तरीके से मैक्सिमाइज जो है रन्स ले सकते हैं। तो वहां पर कई बार आपको एग्रेशन के साथ खेलना होता है, जैसा कि शेफाली वर्मा खेलती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये समझ भी रखनी पड़ती है कि सामने जो गेंदबाज हैं वो किस तरीके से गेंदबाजी वहां कर रहे हैं, और जो विकेट है वो किस तरीके से खेल रहा है। जो सरफेस है कई बार उसका भी बहुत बड़ा रोल हो जाता है कि आप खुल के अपने वो शॉट्स नहीं खेल पाते। स्मृति की यही बात करूंगी, ओवरऑल ग्लोब में वो क्रिकेट खेल रहे हैं, एक्सपीरियंस उनके पास है, और जो टाइमिंग के उस्ताद वो बन चुकी हैं, जिस तरीके से वो बल्ले से गेंद को जब टच करती हैं तो बहुत ही मजा आता है देखने में, और बाउंड्री के बाहर भी जाता है। तो लगता है कि आज के मैच में उनसे काफी उम्मीद है कि एक अच्छा स्टार्ट यहाँ पर शेफाली और स्मृति देंगे।
3: जी लतिका, आपने बात करी शेफाली की, तो शेफाली जब तक क्रीज पर हैं वो पेस कम नहीं होने देती हैं। बांग्लादेश के अगेंस्ट जब सारे बैटर्स स्ट्रगल कर रहे थे, पिच भी बॉलर्स को मदद कर रही थी, तब 64 रनों की शानदार पारी उन्होंने खेली है, लकी भी रही उस दिन, लेकिन कहते हैं फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। एंड शी इज अ फियरलेस बैटर, ODI वर्ल्ड कप में रिप्लेसमेंट के तौर पर आई थी और नाउ शी हैज बिकम इररिप्लेसेबल। उनके ग्राफ को आप कैसे देखती हैं?
2: देखिए, मैं बार बार कहीं पे भी किसी भी प्रोग्राम में जाती हूँ तो उनके लिए यही कहती हूँ कि पिछले जब वो ड्रॉप हुए थे भारतीय टीम से, उसके बाद लगातार उन्होंने बहुत बेहतरीन क्रिकेट डोमेस्टिक लेवल पे खेला है। वहाँ पर उन्होंने बहुत रन्स बनाए हैं, बहुत मेहनत की है, और जिसका उनको भरपूर फायदा क्या हुआ कि वर्ल्ड कप पे उनको कॉल आया, वहाँ पर वो सेमीफाइनल और फाइनल के लिए उनका परफॉर्मेंस आई, तो ये एक कमबैक जो उनका रहा है बहुत इंपॉर्टेंट था। और वो अहमियत जानती हैं कि जब आप टीम से ड्रॉप होते हैं और उसके बाद जब आप टीम में आते हैं तो वो डिफरेंस जानती हैं कि कितनी मेहनत करनी होती है। इस शेफाली वर्मा में हमें वो चेंज दिखाई दिया है कि एग्रेशन के साथ साथ आपको लंबी पारी कैसे खेलनी
1: जी। और सिमिलैरिटीज अगर देखिए, इफ वी ट्राई एंड ड्रॉ पैरेलल्स, उतरा द सेम पैरेलल टू जी कामलिनी, अगेन अ टीनेज प्रोडिजी, एंड अगेन शी हैज बीन ड्राफ्टेड इनटू द साइड इन द बिग फिनाले, हैज प्लेड ओनली वन गेम फॉर इंडिया बिफोर दिस। हाउ डू यू सी इट पैनिंग आउट फॉर हर टुडे, एंड डू यू सी हर बैटिंग एट नंबर 3 इन प्लेस ऑफ प्रतिका, और डू यू सी अ चेंज इन द बैटिंग ऑर्डर?
0: सी, जैसा लतिका ने कहा कि बैटिंग ऑर्डर जो है वो स्पेशली T20 फॉर्मेट में, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट द सिचुएशन इज एट दैट मोमेंट। अगर स्मृति और शेफाली ने आपको बहुत अच्छा स्टार्ट दे दिया बोथ इन टर्म्स ऑफ द रन रेट एंड द रन स्कोर्ड, तो हो सकता है कि आप जो नॉर्मल ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव आपकी लाइनअप है उस हिसाब से आए कि हरमन आ रही हैं, फिर धीरे धीरे अब बाकी आ रहे हैं, और अगर वो जल्दी बाय चांस विकेट गिर गए और आपको लगता है कि आपको वो थोड़ा सा रन बनाने की ज़रूरत है, एक थोड़ी स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, तो आप हो सकता है कि ऋचा घोष को भी ऊपर भेज दें, दीप्ति शर्मा

0: को हमने देखा ही है, 3 से लेके 10 तक वो किसी भी नंबर पे आती हैं और हर पोजीशन पे अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हैं। तो ऑर्डर का तो आप नहीं बता सकते कि किस तरह से जाएगी चीज़ें, बट हाँ उसको अगर टीम मैनेजमेंट ने एक पूरे टूर्नामेंट में बाहर बैठा के फाइनल में ड्राफ्ट इन किया है, देन शी, दिस इज हर चांस टू प्रूव दैट शी इज समवन स्पेशल एंड टू प्रूव दैट द टीम मैनेजमेंट इज राइट इन ट्रस्टिंग हर ओवर द एक्सपीरियंस ऑफ प्रतीका रावल। टीम मैनेजमेंट ने एक रिस्क लिया है, ये बिल्कुल सही है, बट उन्होंने रिस्क जरूर लिया है, बट दिस इज अ रिस्क विच आई थिंक दे हैड टू टेक, क्योंकि आपको इसके बाद फिर मौका मिलेगा नहीं, ये लास्ट मैच है, इसमें अगर नहीं करेंगे तो कब करेंगे। एंड प्रतीका रावल का जिस तरह से पिछले कुछ समय में फॉर्म रहा है, आप अगर उनको खिलाते तो हो सकता है वो चल जाती, लेकिन आप अगर किसी और को चांस देना चाहते हैं तो इसके बाद कब देंगे, क्योंकि इसके बाद आपको ये भी नहीं पता है कि नेक्स्ट कब खेलेगी टीम। एशियन गेम्स में जरूर जाएगी, लेकिन वहां पे टीम में क्या चेंजेस होंगे, किसको एक्चुअली खेलने का मौका मिलेगा 11 में, एग्जैक्टली, और वहां पे टीम सीधा क्वार्टर फाइनल में उतरेगी ग्राउंड पे, आपको टोटली 2 मैच मिलेंगे 3 मैच मिलेंगे खेलने के लिए, तो इसके बाद आपको नहीं मिलता वो मौका। जहां तक कमलिनी की बात है, गिविंग हर अ चांस आई थिंक इज समथिंग विच द मैनेजमेंट वुड हैव थॉट अबाउट, बिकॉज दे नो दैट शी हैज द एबिलिटी टू मेक अ चेंज टू दिस टीम।
1: एंड टॉकिंग अबाउट मेकिंग चेंजेस, इट्स आर कॉलर्स हु मेक अ डिफरेंस टू दिस शो। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुदिता, आइए उनसे बात करते हैं।
2: जी, अपना नाम बताइए और आप कहाँ से शो में शामिल हो रहे हैं?
3: मेरा नाम वाई वेंकट रेड्डी, गांव लकोरों, जिला सूर्यपेट, तेलंगाना से बोल रहा हूँ।
2: नमस्कार रेड्डी जी, कैसे हैं आप और अपना सवाल हमारे साथ आप शेयर करिए।
3: मैं अच्छा हूँ। मेरा सवाल ये है, कंप्लीटली फ्लॉप होने वाले भारती फूलमाली को खिलाया, यूजफुल खेलने वाले प्रतीका रावल को बिठाया, ये कैसा चेंज है, ये मेरा सवाल है।
1: चलिए, धार धार प्रश्न आया है, लतिका सीधा आपकी तरफ बात करेंगे। भारती फूलमली क्या सही में फ्लॉप हुई है या फिर उनको मौके उस तरह से मिले नहीं है? पिछले मैच में जब बल्लेबाजी करने आई, एक गेंद बची थी, उसमें भी वो रनआउट हो गई, तो कहीं ना कहीं टीम के लिए खेल रही थी, ये कहना उचित होगा, या फिर आपको लगता है कि वो मौके भुना नहीं पाई हैं?
4: देखिए, मुझे जहां तक लग रहा है भारती फूलमाली के लिए कि उनको वो मौके नहीं मिल पा रहे हैं, वो समय नहीं मिल पा रहा है टीम में जाके, आप किस तरीके से शॉट्स खेल रहे हैं, वहां पर क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखिए, 2 या 3 बार तो वो रन आउट हुई हैं जिसकी वजह से उनको मिला ही नहीं दूसरे को बचाने के लिए जो कि पहले से ही बल्लेबाज खेल रहा है। तो ये सिचुएशन उनके साथ कुछ इस तरीके से घटी है कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो अच्छा नहीं खेल रही हैं। जितना मौका मिला उन्होंने खूब कोशिश भी किया और उनको हमने देखा है WPL में, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली इनिंग्स उनके बल्ले से हमेशा आई है जब उनको नंबर ऑफ बॉल्स ज्यादा खेलने को मिली है। तो मुझे लगता है कि इस चेंज में ऐसी कोई खास खराबी नहीं है, क्योंकि ये चेंज मैं काफी पहले देख रही थी, आई थिंक फर्स्ट और सेकेंड मैच के बाद मैं ये चेंज देख रही थी। कोई नहीं, फाइनल में आया है, इट्स ओके, लेकिन कमलिनी भी कोई कम प्लेयर नहीं है। पिछले डोमेस्टिक सीजन में हमारे ही साथ दिल्ली के साथ मैच था और उन्होंने 150 स्कोर किया था और अकेले अपने बूते पे उन्होंने मैच जिताया था और वहाँ बड़े बड़े हिट्स लगाए थे, तो काबिलियत उनमें भी है और वो भी उसी तरीके की शॉट्स लगा सकती हैं। और T20 का ऐसा गेम है, अगर वो नंबर 3 पे आती हैं तो काफी कारगर साबित होंगी। यस, प्रेशर जरूर होगा, एक फाइनल में आपको सीधा मौका मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद आपको अगर अपना सारा निकाल के देना है कि आप प्रेशर नहीं लेते हैं और इस तरह के प्रेशर में आप निखर के आते हैं एज अ प्लेयर, तो वो चीज आज बहुत बड़ा मौका है कमलिनी के लिए अगर वो बल्लेबाजी के लिए जल्दी आती हैं तो।
1: ऑन दैट नोट, बड़े संक्षेप में, क्या आप भारती फूलमली को बड़े फाइनल में जल्दी भेजने की वो रिस्क उठाएंगी?
4: नहीं, आज तो नहीं, क्योंकि जिस तरीके का उनका बैटिंग ऑर्डर है मुझे लगता है वो 6-7 के बाद ही वहाँ पर सूट करती हैं, क्योंकि ऋचा घोष, दीप्ति, अभी कमलिनी है, फिर हरमन है, तो इनके बाद ही अगर वो आती हैं तो मुझे लगता है ठीक है,
2: क्योंकि चेंजेस की बात हो रही है। और लतिका, आपने भी कहा कि आप पहले दूसरे मैच में ही ये एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन फिर भी भारत ने प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस नहीं किए, इस टूर्नामेंट में पहली बार कोई बदलाव किया है। वहीं श्रीलंका हैव चेंज्ड देयर प्लेइंग 11 इन एवरी सिंगल गेम।

0: remember. Why did India shy away from experiments and changing the template?
1: देखिए मैं भी ये चाहती हूँ कि अगर ये चेंजेस आप एक अपने साथ कुछ प्लेयर्स को लेके जा रहे हैं और यंग प्लेयर्स को लेके जा रहे हैं और काफी समय से अपने साथ उनको ट्रैवल करा रहे हैं, तो ये इस तरह के टूर्नामेंट, एशिया कप हो गया या एशियन गेम्स हो, ये इस तरह की के टूर्नामेंट्स ही हैं जो उनको एक्सपीरियंस देगा टीम के साथ कि वो किस तरीके से अपना खेल है जो दिखा सकते हैं, क्या काबिलियत है उनमें वो दिखा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये टूर्नामेंट्स, जब बड़ी आप किसी टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे हो, तो ये सबसे बेस्ट टाइम होता है कि आपके साथ जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मौका मिले।
2: चलिए भारतीय बल्लेबाजी की हमने बात की, थोड़ी सी बात श्रीलंका की गेंदबाजी की भी करते हैं। उत्तरा एक पेसर है उनके पास, बेताली अयोध्या, जो स्लिंगी एक्शन के साथ गेंदबाजी करती हैं। दो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, चामुदी प्रबोदा हैं, सुगंधी कुमारी है, और उसके अलावा चामरी अट्टापट्टू, जिनका आपने कहा बल्ला खामोश रहा है, गेंद से वो कमाल करती हैं। ये सेवन फर भी लिया पीछे उन्होंने। इंडिया के लिए सबसे बड़ा सरदर्द आज कौन होने वाला है?
3: देखिए आपने नाम बहुत सारे लिए हैं, पर जब बड़ा मैच आता है तो बड़े खिलाड़ियों पे स्पॉटलाइट रहता है, और जो पिछला भी फाइनल 24 में खेले थे वो एक तरह से श्रीलंका की जीत का बहुत बड़ा श्रेय जो था वो चमरी अट्टापट्टू को ही गया था। और वो जितनी बड़ी प्लेयर हैं उनके लिए इतना लंबा पीरियड उस तरह से रन बनाए बिना निकलना, शायद उनके लिए भी ये चीज़ अनएक्सेप्टेबल होगी। वो एक जेन्युइन लेजेंड वाला जो कैटेगरी आता है उसमें आती हैं वो विमेंस क्रिकेट के मॉडर्न लेजेंड्स के हिसाब से। और मुझे लगता है जब बड़ा मैच हो और बड़ा प्लेयर उस तरह से अभी तक ना कर पाया हो तो उससे थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो चीज़ होती है अपने आप को प्रूव करने की और अपनी टीम को जिताने की, वो शायद किसी यंगस्टर से हमेशा ज़्यादा होती है, बिकॉज शी नोज दैट द टीम डिपेंड्स ऑन हर फॉर एवरीथिंग इंक्लूडिंग द कैप्टेंसी।
0: जी बिल्कुल। तो अभी हम आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आप दोनों से पूछना चाहते हैं कि लो स्कोरिंग टूर्नामेंट रहा है, केवल दो बार स्कोर 150 के पार गए और दोनों बार ये कमाल भारतीय टीम ने करके दिखाया है। तीसरी बार सेमीफाइनल में भी 149 तक तो वो पहुंच ही गए थे, दूसरी कोई भी टीम यहाँ तक नहीं पहुंची है। डज दैट पुट एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन श्रीलंका?
4: मुझे लगता है बिल्कुल, क्योंकि भारतीय महिला क्रिकेट टीम जितना अच्छा क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और कह सकते हैं कि हर एक प्लेयर परिपक्व है वहाँ पर अपने आप को शो करने के लिए, तो श्रीलंका ज़रूर ये सोच रही होगी कि आज किस तरीके से स्मृति मंदाना, फिर शेफाली वर्मा, फिर कमलिनी जो ऐड हुई हैं, फिर हरमन है, फिर दीप्ति है, तो एक लंबी लिस्ट जो है उसके सामने कैसे आप टिकने वाले।
0: जी फटाफट से उत्तरा और लतिका, क्या स्कोर प्रेडिक्ट करेंगे आप भारतीय टीम के?
3: देखिए क्योंकि टीम पहले बैटिंग कर रही है इंडियन टीम, तो समवेयर अराउंड 140 मुझे लगता है शुड बी अ वेरी गुड स्कोर।
0: लतिका?
4: हाँ बिल्कुल, देखिए ये टूर्नामेंट पूरा लो स्कोरिंग रहा है तो आई थिंक 150-140 के आसपास बन जाएगा, तो बहुत ही
0: ठीक है। तो बिल्कुल हम इंतजार कर रहे हैं अब, और इसके साथ हमें दीजिए इजाजत, अब आपके साथ जुड़ेगी हमारी कमेंट्री टीम। लतिका उत्तरा बहुत शुक्रिया आपका, हम फिर से हाजिर होंगे मिड इनिंग्स शो में। नमस्कार।
5: फर्स्ट बॉल 20।
6: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास।
7: नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का। मैं संजय बैनर्जी आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। भारत और श्रीलंका इस बड़े मुकाबले में एक दूसरे के सामने हैं। एशिया कप का T20 का ये फाइनल मुकाबला है जो दुबई में अब से कुछ देर के बाद शुरू होने वाला है, और जहां तक इस मुकाबले का सवाल है, आप जानते हैं दोनों टीमें अपराजित हैं और दोनों ने बिना किसी मैच को गवाए फाइनल तक जगह बनाई है, तो ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया आप प्रदर्शन कह सकते हैं श्रीलंका का। पाकिस्तान ने श्रीलंका को सेमीफाइनल में कुछ हद तक परेशान जरूर किया था, लेकिन इसके बावजूद अंततः श्रीलंका ने बाजी मारी और फाइनल में जगह बनाई। जहां तक दुबई का सवाल, हमारे प्रोग्राम में आप सुन चुके हैं कि यहां का विकेट थोड़ा सा धीमा है, रन्स कम बन रहे हैं, और इस लिहाज से 140-145 के आसपास का स्कोर एक बेहतर स्कोर कहा जा सकता है इस मैदान के ऊपर। टॉस भारत ने जीता और टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अब देखना है कि भारत श्रीलंका के लिए कितनी बड़ी चुनौती यहां पर पेश करने वाला है, और अब

0: साथ है हमारे पास स्वागत करने का अपने मित्र मुनीश जॉली का. वेलकम मुनीश.
1: थैंक यू सो मच संजय दा एंड आई होप ऑल द लिसनर्स अराउंड द कंट्री एंड ऑल्सो पीपल हु आर ट्यून्ड इन विद इन आर keeping well, and of course there's a big game. It's a Super Sunday. Both men and women team are playing. The bigger game here at Dubai is between the Indian women and the Sri Lankan women, of course vying for the honors for the Asia Cup. India making one change, Dada. Surprisingly, the words that I heard from Harmanpreet was that Pratika Rawal has been rested, and that word rested in a final doesn't come in so easily. Not able to digest that easily. Kamalini though comes in, but I think that's a strategic change that they've made. Your views on it,
0: मुनीश? ये पहला परिवर्तन किया है भारत ने, जितने मैचेस खेले हैं दुबई के अंदर अब तक अनचेंज्ड टीम के साथ उतरे, पहला परिवर्तन किया और वो भी फाइनल में किया. अब इसकी वजह क्या थी? क्या प्रतिका रावल का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत संतोषजनक नहीं था? उन्होंने 56 रन बनाए थे 4 मैचेस में, तो ऐसे में उन्हें परिवर्तन के तौर पर बाहर रखना और कमलिनी को लाना एक बड़ा जोखिम भरा फैसला हो सकता है. लेकिन आप जानते हैं ये क्रिकेट है, और यहां पर जब आप रिस्क लेते हैं तो कई बार आप बेहतर भी करते हैं. अंपायर्स अपनी जगह पर पहुंच चुके हैं और इस मुकाबले की शुरुआत होने में बस अब चंद लम्हे बाकी हैं. भारत 7 बार ये खिताब जीत चुका है और जाहिर है 8वीं बार भी उसकी निगाहें खिताब पर होंगी.
1: एब्सोल्युटली. एंड बोथ द ओपनर्स कमिंग आउट इन द मिडल, एंड दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया, द लेफ्ट एंड द राइट हैंड कॉम्बिनेशन. But it's a different game, different ball game altogether. Dubai, the temperatures, of course, it's a clear weather, no chances of rain. And two women who walk on in the middle with a tremendous strike rate, which you were mentioning off-air also, Dada. 126 for Smriti Mandana. And of course, 176 matches with over 4,600 runs. 8 more runs to reach to 4,700 runs in her T20 career. But Shefali Verma is equally good.
0: बिल्कुल, कम उम्र में ही शेफाली ने जिस तरह से अपने आप को पुख्ता किया है भारतीय टीम के अंदर, उसकी तारीफ होनी चाहिए. और शुरू में शेफाली सिर्फ बल्ले से अपना जौहर दिखाती थी, लेकिन हाल फिलहाल में पिछले कुछ समय से लगातार वो गेंद के साथ भी बेहतर प्रदर्शन करती आई हैं. मिथाली अयोध्या गेंदबाजी की शुरुआत करेंगी श्रीलंका के लिए. ये उनका 11वां मैच है, कुल मिलाकर 10 विकेट ले चुकी है. अगर तेज गेंदबाजी का जिक्र किया जाए तो श्रीलंका के पास एक लौता तेज गेंदबाज मिताली के तौर पर है.
1: एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट स्लिंग आर्म एक्शन जस्ट लाइक मलिंगा. दादा, वर यू सरप्राइज्ड? एंड इट्स अ डिफिकल्ट एक्शन दो.
0: बिल्कुल, बहुत मुश्किल एक्शन होता है, लेकिन जब आप उस पर महारत हासिल कर लेते हैं तो कई बार वो जो बैटर होता है उसे परेशान भी करता है, क्योंकि आप उसे पढ़ नहीं पाते बहुत अच्छे तरीके से इस तरह की गेंदों को. लेकिन सामने जो दो बैटर्स हैं भारत के, वो दुनिया के सबसे बेहतरीन बैटर्स में उनका शुमार है. पहली गेंद, और इस बार ऑफ स्टंप से बहुत इत्मीनान के साथ प्लेस किया, खाता खोला 4 के साथ. तो भारत ने खाता खोल लिया है इस मुकाबले के अंदर. स्मृति मांधना के बल्ले से निकला ये पहला चौका, और बहुत इत्मीनान के साथ ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद को प्लेस किया 4 के लिए.
1: And what a timing. She resembles Sourav Ganguly so much, and I've said that in a number of occasions, even while the live commentary. Of course, Smriti Mandhana, Shefali Verma, G. Kamalini is going to come at number 3, Harmanpreet Kaur, Richa Ghosh, Bharti Fulmali, Deepti Sharma, Prema Rawat, Kranti Gaur, Sri Charni and Nandini Sharma are the women in 11.
0: Mithali ki game, off stump ke pahar, aur jaisa ke aap chante hain, thoda sa slinging action hai. और गेंद की दिशा अक्सर स्टंप के ऊपर नहीं रहती. मिताली की अगर आप गेंदें लगातार देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो ऑफ स्टंप से बाहर गेंदों को रखने में ज्यादा यकीन रखती हैं. और फाइनल है, फाइनल में भारत खेल रहा है, तो दर्शकों की संख्या कैसे कम हो सकती है? खचाखच तो नहीं, लेकिन हां, कई जगहों पर ठीक ठाक भरा हुआ यह स्टेडियम दुबई में. श्रीलंका और भारत फाइनल खेलते हुए, भारत अब तक हर फाइनल में भारत ने जगह बनाई है इस टूर्नामेंट के. मिताली की अगली गेंद शेफाली के लिए ऑफ स्टंप से बाहर. इस बार थोड़ी सी धीमी गेंद, वेरिएशन के तौर पर उन्होंने हल्का गेंद की गति को कम किया, चकमा देना चाहती थी शेफाली को.
1: एब्सोल्युटली. एंड द बॉल कीपिंग लो ऑल्सो दादा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. Just to read out the 11 of Sri Lanka: Imesha Dulani, Chamariya Thapathu, the captain, Vishmi Guna Ratne, Hasini Pereira, Har Stitha, Samara Vikrama, Kavisha Dilhari, Nilakshika Silva, Kaushini Nithyangana, Sugandhika Kumari.
0: पैर पर गेंद थी, यॉर्कर लेंथ की गेंद, लेकिन थोड़ी सी धीमी. और शेफाली ने हल्के से केवल गेंद को थपथपा दिया। शुरुआती लम्हे हैं, कोई आक्रामक स्ट्रोक नहीं खेलना चाहते। एक परिवर्तन भारत ने किया, एक परिवर्तन श्रीलंका ने किया। श्रीलंका का जो परिवर्तन है वो संजना काविंदी की जगह विश्मी गुणरत्ने को टीम के अंदर लाया गया है। चल नहीं पाई संजना काविंदी, कुल मिलाकर 29 रन बनाए थे उन्होंने चार मैचेस के अंदर। इस ओवर की पांचवी गेंद और इस बार स्टंप पर। आमतौर पर आप उनकी गेंदों को स्टंप पर नहीं देखेंगे, ये पहली गेंद थी जो स्टंप पर आई थी और इसे रक्षात्मक तरीके से बल्ले के निचले हिस्से से लगने दिया और सीधे खेला। कप्तान चामरी अटापट्टू इस पूरे टूर्नामेंट में उनका बल्ला नहीं बोला और यह परेशानी का सबब है श्रीलंका के लिए। चामरी अटापट्टू जिनकी बल्लेबाजी खौफ पैदा करती है विपक्षी टीम के मस्तिष्क में, वो चल नहीं पाई। आखिरी गेंद ये भी स्टंप पर और इस बार रक्षात्मक तरीके से, कोई जोखिम नहीं लेना चाहती शेफाली शुरुआती ओवर में और इस तरह से पांच रन पहले ओवर में खर्च किए हैं।
1: Well then, the first over, and surprisingly, four dot balls for Shefali Verma, and she's just warming up. I find that's good because we've seen on a number of occasions Shefali just going after the bowler in the very first or the second ball she faces. But good to see that maybe Amol Mojumdar has worked a bit, spoken to Shefali Verma. Just to complete, Chamudi Pramod and Mithali Ayodhya are the other two players who fill up the final 11 for Sri Lanka. But Dada, the 17-year-old Chamudi Praboda, the left-arm spinner, very impressive. And a lot of women cricketers in India said that she's got a baby face. I've heard that a long time back when Sachin Tendulkar made his debut for the Indian team, that he's a baby face cricketer.
0: Bilkul, bilkul, aapne ekdam theek kaha hai. Aur unko dekh kar kaisa lagta hai ki koi bachcha, स्कूल का कोई बच्चा यहां पर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है और कमाल की गेंदबाजी करती है। कबीशा तिलहारी अब आई हैं नए ओवर के लिए। यह दूसरा ओवर होगा श्रीलंका का। भारत ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का फैसला किया। जाहिर है भारत के सामने एक चुनौती है, कम से कम 145-150 के आसपास का रन रखना होगा। ऑफ स्टंप के बाहर इंतजार किया, बैकफुट पर गई और कवर की दिशा में बढ़िया खेला, गेंद को ड्राइव लगाया चार रनों के लिए, तो दूसरा चौका भारतीय पारी में स्मृति के बल्ले से निकलता हुआ।
1: ओह बॉय, दैट्स एक्सपीरियंस इजंट इट, स्मृति मंधना जस्ट वॉचिंग द बॉल वेरी केयरफुली goes onto the back foot and that typical back foot punch, she times it from the middle of the bat.
0: बढ़िया स्ट्रोक और गैप्स भी उन्होंने पहले से तलाश लिए थे कहां पर गेंद को खेलना है। भारत का तिरंगा दर्शक दीर्घा में लगातार लहराता हुआ इस उम्मीद में कि क्या भारत आठवीं बार खिताब जीतने वाला है और इस बार फ्लाइट करने की कोशिश ही ड्राइव किया था हाफ बॉली पर लेकर के और गेंद को फील कर लिया गया, कोई रन बनाने का मौका नहीं। भारत ने बहुत आतिशी शुरुआत नहीं की। आमतौर पर जिस तरह की शुरुआत के लिए दोनों बैटर जानी जाती हैं, क्योंकि ये दोनों स्मृति मंधना और शेफाली वर्मा, अगर आप इस टूर्नामेंट के तमाम बैटर्स को देखें तो ये नंबर वन और नंबर टू पर हैं। इनका स्ट्राइक रेट शेफाली वर्मा का 171, स्मृति मंधना का 169, लेकिन आज बहुत सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हुए शुरुआती ओवर में और इस बार इस गेंद को निकाल दिया एक और चौका। पावर प्ले का किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, बैकफुट स्क्वायर लेग की दिशा में बढ़िया चौका खेला है शेफाली ने। भारत का स्कोर बढ़ता हुआ अब 14 रन बिना किसी नुकसान के।
1: एंड व्हाट अ शॉट दैट वाज, इट वाज अ फ्लाइटेड डिलीवरी कमिंग अराउंड द विकेट एंड शी वेंट फॉर दैट दैट स्वीप स्लॉग ओवर द डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री फॉर अ फोर, जस्ट टू बाउंसेस बिफोर बॉल रीच टू द बाउंड्री एंड गेट्स द सेकंड बाउंड्री ऑफ द ओवर फॉर इंडिया।
0: खर्चीला ओवर है, अब तक 9 रन दे चुकी कविशा। ओ ये तो फुल टॉस डाल गई, हवा में थी, पावर प्ले का एडवांटेज मिल सकता था और इसीलिए उन्होंने उछाल करके खेला। दो खिलाड़ी उसके पीछे थे लेकिन किसी की भी पहुंच में वो गेंद नहीं थी। रन यहां पर मिले हैं और हमारे जो स्कोरर हैं रणजीत सिंह रावत और स्टैटिस्टिशियन अजय गोयल अब धीरे धीरे वार्म अप कर रहे हैं। अजय गोयल साहब ने बताया है कि हाइएस्ट स्कोर जहां तक सवाल है वो 44 रन है फाइनल में इंडिया श्रीलंका के खिलाफ 2024 में।
1: Well then, of course, this is another delivery that comes in. She's gone high up in the air. Oh, thankfully, the ball just

0: raised up to 17 in 11 deliveries.
1: कमाल की बल्लेबाजी की है पूरे टूर्नामेंट के दौरान शेफाली वर्मा ने, कुल मिलाकर 168 रन बनाए उन्होंने इससे पहले इस टूर्नामेंट में, और उनसे ठीक पीछे हैं स्मृति मांधना। और अगर आप टॉप बैटर्स की फेहरिस्त देखें इस टूर्नामेंट में तो टॉप दो की पोजीशन पर शेफाली वर्मा और स्मृति मांधना काबिज हैं। कमाल की बल्लेबाजी कर रही हैं बहुत बढ़िया तरीके से, आज भी जिस तरह से विकेट को पकड़ करके इन्होंने खेलना शुरू किया है, और ये बिल्कुल सही रणनीति के है कि आप शुरू में कुछ गेंदों को सम्मान दें और उसके बाद कमजोर गेंदों पर आक्रामक रुख अख्तियार करें।
0: Sugandhika Kumari has been now invited to bowl. Of course, 106 matches with 81 wickets in her T20 career. And the left-arm spinner starts coming around the wicket. And a slower delivery. It was a floater of a ball coming left-arm around the wicket. And short of a land delivery to Smriti Mandana. And she's doing just the right thing, Sanjita, that she is waiting for the loose opportunity. Otherwise, she's just timing the ball well. And she does it to perfection this time. Picks up a single.
1: बिल्कुल यही तरीका भी होना चाहिए मुनीश, के इस समय कोई रन्स बनाने की आपको बहुत जल्दी नहीं, अगर विकेट सुरक्षित हैं तो रन खुद ब खुद बनेंगे और तेजी के साथ बनेंगे।
0: With that single, Shefali will come on strike faces and she steps out to this flat delivery. Good to see that once she saw Sugandhika just checking that length and bowling a tight line at short of length, she just places the ball to the mid off field. Didn't get a run, so she's on strike once again. Smriti's batting on 13, Shefali on 17. And a short delivery that kept low, and we're going to say that again and again because that's the highlight of this big wicket at Dubai International. She did go for a shot across, plays it down to the deep mid wicket area for a single. India with that single move on to 31 without loss, but the ball is keeping really low, Sanjay.
1: ये कई बार परेशान करता है बैटर्स को, लेकिन अब चूंकि लगातार आप इसी विकेट पर खेल रहे हैं दुबई में, तो जाहिर है थोड़ा सा अनुमान तो अंदाज हो ही गया है।
0: Another delivery outside the off stump. Mandana times the ball well, but then the fielders inside the 23 meter area circle. Wideish short third man, a backward point. Then they've got a cover and an extra cover. There's also one fielder longer for Smriti Mandana. She's got that tendency of stepping out of the spinner. Sugandhika just two runs conceded and four balls comes again. Once again, short delivery and she pulls it towards the deep mid wicket area. The ball races down to the boundary for a four for Smriti Mandana.
1: एक और चौका, और इस चौके के साथ भारत पहुंच गया है 35 पर बिना किसी नुकसान के। सुगंधिका को परिवर्तन के तौर पर लाया गया और शुरुआत की दो तीन गेंदों पर बहुत इत्मीनान के साथ बल्लेबाजी की शेफाली वर्मा ने, और जैसे ही एक कमजोर गेंद मिली स्मृति मांधना को, चार रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर कर दिया।
0: सो देन थ्री बाउंड्रीज ईच फॉर स्मृति मांधना एंड शेफाली वर्मा एज अ स्कोरर। रणजीत सिंह रावत टेल्स अस that and he also points out that Smriti Mandana is timing the ball to perfection, and yes indeed, because the next delivery was a short of length delivery way outside the off stump. She didn't go for a cut, and Dada, I tell you what, that's a good technique because the ball is keeping low and the coaches and you know the guides tell you that you shouldn't go for a cut shot if the ball is keeping low, and that's exactly what Smriti Mandana did. Didn't get a run though, but she went for a back foot punch, plays the ball to the cover fielder. So after the end of the over number 4, India are 35 without loss. Mandana batting on 17. Verma, oh boy, what a start she had. Four dot balls and then racing and overtaking Mandana. I tell you what, 18 happens to be till now her best score in Asia Cup
1: 2026.
0: In fact, the final, because she hasn't really done well in the final. She had a lovely semi-final, but as far as the finals are concerned, the new stat that came to us from our scorer Ranjit Singh and of course Ajay Goel, our statistician, that this is the best score in a final of a big event.
1: बिल्कुल तीसरा फाइनल खेल रही है वो, और अब तक का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया। परिवर्तन, चामरी अटापट्टू पहली गेंद और सीधे चार रनों के लिए डिस्पैच। मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से निकाल दिया शेफाली ने, मिडल स्टंप पर टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बाहर की ओर निकल रही थी, और सिर्फ शेफाली को सिर्फ अपना बल्ला चलाना था। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, एक और चार।
0: What a shot then. It was a short delivery and I think that was just a warm-up delivery for the Sri Lankan captain. Short enough for Shefali, who's already set and hits that ball to perfection. Though there was a fielder, but it was hit on the right side and a very powerful shot.
1: सबसे ज्यादा विकेट चामरी के नाम है श्रीलंका के।

0: एक और स्ट्रोक और इस बार क्या खूबसूरत स्ट्रोक है, गैप्स जितनी शानदार तरीके से उन्होंने निकाले, लेकिन बाउंड्री लाइन के नजदीक जाकर के गेम फील्ड हुई। कवर पर पॉइंट और मिड ऑफ के बीच में से यह स्ट्रोक खेला था, तो लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हुए शेफाली अब पहुंच गई हैं 24 पर। 15 गेंदों में 24 रन, स्मृति मानधना 11 गेंदों में 17 रन बना चुकी हैं। चामरी अट्टापट्टू इस बार विकेट तो जरूर उन्हें मिले, लेकिन बल्ले से रन नहीं बने और ये श्रीलंका के लिए परेशानी है। और ये एक और स्ट्रोक सीधे 6 रनों के लिए, ये पहला छक्का शेफाली के बल्ले से। चामरी अट्टापट्टू जैसे ही आई अचानक आक्रामक हो गई शेफाली, कुल मिलाकर 12 रन 3 गेंदों में अट्टापट्टू के, कहीं कोई परेशानी नहीं। फ्लाइट कराने की कोशिश, हाफ बॉली पर लिया और अच्छी बैकलिफ्ट के साथ गेम को उठा दिया, एकदम लॉफ्टर ड्राइव 6 रनों के लिए। और अब सेलिब्रेशन का टाइम इंडियन दर्शकों के लिए दुबई के अंदर।
1: जस्ट शॉर्ट ऑफ दैट 50 रन मार्क एंड व्हाट अ स्टार्ट इंडिया हैज। स्मृति एट द नॉन स्ट्राइकर्स एंड जस्ट प्लेइंग दैट रोल ऑफ अ मैच्योर्ड बैटर। शेफाली ऑन स्ट्राइक बैटिंग ऑन 30।
0: कमाल की बल्लेबाजी, इस बार बैकफुट पर गई और चूंकि गेंद में बहुत ज्यादा गति नहीं थी, स्ट्रोक खेलने का मौका मिला, यहां रन भी मिले साथ ही साथ। तो भारतीय दोनों बैटर्स बिना किसी परेशानी के अब तक चलती हुई, और जो वर्तमान रनों का औसत है वो 10.29 है। पावर प्ले चल रहा है बिना किसी नुकसान के, पांचवा ओवर निकल रहा है और ऐसा लगता है कि फील्डर के पैर पर थोड़ी सी चोट है, लेकिन चामरी अट्टापट्टू मुनीश बल्ले से कुछ भी नहीं कर पाए इस पूरे टूर्नामेंट में। 63 रन है उनके नाम 4 मैचेस में, और श्रीलंका की अगर आप बल्लेबाजी देखें तो पूरी तरह से चामरी अट्टापट्टू पर निर्भर है, और अगर वो ही नहीं चलती हैं तो फिर टीम परेशानी में पड़ती है।
1: Well, she did lead the chase and get close to her half century, but after that, yes, she's scripting, trying to script another victory. But then we see an injury on the field, and that's a twist of an ankle, and that's not a good news for the Sri Lankan team, because I tell you what, there isn't any role that the other batters or the fielders have played till now, because Sri Lanka into the fifth over fielding, and then they don't want to see a player getting injured while fielding. We can understand that if there's a bowler who's coming in and bowling and there's a hamstring pull, or while the batter is batting between the running between the wickets, there is an injury. But then right at the start of the game, in the very first power play, where India have raced on to a blazing start with 48 without loss, the rhythm of the game has been held up because there is an injury right there in the middle. We'll quickly identify the player, because she's been crowded around by the other players. Smriti Mandhana, Shefali right there in the middle and standing quite apart, talking to each other. Smriti doing the much of the talking, and that's needed. And that's not a good sight that we see just now, because the stretcher has been brought in.
0: बिल्कुल, जब इस तरह की चोट होती है, अगर आपका बैट ट्विस्ट कर जाए तो वो आपको परेशान करता है, इसमें कोई शक नहीं। और अब देखना होगा कि जिस तरह से प्रदर्शन करती आई है भारतीय टीम, शेफाली की बल्ले से आज 17 गेंदों पर अब तक 31 रन बन चुके हैं, एक छक्का लगा चुकी हैं, 4 चौके लगा चुकी हैं। बढ़िया पारी शेफाली की, और अगर आप सलामी जोड़ी का जिक्र करें तो यह सबसे बढ़िया प्रदर्शन है फाइनल के अंदर T20 क्रिकेट में, एशिया कप फाइनल में। भारत की इन दोनों बैटर्स का कुछ लम्हों के लिए खेल में व्यवधान।
1: We still have to figure out what's happening, because the umpires are definitely trying to get things sorted out here, because it's not helping as far as the rhythm of the game is concerned. And of course, at the center, there's a lot of crowd, and it seems that Shefali and Mandhana have also spoken to the umpire. In case there is an injury which is really dangerous, and if the player is injured, you need to get the player substituted.
0: बिल्कुल, विश्मि गुणरत्ने को आज टीम के अंदर शामिल किया गया, मौका मिला उन्हें फाइनल के अंदर, लेकिन

0: चोट की वजह से उन्हें बाहर जाना पड़ सकता है, पर बाहर गई हैं वो, स्ट्रेचर पर उन्हें बाहर ले जाया गया है। इस बार गेंद का इंतजार किया चामरिया टपट्टू ने, हल्के से केवल दिशा दी उसे मिड विकेट पर। स्मृति मंधाना और शेफाली दोनों बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही हैं, एक स्वाभाविक सी मुस्कुराहट दोनों के चेहरे पर है। उन्हें पता है कि उन्होंने भारत के लिए गजब का स्टार्ट दिया है, एक सॉलिड स्टार्ट दिया है। 150 रन 140 प्लस निश्चित तौर पर श्रीलंका को परेशान कर सकते हैं। चामरिया टपट्टू की ये गेंद और इस बार फिर स्ट्रेट खेला एकदम सामने, अब देखना है ये 6 है या 4 है। जाकर के गेंद रोप के नजदीक लगी है, हमें भी इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन कमाल की बल्लेबाजी कर रही है शेफाली, खासतौर पर चामरी की गेंद पर उनके आत्मविश्वास को पूरी तरह से हिला करके रख दिया है। ऊंचा शॉट खेला, दूसरा शॉट था इस ओवर में, और गेंद सीधे जाकर के रोप से क्या पहले गिरी या रोप पर गिरी, ये देखना होगा, अंपायर का फैसला करना होगा। मुनीश आपकी नजरें क्या कह रही
1: हैं? To me it looks like a six and now it's been given by the umpire as well. And with that six, India crossed the 50 run mark and what a start by India in the very first five overs. 23 minutes of batting, India have crossed the 50 run mark and the best part is that they haven't lost a single wicket. So 55 after the end of five overs.
0: Sugandhika ka naya over. नए ओवर की शुरुआत, ये दूसरा ओवर है सुगंधिका का। अच्छी गेंदबाज हैं जहां तक सुगंधिका का सवाल है, अनुभव है उनके पास, 100 के आसपास मैचेस खेले हैं, 35 वर्ष की उम्र है। 2015 में पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू किया था, तकरीबन 11 साल का सफर तय कर चुकी हैं और बढ़िया बल्लेबाजी की। आज खासतौर पर चामरिया टपट्टू के आत्मविश्वास को हिला करके रख दिया शेफाली वर्मा ने। दायरे पर गेंद को फील करने की कोशिश की लेकिन गेंद उनके हाथ से छिटकी और यह मौका मिल गया दोनों बैटर्स को दौड़ करके एक रन ले लेने का। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, करंट रन रेट जो है वो अब लगातार ऊपर जाता हुआ 10.7 पर पहुंच गया है, यानी कि 11 रन प्रति ओवर और भारत ने एक भी विकेट नहीं गंवाया है। इससे बढ़िया स्टार्ट और क्या हो सकता है भारत के लिए। स्मृति तैयार इस बार हल्के से केवल दूर किया अपने शरीर से गेंद को लेकिन कोई रन नहीं। स्मृति थोड़ा सा संयमित होकर के खेल रही है और शेफाली अपनी जो स्वाभाविक शैली है उसके साथ खेल रही है। स्मृति कमजोर गेंद पर हिट कर रही है और शेफाली जिस तरह से खेलती है तकरीबन उसी तरह से खेल रही है।
1: एब्सोल्युटली एंड द नेक्स्ट डिलीवरी दैट वी सी स्मृति मंधाना जस्ट डज दैट, शी कम्स ऑन टू द फ्रंट फुट एंड जेंटली प्लेस द बॉल टू द कवर फील्डर। शी इजंट गोइंग आफ्टर द बॉलर्स बट आई थिंक दैट्स अ प्लान वेयर शेफाली विल बी स्ट्राइकिंग टू द बॉलर्स एंड शी इज डन दैट इन स्टाइल प्लेइंग फोर डॉट बॉल्स टू स्टार्ट हर इनिंग्स। शेफाली वर्मा बैटिंग ऑन 38, स्मृति मंधाना ऑन स्ट्राइक एट 19।
0: सुगंधिका इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर खेल गई। अश्विनी परेरा ने गेंद को फील किया और यह भी एक डॉट बॉल, सबसे तेज अर्धशतक 30 बॉलों में इस एशिया कप में, यह दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है और वो भी फाइनल में। आखिरी गेंद इस ओवर की और इस बार बैकफुट पर एक और डॉट बॉल। 6 ओवर यानी कि पावर प्ले की समाप्ति, भारत का स्कोर 57 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के, यानी कि एक स्वप्निल शुरुआत की है भारत ने एशिया कप के इस फाइनल मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ।
1: वेल देन अगेन ब्रिंगिंग दैट स्टैट वेयर शेफाली वर्मा इज बैटिंग ऑन अ हाईएस्ट स्कोर इन एन एशिया कप फाइनल। ऑफ कोर्स शी इज ब्लास्टेड द बॉलर्स अराउंड इन द प्रीवियस गेम एंड शी वाज द लीडिंग स्कोरर फॉर श्योर। स्मृति मंधाना फॉलोइंग हर and Harmanpreet Kaur will be very happy with her decision, so will be Amol Mojumdar, because India at the moment are 57 without loss after 6 overs and of course we have another 14 overs and we will be getting 84 legitimate deliveries for sure. Chamudi Prabhuda, the baby faced left arm spinner of the Sri Lankan women's team, is getting ready. She's warming up for her spell. She'll be bowling to Shefali, who's on strike. There's a shot, a third man point, cover, extra cover, a long off in the offside. Now, the rules of the women cricket, the fielding restriction from 70 to

0: 20th over. There wouldn't be more than four fielders allowed outside the 25-yard circle. So very similar to the men's ODI, where from 11th to the 40th over, there are only four fielders are allowed outside the 30-yard circle. In women's cricket, as far as the T20 is concerned, only four players outside the 30-yard circle. Dada, you think that's justice for a spinner?
1: मुझे लगता है कि जहां तक स्पिनर का सवाल है उसके साथ थोड़ा सा तो न्याय होना चाहिए, होता भी है. और जहां तक चामुदी हैं, इन्होंने जिस तरह की गेंदबाजी की है, ये देखिए ये हवा में है, लेकिन चलिए किस्मत अच्छी है कि वहां कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं.
0: Well, then a single was picked up on the very first ball. Shefali Verma then came at the non-strikers. Then Smriti Mandhana was on strike. It was a flighted delivery, short of length, and a half-hearted shot. And that probably, you know, the way Sanjay Banerjee said, it's in air. And we were like, you know, all our pulses stopped for a few seconds. But thankfully, we got our pulses back when we saw the ball landing at a safe area, at the deep square leg area. And Shefali now faces the ball. It's a flighted delivery. She comes onto the front foot over the extra cover, and the ball races down to the boundary for another four.
1: Kamal ka ek aur chauka Shefali ka. 21 gendon par ab 43 run bana chuki hain. Chamudi Praboda, July mein unhone debut kiya hai, sirf 2 mahine pehle. और जाहिर है कि जिस तरह से पिटाई हुई है उनकी कैप्टन की से पिछले ओवर में, चामुदी का कॉन्फिडेंस भी हिला है. सब कुछ दिमाग मस्तिष्क में खेला जाता है, कोई भी खेल हो मैदान के अलावा. अगर आप मनोबल आपका मजबूत है तो आप बेहतर परफॉर्म करते हैं, लेकिन अगर जरा भी दहशत आपके अंदर होती है तो हाथ कांपने लगता है, गेम की दिशा आप भूलने लगते हैं.
0: Chamudi got two wickets in the semi-final against Pakistan, and she bowled a very tight spell this time, coming around the wicket, and now bowls a delivery that's short on the leg stump, and she's pulled it towards the wide-ish deep square leg area for the second consecutive boundary of this innings. Shefali has raced to 47 runs now in 22 deliveries.
1: Shefali aisa lagta hai ki final ke liye पूरी तरह से तैयार होकर के आई थी, क्योंकि इससे पहले तीन फाइनल में, ये तीसरा फाइनल खेल रही, उन्होंने सिर्फ 18 रन बनाए थे सबसे ज्यादा जो उनका स्कोर था. और आज अर्धशतक की दहलीज पर पहुंच चुकी हैं, और अगर आप उनका स्ट्राइक रेट देखेंगे तो करीबन 215-20 के आसपास होना चाहिए. सिर्फ 6 डॉट्स बॉल खेली अब तक शेफाली ने.
0: चावदी नाउ कम्स इन टू मोर डिलीवरीज इन दिस ओवर, फ्लाइटेड डिलीवरी, स्लोअर इन एयर. Though it was short enough. Now she's coming around the wicket, and she's focusing on the middle and leg line, and a short of length delivery, and punching it down with a true cricketing shot. I saw Amol Majumdar playing that shot when he was playing under 19 with me, and there's a similar fashion, and probably a lot of hard work in that planning. So 11 runs in this over as Smriti Mandhana comes on strike. She's batting on a 20 of 18 deliveries, a flighted delivery, and of course a slow one, a similar fashion, a defensive line, and that's what it's called in cricket, Dada, once you start bowling on the middle and leg. So a single picked up by Smriti Mandhana on the last delivery of this over, and India now on to 69 without loss. Of course, Smriti Mandhana now moves on to 21 of 19 with the help of three boundaries. And Shefali Verma, oh boy, just two runs away from what will be her first 50 in an Asia Cup final. And the batting on 48 of 23 deliveries, six boundaries and two sixes.
1: तारीफ स्मृति की भी है, क्योंकि जिस तरह से वो आज खेल रही हैं, ऐसा लगता है कि वो आखिर तक अपने विकेट को सुरक्षित रखना चाहती हैं, भारत के एक छोर को मजबूती के साथ थामना चाहती हैं, और शेफाली अपनी स्वाभाविक शैली से खेल रही हैं. तो एक रणनीति दोनों के बीच में बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है. एक विकेट पर टिकने की कोशिश कर रही है और दूसरी लगातार आक्रामक रुख के साथ चल रही है. कविशा आई है गेंदबाजी के लिए, और वो प्रेशर, वो दबाव उनके चेहरे पर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है. जिस तरह से वो फील्ड सेट कर रही थी, थोड़ी सी नाराजगी दिखाई दे रही थी उनके हाव भाव में.
0: Well, then she's an off spinner. Kavisha Dilhari comes in and chooses to bowl around the wicket. A flighted delivery shot, but then what a timing by Smriti Mandhana, and the ball races down to the boundary. It may not reach, and a sliding stop in the end. And that's hard work. Maybe a good fielding session for Sri Lanka can change things from here, because at the moment, India's current run rate is very close to 10 and over, and a very impressive fielding, a sliding stop there.

0: Meanwhile, Smriti Mandhana on 23 gets another delivery. That's a flatted delivery. Chose to go onto the back foot. It wasn't sure enough. So you need to keep your eyes on the ball once you choose to go onto the back foot. And the ball is not really short. And that's exactly what Smriti Mandhana has done. So no worries there, because she started well. And she was the one who hit the first boundary. But at the moment, she's on 23. Shefali Verma is on 48. A delivery on the leg side. Wanted to sweep and didn't time the ball. The ball takes an inside edge. Slowly rolls down to the short fine leg area. She gets a single. Good call by Shefali though. And it was her danger end. It'll be interesting to see whether the umpire gives a leg by. Yes, it is a leg by indeed. I thought there might be a nick of the blade, but then it was a close call. And boy, what do we see here? Replay tells us that Shefali was well short of a crease. Lucky that the ball did not hit the stumps. Otherwise, it would have been a real disaster for India. What a wonderful start we are into. 7.3 overs gone, 72 without loss. Shefali Verma batting so well, just too short of a 50. You wouldn't want to see her getting run out in the previous ball. Meanwhile, she bowls now a leg spinner. She's known to be an off spinner, but this is Dilhari now pitching the ball, and that's gone for a 4. What a shot by Shefali Verma. Cuts the ball and finds the deep point boundary and completes a 21st T20-50 and her first in Asia Cup Finals.
1: बिल्कुल, और न सिर्फ फाइनल में उन्होंने ये 50 लगाई जो कि उनका पहला अर्धशतक है, बल्कि सबसे तेज अर्धशतक लगाया उन्होंने T20 एशिया कप में. सिर्फ 24 गेंदों में इस अर्धशतक को पूरा किया. इससे पहले थाईलैंड के खिलाफ 26 गेंदों में अर्धशतक आया था उनके बल्ले से. तो कमाल की बल्लेबाजी शेफाली वर्मा की और गजब का साथ स्मृति मांधना.
0: Well, Kavisha Dilhari will have to choose something else, because she's conceded 7 runs, in fact 6 runs and 1 leg by, 7 runs in this over total of in total for India. Shefali gets a delivery, a flighted delivery. Now she's got both the off spinners and the leg spinners in her armory. Probably wants to bring that change. And Shefali just gets a flighted delivery onto the front foot, drives the ball to the long off fielder for a single. India move on to 77 without loss. And we are into the 8th over. One more delivery to come, and what a start by India. It's a big game though. India won the toss, elected to bat. They made one change. So the only change is Pratika Rawal, who wasn't good with the bat, and she's been rested. So Kamalini comes in to fill up that gap in the final over. Meanwhile, Smriti Mandhana gets a delivery, places the ball to the onside, to the deep square leg area for a single. And that will be the end of the over number 8. India onto a solid start, just hovering around that 10 run and over mark. And at the moment, with Mandhana batting on 24, Shefali Verma batting on 53 of 25, and what a strike rate of 212. India 78 after 8 overs. And just to get that more flavor, Sanjay Banerjee is going to bring in this commentary to be very precise with the timing at the moment. It's 8:36 by the Akashwani clock. Very accurate. And I want to ask a question, and I want Sanjay Dada to be very accurate. Dada, any predictions for the total which India can reach to?
1: 150 for sure. इसके बाद भी, हालांकि इतना अच्छा स्कोर अब तक भारत ने कर लिया बिना नुकसान के, लेकिन इसके बाद भी क्रिकेट की अनिश्चितता को आप बिल्कुल दरकिनार कर नहीं सकते. लेकिन 150 तो अब कहीं नहीं गए, और ये टोटल श्रीलंका के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है. शेफाली की बल्लेबाजी आज असाधारण बैटिंग की. फास्टेस्ट 50 उन्होंने लगाई, 24 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. और मुझे सिर्फ एक चीज लग रही है मुनीश, शायद आप भी मेरी बात से इत्तेफाक रखें, कि जिस तरह से इन दोनों बैटर्स ने आज बैटिंग की है, जमीन आसमान का फर्क है. क्योंकि अगर आप दोनों का स्ट्राइक रेट देखें, तकरीबन बराबर 170 के आसपास, लेकिन आज स्मृति मांधना सिर्फ और सिर्फ रुक करके खेल रही हैं, और शेफाली लगातार आक्रामक हो रही है. इस बार गेंद गई थी सीधे स्क्वायर लेग की दिशा में, और वहां पर रन बना, एक रन और इस रन के साथ 79. तो क्या इस रणनीति को पहले से तय किया था इन दोनों बैटर्स ने कि आज इस तरह से खेलना?
0: आई थिंक सो, बिकॉज इट्स अ कॉशियस स्टार्ट, बिकॉज स्मृति मांधना इज जस्ट बिहेविंग लाइक अ सीनियर प्रोफेसर राइट देयर इन द मिडल ऑफ द विकेट, एंड शेफाली इज अ ट्रू ओबीडिएंट स्टूडेंट बैटिंग ऑन 53. शी इज ऑन स्ट्राइक एट द मोमेंट.
1: तकरीबन बराबर गेम खेली है दोनों ने, और इस बार बैकफुट पर जाकर के पंच किया और एक और चौका अपने नाम किया. इतना आसान स्ट्रोक लग रहा है शेफाली के बल्ले से कि ऐसा लगता ही नहीं है कि वो कोई अटेम्प्ट ले रही हो, और एक बच्चे की तरह एक निश्चल मुस्कुराहट उनके चेहरे

0: से स्मृति ने नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े होकर के उनकी तारीफ की और शेफाली ने मुस्कुरा दिया। कमाल की बल्लेबाजी कर रही है शेफाली। आप भारत के लिए एक इतना शानदार सितारा मिला है शेफाली के तौर पर कि आप जितनी तारीफ करें कम। और बिल्कुल नई खिलाड़ी हैं चामुदी प्रबोदा, जुलाई में डेब्यू किया है और आते ही साथ दुनिया के इन दो टॉप महिला बल्लेबाजों से उनका साबका पड़ा है। जाहिर है थोड़ा सा दबाव तो है।
1: बेबी फेस बोलर लेफ्ट आर्म

0: 6 runs in this over. 2 more deliveries to come. A flighted delivery onto the front foot, and very intelligently she plays with a straight bat, a straight drive which will go to the long on fielder, and that of course is another single which is taking India to closer to the 100 run mark. It is 98 without loss. Smriti Mandhana on 37, Shefali comes on strike, another delivery from Atapattu, and that's a faster delivery. And good to see that she is challenging Shefali Verma with a half-volley style delivery that turns into a yorker. And of course, Shefali didn't get a connection, so good collection by the wicketkeeper. And to end the over number 10, where the players will get a little breather in that heat in Dubai, India at the moment, 98 without loss. Smriti Mandhana batting on 38 of 31 deliveries. Shefali Verma batting on 59 of 29 deliveries. Mandhana with a strike rate of 122.6. Shefali Verma with a strike rate of 203.4. The stats and the scores coming from a statistician who hails from Shimla, and that is Ajay Goyal, and somebody who brings in that sweet vitamin C styled the orange flavor from Nagpur is our scorer, Ranjit Singh Rawat. And of course, Sanjay Banerjee wouldn't want to describe where he is from, because he's moving around the world, just the way the score of India is moving all around the field. And there he is smiling around. And Dada, I hope your throat is all right now, because the way India is batting just now, we need to save our throat power, vocal cords, because India is on a splendid start.
1: बिल्कुल, जब भी इस तरह के मौके आते हैं तो जाहिर है कि वो लेवल जो है आवाज का वो काफी ऊपर जाता है, और आज तो जो बैटिंग की है इन दोनों ने, स्मृति मंदाना ने और शेफाली वर्मा ने, वो सचमुच चौंकाने वाला है। अब सबसे बड़ी बात के एक और ख्याल आता है कि चामरी अठापट्टू ने क्या सोचकर कहा था कि अगर वो टॉस जीतती तो पहले फील्डिंग करने का ही फैसला करती। आपको फील्डिंग ही मिली लेकिन एक भी विकेट आप नहीं ले पाए, पूरी डिफेंसिव फील्ड लगा करके रखी है चामरी अठापट्टू ने, और वजह बिल्कुल साफ है। अब तकरीबन 10 ओवर के आसपास का खेल बाकी है लेकिन 10 विकेट सुरक्षित हैं भारत के, तो आप अगर अग्रेसिव होंगे तो स्कोर 150 से पौने 200 चला जाएगा, लेकिन आप पूरी पारी को समेट पाना आसान नहीं होगा भारत के लिए, माने श्रीलंका के लिए। तो ऐसे में अब दोधारी तलवार है, आप सिर्फ और सिर्फ रन को रोकने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन क्या कोई तुरप का पत्ता है, क्या कोई गेंदबाज है जो आकर के इस जमी हुई जोड़ी को तोड़ सकता है? क्योंकि अगर आप ये जोड़ी तोड़ देते हैं, ये पार्टनरशिप खत्म कर देते हैं, तो हो सकता है श्रीलंका की वापसी।
2: मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है।
3: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले 2 दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
2: श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
3: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल राइट में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वायदों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक सीमित नहीं होने चाहिए।
3: ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति

0: हमारी डाइवर्सिटी और कोऑपरेशन में है. वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियालिटीज, हमारी डाइवर्सिटी और कोऑपरेशन में है. वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियालिटीज, बट टूगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी.
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन के दूसरे और आखिरी दिन ब्रिक्स सहयोगी देशों के नेताओं का स्वागत किया. ब्यौरा हमारे संवाददाता से.
2: दो दिनों तक चले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित रहा. इनमें वैश्विक संस्थाओं में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आतंकवाद, शांति और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और सतत विकास जैसे विषय शामिल रहे. ब्रिक्स देशों के नेताओं ने भविष्य में महामारी से निपटने के लिए बेहतर सहयोग और संक्रामक बीमारियों की समय रहते पहचान के लिए एक साझा चेतावनी प्रणाली विकसित करने का समर्थन किया. पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी नेताओं ने चिंता जताते हुए अधिकतम संयम बरतने, बातचीत और कूटनीति के जरिए समस्याओं का समाधान खोजने पर जोर दिया. साथ ही आम नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा की जरूरत पर बल दिया. इसके अलावा ब्रिक्स नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों और उसके हर तरह की गतिविधियों की कड़ी निंदा की. नई दिल्ली घोषणा पत्र से आर्थिक विकास और वैश्विक शासन के क्षेत्रों में ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग और मजबूत होने की उम्मीद है. साथ ही ग्लोबल साउथ की आवाज को भी मजबूती मिलेगी. यह शिखर सम्मेलन वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और बहुपक्षीय सहयोग के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहा. पश्चिम एशिया की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा से यह स्पष्ट हुआ कि ब्रिक्स अब केवल आर्थिक सहयोग का मंच नहीं रहा, बल्कि वैश्विक राजनीतिक विमर्श में भी ब्रिक्स की भूमिका लगातार बढ़ रही है. ब्रिक्स टीम के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
1: विदेश मंत्रालय ने कहा कि नई दिल्ली में आज संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कई ठोस और विकास केंद्रित परिणाम निकले. विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव सुधाकर दलेला ने नई दिल्ली में कहा कि अलग अलग विषयों पर 50 से अधिक ठोस परिणाम हासिल किए गए. उन्होंने इसे भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की बड़ी कामयाबी बताया.
3: दोनों दिनों की बैठक का उद्देश्य अलग अलग था. कल विशेष सत्र में सदस्यों ने वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद पर सीधे और स्पष्ट विचार रखे तथा नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया. आज खुले सत्र में इस सहमति को व्यापक ब्रिक्स परिवार और ग्लोबल साउथ के साझेदार देशों तक पहुंचाया गया.
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की. पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की. उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की. एक रिपोर्ट.
4: प्रधानमंत्री मोदी ने आज कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की. श्री मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्तू तोकायेव के साथ बैठक में आपसी संबंधों में प्रगति की समीक्षा की. प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी के साथ भी बैठक की. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान क्षेत्रीय घटनाक्रम और भारत मिस्र की साझेदारी से कई मुद्दों पर चर्चा हुई. इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश कई क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे. श्री मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति आर मार्कोस जूनियर के साथ भी बातचीत की. वहीं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ बैठक में श्री मोदी ने भारत दक्षिण अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी के सभी पहलुओं की समीक्षा की. प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा की उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की. इससे पहले कल श्री मोदी ने इथियोपिया, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम और चीन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की. शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने रूस और ईरान के नेताओं के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र महासचिव से भी मुलाकात की. समाचार कक्ष से देवेंद्र त्रिपाठी.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं.
5: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान. पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान. आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए. इस पुरस्कार के लिए तीन श्रेणियों में होता है चयन: सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन. उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान. नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की. आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर. राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी.
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प.
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको.
6: अब तक इस योजना से 9 करोड़

0: 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने आज मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश में कई बड़े परिवर्तन किए हैं।
2: सरकार ने 12 साल में देश के अंदर कई आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। हमारा देश 2014 में फ्रेजाइल 5 में गिना जाता था, आज टॉप 5 में गिना जाता है। अभी अभी पहली तिमाही के आंकड़े आए, 7.8% का ग्रोथ रेट, हमें सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व भर में बनाकर गौरव के साथ टॉप पर है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में आज श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज आगर मालवा से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 40वीं किस्त जारी की। इसके अंतर्गत राज्य की 1,25,00,000 से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित की गई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली के कृषि विज्ञान केंद्रों और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किसानों से बातचीत की। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार कृषि विज्ञान केंद्रों को किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए भरोसेमंद केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय कल से 18 सितंबर तक नई दिल्ली में संयुक्त परिचालन समीक्षा और मूल्यांकन कोर कार्यक्रम आयोजित करेगा। 5 दिन के इस कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को सुरक्षा से जुड़े वर्तमान राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों से अवगत कराना है। अमेरिका ईरान संघर्ष से खाड़ी क्षेत्र में अशांति फैलने के साथ ही इसका असर अन्य क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। इसे देखते हुए इस सप्ताह राजनयिक प्रयासों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य और व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए ईरान और खाड़ी देशों की कल ओमान में बैठक होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। इस बीच इस हफ्ते एक बार फिर डिप्लोमेटिक कोशिशों पर नजर है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच सोमवार को ओमान में बैठक होने की उम्मीद है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा होगी। ईरान का कहना है कि स्ट्रेट में जहाजों के आने जाने के लिए एक संभावित रूट को लेकर ओमान के साथ उसकी समझ बनी है। इस बैठक से बातचीत का रास्ता खुल सकता है और तनाव कम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत दोबारा खोलने पर सहमति की संभावना कम है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि यह अमेरिका के उसकी शर्तें मानने पर निर्भर करेगा। दुबई से आकाशवाणी न्यूज के लिए मनीष शिवा।
1: इंडोनेशिया में खराब मौसम के कारण जावा सागर में 240 से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक नौका पलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। करीब 130 यात्री और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल ने अब तक 107 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। तलाश और बचाव अभियान जारी है। भारतीय जूनियर महिला और पुरुष हॉकी टीम ने जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीत लिया है। चीन के मूकी में खेले गए फाइनल में भारतीय महिला टीम ने चीन को 1-0 और पुरुष टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत की महिला और पुरुष दोनों टीम ने जूनियर हॉकी विश्व कप का टिकट भी पक्का कर लिया है। क्रिकेट में T20 महिला एशिया कप का फाइनल भारत और श्रीलंका के बीच दुबई में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12 ओवर में बिना किसी नुकसान के 121 रन बना लिए हैं। उधर दिल्ली में भारत के साथ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 17 ओवर में 6 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं।

0: बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ से 15 जिलों में 48 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।
1: बाढ़ प्रभावित जिलों में 1251 सामुदायिक रसोई केंद्रों के माध्यम से अब तक करीब 88,54,000 से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया है। आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को प्रति परिवार 7,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। सुरक्षित आवागमन के लिए 1,688 नावें चल रही हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए SDRF की 27 और NDRF की 10 टीमें तैनात है। पटना से निधिश्री।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल गुजरात में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का मंच बताया। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत को प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो और आभूषण क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने का लक्ष्य रखना चाहिए। और क्रिकेट में महिला T20 एशिया कप के फाइनल में भारत और मौजूदा चैंपियन श्रीलंका के बीच दुबई में मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9.

0: In para badminton, Tokyo Paralympic gold medalist Pramod Bhagat secured gold medal in the men's singles SL3 category and teamed up with Sukant Kadam to win the silver in the men's doubles SL3-SU5 at the Japan International today. The six-time world champion Bhagat produced a dominant performance in the singles final, defeating fellow Indian Umesh Kumar 21-16, 21-8 to clinch the top honour. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says BRICS is an ecosystem of solutions, stresses need to translate all outcomes of New Delhi Declaration into time-bound actions as 18th BRICS Summit concludes. Prime Minister holds 15 bilateral meetings with world leaders besides engagement with heads of international institutions on the sidelines of the summit. Home Minister Amit Shah says India should aim to become a global leader in lab-grown diamonds and jewellery sector. 6 persons killed and nearly 130 missing after Indonesian ferry capsizes in Java Sea. In hockey, India's men's and women's team clinched Junior Asia Cup title at Moshi in China. And in cricket, women's T20 Asia Cup final match between India and defending champion Sri Lanka underway in Dubai. Indian men's team takes on Afghanistan in the opening game of the 3-match T20 series in Delhi. For details of these stories and more, log on to our website, newsonair.gov.in and News on AIR app. And that's all in the news at 9. Good night.
1: FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। अब आप सुनेंगे महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 अंतर्गत दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे भारत बनाम श्रीलंका क्रिकेट मैच का फाइनल मैच का आंखों देखा हाल।
2: Ayodhya is the right choice to come in and bowl at this moment because that's exactly what the Indian batters want, a pacer so that they can get some pace. And Richa Ghosh, she loves hitting the fast bowlers. Batting on 15 off 9, Harmanpreet at non-strikers end, batting on 12 off 11, India on 157 for 2. Ayodhya comes in right arm over the wicket, short of length delivery, it was a slower one and then pulled towards the deep mid-wicket fielder by the time the ball has been picked up and will be thrown to the bowler's end. One more single takes India to 158 for 2, Richa of course moves on to 16.
3: बहुत अच्छी batting कर रही है रिचा, एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती उनकी विकेट के पीछे भी और विकेट के आगे भी। और उसका बहुत ही शानदार प्रदर्शन, स्मृति मानधना, शेफाली वर्मा आज कमाल की बल्लेबाजी की। हरमनप्रीत और ऋचा घोष अब पारी को कितना आगे बढ़ा सकती हैं, सिर्फ प्लेस के अपने पल्ले से लटने दिया और ये देखा कि फील्डर दूर खड़े हुए हैं, तेजी के साथ दौड़ते हुए एक रन पूरा कर दिया 159 पर 2। हरमनप्रीत बहुत ज्यादा रन्स नहीं जुटा सकी इस टूर्नामेंट के दौरान, चार मैचों में 57 रन है, लेकिन सच ये भी है कि उन्हें जहां पर बल्लेबाजी का मौका मिलता है वहां पर बहुत ज्यादा रन बनाने की गुंजाइश भी नहीं थी उनके लिए। मिताली की ये गेंद और इस बार इंतजार किया, थोड़ी सी धीमी गेंद, पहले टप्पा खा गई और अच्छी फील्डिंग वहां पर, बढ़िया फील्डिंग और थोड़ी सी गलतफहमी हो सकती थी, लेकिन चलिए अपने पैर तेजी के साथ वापस क्रीज के अंदर खींचे। तो ऋचा घोष अभी 16 पर खेल रही हैं और हरमनप्रीत 13 पर। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन, जहां तक अयोध्या का सवाल है, उनका तीसरा ओवर है, अब तक 28 रन खर्च कर चुकी हैं मिताली अयोध्या और दिलहारी ने 3 ओवर में 29 रन दिए हैं। इस बार कनेक्शन सही मिला नहीं, लेकिन किस्मत साथ, खेलना चाहती थी सामने की दिशा में, गेंद गई थर्ड मैन की दिशा में, रन जरूर मिल गए और वही महत्वपूर्ण है T20 क्रिकेट में। और इस एक रन के साथ अब भारत का स्कोर बढ़ता हुआ 160 दो विकेट के नुकसान पर, एक सुरक्षित स्थिति में भारत पहुंच चुका है। प्रबोधा का जहां तक सवाल है, 4 ओवर का उनका कोटा पूरा हो गया और 4 ओवर में उन्होंने 40 रन खर्च किए हैं, एक विकेट लेने में सफलता मिली उन्हें। काफी जम करके उनके खिलाफ स्ट्रोक्स लगाए थे शेफाली ने। इसके अलावा अटापट्टू 3 ओवर्स में 31 रन, हालांकि अगर आप कुल मिलाकर देखें तो सुगंधिका का जो बॉलिंग का विश्लेषण है वो अपेक्षाकृत बेहतर, 3 ओवर में उन्होंने सिर्फ 15 रन खर्च किए। जब रनों की बारिश हो रही हो तब अगर आप इतने संभल करके रन खर्च करें तो आपने, सुगंधिका ने ये दिखाया है कि

0: पैकर्स को किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। उनके कोटे का भी एक ओवर बाकी है, अब आखिरी तीन ओवर्स का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे, क्या मिताली अयोध्या एक और ओवर करेंगी। यहां पर चमारी अटपट्टू को विकेट मिल गया, हवा में गेंद थी और ये एक और विकेट भारत ने गंवा दिया। ऋचा घोष हवा में खेल गई शॉट को और वहां कविशा दिलहारी को कैच लेने में कोई परेशानी नहीं हुई, बढ़िया विकेट। ऋचा आक्रामक अंदाज में थी और जहां पर गेंद पर उन्होंने स्ट्रोक लिया वो बल्ले के बीचों बीच नहीं आया, बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगा, हवा में गेंद गई और इत्मीनान के साथ वहां कविशा दिलहारी ने कैच किया, तो तीसरा विकेट भारत ने गंवा दिया है। इसके साथ ही ऋचा घोष बाहर आते हुए 13 गेंदों का सामना किया, 17 रन बनाए, एक छक्का, स्ट्राइक रेट 131। अपना रोल अपनी भूमिका अदा की उन्होंने। और जब आप कुछ आखिर के कुछ ओवर्स खेलते हैं तो आपसे यही अपेक्षा की जाती है कि आप 125-150 के स्ट्राइक से कम रन बनाए और जितने रन बन सकें बॉल जाया ना हो, ज्यादा डॉट बॉल्स का सामना ना करें, लगातार रन्स में रहें, और वो काम ऋचा घोष ने बखूबी किया। 160 तीन विकेट के नुकसान पर कमालिनी को लाया गया है। अब कमालिनी, जैसा कि आप जानते हैं, बिल्कुल नई खिलाड़ी, उन्हें सिर्फ एक मैच खेला था दिसंबर 2025 में, नहीं बल्कि कमालिनी नहीं, ये तो दीप्ति शर्मा है, बिल्कुल दीप्ति शर्मा आई हैं यहां पर और दीप्ति बढ़िया बल्लेबाजी करती हैं। कुल मिलाकर अगर आप उनका प्रदर्शन देखें तो निचले क्रम में ठीक ठाक रन उन्होंने बनाए हैं और गेंदबाजी में तो कमाल किया है उन्होंने, कुल मिलाकर 11 विकेट। हालांकि चामरी अटपट्टू अब उनसे आगे निकल गई है, उनका यह 12वां विकेट है।
1: दादा, दिस ऑल्सो हैपेंस टू बी द 150th विकेट for Chamari Attappattu in Women's International. Stats, of course, brought to you from our statistician, Ajay Goyal.
0: Deepti ko khata kholna hai. Harmanpreet ne ab tak 13 run banaye hain 12 gendon mein. Is baar game ka intezaar kiya. Halke se keval disha dikhai aur pehle se hi commit kar chuki thi ki run to daudna hi hai. Game ko sirf apne shareer se dur dhakela, ek run pura kiya. और इस एक रन के साथ अब वापस स्ट्राइक हरमनप्रीत के पास, एक अच्छी रणनीति। हरमनप्रीत कुछ समय से खेल रही है तो दीप्ति ने उन्हें मौका दिया कि आप आइए, हम सिंगल लेकर के नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जाते हैं। चामरी अटपट्टू 12 विकेट लेकर के अभी सरे फहरिस्त हैं, लेकिन दीप्ति को बोलिंग करनी है अभी। और इस बार हल्का सा फ्लाइट जिसे केवल उसकी टर्न को दबाया, वापस खेला एक और रन, तो अब एक एक रन लेने की कोशिश कर रही हैं। चामरी अटपट्टू का अपेक्षाकृत ये किफायती ओवर है, अब तक तीन गेंदों में उन्होंने सिर्फ 2 रन खर्च किए हैं जबकि इससे पहले 31 रन दे चुकी थी वो तीन ओवर्स में, 10 के औसत से उन्होंने रन खर्च किए थे, तो उस लिहाज से ये जो उनके कोटे का आखिरी ओवर है वो बेहतर ओवर साबित होता हुआ। एक बार फिर एक सिंगल की कोशिश होगी यहां पर, लेकिन प्रभुदा वहां पर मौजूद थी और उन्होंने गेम को फेंका, डॉट बॉल में कन्वर्ट हुई, तो एक डॉट बॉल वो भी इस समय, यानी कि बेहद अहम मौका इस डॉट बॉल का। एक बार आपके विकेट्स गिर जाते हैं तो आत्मविश्वास लौटता है। चामरी अटपट्टू बेहतर बॉलिंग करती हुई इन आखिर के ओवर्स में एक बार फिर डॉट बॉल, फील्ड जिस तरह से सजा करके रखी है, मौका नहीं मिल रहा है यहां पर दीप्ति को बड़े स्ट्रोक्स खेलने का, लगातार 2 डॉट बॉल खेल चुकी हैं। हरमन को मौका देना चाहती थी कि हरमन आकर के स्ट्राइक लें, लेकिन अब आखिरी गेंद का सामना करेंगी 18वें ओवर की। इस बार हवा में क्या कोई नीचे है, नीचे है जरूर लेकिन पीछे है और इसलिए वहां पर रन मिल गए 3 और स्कोर बढ़ता हुआ अब 163/3 भारत का स्कोर। 18वां ओवर अब पारी का समाप्त हो चुका है।
1: 163/3, so we left with 2 more overs and that, I should say, that dream of reaching to 200 looks a bit difficult now because Sri Lanka are making good comeback and of course their captain Chamari Attappattu finishing her spell, 4 overs, 34 runs with the wicket, and Chamudi Prabhuda, the left arm spinner, she has completed her spell of 4 overs for 40 runs and a wicket. Mithali Ayodhya, 3 overs,

0: भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 183 रन बनाए हैं और श्रीलंका को टारगेट दिया है 184 रनों का. नमस्कार एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स वंस अगेन एंड फ्री हिट 20. मैं हूं मदिता और मेरे साथ है मेरे को होस्ट दर्पण तिखिया.
1: जी स्टार नहीं स्मृति और शेफाली की वो जोड़ी जिसने 129 की एक लंबी साझेदारी रची टॉप ऑफ द ऑर्डर पर. इस ओपनिंग स्टैंड के बलबूते पर वो नींव रखी गई 183 के स्कोर की और क्या ये स्कोर काफी होगा मिड इनिंग्स पे. 2024 के फाइनल में जब भारत ने 165 बनाए थे हम सबको लगा था काफी होगा, लेकिन फिर श्रीलंका ने उस स्कोर को भी चेज किया था. आज क्या होगा जानने के लिए, आकलन विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ चुके हैं. हमारे साथ हैं फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर लतिका कुमारी. लतिका बहुत बहुत स्वागत आपका.
2: थैंक यू सो मच.
1: और साथ के साथ हमारे साथ हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उत्तरा गणेशन, जिन्होंने कई दशकों से भारतीय महिला क्रिकेट की जो एवोल्यूशन है उस पर अपनी पैनी नजर रखी हुई है. उत्तरा बहुत बहुत स्वागत आपका.
2: धन्यवाद.
1: तो सीधा प्रश्न, कोई घुमाव नहीं, कोई गुगली नहीं, सीधा सटीक प्रश्न लतिका आपसे. 183, व्हाट डू यू मेक ऑफ इट?
2: देखिए जिस तरह की बल्लेबाजी आज हुई है मुझे लगता है कि श्रीलंकाई टीम के सामने एक अच्छा खासा स्कोर यहाँ पर भारतीय टीम ने खड़ा कर दिया है. क्योंकि अभी तक अगर हम श्रीलंका की बल्लेबाजी की बात करें तो शुरुआत उनकी भी इतनी अच्छी नहीं हुई है, लेकिन मिडिल ऑर्डर ने कहीं ना कहीं संभाला है. बट अभी तक इतना बड़ा चेज उनकी तरफ पे भी नहीं आया. 130-135 रन का ही उनको चेज करने का मौका मिला है. बट 183 एक ऐसा स्कोर है जहां पर अगर आज भी ऊपर से बल्लेबाज नहीं चले, चमारी अटापटू नहीं चली या उनके साथ ओपनिंग नहीं हुई अच्छी, जो हम कहते हैं कि पावर

0: का यूज करना चाहिए, जो कि अभी तक श्रीलंकाई टीम के सामने से उसका यूज इतना नहीं हो पाया. तो बहुत चैलेंजिंग रहेगा 183, बट क्रिकेट जो है अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ कह नहीं सकते हैं. तो जब तक ये कंप्लीट आखिरी बॉल नहीं डलती, तब तक हम यही उम्मीद रखेंगे ये भारतीय जो टीम है उसका दबदबा बना रहे, जैसे कि बल्लेबाजी में बना है.
1: उत्तरा, वी हैव बीन टॉकिंग दैट दिस इंडियन टीम इज स्ट्रॉन्गर देन द रेस्ट ऑफ द टीम्स इन द कंपटीशन. तो वो जो अपने खुद के मानक हमने तय कर रखे हैं, उस हिसाब से अगर देखें 130 पर शून्य थे 13 ओवर के बाद, और उसके बाद आखिरी के 5-7 ओवरों में श्रीलंका ने कमबैक किया. एक समय पर लग रहा था 200 से ऊपर ही आंकड़ा जाएगा, उसको मद्देनजर रखते हुए आप 183 को कैसे देखते हैं?
2: देखिए, बिल्कुल वैसे ही गया है जैसे अभी तक भारतीय टीम का चला है, कि बहुत कमाल का स्टार्ट और बीच में थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई मिडिल ऑर्डर, और फिर नीचे आके किसी प्लेयर ने 2-3 बड़े हिट्स लगाए ताकि थोड़ा सा स्कोर आपको बेटर होता दिख गया एंड की तरफ. उसी ट्रैक पे एक तरह से चला है. 125 रन के आसपास का ओपनिंग पार्टनरशिप गई है, तो

0: ऐसे अभी तक भारतीय टीम का चला है कि बहुत कमाल का स्टार्ट और बीच में थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई मिडिल ऑर्डर और फिर नीचे आके किसी प्लेयर ने दो तीन बड़े हिट्स लगाए ताकि थोड़ा सा स्कोर आपको बेटर होता दिख गया एंड की तरफ, उसी ट्रैक पे एक तरह से चला है। 125 रन के आसपास का ओपनिंग पार्टनरशिप गई है, तो बहुत लग रहा था उस टाइम पे कि जिस पेस पे स्कोरिंग हो रही थी, ना सिर्फ ये कि जो रन बन रहे थे बल्कि जिस रेट पे रन बन रहे थे, तो उससे लग रहा था कि काफी अच्छा जा सकता है स्कोर। और क्योंकि भारत ने 150 रन बनाए हैं इस टूर्नामेंट में दो बारी, तो एक उम्मीद थी कि उसके आसपास तक जाएंगे, पर रन जरूर उसके ऊपर गए, बल्कि 183 शायद बहुत अच्छा स्कोर है, एक विनिंग टोटल हो सकता है। पर वही है कि जिस तरह का स्टार्ट था उसके बाद जो उम्मीद थी जहां तक जाएंगे वहां तक नहीं गए, तो इस मैच के हिसाब से मुझे लगता है कि 183 जो है वो एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव और चैलेंजिंग टोटल रहेगा श्रीलंका के लिए। पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से थोड़ा सा भारत को देखना पड़ेगा कि सिर्फ ऊपर के दो प्लेयर्स के भरोसे वो कब तक खेलने वाले हैं।
1: बिल्कुल, और ऊपर के दो प्लेयर्स की फिर से हम बात करते हैं लतिका। ये टूर्नामेंट शेफाली वर्मा का टूर्नामेंट है, आज फिर से हाईएस्ट स्कोर 68 रन्स, 129 रनों की पार्टनरशिप रही उनकी और स्मृति के बीच, और फिर से हमने देखा है कि ये दो ओपनर्स के जाते ही पारी लड़खड़ाने लग गई थी।
2: देखिए, इस शो से पहले ये बातचीत हुई थी हम लोगों के बीच में कि स्मृति मंदाना फाइनल्स में अभी तक वो स्कोर नहीं कर पाई हैं, तो देखिए उनका जो मैंने पहले भी कहा है कि एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है और स्किल कहीं ना कहीं इंप्रूव होती जा रही है, अब बिग शॉट्स उनके बल्ले से हमें ज्यादा दिखाई देते हैं, तो आज की इनिंग में भी हमें वो दिखाई दिया। और शेफाली वर्मा की तरफ से जो बल्लेबाजी इस टूर्नामेंट में हुई है, तो उसमें एक कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस के साथ साथ एक ठहराव दिखाई दिया है उनके बल्लेबाजी में। पहले जो एग्रेशन उनके बल्लेबाजी में दिखता था वो एग्रेशन है, लेकिन अब गेंद को देख के उसको भाप के किस तरीके से आप एक लंबी इनिंग को यहाँ पर कर सकते हैं अपनी, वो एक जो बदलाव है शेफाली वर्मा की बल्लेबाजी में देखने को मिला कि आप शॉट सिर्फ ताकत से नहीं नज़ाकत से भी खेल सकते हैं।
3: जी, स्मृति और शेफाली की तो चर्चा होगी, लेकिन एक और प्लेयर है लतिका जिनके बारे में मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा जिक्र करें, क्योंकि आप उनसे बहुत प्रभावित हैं। अंत में केवल 5 गेंदें मिली, लेकिन उन 5 गेंदों में 15 रन मारे। जी कामेलिनी की शायद इस छोटी सी पारी की उतनी ज्यादा चर्चा होगी नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उस पर थोड़ा सा तवज्जो दें।
2: देखिए, इस पारी से उन्होंने अपनी दावेदारी साबित की है कि अगर आप मुझे मौका ऊपर देते तो शायद ये थोड़े से और जो है रन इकट्ठा कर सकती थी अपनी टीम के लिए। और मैं पहले भी कह रही थी कि ये काफ़ी अच्छी हिटिंग, क्लीन हिटिंग करती हैं, और एक लेफ्टी बल्लेबाज आपकी टीम में एक शामिल हुए हैं, तो नंबर 3 पर ही अगर उस टाइम पर आती हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से 12-13 ओवर हुए थे और 130 पे हमारी टीम थी जब हरमन आई थी, अगर उस वक्त इनको 5-6 ओवर या 4 ओवर मिलते तो शायद ये स्कोर और 10-15 रन या 20 रन और ऊपर होता।
1: जी बिल्कुल, ऊपर हो सकता था। बात करें हम उत्तरा श्रीलंका की बॉलिंग की, तो आज फिर से हमने देखा चामुदी प्रबोदा को, और हम सब बात कर रहे थे 17 साल की हैं केवल, पहले भी अपनी पारियों में प्रभावित कर चुकी हैं, और आज फिर से उन्होंने शेफाली वर्मा का विकेट लेके वो ब्रेक थ्रू दिलाया श्रीलंका को।
0: बिल्कुल, और वो श्रीलंका की बॉलिंग जिस तरह की रही है, थोड़ा सा वो डिसअपॉइंटेड एज अ टीम जरूर रहेंगे, क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट में बैटिंग के मुकाबले उनकी बॉलिंग और फील्डिंग ने ज्यादा इंप्रेस किया है। चामुंडी के अपनी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, और उन्होंने वही किया जो उनका रोल था, जिस चीज के लिए उनके कप्तान ने उन पर भरोसा दिखाया था। पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो एज अ टीम थोड़ा डिसअपॉइंटेड होंगे अपनी बॉलिंग को लेके, क्योंकि थोड़ी सी वेवर्ड थी, थोड़ी सी कंट्रोल्ड नहीं थी, आपको दिख रहा था कि वो सिर्फ रन पढ़ने की बात नहीं होती है, वो बॉलर का बॉडी लैंग्वेज भी एक होता है कि आपका अपनी गेंद पे कितना कंट्रोल है उस टाइम पे, और वो कंट्रोल थोड़ा सा मिसिंग देखा खिलाड़ियों में, खासकर कि जब हमारे ओपनिंग पेयर बैटिंग कर रहे थे शेफाली और स्मृति का, प्लस उनकी फील्डिंग और फील्ड प्लेसमेंट थोड़ा सा वियर्ड जरूर लगा, क्योंकि जनरली चमरी अतापत्तू जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट

0: क्रिकेटर मानी जाती है इन टर्म्स ऑफ फील्ड प्लेसमेंट्स और नो वो उस तरह की लेजी क्रिकेटर नहीं मानी जाती कि एक जगह खड़े हो गए तो वो वहीं खड़े रहेंगे. वो शी इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट एंड सीइंग वेयर थिंग्स कैन गेट बेटर. बाय दैट यार्डस्टिक आज उनकी फील्डिंग, फील्ड प्लेसमेंट, बॉलिंग चेंजेस, उन सब चीजों में मुझे लगता है थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट जरूर उनको रहेगा.
1: जी चामरी अच्छापट्टू की हम बात कर रहे हैं. आपको याद दिला दे 2024 में जब श्रीलंका एशिया का चैंपियन बना था तो उस टूर्नामेंट में इनकी 3 अर्धशतक थे, वो अपने आप में एक कीर्तिमान था. और आज उस कीर्तिमान की बराबरी शेफाली वर्मा ने कर ली. इन्होंने अपना 3rd हाफ सेंचुरी इस टूर्नामेंट का बनाया. चामरी तो इंपॉर्टेंट होने वाली है लतिका, और इसलिए भी शायद इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हमने देखा विश्वी गुणारत्ने, उनको इंजरी हुई, स्ट्रेचर पर उनको बाहर ले जाया गया, तो शायद वो बल्लेबाजी करने के लिए अवेलेबल ना हो. वो वन बैटर शॉट होना, इतना बड़ा टारगेट होना, फाइनल का प्रेशर होना, अगर इस वक्त आप अपने आप को चामरी की जगह देखें तो आप कैसे अप्रोच करेंगे इस इनिंग्स को?
2: देखिए ये बात जरूर है कि एक आपके प्लेयर इंजर्ड हो गए हैं जो कि आपने चेंज भी किया था और उनको स्पेशली इस मैच में उतारा भी था, फाइनल का मैच, और वहां उनकी इंपॉर्टेंस भी दिखती है. अगर आप टीम में कोई चेंज कर रहे हो और वो वही चेंज अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो जाते हैं, तो चामरी के लिए ये बहुत बड़ा अभी टास्क होने वाला है क्योंकि वो एक बेहतर शुरुआत जरूर करना चाहेंगी यहाँ पर अपनी बल्लेबाजी से. पूरे टूर्नामेंट में उनका बल्ला खामोश रहा है, सिर्फ एक बार ही 40 का आंकड़ा पार किया है उन्होंने. तो अब ये देखना होगा कि किस तरीके से बैटिंग लाइनअप यहाँ पर श्रीलंका की कप्तान है जो रखना चाहेंगी, कोच हैं वो रखना चाहेंगे, क्योंकि मिडिल ऑर्डर ने अभी तक अलग अलग प्लेयर्स ने यहाँ पर करके दिखाया है, मैच निकाला है, लेकिन टॉप ऑर्डर 2-3, 3-4 नंबर तक पावर प्ले या 8 ओवर तक वापस पवेलियन गए हैं. तो आज ये और भी बड़ा टास्क होगा कि आपका एक प्लेयर जो मेन प्लेयर है वो इंजर्ड हो जाते हैं.
1: एंड टॉकिंग अबाउट इंडियाज पर्सपेक्टिव, उतरा भारतीय बॉलिंग में आप किसको देखते हैं? कौन तुरुप का इक्का साबित होने वाला है? क्या श्रीचरणी पर दोबारा दारमोदार होगा या फिर आप पेसर्स की भूमिका को देखते हैं? क्रांति गौड़ और नंदिनी शर्मा का एक अहम रोल देखते हैं.
0: देखिए दीप्ति शर्मा हमारी टॉप विकेट टेकर हैं तो, और सीनियर हैं ऑब्वियसली श्रीचरणी के मुकाबले, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी जरूर ज्यादा होगी और प्रेशर श्रीचरणी पे जरूर होगा क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं. नंदिनी शर्मा और क्रांति गौड़ दोनों से एक्सपेक्टेशंस रहेंगे, लेकिन जितना टोटल सेट किया है तो बॉलर्स को थोड़ा सा लीवे जरूर एक्स्ट्रा मिल जाता है. आपके ऊपर उतना प्रेशर नहीं होता कि एक एक रन के लिए आपको फाइट करना हो. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आप बाउंड्रीज खा सकते हैं या बहुत इजी रन दे सकते हैं सामने, पर जब आपकी बैटिंग आपको इतना बड़ा टारगेट एक देती है डिफेंड करने के लिए, तो थोड़ा सा आपके ऊपर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और प्रेशर हल्का सा कम होता है. मुझे लगता है श्रीचरणी और दीप्ति शर्मा दोनों के ऊपर प्रेशर तो नहीं, लेकिन ये जिम्मेदारी जरूर रहेगी कि वो अर्ली ब्रेक थ्रूज दिला पाए ताकि टॉप ऑर्डर, जैसा लतिका ने कहा कि वो नहीं चल पाया उस तरह से उनका श्रीलंका का, तो अगर आप ऊपर से जल्दी विकेट ले लेते हैं तो जिस तरह से उनके मिडिल ऑर्डर ने अभी तक चीजें संभाली हैं, वो 120 से 135-145 तक का टारगेट जो है उसके लिए शायद काफी रहा हो, लेकिन 184 के लिए शायद ऊपर के 3-4 जल्दी निकल गए तो वो मिडिल ऑर्डर ना संभाल पाए उस चीज को.
3: जी बिल्कुल, तो 184 का टारगेट सेट करके बल्लेबाजों ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है और अब बारी है भारतीय बोलर्स की. इट्स इंडियन बोलर्स अगेंस्ट श्रीलंकन बैटर्स नाउ. और इसके साथ ही हम लेंगे आपसे इजाजत, हमारी कमेंट्री टीम आपसे जुड़ेगी और हम फिर से हाजिर होंगे मैच के बाद.

0: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास।
1: नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का। भारत क्या आठवीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम कर सकेगा? 184 रन बनाने हैं श्रीलंका को। जाहिर है एक बहुत बड़ी चुनौती है श्रीलंका के सामने। इस चुनौती से निपटना कितना मुश्किल होगा उनके लिए, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि चामरी अट्टापट्टू जो कि टीम के कप्तान हैं, जिनकी बल्लेबाजी पर श्रीलंका लगातार आश्रित रही है, बहुत दारुमदार है उनके ऊपर श्रीलंका की बल्लेबाजी का, वो पिछले कुछ मैचेस में बिल्कुल भी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पा रही हैं।

एक भी बड़ा स्कोर उनके बल्ले से नहीं निकला है इस एशिया कप में, और कुल मिलाकर 64 रन बनाए उन्होंने इससे पहले चार मैचेस में। तो चामरी अटापट्टू का चलना बहुत जरूरी है अगर श्रीलंका को इस मुकाबले में अपनी चुनौती को मजबूती के साथ पेश करना है। 170 मैचों में 4100 रन, स्ट्राइक रेट 114 के आसपास, और जहां तक शतकों का सवाल है, चार शतक उनके बल्ले से लग चुके हैं। और उनका साथ देंगी हिमेशा दुलानी, 24 मैचों में 484 रन। श्रीलंका की एक और परेशानी है कि उनका जो शुरुआती बल्लेबाजी का क्रम है वो पूरे टूर्नामेंट में बिल्कुल भी नहीं चल पाया है। क्रांति गौड़ पारी की शुरुआत कर रही है गेंदबाजी में, हालांकि क्रांति गौड़ को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली है, 4.8 की औसत से उन्होंने रन खर्च किए और इकलौता विकेट इस पूरे टूर्नामेंट में मिला है। भारत की तेज गेंदबाजी नंदिनी शर्मा और क्रांति गौड़ पर निर्भर करेगी, क्या स्पिनर्स पर दारोमदार रखेंगे या तेज गेंदबाजों का बेहतर इस्तेमाल करेंगे। बढ़िया शॉट, गेंद को एकदम निकाल दिया फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चार रनों के लिए। हिमेशा के बल्ले से निकला हुआ खूबसूरत स्ट्रोक, अपने आप को पोजीशन किया और सिर्फ एक दिशा दे दी, तकरीबन लेग स्टंप पर गेंद थी क्रांति गौड़ की, और उसका भरपूर फायदा उठाया, पहले से कमिट हुई और हल्के से केवल गेंद को दिशा दी, मोड़ दिया अपने कलाइयों के सहारे चार रनों के लिए फाइन लेग की दिशा में। तो शुरुआत की श्रीलंका ने अपने खाते की, बढ़िया एक फ्लिक शॉट लेकिन पहले से कमिटेड थी स्ट्रोक के लिए क्रांति के। इस ओवर में अगली गेंद हिमेशा को, और हिमेशा की पैड पर जाकर के गेंद लगी जोरदार अपील, लेकिन जाहिर है ऐसा बिल्कुल साफ देखने में लग गया था कि गेंद की उछाल भी ज्यादा थी और गेंद लेग स्टंप से संभवतः बाहर भी निकल रही थी। 184 का लक्ष्य, जब आपके सामने बहुत बड़ा लक्ष्य होता है तो आप खुद ब खुद उस लक्ष्य के सामने परेशानी महसूस करते हैं। पैड पर लगी थी लेकिन उससे पहले बल्ले का भी स्पर्श हुआ था, इसलिए वो पूरी तरह से सुरक्षित है। हिमेशा दुलानी नहीं चली इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान, 64 रन उनके, चामरी अटापट्टू के 63 रन है, और जाहिर है ये सलामी जोड़ी पर बहुत दारोमदार होगा। अच्छी गेंद, गुड लेंथ गेंद ऑफ स्टंप पर, रक्षात्मक तरीके से हिमेशा ने सिर्फ अपने बल्ले से लगने दिया। श्रीलंका ने शुरुआत की एक चौके के साथ, पहला ओवर चल रहा है, अगर भारत को कुछ शुरुआती सफलताएं मिल गई तो यह मुकाबला भारत के खाते में आसानी के साथ जा सकता है। लेकिन श्रीलंका की टीम फाइटर है, आपको याद होगा सेमीफाइनल पाकिस्तान के खिलाफ चार विकेट देखते देखते निकल गए थे, और इस बार साफ विकेट गिर गए। क्रांति गौड़ को मिल गया पहला विकेट, हिमेशा ने जिस तरह का स्ट्रोक पहली गेंद पर खेला था वही स्ट्रोक खेलने की कोशिश, विकेट्स पूरी तरह से छोड़ दिए उन्होंने और हट करके गेंद को लेग स्टंप के बाहर निकालना चाहती थी, फ्लिक करना चाहती थी, पूरी तरह से चूक गई और गेंद उनके संभवतः बल्ले से लगती हुई उनकी गिल्लियां बिखर गईं और पहला विकेट भारत को मिल गया। तो श्रीलंका पर अब दोहरा दबाव बिल्कुल साफ देखने को मिल रहा है। पहला विकेट हिमेशा दुलानी के रूप में, सिर्फ चार रन बनाए उन्होंने, क्रांति गौड़ ने उन्हें बोल्ड किया और क्रांति गौड़ ने फाइनल में अपना पहला विकेट निकाल लिया। क्या जबरदस्त गेंदबाजी, पहली गेंद पर चौका खाया उन्होंने और लगभग वही कोशिश उनकी इस गेंद पर भी थी, और क्रांति गौड़ की इस गेंद पर पूरी तरह से अपने स्टंप्स को छोड़ दिया उन्होंने, ऑन साइड पर स्ट्रोक खेलना चाहती थी, फाइन लेग की दिशा में गेंद निकालना चाहती थी, लेकिन गेंद और बल्ले का जो संपर्क है वो नहीं हुआ और गेंद सीधे जाकर के स्टंप पर लग गई। तो दबाव प्रेशर अब श्रीलंका पर, और इस तरह का प्रेशर आप समझ सकते हैं, जब बड़ा स्कोर होता है तो फिर ये प्रेशर अपनी जगह पर बिल्कुल दिखाई देता है। संजना काविंदी आज नहीं है टीम के अंदर और उनकी जगह विश्मी गुणरत्ने को शामिल किया गया है। विश्मी गुणरत्ने, आपको याद होगा फील्डिंग करते समय उनका पैर अचानक से मोच खा गया था और इस वजह से उन्हें स्ट्रेचर पर लेकर के बाहर निकाला गया था, लेकिन वो अपनी ड्यूटी करने के लिए वापस आ गई हैं। ऑफ स्टंप पर टप्पा दिया क्रांति गौड़ ने, गुड लेंथ गेंद थी, थोड़ा सा अंदर की ओर लेकर के आई और इसको विश्मी गुणरत्ने ने रक्षात्मक तरीके से खेला। पूरे स्टंप्स

0: दिखा दिए थे क्रांति गौड़ को इससे पहले इमेशा दुलानी ने, और उसका भरपूर लाभ मिला। पहला विकेट श्रीलंका ने गवा दिया और भारत निश्चित तौर पर अब कमांडिंग पोजीशन में है। विश्मी और चामरिया टपट्टू, विश्मी गुणरत्ने को मौका मिला है। श्रीलंका ने अपने कुल मिलाकर 15 खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया है 17 में से, और इस बार एक मिसफील्ड, जहां रन की गुंजाइश नहीं थी वहां पर रन बना। पीछे से शेफाली वर्मा ने कवर अप करते हुए इस गेंद को फील किया, लेकिन 2 रन मिल गए, यहां पर रन नहीं मिलने चाहिए थे। ओवर की समाप्ति हुई, पहला ओवर समाप्त हुआ और श्रीलंका का स्कोर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 184 रन बनाने श्रीलंका को इस मैच को जीतने के लिए। क्रांति गौड़ का पहला ओवर, 6 रन दिए 1 विकेट लिया, और अब देखना है कि 178 रन का फासला और तय करना है। विश्मी गुणरत्ने को मौका मिला है, इससे पहले भी वो इस टूर्नामेंट में एक दो मैचेस खेली हैं, आज देखना है कि किस तरह की बल्लेबाजी करती हैं विश्मी गुणरत्ने। चोट लगी थी उन्हें और उस स्ट्रेचर पर जाने के बाद श्रीलंका के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाने वापस लौट के आई हैं। नंदिनी शर्मा गेंदबाजी के लिए, एक बेहतर गेंदबाज, भारत की तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ और नंदिनी शर्मा पर बहुत कुछ दारोमदार है। 7 विकेट निकाले इससे पहले नंदिनी शर्मा ने, 4.36 का उनकी इकॉनमी है। और दूसरे ओवर की शुरुआत करेंगी नंदिनी। क्रांति गौड़ को पहले ओवर में सफलता मिली। चामरी एटापट्टू बाएं हाथ की बल्लेबाज ऑफ स्टंप पर स्टीयर करना चाहती थी, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट के साथ नहीं, और यहां पर पहली गेंद पर नंदिनी की जो कि ऑफ स्टंप के बाहर थी कट करना चाहती थी, लेकिन बाएं का इशारा, क्योंकि इतना गेंद अंदर की ओर आई कि विकेट कीपर भी उसे तरीके से अपने दस्ताने में नहीं ले पाई। ऋचा घोष, उनके दस्ताने के निचले हिस्से में लगती हुई गेंद गिर गई। 1 रन 22 के तौर पर, यानी कि अतिरिक्त 2 रन कुछ समय पहले मिसफील्ड के तौर पर भारत ने दिए पिछले मैच में। आपको याद होगा भारत ने 4 कैचेस ड्रॉप किए थे। तो अगर आपको कोई मुकाबला जीतना है, खिताब अपने नाम करना है, तो सिर्फ बल्ला चलाने से काम नहीं होगा, आपको फील्ड के अंदर भी वही चुस्ती फुर्ती और मुस्तैदी दिखानी होगी। एक बार फिर गार्ड ले रही हैं, अपने आप को तैयार कर रही हैं नंदिनी की गेंदों के सामने। बढ़िया गेंद की है नंदिनी ने इस टूर्नामेंट में, विकेट उन्हें 7 मिले हैं क्रांति गौड़ की तुलना में। एक स्लिप मौजूद है और लहराती हुई गेंद, हवा में थोड़ा सा लहराती हुई, लेकिन गेंद चली गई 4 रनों के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर थी हल्की स्विंग होती हुई गेंद, और उसको केवल एक दिशा देने का प्रयास था विश्मी का। इस चौके के साथ विश्मी पहुंच गई अब 6 पर, और हमारे साथ ही मुनीश जॉली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेलकम मुनीश।
1: थैंक यू सो मच दादा, एंड इंडिया हैव टू बी वेरी केयरफुल, दे डिड गेट अ विकेट, बट देन Sri Lanka will not be playing as a dead now, they'll be going after the Indian bowlers at the moment. 11 on the board in the second over. Vishmi of course scoring that boundary, which happens to be the first boundary of the Sri Lankan innings. Right arm over the wicket comes in Nandini, short of length delivery, just flicking the ball down to the deep square leg area. Of course there was a long chase as well for Deepthi, and a single picked up then in the end. The score moves on to 12. Loss of 1 wicket.
0: विश्मी 4 गेंदों पर अब तक 7 रन बना चुकी हैं, और अटापट्टू को खाता खोलना है। अटापट्टू नहीं चल सकी, ये एक परेशानी का सबब है श्रीलंका के लिए। इमेशा दुलानी पूरे टूर्नामेंट में अच्छा नॉक नहीं खेल पाई, कुल मिलाकर 67 रन है उनके इमेशा के पूरे टूर्नामेंट में, एशिया कप में 5 मैचेस में 67 रन। अब पारी की शुरुआत कर रहे हैं, और अगर इतना कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इतना कम योगदान दे रहे हैं टीम को, तो टीम की परेशानी स्वाभाविक है। ऑफ स्टंप के बाहर करारा शॉट, लेकिन गैप्स नहीं तलाश पाई, सीधे गेंद वहां पर क्रांति गौड़ के पास गई। अच्छी फील्डिंग, चुस्त फुर्त क्रांति गौड़,

0: अगले ओवर के बारे में सोच रही होंगी कि किस तरह की गेंदें रखी जाएं ताकि विश्मी या चामरी अठापट्टू का विकेट निकल जाए। एक और विकेट भारत को बेहद मजबूती के साथ खड़ा कर देगा आठवें खिताब की दिशा में। कुल मिलाकर चार गेंदें इस ओवर की हो गई है नंदिनी की। हरमनप्रीत इस समय नंदिनी को कुछ समझाइश दे रही है, बता रही कि आपको किस तरह से गेंदबाजी करनी चाहिए। तजुर्बा, अनुभव, एक कप्तान के तौर पर, एक खिलाड़ी के तौर पर एक मिसाल है वो निरंतरता की, जिस तरह से भारतीय टीम के साथ जुड़ी हैं, लगातार चल रही हैं, क्या शानदार कप्तानी कर रही हैं। भारत को उन्होंने एक अलग ही लेवल तक पहुंचाया है। और इस बार गुड लेंथ गेंद और हल्का सा केवल स्ट्रोक अटापट्टू का, अटापट्टू के बल्ले से अब तक रन नहीं निकला है और ये अटापट्टू की स्वाभाविक शैली कतई नहीं है। वो जिस तरह से खेलती हैं, जिस आक्रामक अंदाज से खेलती हैं, वो सचमुच बहुत शानदार होता है, लेकिन आपको वक्त के हिसाब से, टीम की जरूरत के हिसाब से खेलना होता है और जरूरत यही है कि आप अपना विकेट सलामत रखें। आखिरी गेंद इस ओवर की और इस बार मिडिल स्टंप पर अच्छी फील्डिंग क्रांति गौड़ की। एक बार फिर दूसरा ओवर समाप्त, श्रीलंका का स्कोर दो ओवर के बाद 12 रन एक विकेट के नुकसान पर। 184 का टारगेट सेट किया है भारत ने और सिर्फ 12 रन बने हैं पहले दो ओवर में, यानी कि कतई ये काम आसान नहीं है। मुनीश जोली,
1: just got a glimpse of Jamie Siddons, who happens to be the coach of the Sri Lankan team, and he took over from Ramesh Ratnaike earlier in this year, in March. Not very pleased and just waiting for the emotions to come in, and he's been absolutely expressionless, that's the right word I should be using, and of course a highly experienced level 3 qualified coach. He served as the head coach of Bangladesh men's cricket team from 2007 to 2011. And does he have something in his own kitty that can create that victory for Sri Lanka? Meanwhile, Kranti Gaur comes in, bowls a delivery onto the middle and leg, and that's been flicked down to the fine leg fielder for a single. And Athapattu still looking for that opening boundary, doesn't get it then. Vishmi getting a single, so Athapattu will be on strike. Four deliveries, dot deliveries, and that's exactly what Shefali Verma was at the other when she started facing the Sri Lankan bowlers in the beginning. Four dot deliveries to start with, and immediately after that she scored a boundary, then a double, then a couple of boundaries. So those were the first 14 runs after four dot balls that was played by Shefali Verma. Can Athapattu do that as well? Well, 13 for 1 in the third over. Harmanpreet Kaur having a long chat with Kranti Gaur, who bowled one over for six runs, and that was of course a very fruitful over for India because they got the first wicket of Sri Lanka as well, not in the fashion that they wanted. Meanwhile, Kranti Gaur comes in, and good to see that once they're bowling under the lights, once it gets pleasant in Dubai, later in the evening, the Indian bowlers are getting that movement. We saw Kranti Gaur getting that in-swinging delivery to the left-handed Athapattu. We also saw Nandini Sharma bowling that swinging deliveries to both the right and the left-handers. So that's a good sign as far as the Indian bowlers are concerned. The required run rate at the moment is 9.7 as Athapattu steps out and hits a marvelous shot. That's a cracker of a shot. But guess what? It's gone straight to the cover fielder. And it's not only me who's smiling with me. So is our Hindi commentator Sanjay Banerjee and the Indian captain Harmanpreet. All smiles there.
0: बिल्कुल, और लगातार मुझे लगता है कि तीसरी बार इस प्लेस पर, इस पोजीशन पर एक करारा स्ट्रोक रोका गया है। इस बार कमलिनी थी जो कि आज टीम के अंदर जिन्हें जगह मिली, हालांकि बहुत ज्यादा बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला, काफी नीचे लेकर के आया गया उन्हें। इस पर चर्चा करेंगे मुनीश आपके साथ।
1: डॉट डिलीवरी देन एज वी प्रोसीड, एंड दिस एग्जैक्टली व्हाट द इंडियन फैंस वुड लव ईच टाइम वी से दैट इट्स अ डॉट डिलीवरी। सो सिंगल इन द फर्स्ट बॉल, थ्री डॉट डिलीवरीज इन दिस ओवर नंबर थ्री। श्रीलंका एट द मोमेंट आर 13 फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट। ऑफ कोर्स इंडिया मेकिंग वन चेंज, इट्स नेवर टू लेट टू टेल अबाउट द अपडेट्स व्हाट हैज हैपेंड टिल नाउ, बिकॉज यू नेवर नो हू गेट्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एज यू हियर टू द लाइव कमेंट्री ऑफ दिस एशिया कप फाइनल्स बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, द T20 फाइनल। इंडिया with a mammoth total of 183. They've set a target of 184 for Sri Lanka, who are now picking up that single with that shot

0: wickers in. So single then takes Sri Lanka to 20 for the loss of one wicket. 184 is the target set by India for Sri Lanka, as you listen to the ball by ball commentary of this final of the T20 Asia Cup 2026 being played at Dubai International Stadium between India and Sri Lanka. Nandini comes in, right arm around the wicket, Attappattu strikes and strikes it hard. Kranti Gaur dives to her left, running almost 10 to 12 meters. And what a pickup and throw that was from the fit and a very elegant Kranti Gaur, surely saving that boundary for India. And with that, we come to the end of the over number 4. So the other 183 for 5, Sanjeev Banerjee, and this reminds me of the 1983 World Cup. It's the same score that India scored, and they won that game, and that changed, that victory changed the complexion of India's cricket after that.
1: बिल्कुल, और आज भी लगता है कि क्रिकेट की आप अनिश्चितताओं को अगर दरकिनार कर दें तो भारत आठवीं बार खिताब जीतने वाला है. और निश्चित तौर पर भारत ने जो टारगेट सेट किया है वो श्रीलंका के लिए मुश्किलें पैदा करने वाला है. 9.2 का रिक्वायर्ड रन रेट था जो अब बढ़कर के 10.2 हो गया है, और एक विकेट भी गिर चुका है. गेंदबाजी में परिवर्तन, शेफाली वर्मा को लाया गया. शेफाली वर्मा जब बॉलिंग चेंजेस होते हैं तब खासतौर पर तेज गेंदबाजी के बाद स्पिनर्स को लाने से पहले हरमनप्रीत कई बार शेफाली का इस्तेमाल करती हैं. शेफाली एक अच्छी ऑफ ब्रेक बॉलर हैं. इस बार गेंद पैड पर लगी लेकिन लेग स्टंप छोड़ करके जा रही थी. अपील जरूर की. अटापट्टू धीरे धीरे थोड़ा सा सेट होती दिखाई दे रही है, हालांकि उनका स्ट्राइक रेट 50% है. 14 गेंदों का सामना करके 7 रन बनाए उन्होंने. अच्छी गेंद थी, बल्ला उनका चल गया था और गेंद बल्ला चलने के बाद आई, लेकिन जाहिर है कि गेंद स्टंप्स के बाहर थी तो कोई ध्यान नहीं दिया अंपायर ने. 184 का टारगेट, 5वां ओवर चल रहा है. श्रीलंका ने सिर्फ 21 रन बनाए हैं एक विकेट के नुकसान पर. शेफाली की गेंद और इस बार गेंद को निकाल दिया सीधे 6 रनों के लिए मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से. हवा में बहुत ऊपर नहीं थी गेंद लेकिन लंबाई में बहुत सॉलिड स्ट्रोक सीधे 6 रनों के लिए.
0: And I think that's a gamble that the captain Harmanpreet Kaur is playing, because Shefali tends to bowl slow and she's just trying to bind that wicket, and probably that's the ploy and that's the intention why they've got Shefali Verma with the bowling. And she's bowled with a new ball in the previous occasions also.
1: Harmanpreet har gendbaz ke paas jaati hain, unhe samjhati hain कि आपको किस तरह की गेंदें करनी चाहिए, बतलाती हूं उनका अनुभव, उनका तजुर्बा सब कुछ बोलता है मैदान के अंदर. बहुत ही खूबसूरती के साथ टीम का संचालन, और इस बार पहले निकल आई, आगे निकल आई. गेंद का जैसे ही टप्पा पड़ा कदमों का इस्तेमाल किया 2-3 स्टेप लेने के बाद, लेकिन ऐन वक्त पर अपने स्ट्रोक को चेक किया. शायद आगे निकली थी स्ट्रोक के लिए लेकिन ऐन वक्त पर अपने स्ट्रोक को चेक करते हुए केवल बल्ले से लगने दिया. और इस बार अच्छा खासा टर्न, काफी टर्न मिल रहा है यहां पर शेफाली वर्मा को. एक गेंदबाज के तौर पर, एक ऑलराउंडर के तौर पर पिछले कुछ समय में शेफाली ने अपने आप को स्थापित कर लिया है, और एक यूटिलिटी प्लेयर हैं. जरूरत पड़ने पर काफी आक्रामक हो जाती हैं, काफी बड़े स्ट्रोक्स खेलती हैं, और गेंदों से भी लगातार एक बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करती हैं. और फील्ड प्लेसमेंट में थोड़ी सी तब्दीली, शेफाली ने थोड़ा सा ऑन साइड की फील्ड प्लेसमेंट को तब्दील किया, हरमनप्रीत से डिस्कस किया, और अब तैयार हैं विश्मी गुणरत्न. मौका मिला है विश्मी को आज इस फाइनल मुकाबले में, और उन्हें मौका मिला है संजना काविंदी की जगह पर, जो कि इससे पहले 4 मैचों में सिर्फ 29 रन जोड़ सकी थी. पहले कदम निकाले थे, कदम बाहर किए थे विश्मी ने, लेकिन ऐन वक्त पर गेंद को हल्के से केवल बल्ले से थपथपाया. जिस लेंथ पर गेंद गिर रही है वो बैटर को अट्रैक्ट कर रही है कि आप कदमों का इस्तेमाल करें और सामने आकर के बड़ा स्ट्रोक लगाएं, लेकिन वो साहस, वो जोखिम लेने का साहस फिलहाल श्रीलंकाई बैटर्स नहीं कर पा रहे हैं. उन्हें पता है कि एक विकेट चला गया, इस बार ज्यादा फ्लाइट दिया.

0: था, हवा में थी गेंद, एक टप्पा खाते हुए सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई चार रनों के लिए। अटपट्टू के बल्ले से निकला चौका और श्रीलंका का स्कोर अब पांच ओवर के बाद बढ़ता हुआ 33-1। श्रीलंका के सपोर्टर्स भी अच्छे खासे मौजूद हैं दुबई में। एक चौका लगता है, एक छक्का लगता है, उम्मीद की एक नई किरण जागती है। ऐसा लगता है कि कहीं श्रीलंका ये संभव कर सकता है क्या? क्रिकेट में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन उस असंभव को संभव बनाने के लिए आपको बहुत कुछ दांव पर लगाना होता है, और ऐसा लगता नहीं है कि अभी श्रीलंका उस स्थिति में है। लेकिन हां, फील्डिंग आज खासतौर पर ग्राउंड फील्डिंग भारत की अब तक पांच ओवर्स में बेहतर दिखाई दी। क्रांति गौड़ की तारीफ है, उन्होंने कई बार अच्छे स्ट्रोक्स रोके और अब तक कोई कैच ड्रॉप नहीं हुआ। पिछले मैच में चार कैच ड्रॉप हुए थे और वो एक परेशानी की वजह थी भारत के लिए। तो पांच ओवर यहां पर पूरे हो चुके हैं और पांच ओवर के बाद 33 एक विकेट के नुकसान पर।
1: So 15 more overs to go, but then Sri Lanka slowly and steadily building up the innings, Dada, and that's an area of concern. So Nandini Sharma will continue bowling from the other end. This is the last over of the power play.
0: बिल्कुल, थोड़ा सा प्रयास जरूर दिखाई दे रहा है भारतीय फूलमाली, जिन्हें बल्लेबाजी के लिए आखिर में मौका जरूर मिला, बहुत ज्यादा इस्तेमाल उनका नहीं हो पाता, बल्ले से भी नहीं, गेंद से भी नहीं। और उसकी वजह है इंडिया की जो बैटिंग है वो ऊपर के स्तर पर, यानी कि टॉप बैटिंग जो है इंडिया की वो बहुत सॉलिड है, और इसलिए निचले क्रम के बल्लेबाजों को बहुत मौका नहीं मिलता। नंदिनी की ये गेंद ऑफ स्टंप पर, और इसे कट करना किया उन्होंने खूबसूरती के साथ, शेफाली मौजूद थी और यहां मौका जरूर मिला रन लेने का। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ करके दो रन पूरे किए। श्रीलंका की जो टॉप ऑर्डर की बैटिंग है और भारत की जो टॉप ऑर्डर की बैटिंग है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप श्रीलंका को देखें तो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 33 रन पर चार विकेट गंवाए सेमीफाइनल में, बांग्लादेश के खिलाफ 44 रन पर पांच विकेट गंवाए, इंडोनेशिया के खिलाफ 45 रन पर पांच विकेट गंवाए। तो शुरुआती विकेट्स जल्दी गिर जाने से वो एक बड़ा टोटल नहीं बना पाते। और क्या फील्डिंग की यहां पर, कमाल की फील्डिंग, कोई मौका नहीं दिया वहां पर। प्रेमा रावत मौजूद थी, उन्होंने अच्छा फील किया, बहुत करारा स्ट्रोक था, बाउंड्री मिलनी चाहिए थी अगर जरा भी दाएं बाएं होता। अच्छा कट था, बहुत शानदार, थोड़ा सा हल्का सा हाथ से लग करके मिसफील्ड हुआ, लेकिन उस गेंद की जो गति थी, उस जो स्ट्रोक की गति थी वो बहुत हद तक धीमी कर दी। तो श्रीलंका तीन मैचेस में उनके बल्लेबाज, उनके बैटर्स 40-45 रन बनाकर कम से कम पांच विकेट गिर गए उनके। तो ऐसी स्थिति में आज थोड़ा खड़ा संभल करके खेलने की कोशिश, गुडलेन गेंद मिडिल स्टंप पर रक्षात्मक तरीके से खेला और दौड़ते हुए इत्मीनान के साथ एक रन पूरा किया। बूंद बूंद से सागर भरने की कवायद है, एक एक रन ले रहे हैं, लेकिन ये सागर नहीं महासागर है जहां आपको 184 रन का लक्ष्य मिला है, वहां एक एक रन के साथ आप उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते।
1: Absolutely, and I think this should be remembered by Sri Lanka, that you just have to remain in the game somehow or the other. Atapattu gets a delivery and hits a ball high over the long, in fact the mid off fielder, which is the Indian captain Harmanpreet Kaur. The ball goes over her but not racing down to the boundary, so before the ball touches the ropes it's been cut out by Harmanpreet Kaur, and two more runs have been collected by her. So Atapattu moves on to 21 of 20, Sri Lanka 38 for 1.
0: आखिरी गेंद पावर प्ले की, और पावर प्ले में मनीष इस तरह के स्ट्रोक्स खेले जा सकते हैं,
1: व्हाई नॉट। आई थिंक दे हैव नो अदर चॉइस बट टू टेक चांसेस इन पावर प्ले इफ दे हैव टू रीच टू द टारगेट ऑफ 184।
0: आखिरी गेंद इस ओवर की, और एक बार फिर करारा स्ट्रोक, लेकिन फील्डर मौजूद और मुस्तैद फील्डर स्मृति मांधना, बढ़िया गेंद उन्होंने रोकी। छह ओवर पूरे, यानी कि पावर प्ले समाप्त। पावर प्ले में श्रीलंका का स्कोर 38 रन एक विकेट के नुकसान पर। भारत ने पावर प्ले में अपेक्षाकृत बेहतर बल्लेबाजी की थी।
1: आई थिंक यू मेंशनिंग अबाउट द 57 रन्स दैट इंडिया स्कोर,

0: and she bowls on the right spot on the middle stump, just flicking the ball towards the deep square leg area for a single, is Vishmi Gunaratne. So 8.1 overs, 51 for one. Sanjay Banerjee is getting ready for his Hindi spell of commentary. But Dada, this is a very intelligent start by Sri Lanka, because if they can manage to hold on to the wickets, you never know what can turn around. Maybe a long partnership, maybe those hits in the closing overs. Everything at stake at the moment.
1: बिल्कुल मुनीश, श्रीलंका की कोशिश वही है कि वो ज्यादा से ज्यादा देर तक विकेट पर टिके, लेकिन रन्स भी बनाते रहें, क्योंकि उन्हें पता है कि आखिर के ओवर्स में बहुत ज्यादा आक्रामक होना आसान होगा नहीं। अब दोनों टीमों का जहां तक सवाल है, भारत और श्रीलंका का, दोनों स्पिनर्स पर बहुत ज्यादा इस टूर्नामेंट के दौरान स्पिनर्स के साथ खेलते हुए दिखाई दिए। भारत ने सबसे ज्यादा 26 और उसके बाद श्रीलंका ने 25 विकेट उनके स्पिनर्स ने लिए थे। तो प्रेमा रावत, इसके अलावा दीप्ति शर्मा, श्री चरणी, ये तीनों स्पिनर्स लगातार जो सामने वाली टीमें हैं, विपक्षी टीमें हैं, उनके खिलाफ अपना प्रदर्शन शानदार करती रही। दो डॉट बॉल, सिर्फ इकलौता रन प्रेमा रावत के इस ओवर में अब तक बना है, और चामरी अठपट्टू अब तैयार हैं स्ट्राइक लेने के लिए 26 रन 28 गेंदों पर। प्रेमा रावत की ये गेंद, और इस बार ज्यादा फ्लाइट कराने की कोशिश, गेंद हवा में और ये सीधे बाहर स्टेडियम के मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से निकाल दिया चामरी अठपट्टू ने। एक और छक्का, और इस छक्के के साथ श्रीलंका ने अपने 50 रन तो पहले ही पूरे कर लिए थे। पार्टनरशिप जो है वो दोनों की मिला करके अब 53 रन की हो गई है। श्रीलंका 57 पर पहुंच गया है एक विकेट के नुकसान पर। अच्छी साझेदारी, पहला विकेट जल्दी गंवाने के बाद चामरी अठपट्टू ने विश्मि गुणरत्ने के साथ यहां पर एक अच्छी साझेदारी निभाई है, और कहीं ना कहीं मन के अंदर ये जरूर है कि अगर विकेट सुरक्षित हैं तो रन निकल सकते हैं, प्रयास किया जा सकता है। और एक बार फिर नीचे रहती हुई गेंद, अंदर आती हुई गेंद, और एक और चौका। डाइव जरूर किया था बाउंड्री लाइन के ऊपर गेंद को पकड़ने के लिए क्रांति गौड़ ने, जो कि खुद बहुत अच्छी फील्डर हैं, लेकिन इस बार गेंद उनकी पहुंच से बाहर। तो एक और चौका, श्रीलंका पहुंच गए 61 पर एक विकेट के नुकसान के साथ। प्रेमा रावत थोड़ी सी खर्चीली साबित हो रही है, जिस तरह से ऑन साइड पर स्ट्रोक खेलती हैं अठपट्टू, और आप अगर ऑफ स्टंप पर गेंद को डाल करके मिडल और लेग की तरफ निकालेंगे तो उन्हें सिर्फ एक दिशा देने की जरूरत होगी, और वही कर रही हैं। पिछली दोनों गेंदों में वही हश्र हुआ। हरमनप्रीत पहुंची प्रेमा रावत के पास, बहुत ज्यादा तजुर्बा नहीं है प्रेमा का, 6 मैचेस खेले इससे पहले। हरमनप्रीत ने उन्हें समझाया कि आपको बेहतर लेंथ और लाइन के साथ बॉलिंग करना चाहिए इस समय, और जब आप आक्रामक बल्लेबाज के सामने खड़े हों तो कहीं ना कहीं बुद्धिमत्ता के साथ गेंदबाजी करके विकेट निकाल सकते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर रखा, बिल्कुल सही किया। पिछली दो गेंदों पर बड़े स्ट्रोक लगे थे, 9 ओवर पूरे हुए यहां पर, और श्रीलंका का स्कोर 61 रन एक विकेट के नुकसान पर।
0: टेल यू व्हाट, चमरिया अठपट्टू इज अ डेंजरस प्लेयर, बिकॉज शी इज प्लानिंग हर इनिंग्स। शी चोज, शी न्यू दैट द inexperienced bowlers are going to come in, and she might as well wait and not attack Kranti Gaur for that matter, Sri Charni. But then she chose Prema Rawat for that huge six, which went deep into the galleries and a boundary to top it up. So 11 runs conceded by Prema Rawat in a very first over, 61 for 1 after 9. I'm not too sure whether they required 123 runs in 66 balls is easily chaseable, but if Sri Lanka have to chase, they need somebody like Chamri Attapattu in the middle.
1: बिल्कुल मुनीश, अगर आपको भारत के टारगेट को हासिल करना है तो एक्सेलरेटर पर पैर अभी रखना होगा, क्योंकि बहुत समय निकल चुका है, 9 ओवर ऑलरेडी हो चुके हैं, और जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो 9.2 से बढ़कर 11.2 हो गया है। आखिर के 3-4 ओवर में 11 का रेट चलता है, लेकिन उससे पहले मुश्किलें पैदा करेगा, और यहां पर विकेट कीपर के ऊपर से गेंद निकल गई, वो भी बहुत सफाई के साथ इस गेंद को अपने नियंत्रण में नहीं कर पाई, तो अतिरिक्त रन यहां पर मेरे उछाल था इस गेंद में टप्पा खाने के बाद बल्ले से लगती हुई गेंद, और ऋचा के ऊपर से गेंद निकल गई, हाथ से लगी थी बल्कि ग्लव्स के दस्तानों के नजदीक।

0: से, तो एक तो आप कह सकते हैं मौका भी था, लेकिन ऋचा काफी आगे निकल गई थी उस गेंद पर और इसलिए चूक गई और यहां पर गिल्लियां भी बिखेर दी। पिछली गेंद में थोड़ी सी कमजोरी दिखाई दी लेकिन इस बार उन्होंने मामले को बराबर कर दिया। दीप्ति को मिल गया विकेट, श्रीलंका ने गवा दिया दूसरा विकेट और न सिर्फ दूसरा विकेट बल्कि बहुत बड़ा विकेट। चामरी अटापट्टू के तौर पर डिसीजन पेंडिंग है लेकिन ऐसा लगता है कि भारत के फेवर में ये डिसीजन आना चाहिए। दसवां ओवर चलता हुआ, चामरी अटापट्टू क्या विकेट पर रहेंगी या बाहर जाएंगी एक बार फिर देखना होगा। बिल्कुल सही गेंद, वैलिड गेंद दीप्ति शर्मा की और यहां पर काफी आगे निकल गई थी चामरी अटापट्टू और इतना आगे निकल गई थी कि लौटने की गुंजाइश ही नहीं थी। गिल्लियां बिखेर दी ऋचा ने और दूसरा विकेट गवा दिया श्रीलंका ने। डिसीजन अब भी पेंडिंग है लेकिन आना वो भारत के हक में है और एक बहुत बड़ा विकेट, बहुत बड़ा विकेट चामरी अटापट्टू का, यानी कि अब दबाव पूरी तरह से श्रीलंका पर। चामरी अटापट्टू एक बार फिर अच्छी शुरुआत के बाद कोई बहुत बड़ी पारी नहीं खेल पाई, 36 रन उन्होंने बनाए और कुल मिलाकर इस पूरे टूर्नामेंट में 5 मैचों के दौरान कुल 99 रन का स्कोर बनाया चामरी अटापट्टू ने। टीम की कप्तान, श्रीलंका की बल्लेबाजी जिनके इर्द गिर्द घूमती है, श्रीलंका की बल्लेबाजी का सारा दारोमदार जिनके ऊपर है, वही चामरी अटापट्टू पूरे टूर्नामेंट में कोई बहुत बड़ा नॉक नहीं खेल पाई। फाइनल में जरूर अच्छा प्रयास किया लेकिन उनका जाना मुनीश श्रीलंका के लिए परेशानियों का सबब होगा।
1: Yeah, absolutely. And she was, of course, one of the most experienced players of Sri Lanka, 36 years of age. And it's not the age, but a true warrior she is. She's one of the trailblazers for the Sri Lankan side. And, of course, got a captaincy way back in 2014. She's the former best batter in women's cricket at the Sri Lanka Cricket Awards. And under her captaincy, Sri Lanka registered the first T20 series win over South Africa in England, which was huge. And of course, a maiden ODI series win against New Zealand. So, a lot of records with Attapattu. And way back in 2011, she got her first ODI 100 also. She's got 3 T20 hundreds to her name, Sanjay Dutt. And that's the reason she is one of the most experienced players and one of the most dangerous players. And look who took her wicket, Deepthi Sharma. Now levels her with 12 wickets in this format, in this tournament. And one more wicket will take Deepthi Sharma and make her as the highest wicket taker in the tournament. Of course, we are into the 10th over and as the wicket has fallen, there is a short drinks interval which is taking place at Dubai International Stadium. And to win 122 runs are more required by Sri Lanka. But I just wonder when you see the most experienced batter depart back to the pavilion, how much damage can that do to the momentum and also the morale of the other players sitting in the dugout. India were 98 without loss after 10 overs when the drinks interval were held right there in the middle, and this is a small breather, and I think that the wait will be pretty long for the Sri Lankan batters and that's not going to help their rhythm.
0: Bada wicket Sri Lanka ne gawa diya aur sach kahe to pura daromadar bharatiya ballebazi par raha hai is pure tournament ke dauran, khas taur par Smriti Mandhana aur Shefali Verma. हर्षिता आई है नई बैटर के तौर पर, हर्षिता समर विक्रमा। दो मैचेस में हर्षिता ने ही अपनी टीम को जीत दिलाई, अच्छा फाइट बैक किया पाकिस्तान के खिलाफ भी, और अब देखना है कि आज कितना फाइट बैक कर पाती हैं, क्योंकि रनों का जो रिक्वायर्ड रेट है वो अब 12 की दहलीज पर पहुंचता हुआ ऑफ स्टंप से बाहर, और इस बार गैप्स का इस्तेमाल, एक रन पूरा किया दौड़ करके जब तक गेंद क्रांति फील करती, और इस एक रन के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ श्रीलंका का 63 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दुबई में अच्छी खासी गर्मी है खासतौर पर दिन में, लेकिन अब इस समय थोड़ा बेहतर तापमान

0: दसवें ओवर की आखिरी गेंद आनी है, यानी कि आधा सफर तय कर चुके हैं श्रीलंकाई बैटर्स। मोड़ना चाहती थी गेंद को और गेंद सीधे विकेट के अंदर, मिस किया। स्वीप शॉट खेलना चाहती थी, अपने आप को पोजीशन नहीं कर पाई विश्मी, और अब विश्मी भी चलती बनी। 22 गेंदों पर 20 रन बनाए, श्रीलंका ने अपना तीसरा विकेट गंवाया और ये सेलिब्रेशन का मौका टीम इंडिया के लिए। मुनीश,
1: व्हाट अ ग्रिप इन दैट बॉल, शी हेल्ड द बॉल बाय द सीम, द वे द फास्ट बॉलर्स होल्ड।

0: धीरे धीरे क्रिकेट ने लोकप्रियता हासिल करना शुरू कर दिया है.
1: And just a while back, we read about the stats, the very interesting stat, how India won the Asia Cup in 2012, the T20 version, where they were bowled out for 81 and they bowled out Pakistan for 69. We'll talk about that as well as Deepti Sharma comes in to bowl her third over, fly to delivery, and the ball has been hoisted over the cover field and it races down to the boundary for a four. So Harshita getting a first boundary of the match. The Sri Lankan fans stand and cheer that shot from Harshita and they have that moment of celebration, but they all know that the task is getting much tougher because the required run rate for Sri Lanka to win this game is hovering around 13 runs and over, and this is where a solid knock is needed as Deepti comes in, bowls a slower delivery. She came and bowled from the over the wicket in the previous ball, now it's to bowl around the wicket, angling the ball onto the off stump, and all of a sudden the Indian players just cheering to that dot ball bowled by Deepti Sharma. Another delivery, a similar one, but then a shorter trajectory, short of length delivery, didn't time the ball well, so the dimension and the way the wicket at Dubai has played, it's been a wicket where it supported the slower bowlers. But talk about the swing that the Indian bowlers were getting today. Kranti Gaur along with Nandini. That was tremendous. And got the early breakthrough as well. Meanwhile, Deepti comes in and bowls a delivery, a similar one. And it was a different intention by Harshita, who stepped out but then edges the ball down to the short third man area. Litten on the right of the short third man. So she manages to get a single after playing two dot balls. Six runs in this over. One more delivery to come. Right arm over the wicket to the right-handed Neelakshi, who just plays a cross-batted sweep, stepping out and then playing that cross-batted sweep to the deep square leg area for a single. So, seven runs in that over. Number 12, Sri Lanka 76 for three, and they have to reach to 184 in the remaining eight overs. They require around 108 runs, and that is a daunting task. 108 in 48 balls. Sanjay Banerjee is going to give his views, and of course he's going to bring that flavor in the Hindi commentary. But we were looking for a close finish. But I think the whole idea and the plan of a close finish, you know, it just got over when India reached 183 in their stipulated 20 overs.
0: बहुत बड़ा लक्ष्य है टी ट्वेंटी क्रिकेट के लिए, खासतौर पर महिला क्रिकेट के लिए, और 184 रन हासिल करना कोई आसान काम नहीं है इस विकेट के ऊपर, जहां ऑलरेडी श्रीलंका अपने तीन विकेट गंवा चुका है. आठ ओवर बाकी हैं. पहली गेंद पर एक रन दौड़ करके पूरा किया. शेफाली को लगाया गया गेंदबाजी में, चूंकि शेफाली ने इससे पहले एक ओवर किया है, दो ओवर कर चुके हैं, ये तीसरा ओवर है शफाली का. 19 रन खर्च किए उन्होंने. हर्षिता तैयार स्ट्राइक लेने के लिए. फ्लाइट हिट गेंद, कदमों का इस्तेमाल, आगे बढ़ करके गेंद को मिड विकेट की दिशा में निकालना चाहती थी, लेकिन गेंद थोड़ा सा हटते हुए तकरीबन मिड ऑन पर थोड़ा पीछे की ओर गई. एक रन और बनाया यहां पर. बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल करना है श्रीलंका को. रनों का औसत अब 14 रन प्रति ओवर की औसत के आसपास है, और जाहिर है ये एक ऐसा लक्ष्य है जो कतई आसान नहीं हो सकता किसी भी टीम के लिए दुनिया की. दीप्ति शर्मा की अच्छी फील्डिंग, और ये आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो सब कुछ बयां कर देती है कि आप इस मुकाबले में कितना मजबूती के साथ खड़े हैं. श्रीलंका की जो बैटर्स हैं वो जहां एक तरफ थोड़ा सा परेशानी महसूस कर रहे हैं, और गेंद पर ऐसा लग रहा है कि जो ओस है दुबई के मैदान की वो लगातार उस पर लग रही है, और नहीं, उसकी सीएम के साथ शायद थोड़ा सा परेशानी थी और उसको निकाला गया है, ठीक किया गया अंपायर के द्वारा. शेफाली की पहली तीन गेंदों पर तीन सिंगल्स बने, लेकिन अब वो समय चला गया जब आप सिंगल्स के सहारे इस मुकाबले को अपने हक में कर सकते थे. ओह, बैकफुट पर जाकर के इस गेम को कट करना चाहती थी, लेकिन बल्ले के बीचों बीच गेम को मेडल नहीं कर पाई, और ऋचा भी बहुत सफाई के साथ गेम को गैदर नहीं कर पाई. गेंद आकर के

उनके हेलमेट के सामने वाले हिस्से पर लगी, बल्ले से लगी थी गेंद, लेकिन ऐसी स्थिति में नहीं थी कि रिचा उस कैच को ले पाती। ये डॉट बॉल, 105 रन चाहिए 44 गेंदों में। 13वां ओवर चल रहा है, नीलाक्षी 8 पर खेल रही हैं, हर्षिता 9 पर खेल रही हैं। अब चूंकि हेलमेट पर लगी हैं रिचा घोष के, तो कंकशन के लिए यहां पर उनसे पूछा जा रहा है, कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि भाई आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही, आप ठीक से देख पा रही हैं या आप कोई परेशानी तो महसूस नहीं कर रही। तो और ये एक औपचारिकता है, क्योंकि खेल में जो खिलाड़ियों की सुरक्षा है, खिलाड़ियों की जो सेफ्टी है, वो सर्वोपरि है। और ये एक नया नियम है कि अगर आपके हेलमेट पर बॉल लगेगी तो खेल कुछ क्षणों के लिए रुकेगा। ये तय किया जाएगा, ये कंफर्म किया जाएगा कि आप पूरी तरह से ठीक हैं, कोई असर उस गेंद के लगने का आपको नहीं हुआ है, और तभी आप ग्राउंड पर बने रह सकते हैं, अन्यथा आपको बाहर ले आकर के जो भी चिकित्सा होगी वो किया जाएगा। शेफाली की अगली गेंद, और इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहती थी, पूरी तरह से गेंद की लाइन को चूकी। एक और डॉट बॉल लीजिए, इस ओवर में सिर्फ 3 रन दिए हैं शेफाली ने। जब आप इस समय यानी कि 13वें ओवर में, जबकि एक बहुत बड़ा लक्ष्य बाकी है, तब अगर आप इस तरह की गेंदबाजी कर रही तो कमाल। एक और डॉट बॉल लीजिए ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई, अच्छा ओवर समाप्त शेफाली का, सिर्फ 3 रन खर्च किए उन्होंने 13वें ओवर के बाद। श्रीलंका का स्कोर अब बढ़ता हुआ 79 रन 3 विकेट के नुकसान पर। श्रीलंका को अब 15 रन प्रति ओवर की औसत से बनाने हैं। तकरीबन तय है कि भारत 8वीं बार एशिया कप का खिताब जीत चुका है, और जैसा कि हम इससे पहले भी चर्चा करते रहे कि अब एशियन गेम्स जो कि अब दस्तक दे रहे हैं लगातार, उसमें भारत की टीम क्रिकेट की, खासतौर पर महिलाओं और पुरुषों की, जो बेस्ट पॉसिबल टीम है, पूरी स्ट्रेंथ वाली जो टीम है वो खेलेगी, और ऐसे में पूरी उम्मीद की जा रही है कि 2 स्वर्ण पदक क्रिकेट के कहीं नहीं जाने वाले, वो भारत के पास ही आने वाले हैं। और दोनों टीमें अच्छी खासी तैयारी भी कर रही हैं उसके लिए। कुल मिलाकर एशियन गेम्स की क्रिकेट को भी भारत ने गंभीरता से लिया है, और ये एक अच्छा संकेत है क्रिकेट के लिए भी, एशियन गेम्स के लिए भी, और जापान के लिए भी, जहां पर क्रिकेट लगातार लोकप्रिय हो रही है। हवा में थी गेंद, पहली गेंद थी नए ओवर की श्रीचरणी के, लेकिन वहां कोई भी फील्डर मौजूद नहीं था, और पहला रन बहुत तेजी के साथ पूरा किया। क्रांति गौड़ पर थोड़ा सा नाराज हैं रिचा, लेकिन चलिए 2 रन पूरे किए। पहला रन काफी तेजी के साथ दौड़ी दोनों बैटर्स, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। हालांकि ऋचा घोष ने पूरी कोशिश की, लेकिन जब तक वो गेंद को अपने दस्ताने में गैदर करके स्टंप्स पर मारती, तब तक बैटर्स अपनी जगह पर पहुंच चुकी थी। 103 रन चाहिए 41 गेंदों में श्रीचरणी इस ओवर में अगली बार। जहां तक श्रीचरणी का सवाल है, उनका दूसरा ओवर, अब तक 7 रन खर्च किए उन्होंने। अक्रॉस द लाइन ऑफ स्टंप की गेंद को उन्होंने ऑन साइड पर खेला, लेकिन अच्छी फील्डिंग बाउंड्री लाइन के नजदीक। क्रांति गौड़ और प्रेमा रावत दोनों वहां पर मौजूद थे, गेंद को फील करके उन्होंने वापस बॉलर के पास फेंका। 83 रन यानी कि पूरा 100 रन पीछे है श्रीलंका भी, और जीत के लिए उसको 101 रन बनाने हैं 40 गेंदों में। तकरीबन असंभव की श्रेणी में जाता हुआ यह मुकाबला, 12 गेंदों से कोई शत बाउंड्री नहीं लगी। इस बार हवा में, क्या कोई नीचे है, बिल्कुल नीचे थे हरमनप्रीत, और साथ में ऐसा लगा कि क्या कोई कंफ्यूजन था, या हरमनप्रीत और दीप्ति शर्मा के बीच में एक गलतफहमी थी कि वो बॉल बीच में गिर गई। ऐसा लगा जैसे उस प्रयास को बीच में रोक दिया गया हो, कोई गलतफहमी दोनों फील्डर्स के बीच में, लेकिन सुरक्षित बल्लेबाज इस बार हवा में है, और अंपायर के नीचे गेंद जाकर के गिरी। भारती ने पूरा अपना प्रयास किया, लेकिन जाहिर है उनके प्रयास का कोई फल नहीं होना था। 2 बार कैच निकले, लेकिन किस्मत अच्छी, अपनी जगह पर सुरक्षित भारती ने प्रयास किया वहां, लेकिन उनकी पहुंच से बाहर। 98 रन अब भी चाहिए 38 गेंदों में।

0: इस ओवर की सिर्फ दो गेंदें बाकी हैं। श्रीलंका का स्कोर 86/3। नीलाक्षी खेल रही हैं 15/11 गेंदों के बाद और हर्षिता का स्कोर है 9/13 गेंदों का सामना करने के बाद। श्रीलंका की मुट्ठी से यह मुकाबला फिसल चुका है, इसमें शायद कोई बहुत ज्यादा शक की गुंजाइश नहीं है। श्री चरणी के इस ओवर की अगली गेंद हवा में और आखिर तक श्री चरणी ने खुद अपने बॉलिंग मार्क पर गेंद को कैच किया। एक और विकेट, चौथा विकेट गिर गया है श्रीलंका का। लगातार तीसरी गेंद पर कैच दिया और आखिर तक हर्षिता का विकेट गिर गया। हर्षिता समर विक्रमा इससे पहले दो मैचों में अपनी टीम को जीत दिला चुकी हैं, लेकिन आज उनका यह प्रयास नहीं चल सका और उछाल लेते हुए अपनी जगह से बिल्कुल सही समय पर उछाल लिया श्री चरणी ने और हर्षिता का विकेट अपने हाथों में कैद किया। चौथा विकेट गिर गया श्रीलंका का। कॉटन बोल श्री चरणी, 9 रन बनाए उन्होंने 14 गेंदों का सामना करने के बाद। तो अब एक औपचारिकता बाकी है इस मुकाबले के अंदर। भारत खिताब की दहलीज पर पहुंच गया है, भारत खिताब पर लगातार दस्तक दे रहा है। यह 8वां खिताब होगा भारत का। एशिया कप के तमाम फाइनल्स में भारत ने शिरकत की है और ये 8वीं बार मौका मिला है भारत को जब वो फाइनल जीत सकता है, जीतने की दहलीज पर पहुंच के आप कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर 183 रन भारत ने बनाए 5 विकेट पर कुल 20 ओवर्स में। 184 रन बनाने थे जीतने के लिए श्रीलंका को, लेकिन श्रीलंका ने अब तक 86 रन बनाए हैं, 4 विकेट उनके गिरे हैं। 14वां ओवर चल रहा है, 14वें ओवर की आखिरी गेंद आनी है, यानी कि श्रीलंका के हाथ से यह मुकाबला निकल चुका है। कविशा दिलारी 93 मैचों का तजुर्बा है, 791 रन है, इकलौता अर्धशतक है इनके नाम। अगर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी करेंगी तब भी शायद अपनी टीम को पार नहीं लगा पाएंगी। चलिए पहली गेंद पर आखिरी वक्त तक इंतजार किया और हल्के से केवल प्लेस कर दिया, गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। नंदिनी शर्मा गेंद के पीछे थी लेकिन गेंद उनकी पहुंच से बाहर और इन 4 रनों के साथ अब श्रीलंका का स्कोर 14 ओवर के बाद 90 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 36 गेंदों में बाकी रन यानी कि 94 रन बनाने होंगे श्रीलंका को इस मुकाबले को जीतने के लिए, भारत को खिताब से दूर करने के लिए।
1: And what a catch there by Sri Charney in her own bowling, getting rid of Harshita. Samar Vikrama is a dangerous player, and what a way to dismiss her. So the Women's Asia Cup 2026, of course, clearly going India's way at the moment. And 94 to win. The Duckworth Lewis also going simultaneously as calculated by our scorer. And of course, he's telling us that it's a daunting task for Sri Lanka. And no signs of rains. Of course, the weather gods clearly dictating that it's going to be a clear weather today. And our scorer Ranjit Singh Rawat telling us that 119 was the score if the DLS had to come into play. So we're trying to cover all the aspects and the dimensions of the game here. Prema continues the attack and now gets a delivery that's been swept towards the backward square leg area. And an overthrow? No, not really. A backed up effort by the Indian fielders. And they know that the chance is coming to win this Asia Cup. 94 runs needed in 35 balls now. There was a mix-up though. Both the batters were stranded at one end. It was an opportunity that's been missed. Richa Ghosh was at the batter's end. And a wide throw that saved another dismissal for Sri Lanka. Though Harmanpreet was backing up, she took a shy at the non-strikers end. But by the time that all happened, of course, Neelakshi was back at the non-strikers end. Suprema comes in right above the wicket. The leg spinner flighting the delivery. Very impressively and confidently bowling that delivery to Kavisha. Dot delivery as the ball has been played back to the bowler. Of course, India vying their chances to win this Asia Cup. And what a tremendous start of 129 runs by the Indian openers. Shefali Verma, who got 68 in 39 deliveries. As a single comes up for Sri Lanka, they move on to 91 for the loss of 4 wickets. But speaking about Shefali Verma's knock, what a knock it was. And for me,

0: it was all going in vain once you step out and you let the spinner check the length and the line, and that's exactly what happened there when Sri Charney picked up that wicket. India holding 7 Asia Cup trophies, while Sri Lanka entered this contest as the defending champion after claiming that historic title in 2024. India and Sri Lanka, they've clashed in multiple Asia Cup tournaments. Meanwhile, another opportunity of a wicket, a slog sweep, and that's gone straight into the hands of the fielder. So it's all happening very fast. 3 wickets to fall in a very short span of time. 2 wickets in this over for Sri Charney. And what a way to damage further to the opponent, Sri Lanka. Well, they've clashed multiple times in the Asia Cup tournament deciders, and India comprehensively defeated Sri Lanka in the 2022 final. So Neelakshi Silva finding Kamalini, who was included in the side. She's a tremendous all-rounder. She's a very good fielder. She's a very good batter. Unfortunately, she was sent late in the order today, and she's the lone change that India made today. Pratika Rawal was dropped, and Kamalini taking a comfortable catch in the end to give Sri Charney her second, in fact, the third wicket of the game. So 2.04 overs, no maiden, 19 runs and 3 wickets for Sri Charney. And of course, India and Sri Lanka, talking about that final in 2022. India restricted Sri Lanka for 65 for 9. And they were just making so difficult for Sri Lanka to get those runs, and it's happening here as well. It is a batting track. Koshini Nuthyanga is the next batter. Her best has been 24 not out in T20 formats. But they need much more than that. Last time in this over, Sri Charney comes in, both the flight to delivery and a front foot drive onto the long off area, brings that single for Koshini. So 82 needed of 24 balls, 4 more overs remain, and going at an average like this, I think they need some hard hitting shots, a major turnaround to win this game. But that looks highly impossible, as the 4 overs remain. 82 runs is what is required. That's over 20 runs and over, and I think that's a very, very daunting task. So Sanjay Banerjee Da will bring that commentary in Hindi. And of course, Dada, looking at the celebration, I think we can predict that India is going to win this game. But still, cricket, as the thinkers and the talkers say, that the game is never over till the last ball is bowled. You still want to wait for the last ball, or you have a prediction?
1: नहीं, मुझे नहीं लगता है कि अब श्रीलंका की वापसी की कोई संभावनाएं हैं, क्योंकि जो श्रीलंका की जो टॉप मोस्ट बैटिंग ऑर्डर था वो फिर जा चुका है, और अब कुछल्ले क्रम के बल्लेबाज खेल रहे हैं। कौशिनी और हसिनी हैं इस समय, और इस पार स्ट्रोक खेला है लेग स्टंप के बाहर की तरफ, गेंद को निकाला स्क्वायर लेग पर। नंदिनी शर्मा वहां पर मौजूद थी, उन्होंने गेंद को फील किया, एक रन दौड़ करके पूरा किया। तो जो अटैकिंग बैटर्स हैं वो अब क्रीज पर नहीं है, तो अब श्रीलंका की बैटर्स फिलहाल यही कोशिश कर रही कि इस मैच को पूरे 20 ओवर तक ले जाएं वो, क्योंकि 20 ओवर तक ले जाना भी इस फाइनल मैच को एक उपलब्धि की तरह है। एक बहुत बड़े स्कोर को, बहुत बड़े टारगेट को जब आप चेज करते हैं, और इस बार कदमों का इस्तेमाल, शॉट जरूर खेला लेकिन गेंद उनके बल्ले से लगती हुई पैड पर लगी हसनी के, और कोई रन बनाने का मौका नहीं। हसनी परेरा बाएं हाथ से बल्लेबाजी करती हैं, और मध्यम क्रम की एक अच्छी बैटर हैं श्रीलंका की। और इस बार रिवर्स शॉट, हवा में गेंद और सीधे हाथों में। श्री चरणी वहां पर मौजूद थी, एक अच्छा कैच उन्होंने पकड़ा। आज तो कमाल कर रही हैं, न सिर्फ गेंदबाजी में बल्कि फील्डिंग में भी। और श्री चरणी के 3 विकेट से आज हैं, यानी कि कुल मिलाकर 11 विकेट वो ले चुकी हैं। 7वां विकेट गवा दिया श्रीलंका ने। सफलता मिली यहां पर शेफाली वर्मा को, अच्छी सफलता।

0: और अब रही सही जो उम्मीदें हैं श्रीलंका की, वो धूल धूसरित होती हुई 103/7 हसनी परेरा 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन बना सकी और अब वो बाहर जा रही हैं। 17 ओवर चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता बाकी इस एशिया कप के फाइनल मुकाबले में।
1: एंड आई थिंक दैट विकेट बाय शिफाली वर्मा जस्ट कंसोलिडेट्स दैट पोजीशन ऑफ हर बीइंग द प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ दिस फाइनल व्हिच इज अ बिग बिग प्लेटफॉर्म बिकॉज़ व्हाट अ नॉक शी प्लेड शिफाली वर्मा 68 ऑफ 39 डिलीवरीज 9 बाउंड्रीज 2 सिक्सेस स्ट्राइक रेट ऑफ 174.4 द अदर हाफ सेंचुरियन Smriti Mandhana was unfortunately run out with that misunderstanding between her and the captain, Harmanpreet Kaur. Mandhana scored 59 of 39 deliveries. But I tell you what, this is one of the moments where Shefali Verma, picking up that wicket, has consolidated her position as the player of the match. Bowls another delivery, stayed one, bowling to Sugandhika. 7 wickets down, 103. India were well beyond 100. In fact, they were around 161 at this point of time, but a cut and then a thickish edge outside the off stump on the next delivery by Shefali Verma. Just a single then as Sri Charney from the short third man runs to her right and picks up that ball. Sri Lanka at the moment 104/7 after 17 overs.
0: तो आखिरी तीन ओवर बाकी हैं इस मुकाबले में, 80 रन अब भी चाहिए श्रीलंका को। और निफ्यांगना जो कि विकेट कीपर है टीम की, वो अब सुगंधी कुमारी के साथ बैटिंग करने आई हैं, 2 रन निफ्यांगना के, और इसके अलावा 1 रन सुगंधिका कुमारी का। श्री चरणी ने आज 3 विकेट लिए हैं। अगर आप भारतीय गेंदबाजों का विश्लेषण देखें कि किसने किस तरह की गेंदबाजी की है, तो बिल्कुल आपको साफ लगेगा कि श्री चरणी सबसे कामयाब बोलर्स में उनका शुमार है और बहुत बढ़िया गेंदबाजी की उन्होंने। क्रांति गौर ने शुरुआत की, दो ओवर में 1 विकेट लिया। नंदिनी शर्मा ने 3 ओवर गेंदबाजी की, 17 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला। श्री चरणी का ये आखिरी ओवर होना चाहिए, 3 ओवर्स इससे पहले उन्होंने किए हैं, ये आखिरी ओवर होगा उनका। 20 रन दिए हैं और 3 विकेट अपने नाम किए हैं, तो सबसे कामयाब गेंदबाज आज की श्री चरणी। दोनों डॉट बॉल इससे पहले और एक बार फिर खेलना चाहती थी, लेकिन गेंद उनके पैड पर जाकर के लगी, उछाल था गेंद में और इसलिए रन तो मिला नहीं, लेकिन कोई नुकसान भी नहीं हुआ श्रीलंका को। काफी उछाल था गेंद पर, जहां पर गेंद टप्पा खाई वहां बल्ला ले जाकर के स्वीप शॉट खेलना चाहती थी, पूरी तरह से मिस किया गेंद की टाइमिंग को। और इस बार फिर रिवर्स खेलने का प्रयास, कुछ भी समझ नहीं पा रही है श्रीलंकन बैटर्स के किस तरह से खेलना है श्रीचरणी को। श्रीचरणी की लगातार 4 डॉट बॉल हैं। अब सुगंधिका जिन्होंने 6 गेंदों पर 1 रन बनाए हैं, जाहिर है कि एक फ्रस्ट्रेशन सर चढ़ करके उनके बोल रहा होगा। आखिरी 2 गेंदों पर श्रीचरणी क्या करती हैं, पिछली 30 गेंदों में 25 रन बने हैं श्रीलंका के और 4 विकेट गवा दिए हैं श्रीलंका ने। इस बार फ्लाइटेड थी और गेंद को हवा में खेला है और हाथों में जाएगा, बिल्कुल 1 और विकेट श्रीचरणी का, ये 4th विकेट, यानी कि विकेट्स लेने के मामले में श्रीचरणी अब नंबर 2 पर पहुंच गई हैं। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन, 8 विकेट इस मुकाबले से पहले उनके थे, 4 विकेट आज उन्होंने लिए। चमरी अट्टापट्टू के भी 12 विकेट हैं, इनके भी 12 विकेट हैं और इस गेंद को घुमा दिया था, लेकिन सीधे हवा में लहराता हुआ और एक अच्छा कैच और इसके साथ ही श्रीलंका का एक और विकेट, यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता बाकी। नंदिनी शर्मा ने कैच किया श्री चरणी की गेंद पर, 1 रन बनाए सुगंधिका कुमारी ने 7 गेंदों का सामना करने के बाद। भारत के लिए जीत का दरवाजा अब पूरी तरह से खुल चुका है, 104 8 विकेट पर। 18वें ओवर की आखिरी गेंद आनी है, यानी कि 13 गेंदें बाकी हैं, किसी भी सूरत में लक्ष्य हासिल नहीं कर सकता है श्रीलंका, लेकिन क्या 20 ओवर खेल सकता है, सवाल बस यही है। नुत्यांगना का साथ देने के लिए नई बैटर इस समय विकेट के ऊपर है और देखना है कि किस तरह का प्रदर्शन करती है। मिताली अयोध्या है, बिल्कुल

0: भारत बना है आठवीं बार एशिया कप चैंपियन। भारतीय स्पिनर्स की फिरकियों ने श्रीलंका को ऑल आउट किया है 111 के स्कोर पर और हम हाजिर हैं कौन बनेगा प्लेयर लेकर। मैं हूं बदत्ता और मेरे साथ है मेरे कोहोस्ट दर्पण तिखिया।
1: जी हाँ, सभी भारतीय प्रशंसकों को बहुत बहुत बधाई। भारत आठवीं बार एशिया का चैंपियन बना है महिला क्रिकेट में T20 एशिया कप का खिताब अपने नाम करने के बाद। और हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत ने मैच जीता है और भारतीय स्पोर्ट्स के लिए, इंडियन स्पोर्ट्स के लिए आज का दिन शानदार रहा है। एक तरफ चाइना से खबर आई कि हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत की महिला टीम ने चीन को फाइनल में 1-0 से हराया, भारत की पुरुष टीम ने 4-1 से दक्षिण कोरिया को मात दी, तो वहां दो एशिया कप के टाइटल भारत ने अपने नाम किए, यहां महिला क्रिकेट में अपने नाम किया। तो वहीं दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान को पहले T20 में मात दी। और वहीं एक खबर मेक्सिको से भी आ रही है जहां पर आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल्स में धीरज बोमादेवरा मेंस रिकर्व आर्चरी में फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय आर्चर बन चुके हैं, यानी वहां से भी सिल्वर मेडल आना तो कंफर्म है। थोड़ी देर में पुष्टि होगी कि गोल्ड आएगा कि नहीं आएगा। तो ओवरऑल इट हैज बीन अ टेरिफिक डे फॉर इंडियन स्पोर्ट्स, बट हेयर वी आर टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ द इंडियन वुमेन्स टीम। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक पैनल है, हमारे साथ फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर लतिका कुमारी है जो शायद इन इमोशंस को बहुत बेहतर से जानती है। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा लगता है बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में जीत पाना। लतिका, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत।
2: थैंक यू सो मच।
1: और साथ में हमारे साथ उत्तरा गणेशन है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को एक लंबे अरसे से बड़े करीब से देखा है। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या महत्व है इस जीत के। वेलकम उत्तरा।
2: धन्यवाद दर्पण।
1: तो लतिका, आपसे ही शुरुआत करते हैं। एज अ प्लेयर, जब आप इन विजुअल्स को देखते हैं, टीम को सेलिब्रेट करते हुए, लंबे टूर्नामेंट में जीत हासिल करते हुए, अनडिफीटेड रही है भारतीय टीम, कैसा महसूस करता है खिलाड़ी?
2: देखिए, सबसे पहले जिस चीज के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, महीनों के कैंप्स लगाते हैं, प्लानिंग्स करते हैं, यंगस्टर्स को लेकर आते हैं टीम, सीनियर प्लेयर्स होते हैं, तो ये एक कह सकते हैं कि काफी लंबो भरा है ये जो रास्ता रहा है, उसकी जर्नी जो आज एक कप के साथ फिनिश होती है, तो इस चीज की फीलिंग एक्सप्रेस करना काफी मुश्किल है। और इसी चीज के लिए तो हम लोग ग्राउंड पे उतरते हैं कि जब हम अपना 100% दे रहे हैं, उस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो इस तरह की ट्रॉफीज की ना अब आदत लगा लेनी चाहिए, क्योंकि हरमन जिस तरह का काम कर रही है, जिस तरह की कप्तानी वो कर रही है, तो उनके साथ ये जो सफर है, यंगस्टर्स भी हैं और एक्सपीरियंस प्लेयर भी हैं स्मृति जैसे, तो अच्छा लगता है जब एक ट्रॉफी घर पर आती है।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है जब एक ट्रॉफी घर पर आती है। उत्तरा, 10वां एडिशन है ये एशिया कप का, पहले एडिशन में भी श्रीलंका और भारत का मुकाबला हुआ था, भारत हर बार फाइनल में पहुंचा है और ये 8वीं बार ट्रॉफी उठाने जा रहा है भारत, इससे ज्यादा और क्या सबूत होगा भारत के डोमिनेंस का एशिया में।
3: मुझे लगता है कि अगर, हालांकि उम्मीद थी भारत के जीतने की ही, पर जितना बड़ा गैप है इस वक्त भारतीय क्रिकेट और बाकी एशियन टीम्स के बीच में, महिला और पुरुष क्रिकेट दोनों में, बट महिलाओं में और ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि अब भारत को अपने आप को एशिया के हिसाब से सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप जीतने लगते हो, जब आपको आदत हो जाती है, तो आपको अपने टारगेट्स, अपने सपने बड़े करने चाहिए। और मुझे लगता है कि कॉन्टिनेंट अब आप प्रूव कर चुके हो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बहुत बार प्रूव कर चुके हो कि इस कॉन्टिनेंट में, एशिया में आपसे बेहतर कोई नहीं है, आपके आसपास भी कोई नहीं है। आज इन्होंने फिर से इस चीज को प्रूव किया है और जितने बड़े मार्जिन से ये जीते हैं, T20 जैसे टूर्नामेंट में 70-75 रन से जीतना कोई छोटी चीज नहीं होती है, जहां पे टोटल ही कई बार टीमों के इतने बनते हैं, उसमें इतने बड़े मार्जिन से जीतना, तो मुझे लगता है अब भारत को अपना सपना और अपना दृष्टिकोण थोड़ा सा और बड़ा करना चाहिए, थोड़ा सा अपने एम्बिशंस और बड़े करने चाहिए।

0: अपनी अपनी अपना लालच और बड़ा करना चाहिए और विश्व की ओर देखना चाहिए, क्योंकि अगला टारगेट विश्व कप ही होना चाहिए इनका।
1: जी बिल्कुल, 72 रन से भारत ने इस मुकाबले को जीता है। सामने श्रीलंका थी जो कि इस टूर्नामेंट में आज से पहले अपराजित थी और उनको एक तरफा अंदाज में भारत ने हराया है। और अभी भी हमारे पास जो विजुअल्स आ रहे हैं उसमें दिख रहा है कि दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के जो स्टैंड्स हैं वो खाली नहीं हुए हैं, भारतीय प्रशंसक अभी भी बने हुए हैं स्टैंड्स में, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं उस लम्हे का जिस जब हरमनप्रीत कौर को वो ट्रॉफी दी जाएगी और जश्न मनाया जाएगा भारतीय टीम द्वारा। लेकिन इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। लतिका, उत्तरा ने कहा कि हमें अब और आगे की सोचनी है, उस लिहाज से क्या लगता है कि कौन सी चीजें हैं, कौन से वो पहलू हैं जिन पर भारत को इंप्रूव करने की जरूरत है जो आपने इस टूर्नामेंट में देखे?
0: देखिए, सबसे पहले हमने देखा है कि इस पूरे टूर्नामेंट में जो फील्डिंग की अगर मैं बात करूं, कैचेस की अगर मैं बात करूं, तो वो थोड़ा सा लैक दिखा है, उसमें थोड़ी कमियां जरूर नजर आई हैं। और आई होप के जो कोचेज हैं, मैनेजमेंट है, उन्होंने भी इस चीज को देखा होगा और इस पे काम करने के लिए आगे प्लान्स भी जरूर बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक चीज होती है जो अपने हाथ में रहती है। एक बल्लेबाज किसी भी अच्छी गेंद पर आउट हो सकता है, एक गेंदबाज की किसी भी अच्छी बॉल पर बड़ा हिट लग सकता है, लेकिन फील्डिंग एक ऐसी चीज है जिसमें आपको ही एफर्ट करना है, वही एफर्ट जो है वहां पर रन बचा सकता है या किसी की बॉलिंग में वो विकेट दिला सकता है। तो जो आज भी हमने देखा है कि काफी आसान से कैच इतने आसानी से छोड़ दिए, आप उस बॉलर से पूछिए जिसने इतनी मेहनत की उस कैच को करवाने के लिए। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि कोई क्रूशल अगर मैच होगा और वहां ये सिचुएशन आती है तो थोड़े आपको कह सकती हूं मैं कि लेने के देने पड़ सकते हैं। तो ये एक चीज होती है जब आप क्रिकेट में कोई भी चीज को नजरअंदाज करते हैं, तो छोटी से छोटी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है।
2: बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। और आज की इस जीत में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो अभी दिखा हमें वो था भारत के स्पिन अटैक का, लेड बाय दीप्ति शर्मा, नाउ वी हैव चरणी, देन प्रेमा रावत। कैसे देखती है उत्तरा इस स्पिन अटैक को आप भारत के, क्या वो और ज्यादा धारदार होता जा रहा है? और काफी इंप्रेस किया उसने पूरे टूर्नामेंट में।
0: बिल्कुल, और जिस तरह से एज अ नॉर्मली कहा जाता है कि फास्ट बॉलर्स हंट इन पेयर्स, बट ये सिर्फ फास्ट बॉलिंग के लिए नहीं है, आपकी बॉलिंग यूनिट पूरी अटैक, व्हेन दे अटैक इन अ पैक, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। और अगर हम इसमें देखें तो हाँ, दीप्ति शर्मा जरूर काफी एक्सपीरियंस्ड हैं और उन्होंने काफी मैचेस खेले हैं, मैचेस जिताए हैं, काफी विकेटें ली हैं, इसमें भी वो टॉप विकेट टेकर बन गई हैं। पर श्रीचरणी और प्रेमा रावत को देख के आपको लगता है कि कम से कम वो लेगेसी आगे कंटिन्यू होने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिस तरह से क्योंकि दोनों यंगस्टर्स हैं, अभी बहुत साल और खेलना है। और हमारी बैटिंग हमेशा से बहुत अच्छी रही है, पर बॉलिंग में कभी ना हमेशा ये रहा है कि शायद एक कम पड़ गया है, या एक एंड पे जब हो रही होती है तो दूसरे एंड पे उस तरह से सपोर्ट नहीं मिलता है। तो जब इस तरह से आपके पास तीन चार एक जैसे विश्व स्तरीय स्पिनर्स होते हैं, तो वो जो बीच के ओवर होते हैं जिसमें आप एक्चुअली रन्स को चोक कर सकते हैं, वो एक अकेले इंसान का काम नहीं होता है। और इसीलिए मिडल ऑर्डर में जब आप सद के खेलते हैं, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो, T20 हो या वनडेयर्स हो, तो वहां पे फिर रन ज्यादा इजीली आते हैं। जब आपके पास एक की जगह तीन इस तरह के होते हैं जो किसी भी बैटिंग टीम को परेशान कर सकते हैं, बैटिंग साइड को, तो आपको आपके बैटिंग को भी एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप कोई भी टारगेट सेट करें उनके ऊपर प्रेशर कम हो जाता है कि अगर बाय चांस 5-10 रन कम भी बनाए हमने, तो हमारे पास ऐसे गेंदबाज हैं, चाहे वो शुरू में तेज गेंदबाज हों या बीच में स्पिन गेंदबाज हों, जो सामने वाली टीम की रन फ्लो को रोक सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, हम जश्न मना रहे हैं भारत के एशिया कप जीतने का, वुमेन्स एशिया कप 2026 का टाइटल भारतीय महिला टीम ने अपने नाम किया है। इस जश्न में आप भी शरीक हो सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं 2342-1085 या 1084 पर, और अगर दिल्ली के बाहर से आप कॉल कर रहे हैं तो 011 लगाना ना भूलें। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार, अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं ये बताइए।
3: नमस्कार सर, मैं गांव कुरियाना जिला फाजिला पंजाब से बोल रहा हूँ सर।
1: जी, क्या सवाल करना चाहेंगे?
3: सवाल मेरा ये है, आज विशाली शिवाली वर्मा और जो अपनी ओपनिंग बैट्समैन है, बहुत बढ़िया बैटिंग की है उन्होंने,

0: बॉल भी बहुत अच्छी की है, और मैं तो कहूंगा शेफाली बराबर मैन ऑफ द मैच और दीप्ति शर्मा मैन ऑफ द सीरीज जाएं।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: आप देशवासियों को और आपको भी और सारी टीम को बधाई मेरी तरफ से।
1: जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। शेफाली वर्मा और स्मृति मानधना की तो तारीफ होगी ही, मैं चाहूंगा लतिका एक बार फिर आप इनकी बल्लेबाजी का आकलन करें, और साथ के साथ शेफाली जो कि एक छठे बॉलर के तौर पर अब लगातार कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही है, थोड़ा सा उस पर भी हमें बताएं।
2: बिल्कुल, देखिए ये विश्व कप से कप के बाद से ही ये चीज हमने देखी कि शेफाली के हाथ में गेंद अब लगातार जो है दिखाई देती है जब भी कभी मैच होते हैं, और इस तरह के मोमेंट में आप देखिएगा पावर प्ले के आसपास भी उनको गेंदबाजी कराई जाती है, तो कह सकते हैं कि एक और गेंदबाज यहां तैयार हो रहा है भारतीय टीम के लिए जो कि विस्फोटक बल्लेबाज भी है, और ओपनिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस पूरे एशिया कप में उन्होंने बल्लेबाजी की है, और अपने खेल का जो तरीका उन्होंने इस एशिया कप में दिखाया है तो उससे ये पता चलता है कि काफी मेहनत इन्होंने अपनी स्किल पे भी की है, और जो इनका माइंडसेट है उस पे भी इन्होंने काफी काम किया है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन प्लेयर जो है ये बनकर आई हैं, और इस तरह की जब कोई प्लेयर बनते हैं ना तो उसके पीछे की जो मेहनत होती है वो प्लेयर ही जानता है कि उसने कितनी मेहनत की।
1: थोड़ी सी पीछे की मेहनत आपने देखी है, हम जानते हैं, थोड़ा सा वो बताएं हमारे दर्शकों को।
2: ओके, मैं यही कहूंगी कि शेफाली जब ड्रॉप हुई थी इंडियन टीम से, भारतीय महिला क्रिकेट टीम से, उस टाइम पे उन्होंने यही जो सपना था उनका यही था कि मेरी जगह कोई नहीं ले सकता और मैं लगातार अपनी जगह वापस लेने के लिए वो मेहनत करती रहूंगी, और उनको जैसे ही वो मौका वर्ल्ड कप के टाइम पे मिला और उन्होंने करके दिखाया, उसके बाद से वो शेफाली वर्मा हमें देखने को मिली है जो उससे पहले कभी हमें देखने को नहीं मिली थी, और हम यही चाहेंगे कि वो भारतीय टीम के लिए लंबे अरसे तक इसी तरह का प्रदर्शन करती रहे।
3: जी बिल्कुल, और शेफाली वर्मा पे हम आगे भी बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन आज हमारे श्रोता भी काफी उत्साहित हैं, तो एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार, अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछें।
4: नमस्कार मैडम, मैं राजस्थान के झुंझुनू जिले से अरविंद कुमार बात करता हूँ।
3: जी अरविंद जी, अपना सवाल पूछें।
4: पहले तो मैं भारतीय महिला टीम को बधाई देता हूँ कि हम जीत गए।
3: आपको भी बहुत बधाई।
4: मेरा यही सवाल देखा कि क्या भारत और अफगानिस्तान के बीच जो दो T20 क्या उनका प्रसारण आकाशवाणी पर होगा?
3: इसके बारे में हम आपको शायद कुछ समय बाद बता पाएंगे, लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे शेफाली वर्मा की, आपने बात करी, इससे पहले वाले कॉलर दोनों ने डिक्लेयर ही कर दिया था कि शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच देना चाहिए और दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दे देना चाहिए। तो उत्तरा और लतिका, मैं आप दोनों से पूछना चाहती हूँ कि कौन होगा आपका प्लेयर ऑफ द मैच और बिन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट?
5: बहुत मुश्किल है, पर प्लेयर ऑफ द मैच मेरे हिसाब से, हाँ बहुत अच्छी बैटिंग की थी शेफाली ने, और जिस तरह से नॉर्मली होता है ये बैटर्स हमेशा स्पॉटलाइट में ज़्यादा रहते हैं, और जिस उसकी उनकी बैटिंग की वजह से जो स्टार्ट मिला उसकी वजह से बाकी जो नीचे जितने भी थोड़े से रन आए, हालांकि मिडल ऑर्डर थोड़ी सी लड़खड़ाई, लेकिन जो स्टार्ट मिला शेफाली की बैटिंग से, और सिर्फ इस मैच में नहीं बल्कि पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह से उनकी बैटिंग रही है, तो मुझे लगता है कि प्लेयर ऑफ द मैच जरूर बनती है वो। श्री चरनी को भी देखा जा सकता है क्योंकि चार विकेट फाइनल में आके लेना, और जिसमें आपका पूरा मिडिल ऑर्डर एक तरह से आपने उनका खत्म किया है, जो इस पूरे टूर्नामेंट में लगातार श्रीलंका की ताकत रही है, उनके ऊपर के बल्लेबाज फेल हों तो भी तीन चार जब ऊपर के निकल जाते हैं तो उनके पांचवें छठे सातवें आठवें नंबर के खिलाड़ियों ने ही रन बनाए हैं लगातार, उस पॉइंट पे आके उनको वो ना स्पेस देना और वो चार विकेट लेके एक तरह से उनकी पूरी मिडिल ऑर्डर को तोड़ना, इन दोनों में से किसी को भी मिल सकता है। और जहां तक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात है तो अगेन शेफाली और दीप्ति में से मुझे नहीं लगता दोनों में से किसी को भी कोई तकलीफ होगी अगर किसी को भी मिले इन दोनों में से तो।
1: जी, श्री चरणी ने आज 38 विकेट अपने पूरे किए हैं 2026 में, और किसी भी कैलेंडर ईयर में भारतीय स्पिनर द्वारा लिए गए ये सबसे ज्यादा विकेट है। और लतिका, लगातार बात होती है एक लंबे अरसे से कि आपके पास बेंच पर राधा यादव है जो ना ही सिर्फ इन्हीं की तरह लेफ्ट आर्म स्पिन डालती हैं बल्कि एक बेहतर बल्लेबाज भी है, बेहतर फील्डर भी है, फिर भी भारतीय टीम हमेशा चरणी को प्रेफरेंस देती आई है और उन्होंने डिलीवर किया भी है। मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा हमें समझाएं कि ऐसा क्या है चरणी की गेंदबाजी में जो उनको सेपरेट करता है अपने कॉम्पिटिशन।
2: देखिए चरणी जिस तरीके से गेंदबाजी करती हैं, पेस वेरिएशन

0: करती हैं, लाइन और लेंथ का इस्तेमाल करती हैं, वो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि बल्लेबाजों को काफी परेशान करता है। और जिस जो फील्ड सेट वो करती हैं, जिस तरफ फील्ड लगाती हैं, उसी तरफ गेंद आप देखिएगा कि वहीं वो गेंद जाती है। अगर राधा यादव की बात करूं, गेंदबाजी उन्होंने भी बहुत अच्छी की है जब भी उन्होंने मैच खेले हैं, लेकिन इन दोनों में जो डिफरेंस मुझे दिखाई दिया है अभी तक, जो बॉल रिलीज होती है तो वो किस तरीके से हवा में जाती है और बल्लेबाज तक वो पहुंचती है, तो वो एक डिफरेंस है गेंदबाजी में दोनों की, कि गति गति का परिवर्तन बहुत बेहतरीन करती है श्रीचरणी
1: जी। और एक बड़ी खबर इस वक्त मेक्सिको से आ रही है, जैसा हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, धीरज बोमा देवरा वर्ल्ड कप फाइनल्स में, आर्चरी की बात कर रहे हैं हम, तीरंदाजी की बात कर रहे हैं, रिकर्व मेंस इंडिविजुअल इवेंट में वो गोल्ड मेडल के बेहद करीब पहुंच चुके थे, और अब खबर आ रही है कि वो गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, जापान के नाकानिशी को उन्होंने फाइनल में हराया है और आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल में भारत को गोल्ड जिताया है। तो भारतीय स्पोर्ट्स के अगर आप फैन हैं तो आपके पास एक और रीजन है

0: मेन्स में, आर्चरी की बात कर रहे हैं हम, तीरंदाजी की बात कर रहे हैं, रिकर्व मेन्स इंडिविजुअल इवेंट में वो गोल्ड मेडल के बेहद करीब पहुंच चुके थे, और अब खबर आ रही है कि वो गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। जापान के नाकानिशी को उन्होंने फाइनल में हराया है और आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल में भारत को गोल्ड जिताया है। तो आप भारतीय स्पोर्ट्स के अगर आप फैन हैं तो आपके पास एक और रीजन है सेलिब्रेट करने का, एक और वजह है आपके पास जश्न मनाने की, क्यों मुद्दता?
1: बिल्कुल है, और जश्न मनना चाहिए, चलता रहना चाहिए ये जश्न, और अब आने वाले एशियन गेम्स में भी हमें लगता है ये जश्न जारी रहेगा। चरणी की बात हम कर रहे थे लतिका अभी, तो चरणी टुक हर 50th T20 इंटरनेशनल विकेट इन सेमीफाइनल अगेंस्ट बांग्लादेश, और फास्टेस्ट इंडियन बॉलर बनी है वो मेन या वेमेन में टू गेट देयर। 39 T20 विकेट्स ले चुकी हैं इस साल, और इसके साथ ही हमारे साथ फिर से एक कॉलर जुड़ गए हैं। आज बहुत सारे सवाल हैं हमारे श्रोताओं के पास, तो नमस्कार, अपना नाम बताएं और साथ ही अपना सवाल पूछें।
2: गुड इवनिंग मुदिता मैडम।
1: गुड इवनिंग।
2: गुड इवनिंग, माय नेम इज प्रकाश अमरावती।
1: जी प्रकाश जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछें अपना।
2: मुदिता मैडम, सबसे पहले तो आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई।
1: आपको भी हम सब की तरफ से।
2: वहाँ पे दर्पण सर है, बहुत सी खुशियाँ दे रहे हैं यार, आपको बहुत बहुत बधाई यार।
0: जी ये खुशियाँ मैं नहीं दे रहा, ये भारत के खिलाड़ी दे रहे हैं, बहुत बहुत बधाई। अच्छा, आपको भी।
2: हाँ जी जी जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। वहाँ पे उत्तरा गणेशा मैडम है या फिर लतिका मैडम है, उनसे मेरा एक मेरे दो क्वेश्चन है दोनों के लिए।
0: जी पूछिए।
2: बट देखो, पहला सवाल तो यह ठीक है, हम एशियन में इतने कंफर्टेबल टीम नहीं है जितने आई मीन इंडिया टॉप टीम है, जैसे इतने कॉम्पिटेबल टीम नहीं है। फिर भी मेरा ऐसा क्वेश्चन है कि हमारा जो मिड, अभी हरमन 14 बॉल 14 रन, ठीक है, ऋचा एक आई मीन पावर हिटर के जानी जाती है, तो हमारा मिडल ऑर्डर इतना कच्चा क्यों है, मुझे ये जानना सबसे पहले तो। और दूसरा ये है कि हम जो हमारी फील्डिंग्स है या फिर स्मिथ को हमने इतने देखो इतना अच्छा खेल रही थी, फिर भी हमने मिसकम्युनिकेशन देखा, हम इस पे काम क्यों नहीं कर सकते, ऐसे मेरे दो क्वेश्चन है।
0: जी उतरा, हम चाहेंगे आप हेड ऑन लेते हैं चीजों को, इस सवाल को भी आप हेड ऑन लें। हम बात कर रहे थे कि हमें कैसे एशिया से बाहर निकलना है, कुएं का मेंढक नहीं बनना है, और बेहतर बनना है, विश्व स्तर पर ऐसा बनना है कि कोई भी टीम हमसे कम्पीट ना कर सके, तो ये छोटी छोटी गलतियां जो हो रही हैं इस पर हम कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं?
3: देखिए बिल्कुल, और जैसे लतिका ने कहा, जो प्रेमा की बॉल पे लगातार एक ही ओवर में 2 या 3 कैच ड्रॉप हुए हैं, तो वो किसी भी खिलाड़ी को भी डिमोटिवेट करने के लिए काफी होता है। और हालांकि जिस टाइम पे वो कैचेस ड्रॉप हुए उससे रिजल्ट पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा था, तो आपको भारतीय खिलाड़ी भी थोड़े से हंसते मुस्कुराते नजर आए, उन्होंने उसको बहुत सीरियसली नहीं लिया। लेकिन अगर उस वक्त टोटल 107 पे 8 की जगह 177 पे 8 होता तो शायद चीजें बिल्कुल अलग हो जाती, क्योंकि तब आपके पास करीब डेढ़ ओवर में आपको सिर्फ 5 या 6 रन बनाने रह गए थे या 8 रन बनाने थे, तो सिचुएशन शायद बिल्कुल अलग हो जाती। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस पे काम करने की बिल्कुल जरूरत है, फील्डिंग पे काम करने की जरूरत है। हालांकि आज बहुत ही 2 एक्सट्रीम्स पे थे भारतीय फील्डिंग, कुछ तो इतने कमाल के इन्होंने कैचेस लिए जो शायद किसी भी हॉल ऑफ फेम में जा सकते हैं, और कुछ ऐसे कैचेस थे जो 10 में से शायद 9 बारी ये लोग नींद में भी ले सकते थे और आज ड्रॉप हुई हैं कैचेस। तो वो कंसिस्टेंसी लानी बहुत जरूरी है, और उसके साथ साथ जो एक चीज ऑस्ट्रेलिया या इवन इंग्लैंड जैसी टीमों को अलग बनाती है या थोड़ा बेहतर बनाती है, वो मुझे हमेशा से लगता है कि जो एक किलर इंस्टिंक्ट होता है, एक किलिंग स्पिरिट होती है, कि आपके पास बिल्कुल आपके पास 70-72 रन का अभी कुशन है, आपको पता है कि अगले 6 गेंदों में 2 विकेट जरूर गिर सकते हैं लेकिन 70 रन नहीं बन सकते, पर आपको उस स्टेज पे क्यों जाके लगता है कि यहां पे हम ये अफोर्ड कर सकते हैं कि हां दो चार कैच ड्रॉप हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट पे। वो 18.3 ओवर में क्यों नहीं खत्म हो सकता, क्योंकि उस चीज से ओवरऑल आपके रन रेट पे फर्क पड़ता है, जो गेंदबाज है उसकी इकोनॉमी रेट पे फर्क पड़ रहा है, उसमें आपकी टीम की सीरियसनेस नजर आती है उससे। और जब आप बड़े खिलाड़ियों के साथ बड़े

0: हॉस्पिटल पे खेलते हैं, तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको हर्ट करती हैं। और हमने लगातार देखा है कि इन छोटी छोटी चीजों से ही भारतीय टीम ने कई बारी विश्व स्तर पे अपने मैचेस हारे हैं बड़ी टीमों के साथ। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी लाना, थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म लाना, थोड़ा सा वो किलर इंस्टिंक्ट लाना कि किसी भी पॉइंट पे आपको गेम को खत्म जितनी जल्दी कर सकते हैं उतनी जल्दी खत्म किया जाए, 20वें ओवर तक, 120वीं गेंद तक लेके जाने का उसका कोई मतलब नहीं है आपका। तो वो चीज मुझे लगता है कि वाकई थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। वो तभी आएगा जब आप सीरियसली, जब आप थोड़ा सा और प्रोफेशनल होंगे, थोड़ा सा और सीरियस होंगे इस चीज को लेकर।
1: जी बिल्कुल, वो किलर इंस्टिंक्ट और वो विनिंग माइंडसेट बिल्कुल चाहिए। लतिका, फिर से बात की उत्तरा ने प्रेमा रावत की, श्रेयंका पाटिल की इंजरी के बाद सीधे वर्ल्ड कप में डेब्यू हुआ था और उसके बाद अब एशिया कप, पिछले 4 मैचेस में 6 विकेट, आज फाइनल में खाता खोला है उन्होंने। हाउ वुड यू रेट हर परफॉर्मेंस?
2: देखिए, मैच के बाद मैच में वो इंप्रूव करती नजर आई हैं और इस एशिया कप में एक खास बात ये देखने को मिली है उनकी गेंदबाजी में जो कि वर्ल्ड कप में थोड़ा सा मिसिंग थी। अगर वर्ल्ड कप की बात करें तो वहां पर लाइन लेंथ इतनी प्रॉपर नहीं थी, इतने अच्छे से गिर नहीं रहा था, लेकिन इस एशिया कप में उनके हाथ से बहुत ही अच्छा गेंद जो है सीम से निकल रहा है, अच्छा टप्पे पे गिर रहा है, अच्छी लाइन जो है उनकी पड़ रही है और अच्छा वहां से स्पिन भी करा पा रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज है गेंदबाज में जब वो एक मैच के बाद मैच में इंप्रूवमेंट करता हुआ आ रहा है। अब विकेट टेकिंग की बात करें उनकी, तो विकेट टेकिंग एबिलिटीज हैं और वो हर मैच में दिखा भी रही हैं। आज अनफॉर्चुनेटली उनके कैचेस पकड़े नहीं गए, अदरवाइज ये एक की जगह 2 या 3 यहाँ पर विकेट होते। तो मुझे ये लगता है कि अच्छा काम वो अपनी गेंदबाजी पे कर रही हैं और जिसका असर हमें मैचेस में दिख रहा है कि विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रही हैं और बहुत ही सटीक और डिसिप्लिन जो गेंदबाजी है उनकी तरफ से हो रही है। और वही है कि किस तरीके से हम कहते हैं ना बॉलिंग में लूप का इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो बहुत बेहतरीन कर रही हैं एज ए लेग स्पिनर।
3: अच्छा, स्पिनर्स की तो बात हम करने ही वाले हैं, होनी भी चाहिए, और दुबई में क्योंकि ये टूर्नामेंट था इसलिए स्पिनर्स बहुचर्चित रहेंगे, ये तो हमें मालूम था। लेकिन वो जो दो पेसर्स हैं लतिका, क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा, स्पॉटलाइट उन पर आ नहीं रहा लेकिन उनका परफॉर्मेंस भी शानदार रहा है इस टूर्नामेंट में। थोड़ा सा मैं चाहता हूं अपने दर्शकों को हम बताएं, अपने लिसनर्स को हम बताएं उन दोनों के बारे में कि क्या है जो आपने आकलन किया उनको इस टूर्नामेंट में खेलते हुए देखते हुए, उनके परफॉर्मेंस को आप कैसे रेट करते हैं?
2: देखिए, काफी इंप्रूव गेंदबाजी, मैं ये कहूंगी कि विश्व कप के बाद से सभी गेंदबाजों में इंप्रूवमेंट नजर आई है, खासकर हमारी पेस अटैक पे, क्योंकि हम काफी थोड़ा निराश थे कि वहां पर हमारी गेंदबाजी इतनी बेहतर तरीके से हो नहीं पाई। क्रांति गौड़ की बात करें तो उनकी लाइन और लेंथ पे अच्छा काम किया है, विकेट टू विकेट वो गेंदबाजी यहां कर रही है, पहले काफी शॉर्ट गेंदबाजी वो करती थी लेकिन अब उन्होंने बल्लेबाज के हिसाब से गेंदबाजी की है, अपनी लाइन लेंथ पे काम किया है। वहीं अगर नंदिनी की बात करें तो हमने देखा है कि WPL में किस तरीके गेंदबाजी करती थी और अब थोड़ा सा एक्शन, थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बदलाव जरूर किए हैं और उसकी वजह से जो एक विकेट टू विकेट गेंदबाजी हम ज्यादा उनकी गेंदबाजी में देख रहे हैं, हमें पता है कि इन स्विंग अंदर की तरफ आती हुई गेंद वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से डालती हैं, तो कंसिस्टेंसी इस टूर्नामेंट में हमारे
3: लोअर बॉल डालती है बैक ऑफ द हैंड
2: वो परफेक्ट है उनकी नंदिनी की। मैंने बहुत कम बॉलर्स देखे हैं जो इतने परफेक्शन से वो गेंद डालते हैं और उनपे उनको विकेट भी मिलती है, पिछले मैच में हमने देखा लास्ट बॉल में उन्होंने कैसे विकेट लिया था।
1: लतिका, हर प्लेयर का जिस तरह आप एनालिसिस कर रही हैं तो आपका पिक कौन होगा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए और प्लेयर ऑफ द मैच के लिए?
2: देखिए, प्लेयर ऑफ द मैच बिल्कुल जिस तरह गेंदबाजी श्री चन्नी ने यहाँ पे की है कि यंगस्टर्स हैं, उभरता हुआ सितारा भी हैं और उनको ये इसीलिए मिलना चाहिए क्योंकि जब कोई यंगस्टर इस तरह गेंदबाजी इस टूर्नामेंट में करता है तो एक कॉन्फिडेंस लेवल उसका अलग होता है और उन्होंने अपनी काबिलियत भी दिखाई, अपने स्टैंडर्ड भी सेट किए हैं कि वो किस लेवल की गेंदबाज हैं और चाहे हम किसी भी बैटर को उनके सामने ले आते घबराती नहीं है बॉल को डालते टाइम और जो रिटर्न कैचेस वो पकड़ रहे हैं आजकल, मतलब कह सकते हैं कि हवा में होते हैं वो पूरे और उसके बाद, तो एक ये भी देखने को मिलता है कि फिटनेस पे भी वो अच्छा काम कर रही हैं, तो ये देखते हुए अच्छा लगता है कि कोई यंगस्टर इस तरीके से आपकी टीम में कॉन्ट्रीब्यूट करता है। और वुमन ऑफ द मैच तो मैं कहूंगी कि एक गेंदबाज को, मैम से भी मैं एग्री करूंगी कि गेंदबाज को मिलना चाहिए क्योंकि बैटिंग डोमिनेटिंग ये गेम बनता जा रहा है, तो जहां वहां बॉलर अगर 4 विकेट ले रहा है

उसका ये मतलब, और एक मेडन भी डाला है उन्होंने, तो इसका ये मतलब है कि कितनी बेहतरीन उन्होंने गेंदबाजी की होगी। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मुझे लगता है कि शेफाली या दीप्ति, क्योंकि दीप्ति एक ऑलराउंडर है, अच्छी गेंदबाजी भी करती हैं, समय आने पर अच्छी बल्लेबाजी भी वहाँ करती हैं। और शेफाली के इसलिए क्योंकि इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है कि जब इनिंग की शुरुआत करनी होती है।